0: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
1: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।

जिंदगी में जागना ही है तो हर दिन उम्मीद के साथ ही जागिए। जिंदगी में जागना ही है तो हर दिन उम्मीद के साथ ही जागिए। निराशा के साथ जागे तो पूरा दिन निराश ही रह जाएंगे। उम्मीद के साथ ही कीजिए हर काम को, उम्मीद के साथ ही कीजिए हर काम को, कभी न कभी सफल जरूर हो जाएंगे। 5:36 हो चुके हैं। सुनते रहिए कार्यक्रम भोर सुहानी।

0: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
1: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।

सिर्फ काटना ही है मकसद तुम्हारा तो कैसे भी कट जाएगी ये जिंदगी। सिर्फ काटना ही है मकसद तुम्हारा तो कैसे भी कट जाएगी ये जिंदगी। पर हम लोग यहाँ जिंदगी काटने नहीं, जिंदगी जीने आए हैं। 5:47 हो चुके हैं। सुनते रहिए कार्यक्रम भोर सुहानी।

नमस्कार, सुप्रभात। FM 102.5 मेगाहर्ट्ज और साथ ही न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल एप्लीकेशन पर ये आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र है। आज बुधवार है। शक संवत 1948 के श्रावण मास की 14वीं तिथि, तदनुसार 5 अगस्त सन 2026 सुबह के 5:55 और ठीक 12 सेकंड्स हुए हैं। अब हमारी प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है।

हम आकाशवाणी के उज्जैन केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6 बजने को हैं। अब समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। भारत इस वर्ष ब्रिक्स संगठन के अध्यक्ष के रूप में ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की तीसरी बैठक की मेजबानी करेगा। ये बैठक आज और कल भोपाल में होगी। संस्कृति मंत्रालय ने बताया कि बैठक में सदस्य देशों के प्रतिनिधि सांस्कृतिक सहयोग बढ़ाने और ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक से पहले प्रमुख मुद्दों पर सहमति बनाने पर विचार करेंगे। दो दिन की बैठक में तीन प्राथमिकता क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। मंत्रालय ने बताया कि इस बैठक से ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत सांस्कृतिक साझेदारी मजबूत करने तथा संस्कृति के माध्यम से समावेशी विकास को बढ़ावा देने की भारत की प्रतिबद्धता व्यक्त होती है। ब्रिक्स देशों के शिक्षा मंत्रियों की 13वीं बैठक आज से उड़ीसा के भुवनेश्वर में होगी। ये बैठक 7 अगस्त तक चलेगी। इसी दौरान संगठन के वरिष्ठ अधिकारियों की तीसरी बैठक भी चलेगी। शिक्षा मंत्रालय ने बताया कि इन बैठकों में शिक्षा मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और सदस्य देशों के प्रतिनिधि विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। मुख्य रूप से आरंभिक बाल्यावस्था में समुचित देखभाल और शिक्षा, कौशल विकास सहयोग बढ़ाना तथा अनुसंधान, नवाचार और स्टार्टअप को बढ़ावा देने पर विचार होगा। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ब्रिक्स देशों के शिक्षा मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेंगे। संसद ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इसे राज्यसभा ने कल स्वीकृति, लोकसभा पहले ही विधेयक को पारित कर चुकी है। विधेयक का उद्देश्य जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 में संशोधन करना है। नया विधेयक विलंबित पंजीकरण के प्रावधानों को और अधिक सख्त बनाने और जन्म तथा मृत्यु की घटनाओं की समय पर सूचना देने को प्रोत्साहित करने के लिए लाया गया है। इससे पहले लोकसभा ने विनियोग विधेयक 2026 पारित किया। इसमें 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वित्त वर्ष के दौरान कुछ सेवाओं पर स्वीकृत राशि से अधिक खर्च की गई थी। इस राशि को पूरा करने के लिए देश की संचित निधि से धन के विनियोग को अधिकृत करने का प्रावधान है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही कल नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित रही। इसके बाद कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने अयोध्या राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठाया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर का विरोध करने वाली कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अब चंदे की कथित चोरी को लेकर नाटक कर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। संसद की कार्यवाही आज दिन के 11 बजे से शुरू होगी। झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी और अन्य भर्ती परीक्षाओं में कथित तौर पर पेपर लीक होने के विरोध में प्रदर्शन कर रहे नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों ने राज्य के बाहर के सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से जांच की मांग की। उन्होंने कहा कि उन्हें अपराध जांच विभाग सीआईडी की जांच पर भरोसा नहीं है। प्रदर्शनकारी 29 जुलाई से रांची में अनिश्चितकालीन धरना दे रहे हैं। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में कथित स्थानीय चुनाव को पूरी तरह दिखावा बताया है और कहा है कि इससे सच्चाई छिप नहीं सकती। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में संवाददाताओं से कहा कि वहां की वास्तविकता विरोध प्रदर्शन और पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा की जा रही हिंसा है।
1: इस वर्ष जून से अब तक वहाँ जन प्रदर्शन जो चल रहा है उसमें 90 लोग मारे गए हैं और कई एक अन्य में घायल हुए हैं। पाकिस्तान की सत्ता व्यवस्था ने जनता के असंतोष का जवाब गोली से, संचार बंदी से, धमकी से और दमन से दिया है। इसके लिए उसे जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए और विश्व समुदाय को मानव अधिकारों पर पाकिस्तान के पाखंडपूर्ण उपदेशों के इस खोखले मुखौटे के पार वास्तविकता को देखना चाहिए।
0: राष्ट्रपति भवन स्थित अमृत उद्यान की ग्रीष्मकालीन वार्षिक प्रदर्शनी आम लोगों के लिए इस महीने की 16 तारीख से खुल जाएगी। लोग 15 सितंबर तक अमृत उद्यान का भ्रमण कर सकेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार राज्य परिवहन निगम की बसों में 60 वर्ष और इससे अधिक आयु की महिलाओं को निःशुल्क यात्रा की सुविधा देगी। इसके लिए बजट में समुचित प्रावधान किए गए हैं। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में कृष्ण प्रसाद गरागा और पृथ्वी कृष्णमूर्ति रॉय ने डबल्स प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। महिला सिंगल्स में तन्वी शर्मा भारत की अगुवाई करेगी। पीवी सिंधु और उन्नति हुड्डा इस प्रतियोगिता में भाग नहीं ले रही हैं। ये प्रतियोगिता 9 अगस्त तक खेली जाएगी। विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप आज से शुरू हो रही है। इसमें 36 सदस्य भारतीय टीम हिस्सा लेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदनवार। आइए पहले सुनते हैं आज का चिंतन। विद्वानों का कथन है, आज का परिश्रम कल का परिणाम तय करता है। ये था आज का चिंतन। आइए अब सुनते हैं भक्ति संगीत।

हम विविध भारती से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं आज प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों का झरोखा। अब से कुछ ही देर में यानी 6:35 पर सुनिए श्री रामचरितमानस पाठ का भाग 271। छह बजकर 45 पर संगीत सरिता में इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला वर्षा चौमासा। कलाकार हैं गायिका शुभा मुग्दल। सुनिए श्रृंखला की 5वीं कड़ी। प्रस्तुति है कांचन प्रकाश संगीत की। 7 भूले बिसरे गीत हमें राही प्यार के 7:30 पर। 8:15 पर त्रिवेणी। आलेख और स्वर है आरती श्रीवास्तव का। पर सुनिए चित्रलोक कार्यक्रम। 9:30 पर आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित होगा अभिनेत्री काजोल पर। प्रस्तुति तेजश्री कांबले की। 10:00 आप सुनेंगे पिटारा में सेल्यूलॉइड के सितारे। अभिनेत्री और निर्देशक तनिष्ठा चटर्जी से यूनुस खान की बातचीत का पहला भाग। संपादन सहयोग मनीषा सिंह का। प्रस्तुति तेजश्री कांबले की। 11:00 सुनिए रंग तरंग कार्यक्रम। 12:05 से सजेगी यादों की महफिल। 1:00 सुनिए सुरीला सफर। दोपहर 2:00 त्रिवेणी। सुनिए आलेख और स्वर है आरती श्रीवास्तव का। प्रस्तुति अनुश्री पाठक की। 2:30 पर सदाबहार नगमे। 3:00 आप सुनेंगे सखी सहेली। 4:00 पिटारा में आज के मेहमान लेखक निर्देशक और कॉमिक क्रिएटर आलोक शर्मा से यूनुस खान की बातचीत का पहला भाग। संपादन सहयोग मनीषा सिंह का। प्रस्तुति तेजश्री कांबले की। 5:30 पर सुनिए तराने नए पुराने।

6:35 पर संध्या रंजन, 7 बजे सुनिए जयमाला कार्यक्रम, 7:45 पर इंद्रधनुष में आप सुनेंगे राग अनुराग, 8 बजे हवा महल में सुनिए झलकी चुपके चुपके, लेखन है आर के शर्मा का और निर्देशन है नीलम चोपड़ा का, 8:15 पर रात्रि चित्रलोक। रात 9 बजे सुनेंगे आपके लिए कार्यक्रम, 10 बजे छाया गीत, आलेख और स्वर है मंदाकिनी जोशी का, प्रस्तुति राघवेंद्र नेगी की, और 10:30 पर आप सुनेंगे ढलती जाए रात। ये था आज प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों का झरोखा।

प्रसंग है किष्किंधा कांड में बालिवध के बाद सुग्रीव के राज्यारोहण तथा बालिपुत्र अंगद के युवराज घोषित किए जाने के बाद प्रवर्षण पर्वत की गुफा में राम लक्ष्मण प्रवास का। ऋतुचक्र अपनी गति से चल रहा है। वर्षा ऋतु का आगमन हुआ। सुंदर स्फटिक मणि की अत्यंत उज्जवल शिला पर बैठे हुए श्री राम छोटे भाई लक्ष्मण से भक्ति, वैराग्य, राजनीति और ज्ञान की अनेक कथाएं कहते हैं। आकाश में घुमड़ते बादलों को देख मोरों के झुंड ऐसे नर्तन कर रहे हैं जैसे वैराग्य में अनुरक्त गृहस्थ किसी विष्णु भक्त को देखकर हर्षित होता है। आकाश में घुमड़ते बादलों को देख मोरों के झुंड ऐसे नर्तन कर रहे हैं जैसे वैराग्य में अनुरक्त गृहस्थ किसी विष्णु भक्त को देखकर हर्षित होता है। बादल पृथ्वी पर ऐसे झुके आते हैं जैसे विद्या पाकर विद्वान नम्र हो जाते हैं। वर्षा की बूंदों की चोट पर्वत ऐसे सहते हैं जैसे दुष्टों के वचन संत सह लेते हैं। चारों दिशाओं में मेंढकों की ध्वनि ऐसी सुहावनी लगती है जैसे विद्यार्थियों का समूह वेद पाठ कर रहा हो।

0: आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस पाठ का भाग 271।
1: ये आकाशवाणी का प्रसारण है विविध भारती।

0: श्रोता मित्रों, संगीत सरिता कार्यक्रम में आपका स्वागत है और शुभा जी आपका भी स्वागत है।
1: धन्यवाद।
0: नमस्कार।
1: नमस्कार।
0: हमने शुद्ध मल्हार, मेघ मल्हार, मेघ गौड़ मल्हार, मियाँ की मल्हार, जो कि वर्षा ऋतु से संबंधित राग हैं, की आपने चर्चा की और बंदिशें भी सुनाई।
1: जी।
0: लेकिन शुभा जी, मुझे एक सवाल हमेशा मन में ये उमड़ता घुमड़ता रहता है कि ऐसी जो बंदिशें हैं वो क्या सिर्फ मल्हार ही में मिलती हैं, किसी और राग में?
1: जी, बहुत सारी हैं ऐसे अन्य रागों में जिनका वर्षा से ऐसा कोई संबंध नहीं है रागों का, लेकिन जो बंदिशों की जो साहित्य है वो वर्षा से संबंधित जरूर मिलता है।
0: जी।
1: एक ऐसी बंदिश है जिसे संगीत के बहुत सारे विद्यार्थी उससे परिचित होंगे, राग बिहाग की एक बंदिश है, लट उरझी सुलझा जा रे बालम। ये बहुत सारे लोग सीखते हैं, और क्योंकि बिहाग ऐसा राग है, एक महा राग है जिसे शुरुआत में भी सिखाया जाता है, यानी जो सीखना शुरू करता है वो उसके पहले दूसरे साल में आपको बिहाग जरूर सिखाया जाता है, तो मुझे लगता है बहुत सारे लोग इस बंदिश से परिचित होंगे।
0: जी।
1: मुझे जो एक बात इसमें अलग लगी कि ख्याल के रूप में तो इसे गाया ही जाता है, ख्याल गायक इसे गाते ही हैं, लेकिन मुझे यही साहित्य और यही पद, यानी जो साहित्य है, वो मुझे वैष्णव मंदिरों में, कृष्ण मंदिरों में, जो उत्तर भारत के कृष्ण मंदिर हैं, उनमें आप जानते हैं कि संगीत के बिना सेवा ठाकुर की पूरी नहीं होती है। राग सेवा
0: ये सनातन परंपरा है।
1: जी बिल्कुल।
0: अष्टछाप कवियों ने इसका
1: जी, और ऐसा साहित्य और ऐसा संगीत मिलता है उसमें जो कि बिल्कुल खजाना सा है, तो उसमें यही साहित्य मुझे मिला, लेकिन उसे तीज के पदों के एक संग्रह में शामिल किया गया था।
0: जी, जी।
1: तो हम तो जब ख्याल गाते हैं तो एक स्थाई एक अंतरा गाते हैं, लेकिन उस पद में जैसे तीज का पद कहा गया, और वो ठीक भी लगता है क्योंकि तीज का जो त्योहार है वो वर्षा ऋतु के ही दौरान आता है, और मुझे याद है कि अभी जो एक तीज के समय मेहंदी लगाई जाती है, कन्याएं सुहागिने सब जो है सज धज के और मेहंदी लगाती
0: हैं, हरी चूड़ियां
1: लाल चूड़ियां, मणिहारन बुलाई जाती है चूड़ियां पहनाने के लिए घर की महिलाओं को, और माँ की ओर से साड़ी श्रृंगार का सामान ये सब आता है, तो झूला पड़ता है, झूला भी झूला जाता है तीज के दौरान, तो ये बिल्कुल इसका जो साहित्य है वो बिल्कुल उपयुक्त लगता है कि तीज का पद क्यों कहा जाए इसे।
0: शुभा जी, भारतवर्ष में जगह जगह सावन ऋतु, सावन और जो आप ये कह रही हैं त्योहार, थोड़ा सा फर्क होगा इसको मनाने की जो पद्धति रीति है उसमें फर्क होगा, लेकिन मनाया तो जाता ही है।
1: जी हाँ, किसी ना किसी रूप में धरती का जो एक की जो उपजाऊ एक
0: सृजनशीलता,
1: बिल्कुल, उसको नवाजा जाता है, उसको नमन किया जाता है, और प्रार्थना होती है कि ये सदैव ऐसा ही बना रहे।
0: जी।
1: तो इस पद में क्या कहा गया, जो नायिका है वो तो हाथ में मेहंदी लगा के बैठी है, दोनों हाथों में मेहंदी लगी है, तो अब संकेत कैसे करे वो नायक को, कैसे उसे अपने पास बुलाए, तो वो कहती है लट उरझी सुरझाए जा बालम, मोरे हाथन मेहंदी लगी है। वो तो बेबस है, वो तो मजबूर है, अपने दोनों हाथ तो वो लगा ही नहीं सकती है अपने केश पे, तो लट उलझी सुलझा जा रे बालम, मोरे हाथन मेहंदी लगी है। फिर जो तीन अंतरे हैं वो इस प्रकार हैं, सिर की सारी सरक गई है, जो साड़ी का जो घूंघट है जो सर पे लिया था वो सरक गया है, अपने हाथ उढ़ाए जा बालम, मोरे हाथन मेहंदी लगी है।
0: वाह।
1: फिर दूसरा अंतरा उसके बोल इस प्रकार है, भाल की बेंदी मोरी गिर जो परी है, शायद हाथ लगा हो तो बिंदी भी गिर गई हो, भाल की बेंदी मोरी गिर जो परी है, हा हा करत लगाए जा बालम।
0: हा हा करत,
1: हाँ, मतलब एक बुलाने का तरीका है।
0: हा।
1: नीलांबर प्रभु गुण ना भूलूं, बीरी नेक खवाए जा बालम, बीरी यानी पान का बीड़ा,
0: हाँ,
1: वो भी मुझे अपने हाथ से खिला दो, ऐसा निवेदन है।
0: जी।
1: तो ये पद तीज का पद जो कि यदि हम उसे बिहाग में बैठा के आलाप इत्यादि के साथ, बढ़त के साथ गाएं, तो वो ख्याल गायक भी गाते हैं, और मंदिरों में ये तीज के पद के रूप में भी सुनने को मिलता
0: और
1: है।
0: और भले ही इसमें जैसे उमड़ घुमड़ कर आई घटा और ये सब ना भी हो, फिर भी वर्षा ऋतु के समय, वर्षा काल में इसे मनाया जाता है।
1: जी बिल्कुल,
0: त्योहार
1: बिल्कुल मनाया जाता है
0: उस समय, तो नायिका

0: के हाथों में जब मेहंदी लगी है, और हर जगह हर प्रांत में ये होता है कि सावन में हाथों में मेहंदी तो लगाई जाती है, तो सुनाएंगी आप ये पूरा पद या
1: बिल्कुल
0: क्या मन है?
1: बिल्कुल पूरा पद भी सुनाऊंगी और ये भी कहूंगी कि हर रचना का जो साहित्य है उसे यूं ही उड़ा नहीं देना चाहिए, उसमें बहुत सारी कहानियां पिरोई हुई आपको मिलेंगी।
0: और हमारी ये सांस्कृतिक धरोहर सी बनी हुई है ये चीजें, बंदिशें, तो इनको सुनना और सुनाना दोनों ही बहुत ही उपयुक्त होगा।
1: राग बिहाग का चलन कुछ इस प्रकार है।

0: ये था तीज का पद, तीन अंतरे, बड़े ही सुंदर राग बिहाग में। शुभा जी, आज हम यहीं रुकते हैं, श्रोता मित्रों से भी आज्ञा चाहते हैं। नमस्कार।
1: नमस्कार।
2: संगीत सरिता में आप सुन रहे हैं श्रृंखला वर्षा चौमासा, प्रस्तुति प्रख्यात गायिका शुभा मुद्गल की। संगतकार हैं हारमोनियम पर सुधीर नायक, तबले पर संगत की अनीश प्रधान ने, ध्वन्यांकन चित्रलेखा जैन, तकनीकी सहयोग विनीता ढोलकिया।
3: विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता कांचन प्रकाश।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे विविध भारती मुंबई से अनुप्रसारित कार्यक्रम संगीत सरिता FM 102.5 MHz और साथ ही न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल एप्लीकेशन पर। ये आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र है। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम महाकाल वंदन।

जय श्री महाकाल। भगवान शिव समस्त सृष्टि का संताप हरने वाले हैं। उनके स्मरण मात्र से, उनका ध्यान करने से मनुष्य के सारे दुख दूर होते हैं। ऐसे दयालु और कृपालु भगवान शिव का स्मरण करते हैं और सुनते हैं ये भक्ति रचना अभिजीत भट्टाचार्य के स्वर में।

इस भक्ति रचना के साथ ही आज का महाकाल वंदन अब यहीं संपन्न होता है। बाबा महाकाल की कृपा आप सभी पर सदा बनी रहे। जय श्री महाकाल।

FM 102.5 MHz और साथ ही न्यूज ऑन AIR मोबाइल एप्लीकेशन पर ये आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र है। आइए अब आपको आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी देते हैं।

सुबह 7:20 पर सुनिए कार्यक्रम सुप्रभात उज्जैन। सुबह 8:30 पर आप सुन सकेंगे कार्यक्रम उज्जैनी आरजे। बॉलीवुड बीट्स, नए फिल्मी गीतों का ये कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर आते हैं सुबह 9:30 पर। आज सुबह 10:00 आप सुन सकेंगे कार्यक्रम उज्जैन दर्शन। महिला श्रोताओं के लिए कार्यक्रम महिला सभा हम आपके लिए लेकर आएंगे सुबह 10:30 पर। विविध भारती मुंबई से सुनिए कार्यक्रम रंग तरंग सुबह 11:00। यादों की महफिल दिन में 12:05 पर और सुरीला सफर दोपहर 1:00। दोपहर 2:30 पर आप सुन सकेंगे कार्यक्रम सदाबहार नगमे। दोपहर 3:00 सुनिए महिला श्रोताओं के लिए विशेष कार्यक्रम सखी सहेली। शाम 4:00 पिटारा में आज सुनिए आज के मेहमान। हमारे केंद्र की सांध्यकालीन सभा का आरंभ होता है युवा श्रोताओं के पसंदीदा कार्यक्रम युवाणी से शाम 5:00। शाम 6:00 समय होता है भजन संध्या का। शाम 6:30 पर हम आपको सुनवाएंगे फिल्म संगीत। 7:21 पर सुनिए मालवी बोली का विशेष कार्यक्रम माटेरी बात। रात 8:00 आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आप सुन सकेंगे संसद समीक्षा। सुर्खियों में ये कार्यक्रम हम आपको सुनवाएंगे रात 8:15 पर आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से। रात 8:30 पर हमारे केंद्र से पुनः आनंद लीजिए फिल्म संगीत का। आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से सुनिए उर्दू समाचार रात्रि 9:15 पर। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आप सुन सकेंगे कार्यक्रम चर्चा का विषय है रात 9:30 पर और संसद में प्रश्नकाल की रिकॉर्डिंग रात 10:00। शास्त्रीय संगीत पर आधारित कार्यक्रम राग रजनी आप सुन सकेंगे रात 10:30 पर आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से।

तो ये थी आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। सुबह के 7:10 होने को हैं। अब प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से रिले किए जाएंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। भोपाल में 4 दिवसीय ब्रिक्स सांस्कृतिक सम्मेलन आज से, देश विदेश के संस्कृति मंत्री लेंगे हिस्सा। ग्वालियर में स्थापित होने वाले टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन के लिए 1500 करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव मिले। राज्य मंत्रिपरिषद ने कवच योजना को दी मंजूरी, 5000 किसान लाभान्वित होंगे। और मौसम विभाग ने 5 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। अब समाचार विस्तार से। भोपाल आज अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक आयोजन का साक्षी बनने जा रहा है। 4 दिवसीय ब्रिक्स सांस्कृतिक सम्मेलन 2026 में ब्रिक्स देशों के संस्कृति मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी, कलाकार और प्रतिनिधिमंडल हिस्सा लेंगे। विदेशी मेहमानों के स्वागत के लिए शहर को विशेष रूप से सजाया गया है और प्रमुख मार्गों का सौंदर्यीकरण तेजी से किया जा रहा है। इस वर्ष इस सम्मेलन का विषय सर्वे भवन्तु सुखिनः रखा गया है, जो भारतीय सनातन संस्कृति की समरसता, शांति और वैश्विक कल्याण की भावना को दर्शाता है। संस्कृति मंत्रालय के सचिव विवेक अग्रवाल और प्रदेश के अपर मुख्य सचिव संस्कृति शिवशेखर शुक्ला ने बताया कि भोपाल में आयोजित इस सम्मेलन के लिए अब तक तैयार किए गए मसौदे पर चर्चा की जाएगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र और प्रदेश सरकार ग्वालियर में टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन स्थापित करने जा रही है। बीते 2.5 वर्ष में राज्य सरकार की उद्योग अनुकूल नीतियों और नियमों के कारण मध्य प्रदेश में लगभग हर क्षेत्र में अभूतपूर्व निवेश प्राप्त हुआ है और मध्य प्रदेश सभी सेक्टर्स में तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव कल मुंबई में टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन ग्वालियर में उद्योगपति और निवेशकों को आमंत्रित करने के लिए आयोजित राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने प्रदेश सरकार द्वारा निवेशकों को दी जा रही सुविधाओं की जानकारी दी। मुख्यमंत्री से मुलाकात के दौरान प्रतिष्ठित उद्योगपतियों ने विभिन्न क्षेत्रों में 1500 करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव भी दिए।
1: हमारे लिए टेलीकॉम सेक्टर का मध्य प्रदेश सरकार के साथ भारत सरकार के मिलाकर जो जोन डिक्लेयर किया है, ये वाकई पूरे देश का अद्भुत प्रयोग है। जब राज्य सरकार केंद्र सरकार की योजनाओं के कारण से हमारे टेलीकॉम सेक्टर को समृद्ध करेगी, जहां निवेशकों के लिए व्यापार व्यवसाय की बड़ी संभावना पे काम होगा, हमारे राज्य के लिए रोजगार के अवसर भी मिलेंगे और राज्य को आगे बढ़ाने का एक बड़ा महत्वपूर्ण अवसर भी रहेगा। हम इलेक्ट्रॉनिक्स और इस प्रकार के टेलीकॉम सेक्टर में विदेश की तरफ देखते हैं, आज दुनिया भारत की तरफ देख रही है।
0: वहीं इस अवसर पर केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में भारत के दूरसंचार क्षेत्र और डिजिटलाइजेशन में नई क्रांति देखने को मिली है। पहले भारत 2G पर निर्भर रहता था, आज हमारा देश विश्व का दूसरा सबसे बड़ा टेलीकॉम आत्मनिर्भर देश बन चुका है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक कल हुई। मंत्रिपरिषद की बैठक में 100 करोड़ रुपए की कवच योजना को मंजूरी दी गई। इससे लगभग 5000 किसान लाभान्वित होंगे और उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सकेगा। मंत्रिपरिषद के फैसलों की जानकारी देते हुए लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने बताया कि खेल एवं युवा कल्याण विभाग मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत स्टेडियम, खेल सुविधाओं तथा खेल अधोसंरचना के विकास के लिए आगामी 5 वर्षों के लिए लगभग 2460 करोड़ रुपए की स्वीकृति भी प्रदान की गई है। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश में हर घर तिरंगा अभियान 9 से 17 अगस्त तक जन सहभागिता से चलाया जाएगा। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के जश्न को इस अभियान के साथ जोड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव कल मंत्रालय में मंत्रिपरिषद की बैठक के पहले मंत्रीगणों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सैन्य बलों के जवानों और पुलिसकर्मियों के लिए पत्र लेखन जैसे कार्यक्रम आयोजित होंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रदेशवासियों से तिरंगे के साथ अपनी सेल्फी हर घर तिरंगा पोर्टल पर अपलोड करने का आह्वान भी किया। सुरु के जादूगर किशोर कुमार की जन्म जयंती पर उनकी जन्मस्थली खंडवा में कल देशभर से पहुंचे हजारों प्रशंसकों ने पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। समाधि परिसर में दिनभर किशोर कुमार के सदाबहार गीत गूंजते रहे। बड़ी संख्या में संगीत प्रेमियों ने बॉम्बे बाजार स्थित उनके पैतृक निवास का भ्रमण भी किया। समाधि स्थल पर आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में कलाकारों ने उनके लोकप्रिय गीत प्रस्तुत किए। शाम 7:30 बजे पुरानी कृषि उपज मंडी परिसर में किशोर नाइट का आयोजन किया गया, जिसमें गायक पी गणेश और प्रीति जोशी ने प्रस्तुति दी। वहीं पार्श्व गायक विनोद राठौर को उनके योगदान के लिए प्रतिष्ठित किशोर सम्मान से सम्मानित किया गया। वहीं भोपाल के रविन्द्र भवन में भोपाल प्रतिष्ठित संगीत संध्या ये शाम मस्तानी का आयोजन किया गया, जिसमें सुविख्यात संगीत निर्देशक एवं गायक अनु मलिक उपस्थित रहे। वहीं मुख्य अतिथि के रूप में राज्य मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी उपस्थित रहे। इसके साथ ही संचालक संस्कृति एनपी नामदेव एवं उप संचालक डॉ पूजा शुक्ला भी विशेष रूप से उपस्थित रहीं। अनु मलिक ने कहा कि भोपाल एक तहजीब का शहर है और यहाँ आकर मन प्रसन्न हो जाता है। उन्होंने अपने गीतों की प्रस्तुति भी इस अवसर पर दी। महिला एवं बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया ने कल भोपाल में आयोजित बैठक में विभागीय योजनाओं की प्रगति का जायजा लेते हुए अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि हर योजना का वास्तविक परिणाम जमीनी स्तर पर दिखाई देना चाहिए। मंत्री सुश्री भूरिया ने बताया कि मुख्यमंत्री डॉ यादव की मंशा और लगातार प्रयासों के अनुरूप लाडली बहना योजना की हितग्राही महिलाओं को केवल आर्थिक सहायता तक सीमित न रखकर उन्हें सीधे स्वरोजगार और रोजगार से जोड़ने की दिशा में ठोस पहल की जा रही है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि इथेनॉल कृषि क्षेत्र के लिए बड़ा अवसर है, बशर्ते इसकी नीति किसान केंद्रित हो और फसल का उचित मूल्य सीधे किसानों तक पहुंचे। नई दिल्ली में कल अखिल भारतीय किसान समन्वय समिति के प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक में श्री चौहान ने किसान नेताओं के सुझाव सुने और भरोसा दिलाया कि सरकार इथेनॉल से जुड़े उनके सुझावों पर गंभीरता से विचार करेगी। उन्होंने कहा कि इथेनॉल से देश की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी और किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी। मुख्य सचिव अशोक बर्णवाल ने कल मंत्रालय में विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों की प्रगति की वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा की। मुख्य सचिव ने सभी अधिकारियों से अपेक्षा की है कि नागरिकों को लोक सेवाओं का प्रदाय नियत समयावधि में सुनिश्चित किया जाए। बैठक में समस्त अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव एवं विभागाध्यक्ष उपस्थित थे। मुख्य सचिव श्री बर्णवाल ने प्रदेश में रोजगार के अवसर बढ़ाने के संबंध में भी निर्देश दिए। उन्होंने शासकीय कार्यों के निष्पादन को प्रभावी रूप से किए जाने के संबंध में भी अधिकारियों से विमर्श किया। अब रुख करते हैं मौसम का। पिछले एक सप्ताह के दौरान प्रदेश में कहीं भी तेज बारिश नहीं हुई है। पर्याप्त बारिश न होने से अब तक प्रदेश में 18% कम बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने आज दतिया, भिंड, छतरपुर, पन्ना और सतना में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं अन्य जिलों में कहीं तेज और कहीं हल्की बारिश की संभावना है। मेरा युवा भारत के तत्वावधान में प्रदेश भर में नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत अभियान के तहत विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। आगरमालवा स्थित शासकीय सांदीपनी विद्यालय में आयोजित जिला स्तरीय स्पर्धाओं में गायन, चित्रकला, नुक्कड़ नाटक और वाद विवाद तथा शॉर्ट फिल्म जैसी गतिविधियों का आयोजन किया गया। वहीं धार जिले में इसी थीम पर आयोजित प्रतियोगिताओं के माध्यम से युवाओं को नशा मुक्ति का संदेश दिया गया। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया है कि पात्र हितग्राहियों को उचित मूल्य दुकानों से अगस्त एवं सितंबर की राशन सामग्री का एकमुश्त वितरण 31 अगस्त तक करने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि राशन सामग्री का 100% उठाव 15 अगस्त तक पूरा कर उचित मूल्य दुकानों में भंडारण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने बताया कि पीओएस मशीन में अगस्त एवं सितंबर की राशन राशि को वितरित करते समय 2 बार बायोमेट्रिक सत्यापन कराया जाएगा। उचित मूल्य की दुकानों पर राशन सामग्री प्रदाय एवं वितरण में किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। झाबुआ में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत पुलिस भर्ती की तैयारी कर रही बालिकाओं को मुफ्त प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसके तहत 12वीं पास और योग्य अभ्यर्थी 15 अगस्त तक महिला एवं बाल विकास विभाग में आवेदन कर सकती हैं। नर्मदापुरम के इटारसी कृषि उपज मंडी में आज बलराम कृषि महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। जबलपुर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज की 250 सीटों पर प्रवेश के लिए काउंसलिंग आज से शुरू हो रही है। इंदौर के राला मंडल स्थित केंद्र में 7 दिवसीय आपदा मित्र प्रशिक्षण का शुभारंभ किया जा रहा है। इस अभियान के तहत 900 आपदा मित्रों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। सतना के पंजीकृत निर्माण श्रमिकों और उनके परिवारों के लिए विशेष आयुष्मान कार्ड शिविर आज कृपालपुर के संजीवनी अस्पताल में आयोजित किया जाएगा। और नीमच के मनासा रोड डाक बंगले से पीजी कॉलेज तक विशेष अतिक्रमण हटाओ अभियान कल चलाया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भोपाल में 4 दिवसीय ब्रिक्स सांस्कृतिक सम्मेलन आज से, देश विदेश के संस्कृति मंत्री लेंगे हिस्सा। ग्वालियर में स्थापित होने वाले टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन के लिए 1500 करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव मिले। राज्य मंत्रिपरिषद ने कवच योजना को दी मंजूरी, 5000 किसान लाभान्वित होंगे। और मौसम विभाग ने 5 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए 2:10 पर। नमस्कार।

FMXO 2.5 MHz और साथ ही न्यूज ऑन AIR मोबाइल एप्लीकेशन पर ये आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र है। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम सुप्रभात उज्जैन।

बारिश से धुले पेड़ पौधे और मिट्टी की सौंधी महक मन को सुखद शांति का एहसास करा रहे हैं। हर सुबह एक नई उम्मीद लेकर आती है, जो कल नहीं हुआ वो आज हो सकता है। दोस्तों, सुबह की चहल पहल शुरू हो चुकी है। कोई सुबह की चाय के साथ अखबार पढ़ रहा है तो कोई काम पर जाने की तैयारी में है। बच्चों की चहल पहल से घर का आंगन खिल उठा है और इस ताजगी भरी सुबह में जब साथ हो आकाशवाणी उज्जैन का तो बात ही क्या है। स्वागत है आप सभी का आकाशवाणी उज्जैन के कार्यक्रम सुप्रभात उज्जैन में। मैं हूं आपकी दोस्त रश्मि बजाज भराड़िया। श्रोताओं, सुप्रभात उज्जैन में हम आपके लिए लेकर आते हैं उज्जैन के विकास से जुड़ी हुई कुछ खास खबरें, पर उससे पहले आइए शुरुआत करते हैं इस खूबसूरत गीत के साथ जिसे गाया है मुकेश ने और फिल्म का नाम है मधुमती।

श्रोताओं, पहली खबर महिलाओं के अपने पैरों पर खड़े होने के लिए। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक सकारात्मक कदम उठाया गया है। सावित्रीबाई फुले स्व सहायता समूह योजना के तहत अनुसूचित जाति वर्ग की महिलाओं के लिए स्वरोजगार के नए अवसर खोले गए हैं। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली 18 से 55 वर्ष तक की महिलाएं अब इस योजना के माध्यम से वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकती हैं। स्वरोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इन महिलाओं को लगभग 10,000 रुपये तक का अनुदान और लगभग 2,00,000 रुपए तक का बैंक ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। इस आर्थिक मदद से वे खुद का उद्योग शुरू कर सकेंगी और अपने परिवार का भरण पोषण बेहतर तरीके से कर पाएंगी। तो चलिए, अब कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले आइए सुनते हैं।

श्रोताओं, अब समय है सुप्रभात उज्जैन के उस भाग का जिसका नाम है समाचार पत्रों से, जिसमें आज के समाचार पत्रों से उज्जैन की खास खबरें आपके लिए। आज 5 अगस्त है 2026। आज के दिन की शुरुआत करते हैं जनहित की एक खबर से। मुख्यमंत्री जनविश्वास अभियान 7 अगस्त से शुरू हो रहा है। इसी कड़ी में 7 अगस्त शुक्रवार को उज्जैन जनपद के ग्राम खेमासा में प्रशासन की टीम पहुंचेगी। इस अभियान का उद्देश्य जनता की शिकायतों का तुरंत समाधान करना है। हर शुक्रवार को अलग अलग क्षेत्रों में जाकर लोगों से सीधा

वाद किया जाएगा। श्रोताओं, युवाओं के लिए एक आज एक काम की खबर है। आज उज्जैन जिले के घटिया में रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। ये मेला नानूलाल मालवीय महाविद्यालय में सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक चलेगा। यहाँ युवा संगम, रोजगार, स्वरोजगार और अप्रेंटिसशिप मेले के तहत कई कंपनियां आ रही हैं। इस मेले में लगभग 350 पदों पर युवाओं की भर्ती की जाएगी। जो युवा रोजगार की तलाश में हैं, वे इस अवसर का लाभ जरूर उठाएं। हमारे किसान भाइयों के लिए एक ज़रूरी सूचना है। एकीकृत बागवानी विकास मिशन के तहत अब फसल के बाद के प्रबंधन के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। किसान भाई अपनी उपज को सुरक्षित रखने के लिए कोल्ड स्टोरेज, प्याज लहसुन भंडार, फार्म गेट, पैक हाउस या कोल्ड रूम जैसी संरचनाएं बना सकते हैं। इसके लिए विभाग की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस पहल से उपज को सही दाम मिलने तक सुरक्षित रखना काफ़ी आसान हो जाएगा। श्रोताओं, आज उज्जैन में राज्य वित्त आयोग की टीम का दौरा होने की संभावना है। ये टीम स्थानीय निकायों और पंचायतों की वित्तीय स्थिति को मजबूत करने पर विस्तार से चर्चा करेगी। बैठकों में इस बात पर जोर दिया जाएगा कि साफ सफाई, पेयजल और विकास कार्यों की गुणवत्ता कैसे सुधारी जाए। इसके अलावा पारदर्शिता और आत्मनिर्भरता बढ़ाने के उपायों पर भी बात होगी। साथ ही स्थानीय स्तर पर राजस्व बढ़ाने के तरीकों पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। ये हमारे शहर के लिए एक अहम कदम साबित होगा। दोस्तों, सावन के इस पवित्र महीने में भक्ति का रंग हर तरफ दिखाई दे रहा है। कल त्रिवेणी स्थित शनि मंदिर से एक समर्पण कांवड़ यात्रा निकाली गई। तेज बारिश भी भक्तों का उत्साह कम नहीं कर पाई। लगभग 11,000 कांवड़ यात्री बारिश में झूमते गाते हुए आगे बढ़े। शहर के नानाखेड़ा से टॉवर, चामुंडा माता और हरिफाटक मार्ग होते हुए ये समर्पण कांवड़ यात्रा महाकाल मंदिर पहुंची। रास्ते में कई जगह श्रद्धालुओं द्वारा फूल बरसाकर इस यात्रा का स्वागत किया गया। श्रोताओं, इस भाग में आज की खबरों का बस इतना ही। आइए अब सुनते हैं फिल्म आरजू से लता मंगेशकर की आवाज़ में ये गीत।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455 पर कॉल करें।
1: श्रोताओं, FM 102.5 MHz पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र और ये है कार्यक्रम सुप्रभात उज्जैन और मैं हूँ आपकी रेडियो सखी रश्मि बजाज। श्रोताओं, श्रमिकों के बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए शिक्षा के क्षेत्र में मदद के हाथ बढ़ाए गए हैं। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की योजना के तहत बीड़ी और खदान श्रमिकों के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति आवेदन शुरू हो गए हैं। पात्र विद्यार्थी 31 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं, जिसमें कक्षा 1 से व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए लगभग 1000 से 25000 रुपए तक की सहायता दी जाएगी। साथ ही मुख्यमंत्री जनकल्याण योजना के तहत सरकार श्रमिकों के बच्चों की इंजीनियरिंग, मेडिकल, लॉ और ITI जैसी पढ़ाई का पूरा खर्च उठाएगी। इसके लिए माता या पिता का श्रम विभाग में असंगठित श्रमिक के रूप में पंजीकृत होना जरूरी है। इसी के साथ आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम के अगले गीत की ओर और सुनते हैं फिल्म छाया से ये गीत, जिसे गाया है तलत महमूद और लता मंगेशकर ने।

0: जाएगी।
1: अब इतना पानी कहाँ कि पानी के साथ खेला जाए।
2: पानी के छींटे व्यर्थ में ना उड़ाएं।
1: पानी का उपयोग सजगता के साथ करें।
2: ब्रश करते समय, दाढ़ी बनाते समय नल खुला न रखें।
1: सीधे नल के नीचे बर्तन न धोएं।
2: कपड़े धोते समय जमा पानी का ही उपयोग करें।
1: शावर के बजाय बाल्टी के पानी से नहाएं।
2: सब्जी फल धुले और पोछा लगे पानी को गमले में डालें।
1: जितनी प्यास हो ग्लास में उतना पानी ही लें।
2: अपने वाहन को पाइप से न धोएं।
1: शौचालय में फ्लश के बजाय बाल्टी के पानी का प्रयोग करें।
2: घर के टपकते नल को तुरंत ठीक करवाएं।
1: सार्वजनिक नल को बहता देख आगे न बढ़ जाएं।
2: उसे बंद कर अपना दायित्व निभाएं।
3: कभी कभी बातें तेरी अच्छी लगे।
2: कभी कभी नहीं, रोज ही रखें इन बातों का ध्यान।
1: समय है पानी बचाने का,
2: पानी का मोल समझने और समझाने का।
1: पानी बचाएं, भविष्य सजाएं।
4: श्रोताओं, शहरवासियों के लिए पेयजल आपूर्ति को लेकर सुकून देने वाली खबर है। मानसून में हल्की बूंदाबांदी और इंदौर तरफ से आ रहे पानी के कारण गंभीर डैम का जलस्तर बढ़कर तकरीबन 963 MCFT पहुंच गया है। लगभग 2250 MCFT क्षमता वाले इस बांध में पिछले साल इसी दिन मात्र लगभग 195 MCFT पानी था। शहर में रोजाना औसतन 7 MCFT पानी की खपत होती है।

इस आधार पर 100 MCFT डेड स्टोरेज को छोड़कर शेष पानी से शहर में लगभग 124 दिन यानी लगभग 4 महीने तक जल आपूर्ति आसानी से हो सकेगी। तो चलिए कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले सुनते हैं आया सावन झूम के फिल्म

आगामी सिंहस्थ महापर्व को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाने के लिए अभी से तैयारियां जोरों पर हैं। श्रद्धालुओं की सुरक्षा में कोई कमी न रहे, इस बात की पूरी पूरी व्यवस्था की जा रही है। महाकुंभ जैसे बड़े आयोजनों में कई बार सांप निकलने से दहशत और भगदड़ का खतरा बन सकता है। इसी जोखिम को टालने के लिए होमगार्ड विभाग द्वारा लगभग 750 प्रशिक्षित स्नेक कैचर्स की एक विशेष टीम तैयार की जा रही है। होमगार्ड और SDERF के जवानों को सर्पदंश से बचाव और सांप पकड़ने का विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है। पहले दिन के ट्रेनिंग कैंप में लगभग 185 जवानों ने सुरक्षित तरीके से रेस्क्यू करने की बारीकियां सीखी। सिंहस्थ के दौरान इन जवानों को मेले के सभी संवेदनशील स्थानों पर तैनात किया जाएगा ताकि तुरंत राहत पहुंचाई जा सके। कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले आइए सुनते हैं फिल्म मिस्टर एंड मिसेस 55 से ये गीत, जिसे गाया है मोहम्मद रफी और गीता दत्त ने।

चुचू चिड़िया बड़ी उदास, कैसे बुझाए अपनी प्यास। बहुत कम है कुएं में पानी, तालाबों की भी यही कहानी। धरती का है सूखा पेट, हैंड पंप भी उगले रेत। चुचू रोए नदी किनारे, इसका पानी कहाँ गया

0: बादल आते खाली हाथ और कह जाते पते की बात। हरे भरे मत काटो जंगल, जंगल ही तो लाता मंगल। पेड़ लगाओ तुम सब मिलकर बरसेगा फिर पानी जमकर। नदी ताल में होगा पानी, फुर्र होगी चूचू की परेशानी।
1: आओ मिलकर पेड़ लगाएं, धरती की खुशियां लौटाएं।
2: श्रोताओं, इसी के साथ ही सुप्रभात उज्जैन का आज का ये अंक यहीं संपन्न होता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की इन सकारात्मक खबरों और विचारों ने आपके मन में भी एक नई उमंग जगाई होगी। फिलहाल अपनी रेडियो सखी रश्मि बजाज को दीजिए अनुमति, कुछ ही देर में 8:30 पर हम पुनः आपके साथ जुड़ेंगे कार्यक्रम उज्जैनी आरजे के साथ। नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुप्रभात उज्जैन FM 102.5 MHz और साथ ही न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल एप्लीकेशन पर। ये आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र है। सुबह के 8 बजने को हैं अब समाचार प्रभात और 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज़ का अनुप्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया जाएगा। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और साथ 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखिए, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। लाल सागर में यमन तट के पास हमले के बाद भारतीय ध्वज वाला जहाज डूबा, सभी 13 भारतीय नाविक सुरक्षित, भारत ने हमले की कड़ी निंदा की। भारतीय रिजर्व बैंक आज द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा की घोषणा करेगा। सर्वोच्च न्यायालय ने रिजर्व बैंक को फर्जी और साइबर धोखाधड़ी से जुड़े बैंक खातों से निपटने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने के निर्देश दिए। नीट यूजीसी काउंसलिंग के पहले चरण के लिए ऑनलाइन पंजीकरण आज से। मौसम विभाग ने असम और मेघालय में आज मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है और विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में पीवी सिंधु को नवीं वरीयता मिली। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी को 5वीं वरीयता। और अब समाचार विस्तार से। भारतीय ध्वज वाला वाणिज्यिक पोत एमएसवी फैज नूरे औलैया कल यमन तट के पास हमले के बाद लाल सागर में डूब गया। पोत पर सवार सभी 14 नाविकों को सुरक्षित

0: बचा लिया गया। हमारी संवाददाता ने बताया कि इनमें से 13 भारतीय थे।
1: भारतीय ध्वज वाला यह वाणिज्यिक पोत सऊदी अरब से तेल लेकर आ रहा था। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने बताया, यमन के जल क्षेत्र के पास मिसाइल हमले के बाद पोत लाल सागर में डूब गया। श्री सोनोवाल ने कहा कि भारत इस अकारण हमले की कड़ी निंदा करता है और हमारे लोगों की सुरक्षा देश की सर्वोच्च प्राथमिकता है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों पर हमले की लगातार घटनाएं चिंताजनक है। क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बनाया जाना बंद होना चाहिए और क्षेत्र के अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों के माध्यम से निर्बाध नौवहन और व्यापार शीघ्र बहाल किया जाना चाहिए। मंत्रालय ने बताया कि रियाद में भारतीय दूतावास स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहा है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
0: भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में कथित स्थानीय चुनाव को पूरी तरह दिखावा बताया है और कहा है कि इससे सच्चाई छिप नहीं सकती। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में संवाददाताओं से कहा कि विरोध प्रदर्शन और पाकिस्तानी सैनिकों की हिंसा ही वहां की वास्तविकता है।
2: इस वर्ष जून से अब तक वहाँ जन प्रदर्शन जो चल रहा है उसमें 90 लोग मारे गए हैं और कई अन्य घायल हुए हैं। पाकिस्तान की सत्ता व्यवस्था ने जनता के असंतोष का जवाब गोली से, संचार बंदी से, धमकी से और दमन से दिया है। इसके लिए उसे जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए और विश्व समुदाय को मानव अधिकारों पर पाकिस्तान के पाखंडपूर्ण उपदेशों के इस खोखले मुखौटे के पार वास्तविकता को देखना चाहिए।
0: श्री जायसवाल ने यह भी बताया कि अगले महीने 12 और 13 तारीख को भारत की मेजबानी में दिल्ली में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए बिम्स्टेक के वर्तमान अध्यक्ष के रूप में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान को आमंत्रित किया गया है। भारत इस साल ब्रिक्स संगठन के अध्यक्ष के रूप में ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की तीसरी बैठक की मेजबानी करेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यह बैठक आज और कल भोपाल में आयोजित होगी।
3: भोपाल में आज से ब्रिक्स देशों की बड़ी सांस्कृतिक बैठक शुरू हो रही है। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत ये आयोजन 8 अगस्त तक चलेगा। इसमें ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह और संस्कृति मंत्रियों की बैठकें होंगी। इसके चलते भोपाल को ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की तरह सजाया गया है। इस आयोजन से सांस्कृतिक संवाद बढ़ेगा और सदस्य देशों के बीच सहयोग मजबूत होगा। पहले 2 दिन अधिकारी स्तर पर चर्चा होगी जबकि आखिरी 2 दिन मंत्री स्तर पर घोषणा पत्र को अंतिम रूप दिया जाएगा। भारत ने इस बैठक में 2 अहम प्रस्ताव रखे हैं। पहला, कलाकारों और सांस्कृतिक धरोहर की जानकारी के लिए साझा डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाना और दूसरा, यूनेस्को में सदस्य देशों के साथ मिलकर साझा नामांकन भेजने की पहल करना। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
0: ब्रिक्स देशों के शिक्षा मंत्रियों की 13वीं बैठक आज से उड़ीसा के भुवनेश्वर में होगी। ये बैठक 7 अगस्त तक चलेगी। इसी दौरान संगठन के वरिष्ठ अधिकारियों की तीसरी बैठक भी चलेगी। शिक्षा मंत्रालय ने बताया है कि इन बैठकों में शिक्षा मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और सदस्य देशों के प्रतिनिधि विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
4: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। रिजर्व बैंक आज द्विमासिक मौद्रिक नीति की समीक्षा घोषणा करेगा। आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा आज सुबह 10 बजे नवीनतम रेपो रेट की घोषणा करेंगे। रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की 3 दिन की बैठक सोमवार को शुरू हुई थी। नीतिगत निर्णय मौजूदा भू राजनैतिक तनाव और अमरीकी फेडरल रिजर्व पर दबाव के महत्वपूर्ण दौर में आ रहा है। यह आशा है कि आरबीआई प्रमुख

0: रेपो रेट में कोई बदलाव न करते हुए इसे 5.25% पर ही रखेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने रिजर्व बैंक को फर्जी और साइबर धोखाधड़ी से जुड़े बैंक खातों से निपटने के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने और जारी करने को कहा है। न्यायालय ने राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, कानून प्रवर्तन एजेंसियों और बैंकों से शिकायत निपटान प्रणाली मजबूत करने, धोखाधड़ी की गई धनराशि वापस लाने तथा डिजिटल धोखाधड़ी से निपटने की प्रक्रिया में सुधार करने को कहा है। झारखंड लोक सेवा आयोग और अन्य भर्ती परीक्षाओं में कथित तौर पर पेपर लीक होने के विरोध में प्रदर्शन कर रहे नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों ने राज्य के बाहर के सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से जांच की मांग की है। उन्होंने कहा है कि उन्हें अपराध जांच विभाग CID की जांच पर भरोसा नहीं है।
1: झारखंड की राजधानी रांची का जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम इस समय युवाओं के आक्रोश और आंसुओं का गवाह बना हुआ है। JPSC परीक्षा में कथित धांधली के खिलाफ छात्र सड़कों पर हैं, लेकिन विडंबना देखिए, व्यवस्था का रुख इतना कड़ा है कि कड़ाके की धूप और खुले आसमान के नीचे बैठे इन प्रदर्शनकारियों को पीने का पानी, खाना और शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाएं तक नसीब नहीं हो पा रही है। रक्षा राज्य मंत्री और रांची के सांसद संजय सेठ ने इस मुद्दे पर विपक्ष के मौन रहने पर तीखा हमला बोला है। आंदोलन पर बुनियादी संकट गहराने के बाद गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने भी हेमंत सोरेन सरकार की घेराबंदी शुरू कर दी है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
0: मेडिकल परामर्श समिति नीट UG काउंसलिंग 2026 के पहले चरण का पंजीकरण आज से शुरू करेगी। आधिकारिक कार्यक्रम के अनुसार पहले चरण का पंजीकरण और शुल्क भुगतान आज से 12 अगस्त दोपहर 3 बजे तक होगा। हालांकि शुल्क भुगतान 12 अगस्त शाम 6 बजे तक किया जा सकता है। एक रिपोर्ट।
2: अभ्यर्थी कल से 13 अगस्त तक अपनी पसंद दे सकते हैं। अपना चयन बताने की सुविधा 13 अगस्त सवेरे 11 बजे बंद हो जाएगी। पहले चरण की सीट आवंटन प्रक्रिया 13 अगस्त से 16 अगस्त तक चलेगी और परिणाम 17 अगस्त को घोषित किए जाएंगे। जिन उम्मीदवारों को सीटें आवंटित की गई हैं, उन्हें 18 अगस्त से 22 अगस्त के बीच अपने संबंधित संस्थानों में रिपोर्ट करना होगा। संस्थान 23 अगस्त को उम्मीदवारों के डेटा का सत्यापन करेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने उम्मीदवारों को MCC पोर्टल पर पंजीकरण, चयन भरने और सीट आवंटन प्रक्रिया समझने में सहायता करने के लिए वीडियो जारी किए हैं। इन वीडियो का उद्देश्य काउंसलिंग प्रक्रिया को सरल और विद्यार्थी अनुकूल तरीके से समझाकर उम्मीदवारों को मार्गदर्शन देना है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
0: उत्तर प्रदेश सरकार राज्य परिवहन निगम की बसों में 60 वर्ष और इससे अधिक आयु की महिलाओं को निःशुल्क यात्रा की सुविधा देगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इसके लिए बजट में समुचित प्रावधान किए गए हैं।
3: वित्तीय वर्ष 2026-27 के पहले अनुपूरक बजट में इस विशेष पहल को लागू करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने लोक कल्याण संकल्प पत्र में वरिष्ठ नागरिक महिलाओं के लिए मुफ्त बस सेवा का वायदा किया था। इस निर्णय से राज्य भर में लाखों वरिष्ठ महिलाओं को आर्थिक राहत मिलेगी। इसके अलावा सरकार ने महिला कल्याण विभाग को 1,094 करोड़ रुपए अतिरिक्त आवंटित किए हैं, जिससे निराश्रित महिला पेंशन योजना, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना और महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा से संबंधित विभिन्न कार्यक्रमों को मजबूती मिलेगी। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: मौसम विभाग ने आज असम और मेघालय में अत्यधिक तेज वर्षा कर रेड अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, बिहार, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, उप हिमालयी, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में भी आज तेज बारिश का अनुमान है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, झारखंड और मध्य प्रदेश में कल तक तेज बारिश हो सकती है। केरल में आज भी तेज वर्षा जारी रहेगी। हालांकि कल की तुलना में आज बारिश में कुछ कमी का अनुमान है। असम में लगातार तेज बारिश जारी है और इससे राज्य के कई हिस्सों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मौसम विभाग ने असम के लगभग सभी जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया है और अगले 24 घंटों में पूरे राज्य में भारी बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पीवी सिंधु को BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में नवी वरीयता दी गई है। ये चैंपियनशिप 17-23 अगस्त तक नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी। चैंपियनशिप में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी को पुरुष डबल्स में 5वीं वरीयता मिली है। लक्ष्य सेन पुरुष सिंगल्स में 14वीं और ध्रुव कपिला तथा तनिषा क्रिस्टो

नमस्कार, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आज की ये खूबसूरत सुबह आपके जीवन में ढेर सारी सकारात्मक ऊर्जा लेकर आई होगी। आसमान में घिरे हुए काले बादल कभी तो लुका छुपी खेलते हैं सूरज के साथ, उसे अपनी ओट में छुपा लेते हैं, और कभी पूरी धरती को अपने प्यार से भिगो देते हैं। प्रकृति की ये खूबसूरती हमारे मन को सुकून देती है, और सुकून के इन पलों में हम हैं आपके साथ आकाशवाणी उज्जैन से लेकर आपका मनपसंद कार्यक्रम उज्जैनी आरजे। दोस्तों, आज के दिन की शुरुआत में हम याद करेंगे उज्जैन के महान कवि जिन्होंने साहित्य के क्षेत्र में उज्जैन का नाम स्वर्णाक्षरों में अंकित किया। साथ ही बात करेंगे एक ऐसी लड़की के बारे में जिसने भारी भरकम मेकअप के बिना अपनी जुड़ी हुई आईब्रोज, अपने बिंदास अंदाज और अपनी बेमिसाल अभिनय क्षमता से फिल्म इंडस्ट्री में अपनी एक बेहद खास और अलग पहचान बनाई, और साथ ही एक और बेहद चुलबुली अदाकारा के बारे में भी। तो चलिए आगाज करते हैं इस खूबसूरत सफर का। इस सफर में मैं हूं आपकी हम सफर, आपकी अपनी आरजे रश्मि बजाज भराड़िया, लेकर आई हूं किस्सों का एक नया कारवां।

श्रोताओं, आज 5 अगस्त की इस पावन तारीख पर सिनेमाई दुनिया की बात करने से पहले हम उज्जैनी की माटी से जुड़े एक महान साहित्यकार को याद करेंगे। आज ही के दिन साल 1915 में हिंदी कविता के अमर हस्ताक्षर डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन का जन्म हुआ था। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के उन्नाव में हुआ, लेकिन उनकी कर्म भूमि हमारी उज्जैन नगरी ही रही। उन्होंने विक्रम विश्वविद्यालय, जो सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय आजकल कहलाता है, उज्जैन के कुलपति

के रूप में इस शहर को शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में एक नई पहचान दी। मिट्टी की बारात, हिल्लोल और जीवन के गान जैसी अद्भुत रचनाएं देने वाले सुमन जी ने हमेशा प्रेम, संघर्ष और मानवता के गीत गाए। साहित्य अकादमी पुरस्कार, पद्मश्री और पद्मभूषण से सम्मानित डॉक्टर सुमन के शब्द आज भी हमारी रगों में ऊर्जा भर देते हैं। आज उनके जन्मदिवस पर आकाशवाणी उज्जैन की ओर से उन्हें शत शत नमन। उनकी एक रचना पथ भूल न जाना पथिक कहीं के कुछ अंश आपके लिए प्रस्तुत हैं। जीवन के कुसुमित उपवन में गुंजित मधुमय कणकण होगा, जीवन के कुसुमित उपवन में गुंजित मधुमय कणकण होगा, शैशव के कुछ सपने होंगे, मधमाता सा यौवन होगा, यौवन की उच्छृंखलता में पथ भूल न जाना पथिक कहीं। रणभेरी सुन कह विदा विदा, रणभेरी सुन कह विदा विदा, जब सैनिक पुलक रहे होंगे, हाथों में कुमकुम थाल लिए कुछ जल कण ढुलक रहे होंगे, कर्तव्य प्रणय की उलझन में पथ भूल न जाना पथिक कहीं, पथ भूल न जाना पथिक कहीं। जब कठिन कर्म पगडंडी पर राही का मन उन्मुख होगा, जब सब सपने मिट जाएंगे, कर्तव्य मार्ग सन्मुख होगा, तब अपनी प्रथम विफलता में पथ भूल न जाना पथिक कहीं। कुछ मस्तक कम पड़ते होंगे, कुछ मस्तक कम पड़ते होंगे, जब महाकाल की माला में मां मांग रही होगी आहूति, जब स्वतंत्रता की ज्वाला में पल भर भी पड़ असमंजस में पथ भूल न जाना पथिक कहीं, पथ भूल न जाना पथिक कहीं।

0: वो भी ऐप से। वाह,
1: अनजान ऐप से बचें।
2: RBI कहता है,
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: श्रोताओं, उज्जैन के साहित्यिक गौरव को नमन करने के बाद अब बात करते हैं बॉलीवुड की उस चुलबुली और बेबाक अभिनेत्री की जिनका आज जन्मदिन है। 5 अगस्त 1974 को माया नगरी मुंबई में जन्मी इस बच्ची का नाम रखा गया काजोल। सिनेमा तो जैसे काजोल के खून में ही दौड़ता था। उनके पिता शोमू मुखर्जी एक मशहूर फिल्म निर्माता और निर्देशक थे, जबकि उनकी माँ तनुजा अपने दौर की एक जानी मानी अभिनेत्री रही हैं। सिर्फ माता पिता ही नहीं, बल्कि उनकी नानी शोभना समर्थ और मौसी नूतन भी हिंदी सिनेमा की दिग्गज अदाकाराएं रही हैं। ऐसे फिल्मी माहौल में पली बड़ी काजोल बचपन से ही बहुत शरारती, जिद्दी और अपनी धुन की पक्की थी। फिल्मी दुनिया के चकाचौंध भरे माहौल के बावजूद उनके माता पिता ने कोशिश की कि काजोल को एक सामान्य परवरिश मिले, जिसके लिए उन्हें बोर्डिंग स्कूल भी भेजा गया। काजोल की बातें अभी हम और भी करेंगे, आइए सुनते हैं उनकी फिल्म का एक गीत।

दोस्तों, काजोल की शुरुआती पढ़ाई पंचगनी के सेंट जोसेफ कॉन्वेंट बोर्डिंग स्कूल में हुई। बोर्डिंग स्कूल की जिंदगी ने काजोल को बहुत हद तक आत्मनिर्भर और अनुशासित बनाया, लेकिन उनका वो बिंदास और अलहड़पन कभी कम नहीं हुआ। बचपन से ही काजोल को पढ़ाई लिखाई से ज़्यादा किताबों, खास तौर पर फिक्शन नॉवेल्स पढ़ने का शौक था, और एक इंटरव्यू के अनुसार जो आज भी बरकरार है, जब वे महज 16 साल की थीं और अपनी स्कूली शिक्षा पूरी ही कर रही थीं, तभी उन्हें फिल्मों से बुलावा आ गया। अभिनय का जो बीज उनके भीतर बचपन से था, अब उसे बाहर आने का रास्ता मिल चुका था।

दोस्तों, काजोल ने साल 1992 में फिल्म बेखुदी से अपने अभिनय सफ़र की शुरुआत की। हालांकि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर थोड़ा नहीं चल पाई, लेकिन काजोल की प्राकृतिक अदाकारी और कैमरे के सामने उनकी गजब की ऊर्जा ने सबका ध्यान खींच लिया। इसके ठीक एक साल बाद 1993 में आई अब्बास मस्तान की थ्रिलर फिल्म बाजीगर। इस फिल्म में काजोल के साथ थे शाहरुख खान।

बाजीगर की बम्पर सफलता ने काजोल को रातों रात एक स्टार बना दिया। शाहरुख और काजोल की केमिस्ट्री पर्दे पर इस कदर छाई कि ये जोड़ी आने वाले कई दशकों तक बॉलीवुड की सबसे पसंदीदा और प्रतिष्ठित रोमांटिक जोड़ी बन गई। काजोल ने साबित कर दिया था कि वे सिर्फ एक फिल्मी परिवार का हिस्सा नहीं हैं, बल्कि उनके अंदर खुद को साबित करने का एक ज़बरदस्त हुनर और एक अद्भुत चमक मौजूद है।

दोस्तों, साल 1995 में भारतीय सिनेमा और काजोल के करियर के लिए एक ऐतिहासिक साल साबित हुआ। यशराज बैनर तले बनी आदित्य चोपड़ा की फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, जिसे हम सब DDLJ कहते हैं, किसे याद नहीं होगी। इस फिल्म ने सिल्वर स्क्रीन पर जो इतिहास रचा वो आज तक कायम है। इस फिल्म में काजोल ने सिमरन का किरदार निभाया, एक ऐसी लड़की जो अपने परिवार का सम्मान करती है लेकिन अपने प्यार के लिए भी पूरी शिद्दत से खड़ी होती है। इस फिल्म के लिए काजोल को अपना पहला फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला। काजोल की वो बड़ी बड़ी आंखें, उनकी सादगी और उनका बेबाक अभिनय दर्शकों को इतना पसंद आया कि उन्होंने टिपिकल बॉलीवुड हीरोइन की एक नई और बहुत ही वास्तविक परिभाषा गढ़ी।

दोस्तों, काजोल की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि उन्होंने कभी खुद को किसी एक इमेज में नहीं बांधा। जहां वे एक तरफ रोमांस की मलिका बन रही थीं, वहीं 1997 में उन्होंने फिल्म गुप्त में एक ऐसा कदम उठाया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। गुप्त में ईशा दीवान का नकारात्मक और जुनूनी किरदार निभाकर काजोल ने सभी को हैरान कर दिया। इस दमदार अभिनय के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ खलनायक का फिल्म फेयर अवार्ड मिला और वे ये अवार्ड जीतने वाली बॉलीवुड की पहली महिला बनी। इसके बाद 1998 में आई फिल्म दुश्मन, जिसमें काजोल ने सोनिया और नैना नाम की दो जुड़वां बहनों का किरदार निभाया। इस साइकोलॉजिकल थ्रिलर में उनके भावपूर्ण और दर्द से भरे अभिनय की समीक्षकों ने जमकर तारीफ की। काजोल ये साबित कर चुकी थीं कि उनके अभिनय की कोई सीमा नहीं है।

0: प्रदूषित पानी पीने से हम हो सकते हैं बीमार,
1: फैल सकती है महामारी, खतरे में पड़ सकती है जिंदगी,
0: छीन सकती है खुशियाँ हमारी। इसलिए पानी के स्रोत को रखें हम साफ,
1: फैलाएं नहीं गंदगी उसके आसपास,
0: पानी को रखें हम हमेशा ढककर
1: और उसको पिएं छानकर उबालकर,
0: पीने के पानी में हम हाथ नहीं डालें,
1: लंबी डंडी वाले बर्तन से पानी निकालें।
2: पानी रे पानी,
3: पानी पानी रे पानी,
0: आओ मिलकर करें प्रयास,
1: शुद्ध पानी हो सबके पास।
4: FM 102.5 MHz पर आकाशवाणी उज्जैन से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम उज्जैनी आरजी, और मैं हूं आपकी अपनी आरजी रश्मि बजाज। और दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड एक्ट्रेस काजोल की। 80 और 90 के दशक के अंत तक आते आते काजोल सफलता के उस शिखर पर थी जहां पहुंचना हर कलाकार का सपना होता है। साल 1998 में करण जौहर की फिल्म कुछ कुछ होता है में अंजलि के रूप में उन्होंने अपने टॉम बॉय अवतार और फिर परिपक्व महिला के रूप में जबरदस्त अभिनय किया। उनका हेयर स्टाइल और उनका अंदाज युवाओं के बीच एक ट्रेंड बन गया था। इसके बाद 2001 में कभी खुशी कभी गम में चुलबुली अंजलि शर्मा के रूप में पर्दे पर जब भी काजोल हंसती तो दर्शक मुस्कुरा उठते, और जब वे रोती तो सभी की आंखें नम हो जाती थीं। उनका ये दौर उनके बेमिसाल अभिनय और स्टारडम का स्वर्णिम काल था, जहां वे बॉलीवुड की निर्विवाद क्वीन बन चुकी थी।

दोस्तों, करियर के सबसे शानदार मुकाम पर होने के बावजूद काजोल ने अपने निजी जीवन को भी उतनी ही तवज्जो दी। साल 1999 में उन्होंने अभिनेता अजय देवगन से शादी कर ली। शादी और बच्चों के जन्म के बाद काजोल ने कुछ समय के लिए फिल्मों से दूरी बना ली, लेकिन एक सच्चा कलाकार कभी कैमरे से दूर नहीं रह सकता। साल 2006 में उन्होंने यशराज की फिल्म फना से एक शानदार वापसी की। इस फिल्म में जूनी नाम की एक अंधी कश्मीरी लड़की के किरदार में काजोल ने ऐसा अभिनय किया कि उन्हें फिर से फिल्म फेयर का सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड मिला। फिर 2010 में माय नेम इज़ खान में उन्होंने एक बार फिर अपनी बेजोड़ क्षमता का प्रदर्शन किया। उनके करियर का ये दूसरा चरण इस बात का सबूत था कि असली प्रतिभा कभी समय की मोहताज नहीं होती।

दोस्तों, काजोल का फिल्मी सफर केवल हिट फिल्मों तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि ये सम्मान और रिकॉर्ड्स से भी भरा हुआ है। काजोल के नाम अपनी मौसी और महान अभिनेत्री नूतन के साथ सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के फिल्मफेयर पुरस्कार सबसे ज्यादा बार 6 बार जीतने का ऐतिहासिक रिकॉर्ड दर्ज है। भारतीय सिनेमा में उनके इस उत्कृष्ट और बेजोड़ योगदान के लिए भारत सरकार ने साल 2011 में उन्हें देश के 4th सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से भी अलंकृत किया है। साल 2021 में उन्हें प्रसार भारती द्वारा अंशकालिक बोर्ड मेंबर के रूप में भी नियुक्त किया गया था। आज भी काजोल जब पर्दे पर आती हैं तो उनकी ऊर्जा में कोई कमी नजर नहीं आती। अपनी जुड़ी हुई आईब्रोज से लेकर अपनी बेबाक हंसी तक काजोल ने हमेशा वही किया जो उनके दिल को सही लगा, और यही उनकी सबसे बड़ी विरासत है। हैप्पी बर्थडे काजोल।

दोस्तों, 5 अगस्त की इस तारीख का बॉलीवुड से एक और बहुत सुंदर कनेक्शन है। आज ही के दिन साल 1987 में एक और बेहद चुलबुली और प्यारी अभिनेत्री का जन्म हुआ था, जेनेलिया डिसूजा। मुंबई के एक कैथोलिक परिवार में जन्मी जेनेलिया बचपन से ही खेलकूद में बहुत आगे थी। उन्होंने बांद्रा के अपोस्टोलिक कार्मेल हाई स्कूल से पढ़ाई की और वे एक राज्य स्तर की एथलीट और राष्ट्रीय स्तर की फुटबॉल खिलाड़ी रह चुकी हैं। जेनेलिया का एक्टिंग में आना एक इत्तेफाक था। उन्होंने 15 साल की उम्र में महानायक अमिताभ बच्चन के साथ पार्कर पेन का एक विज्ञापन किया जिसने उन्हें खूब पहचान दिलाई। इसके बाद साल 2003 में उन्होंने फिल्म तुझे मेरी कसम में हिंदी सिनेमा में कदम रखा, जिसमें उनके हीरो रितेश देशमुख थे, जो बाद में उनके जीवन साथी भी बने। आइए सुनते हैं हाल ही में आई उनकी फिल्म सितारे जमी पर से ये गीत।

दोस्तों, हिंदी सिनेमा के साथ साथ जेनेलिया ने दक्षिण भारतीय फिल्मों में भी जबरदस्त सफलता हासिल की। साल 2003 में ही उनकी तमिल फिल्म बॉयज और बाद में तेलुगु फिल्म बोम्मारिल्लू ने उन्हें रातों रात सुपरस्टार बना दिया। बोम्मारिल्लू में हासिनी के किरदार के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का नंदी अवार्ड मिला। हिंदी दर्शकों के दिलों में जेनेलिया ने अपनी सबसे गहरी छाप छोड़ी साल 2008 की फिल्म जाने तू या जाने ना से। इस फिल्म में अदिति यानी म्याऊ के किरदार ने युवाओं के दिल में अपना घर बना लिया। उनकी वो मासूमियत और चुलबुलापन दर्शकों को बहुत भाया। फरवरी 2012 में उन्होंने अपने को स्टार और लंबे समय के प्यार रितेश देशमुख से शादी कर ली। आज वो दो प्यारे बच्चों की माँ हैं, एक सफल निर्माता हैं और अपनी उस प्यारी सी मुस्कान से आज भी लाखों दिलों पर राज करती हैं। हैप्पी बर्थडे जेनेलिया।

दोस्तों उज्जैनी आरजे का आज का सफर बस यहीं तक। योर आरजे रश्मि बजाज इज साइनिंग आउट नाउ फ्रॉम उज्जैनी आरजे। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सुनते रहिए आकाशवाणी उज्जैन। नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम उज्जैनी आरजे एफएम 102.5 मेगाहर्ट्ज़ और साथ ही न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल एप्लीकेशन पर। ये आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र है। सुबह के 9:30 हुए हैं। अब समय है नए गीतों के कार्यक्रम बॉलीवुड बीट्स का।

नमस्कार दोस्तों, फिजाओं में घुलती हुई मीठी धुनों और दिल को सुकून देने वाले सुरों के साथ मैं हूं आपकी साथी, आपकी दोस्त रश्मि बजाज। आप सुन रहे हैं आपका सबसे चहेता म्यूजिकल शो बॉलीवुड बीट्स। कहते हैं जब लफ्ज खामोश हो जाते हैं तो संगीत अपनी कहानी खुद बयां करता है। हमारी आज की प्लेलिस्ट भी कुछ ऐसी ही अनकहे जज्बातों और खूबसूरत यादों का आईना है। तो आइए अपने ख्यालों को थोड़ी आज़ादी देते हैं और सुरताल के सुहाने सफ़र का आगाज करते हैं। दोस्तों, इश्क जब भी आता है बिना किसी आहट के आता है और फिर इंसान खुद से ही पूछने लगता है कि अरे ये क्या हो गया। उत्तम सिंह की वो सदाबहार धुन, आनंद बख्शी के लिखे बोल और उदित नारायण लता मंगेशकर की अमर आवाज़ में दिल तो पागल है से सुनिए प्यार की उसी मीठी सी उलझन को बयां करता ये नगमा।

दोस्तों, 90 के दशक का वो सुनहरा दौर और पायल की खनक में छुपी हुई वो मासूम सी मोहब्बत जो आज भी दिलों पर राज करती है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का वो जादुई संगीत, आनंद बख्शी के लिखे बोल, अलका याग्निक और उदित नारायण की मनमोहक आवाज़ में फिल्म राजकुमार से पेश है प्यार का वही जाना पहचाना एहसास जगाता ये गीत।

0: रास्ता।
1: सड़क पर पैदल चलते समय रखें हम कुछ बातों का ध्यान।
2: हमेशा सड़क के किनारे बनी पटरियों पर ही चलें।
1: सड़क पार करने के पूर्व दाएं और बाएं अवश्य देख लें।
2: तेज गति से आ रहे वाहन के सामने से निकलने की भूल ना करें।
1: सड़क पार करते समय मोबाइल पर बात ना करें।
2: चौराहे पर हमेशा ज़ेब्रा क्रॉस से ही सड़क पार करें।
1: हम रहेंगे अगर सावधान, राह हो जाएगी आसान।
0: ए भाई, जरा देख के चल।

दोस्तों, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो किसी नाम के मोहताज नहीं होते। वो बस रूह से जुड़े होते हैं और हर दर्द की दवा बन जाते हैं। मिथुन का वो बेहद गहरा और दिल को सुकून देने वाला संगीत, सईद कादरी की कलम से निकले बोल, विशाल मिश्रा, पलक मुच्छाल और खुद मिथुन की रूहानी आवाज़ों में फिल्म वनवास का ये बिल्कुल ताज़ा और दिल को गहराई तक छूने वाला गीत आपके लिए।

चलिए दोस्तों, प्यार और जज्बातों की दुनिया से थोड़ा बाहर आते हैं, क्योंकि अब वक्त है फ्लोर पर आग लगाने का। लीजो जॉर्ज, डीजे चेतस और सुखबीर का वो अल्टीमेट पंजाबी और धमाकेदार म्यूजिक, कुमार के लिखे वो मस्ती भरे बोल, दिलजीत दोसांझ, ध्वनि भानुशाली और सुखबीर की उस फुल ऑन एनर्जी वाली आवाज़ में फिल्म गुड न्यूज़ से आ गया है वो ब्लॉकबस्टर ट्रैक जिस पर थिरके बिना आप रह नहीं पाएंगे।

दोस्तों, कभी कभी हम किसी को इतनी शिद्दत से चाहते हैं कि सारी दुनिया को पता चल जाता है, बस उस एक इंसान को ही हमारी मोहब्बत की खबर नहीं होती। सचिन जिगर की वो एकदम फ्रेश और कानों में रस घोलने वाली धुन, अमिताभ भट्टाचार्य के लिखे वो प्यारे से लव्स और अरिजीत सिंह की वो आवाज़ जो हर आशिक के दिल का हाल कह देती है। फिल्म मुंजिया से सुनिए प्यार की इसी मीठी सी शिकायत को बयां करता ये खूबसूरत सा गीत।

तो दोस्तों, आज की सतरंगी म्यूजिकल महफिल में बस इतना ही। अब आपकी दोस्त रश्मि बजाज को कार्यक्रम बॉलीवुड बीट्स से दीजिए इजाजत। संगीत का ये खूबसूरत सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। जिंदगी की बीट्स को एंजॉय करते रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी उज्जैन। नमस्कार।

FM 102.5 MHz पर ये आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र है। आकाशवाणी उज्जैन से प्रसारित सभी कार्यक्रम अब आप सुन सकते हैं अपने मोबाइल पर कभी भी कहीं भी न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से। सुबह के 10 बज रहे हैं, आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम उज्जैन दर्शन।

नमस्कार श्रोताओं, आकाशवाणी उज्जैन के विशेष कार्यक्रम उज्जैन दर्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सुबह के सुहानी बेला में जब हम उज्जैनी का स्मरण करते हैं तो हमारे मन मस्तिष्क में स्वतः ही कालों के काल भगवान महाकाल की छवि उभर आती है। मोक्षदायिनी शिप्रा के तट पर बसी ये नगरी युगों युगों से शिव भक्तों की आस्था का परम केंद्र रही है। श्रोताओं, आज हम आपको एक ऐसी शब्द यात्रा पर ले चलेंगे जहां हम जानेंगे कि आखिर भगवान महाकाल इस पावन भूमि पर कैसे प्रकट हुए। साथ ही हम इस विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग मंदिर की उन रहस्यमयी खगोलीय, भौगोलिक और स्थापत्य कला से जुड़ी विशिष्टताओं पर भी चर्चा करेंगे जो इसे पूरी दुनिया में अद्वितीय बनाती हैं। तो आइए शिव आराधना के इस मंगलमय सफर की शुरुआत करते हैं फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम के इस गीत से, जिसे गाया है लता मंगेशकर ने।

श्रोताओं, भगवान महाकालेश्वर के लिंग रूप में प्रकट होने की कई पौराणिक कथाएं हैं। शिव पुराण की कोटि रुद्र संहिता के अनुसार एक बार श्रीकर नामक एक गोप बालक ने राजा चंद्रसेन को शिव भक्ति में लीन देखा और इससे प्रेरित होकर रास्ते से एक पत्थर उठा लिया। उसने उस पत्थर को घर में स्थापित कर दिया और पूर्ण श्रद्धा के साथ शिव पूजा में मगन हो गया। जब भोजन के लिए बुलाने पर भी वह नहीं उठा तो क्रोधित माता ने वह पत्थर दूर फेंक दिया। बालक शंभु शंभु को पुकारता हुआ मूर्छित हो गया। उसकी सच्ची भक्ति देखकर भोलेनाथ ने वहां स्वर्ण कपाट युक्त रत्न जटित मंदिर प्रकट कर दिया। श्रोताओं, एक अन्य कथा बताती है कि अवंतिका में रहने वाले एक वेदपाठी ब्राह्मण और उसके पुत्रों पर मदांध दैत्य दूषण ने भयंकर आक्रमण कर दिया था। तब भगवान भूतभावन एक भयंकर हुंकार भरते हुए वहां प्रकट हुए और दैत्य का संहार किया। इसी भयंकर हुंकार के कारण वे महाकाल कहलाए।

श्रोताओं, उज्जैनी और महाकाल मंदिर की केवल पौराणिक ही नहीं बल्कि खगोलीय और भौगोलिक महनीयता भी अत्यंत अद्भुत है। धर्म ग्रंथों में इस पावन मंदिर को महाकाल निकेतन भी कहा गया है। वराह पुराण में अवंतिका को शरीर का नाभि देश यानी मणिपूरक चक्र कहा गया है और इस प्रदेश के अधिष्ठात्र देवता स्वयं श्री महाकालेश्वर माने गए हैं। भौगोलिक दृष्टि से भी देखा जाता है तो शिप्रा नदी के ठीक नाभि स्थल अर्थात केंद्र पर काल के अधिपति भगवान महाकाल का स्वयंभू ज्योतिर्लिंग प्रतिष्ठित है। खगोल शास्त्र में भी उज्जैनी को ठीक मध्यवर्ती होने का गौरव प्राप्त है क्योंकि भूमध्य रेखा यहीं से होकर गुजरती है। महान खगोलविद आचार्य वराहमिहिर के अनुसार किसी विशेष योग में सूर्य की ठीक मस्तक पर स्थिति दुनिया के किसी भी अक्षांश पर प्राप्त नहीं होती सिवाय उज्जैनी के। धरती और आकाश की इसी मध्यवर्ती भूमि पर भगवान महाकाल का विराजना एक अलौकिक रहस्य है। आइए सुनते हैं भोलेनाथ की भक्ति में डूबा ये भजन विनोद राठौड़ और कविता पौडवाल के स्वर में।

श्रोताओं, हमारी यात्रा के इस भाग में अब हम बात करेंगे महाकाल के बहुमंजिला मंदिर के स्वरूप की। बहुत संभव है कि अनादिकाल में महाकाल का भवन बहुमंजिला रहा हो, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि तब इसके शिखर की ऊंचाई लगभग 363 फीट थी। समय समय पर राजा चंड प्रद्योत, सम्राट विक्रमादित्य और राजा भोज ने अपने राज्यकाल में इस प्राचीन मंदिर के वैभव को पुनर्जीवित किया। सन 1740 ईस्वी में राणोजी शिंदे के दीवान रामचंद्र मल्हार उर्फ रामचंद्र शेणवी ने इस मंदिर के भवन का जीर्णोद्धार करवाया, जिसके बाद इसके शिखर की ऊंचाई मात्र 163 फीट रह गई, जो आज भी वर्तमान में स्थित है। कहते हैं कि जीर्णोद्धार के इस लंबे अंतराल में शिव भक्तों ने वृद्ध कालेश्वर यानी जूना महाकाल के दर्शन किए। महाकाल मंदिर का पूर्वमुखी प्रमुख द्वार बिड़ला बंधुओं के द्वारा विस्तीर्ण किया गया और मंदिर का विशाल सभा मंडप धनबाद के रहने वाले एक दानवीर धनाढ्य द्वारा निर्मित किया गया है। ये विश्व का एकमात्र दक्षिणमुखी ज्योतिर्लिंग है। इस जानकारी के साथ भोलेनाथ की दिव्यता को मन में भरते हुए आइए सुनते हैं कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ में ये भजन।

श्रोताओं, भगवान महाकालेश्वर की इस पावन गाथा के साथ उज्जैन दर्शन का हमारा आज का ये विशेष अंक यहीं संपन्न होता है। फिर किसी दिन किसी अन्य विषय के साथ पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए अपनी रेडियो सखी रश्मि बजाज को दीजिए अनुमति। अपना और अपनों का खूब सारा ख्याल रखिए। सुनते रहिए आकाशवाणी उज्जैन। नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम उज्जैन दर्शन FM 102.5 MHz और साथ ही न्यूज ऑन AIR मोबाइल एप्लीकेशन पर यह आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र है। आइए अब सुनते हैं महिला श्रोताओं के लिए विशेष कार्यक्रम महिला सभा। आज की सूत्रधार हैं श्वेता काबरा।

नमस्कार, मैं हूं श्वेता और बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने प्रोग्राम महिला सभा में। कैसी हैं आप? मुझे विश्वास है सावन के ये दिन आपके जीवन में, आपके मन में भी खुशियों के रंग भर रहे होंगे। सखियों, हर युग की अपनी एक पहचान होती है, कभी पहिए का आविष्कार, कभी बिजली, कभी इंटरनेट, और आज का समय जिस बदलाव के लिए जाना जा रहा है उसका नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI। ज़रा सोचिए, अगर कोई ऐसी हेल्पर हो जो आपके लिए जानकारी खोज दे, लैंग्वेज को ट्रांसलेट कर दे, बच्चों की पढ़ाई में मदद कर दे, आपके बिजनेस के लिए पोस्टर या सोशल मीडिया कंटेंट तैयार कर दे, आपको कहीं जाना हो तो ट्रैवल प्लान बना दे या किसी विषय को सरल भाषा में समझा दे, तो कैसा लगेगा? पहले तो यह सपने जैसा ही था, पर अब ये कोई फैंटेसी नहीं बल्कि AI की वास्तविक दुनिया है। लेकिन यहाँ एक सवाल भी है, क्या AI महिलाओं के लिए अवसर है, चुनौती है या दोनों? आज महिलाएं हर क्षेत्र में अपना स्थान बना रही हैं, चाहे वो शिक्षा हो, चिकित्सा हो, पत्रकारिता, कला, बिजनेस हो, खेती किसानी हो या साइंस और एडमिनिस्ट्रेशन हो, महिलाएं सभी जगह आगे हैं। ऐसे में AI उनके लिए नया टूल बनकर उभर रहा है। ये समय बचा सकता है, काम को आसान बना सकता है, नए स्किल सिखा सकता है और छोटे शहरों या घर से काम करने वाली महिलाओं को भी बड़े अवसरों से जोड़ सकता है। जैसे एक हाउसवाइफ जो घर से अचार, पापड़, हैंडीक्राफ्ट या पेंटिंग का काम करती हैं, वे AI की मदद से अपने प्रोडक्ट्स का बेहतर प्रचार कर सकती हैं। एक स्कूल या कॉलेज की टीचर स्टूडेंट्स के लिए कंटेंट तैयार कर सकती हैं। एक कलाकार नए डिज़ाइन और विचार डेवलप कर सकता है। यानी AI केवल टेक्निक नहीं बल्कि क्रिएटिविटी और अवसर का एक नया माध्यम भी बन सकता है। लेकिन जैसा मैंने कहा, हर टेक्निक की तरह इसके साथ भी कुछ चुनौतियां जुड़ी हैं। इंटरनेट पर गलत जानकारी, फेक तस्वीरें और वीडियोस, साइबर ठगी, डेटा प्राइवेसी और डिजिटल सुरक्षा जैसे मुद्दे आज पहले से कहीं ज़्यादा आम हो गए हैं। इसलिए AI का उपयोग तो करें, लेकिन समझदारी, जागरूकता और जिम्मेदारी के साथ। मुझे एक बात बहुत महत्वपूर्ण लगती है। अक्सर कहा जाता है कि तकनीक नौकरियां छीन लेगी, लेकिन जो विशेषज्ञ हैं वे ये भी कहते हैं कि आने वाले समय में सबसे अधिक मूल्य, सबसे अधिक वैल्यू उन्हीं लोगों की होगी जो टेक्निक का सही उपयोग करना सीखेंगे। इसलिए शायद सवाल ये नहीं है कि AI हमारे जीवन में आएगा या नहीं, सवाल ये है कि हम AI के साथ सीखेंगे या उससे डरेंगे। महिलाओं ने हर दौर में बदलाव को अवसर में बदला है, चाहे सिलाई मशीन हो या स्मार्टफोन, बैंकिंग से लेकर ऑनलाइन व्यवसाय तक हो, हर नए साधन को अपनाकर महिलाओं ने अपने परिवार और समाज दोनों को स्ट्रांग बनाया है। AI भी शायद उसी यात्रा का अगला पड़ाव है। रविनाथ ठाकुर जी ने कहा भी था, जहां मन भय से मुक्त हो वहीं सच्ची प्रगति संभव है। परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है, तो नई तकनीक से भय नहीं बल्कि उससे सीखने की इच्छा हमें आगे ले जाती है। और हम देख ही रहे हैं कि कितनी महिलाएं हर क्षेत्र में AI की मदद से कितनी आगे बढ़ रही हैं। तो सखियों, हम भी AI को अपनी ग्रोथ के लिए यूज करें, क्योंकि ओल्ड इज गोल्ड बट न्यू इज बोल्ड। तो चलिए इसी बात पर सुनते हैं ये प्यारा सा ट्रैक।

0: सखियों, कला आत्मा का भोजन होती है। आज हमारे साथ उपस्थित हैं उज्जैन शहर की बेहद प्रतिभाशाली आर्टिस्ट डॉक्टर फाल्गुनी अग्रवाल। उन्होंने कई अवार्ड जीते हैं और वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाए हैं। महाकालों की 200 मूर्तियों के चित्र बनाकर उन्होंने और उनके स्टूडेंट्स ने बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराया है। तो चलिए आज उनसे बात करते हैं। डॉक्टर फाल्गुनी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आकाशवाणी उज्जैन में।
1: जय श्री महाकाल। श्वेता जी, आपका बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए।
0: फाल्गुनी जी, सबसे पहले अपने बारे में बताइए, कला से आपका जुड़ाव कब और कैसे शुरू हुआ? क्या बचपन में ही ये तय हो गया था कि आपको कला के क्षेत्र में ही अपना जीवन बनाना है?
1: जी, मुझे बचपन से ही कला में रुचि थी। मेरी माता ने मेरी प्रतिभा को सर्वप्रथम पहचाना और आफ्टर 12th मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे पेंटिंग के फील्ड में ही आगे जाना है। तो इनिशियली मैं इसमें डिग्री डिप्लोमा भी लेती रही, साथ में मैंने जॉब्स भी ऐसे की जैसे स्कूल में, प्री स्कूल में और कई सारी यूनिवर्सिटीज़ में वर्कशॉप ली पेंटिंग में ही, और मैंने मास्टर्स में गोल्ड मेडल हासिल किया। फिर मैंने डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा इन पेंटिंग किया। फिर UGC नेट इन विजुअल आर्ट्स मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई किया। साथ ही PhD गीता प्रेस गोरखपुर के श्री कृष्ण चित्रों पर PhD किया। और अब मैं एक संस्था चला रही हूँ, फाल्गुनी चित्रकला केंद्र, उसमें मैं बच्चों को सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्सेज प्रोवाइड करती हूँ। तो ऐसे मैंने अपने ही इंटरेस्ट को पैशन में डेवलप किया और उसे आगे बढ़ाया।
0: जी, कुछ चीज़ें हमारे जन्म से ही के पहले से ही हमारे अंदर, हमारी आत्मा में ईश्वर स्थापित कर देते हैं, जैसा अभी आपने बताया। आपने पेंटिंग, स्केचिंग, म्यूरल आर्ट, मूर्तिकला जैसी कई विधाओं में काम किया है, तो आपके लिए कला की सबसे प्रभावशाली अभिव्यक्ति कौन सी है और क्यों?
1: जी, आप सही कह रही हैं, मनुष्य अपने पूर्व जन्म के संस्कारों से बहुत कुछ लेकर आता है और मुझे बचपन से ही चित्रकला से कुछ अधिक लगाव था। और मैं हमेशा अपने छात्रों को भी यही समझाती हूँ कि ये एक मूल प्रवृत्ति है। मैंने पेंटिंग, स्केचिंग, स्कल्पटिंग और डांसिंग, सिंगिंग, इन सभी में देखा कि मेरी रुचि है, लेकिन सबसे बड़ी अभिव्यक्ति मुझे चित्रकला से ही महसूस होती है, क्योंकि चित्रकला ही सभी कलाओं की जड़ है। फाइन आर्ट एक ललित कला शब्द आता है जिसके अंदर ये सभी कलाएं आती है, जैसे मूर्तिकला, स्थापत्य कला, आर्किटेक्चर और पेंटिंग, डिजिटल आर्ट, ग्राफिक आर्ट, अप्लाइड आर्ट, और ये उन सभी कलाओं की जड़ है, इसलिए सब मेरी सबसे बड़ी पसंदीदा अभिव्यक्ति भी है।
0: जी फाल्गुनी जी, मेरा अगला सवाल है, अक्सर लोग मानते हैं कि ड्राइंग जो है वो केवल एक शौक या हॉबी की तरह है, क्या कला एक सफल कैरियर भी बन सकती है? इसमें आज के युवाओं के लिए क्या संभावना है?
1: जैसा कि आप कह रही हैं, चित्रकला में संभावनाएं वाकई बहुत है, कई करियर विकल्प हैं, बस जरूरत से ही मार्गदर्शन की है ताकि बच्चा सही समय पर सही दिशा में कदम रखे और सही प्रयास करे, तब ये सभी विकल्प उसे आगे बढ़ने में बड़ा मौका देते हैं।
0: फाल्गुनी जी, आप कई वर्षों से बच्चों को कला की ट्रेनिंग दे रही हैं, तो आपका कोई ऐसा छात्र छात्रा रही है जिसकी कला यात्रा ने आपको भावनात्मक रूप से प्रभावित किया हो और आपको लगा हो कि कला वास्तव में जीवन बदल सकती है?
1: हाँ, एक ऐसी छात्रा थी जो बोल सुन नहीं सकती थी और एक ऐसी बालिका भी मेरे समक्ष आई जो एक आंख से देख भी नहीं पाती थी, लेकिन उनकी रचनात्मक शक्ति बहुत अद्भुत थी। और ऐसे बहुत से डिफरेंटली एबल्ड स्टूडेंट्स मेरे सामने आए जिनकी क्रिएटिविटी हम आपसे बहुत अधिक है, और जब मैं उनसे इंटरेक्ट करती हूँ, उनका आत्मबल देखती हूँ, तो मुझे भी वह प्रेरणा मिलती है कि अगर वो कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं, और हम सभी जिन्हें ईश्वर ने इतना समक्ष बनाया है वो तो कर ही सकते हैं, तो वे अपने भीतर की शक्ति को पहचाने और आगे बढ़े।
0: फाल्गुनी जी, आपने कई सारे पुरस्कार अभी जीते हैं और सम्मान भी प्राप्त किए हैं। अभी अभी आपको प्राइड ऑफ उज्जैन का सम्मान मिला है, इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स भी आपने बनाया, इंग्लैंड, अमेरिका में भी आपने अपनी पेंटिंग कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करके अपनी पेंटिंग्स को प्रदर्शित किया, लेकिन ऐसा कोई सम्मान या अनुभव हो जिसे आप अपने जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट मानती हो?
1: मेरा सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड था, जो मैंने बाबा महाकाल की 200 मूर्तियों की पेंटिंग्स का बनाया 35 पेंटिंग्स के माध्यम से। मास्टर्स में गोल्ड मेडल, UGC नेट का एग्जाम क्रैक करना और ऐसी बहुत सारी सफलताएं जिसे मैंने प्राप्त किया, उसका माध्यम ये था कि मैं उसे एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत कर सकूं ताकि जो मेरे विद्यार्थी हैं या जो भी लोग मुझसे जुड़ रहे हैं कि वो ये जान सके कि अगर ये मैंने किया है तो आप भी कर सकते हैं और इसे आप बहुत बेहतर रूप से कर सकते हैं।
0: जैसा अभी आपने कहा कि आप कर सकती हैं तो सभी कर सकते हैं, तो अंत में मेरा सवाल आपसे यही है कि आप उन महिलाओं और युवतियों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगी जो कला के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहती हैं लेकिन परिवार, समाज या आत्मविश्वास की कमी के कारण पहला कदम नहीं उठा पा रही हैं।
1: श्वेता जी, मेरे पास कई ऐसी महिलाएं आई हैं जो प्रेग्नेंट थी, अपने छोटे बच्चों को गोद में लेकर, जो 6 मास का है या 1 वर्ष का है, उस बालक को लेकर पेंटिंग कर रही है मेरे सामने। तो उनका आत्मविश्वास और उनका कला के प्रति जो समर्पण और लगाव मैंने देखा, तो उससे मुझे बहुत खुशी हुई है। और ये मैं आप सभी को बताना भी चाहूँगी कि ऐसी बहुत सारी स्त्रियाँ हैं जो अपने करियर को इतनी अच्छे से परस्यू कर रही हैं। उन्होंने लगातार सीख कर 6 महीने 1 वर्ष में अपनी कला को वो स्थान दिया कि आज उनकी पेंटिंग्स अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे, कई ऐसे माध्यम्स पे सेल आउट हो रही हैं। क्योंकि जब कला से कमाई होती है तब वह उसे वो सम्मान समाज में उस व्यक्ति को मिलता है जो पहले नहीं था। तो मैंने उनके स्किल डेवलपमेंट में बदलाव देखा और मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप भी कदम बढ़ाएं और मैं आपके साथ हूँ और सभी कलाकार भी आपके साथ हैं। आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगी, आपका समर्पण जरूर आपको वो फल देगा जो आप सोच भी नहीं सकती।
0: बिल्कुल, जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगी, आपका समर्पण आपको जरूर वो फल देगा जो आप सोच भी नहीं सकती। कितनी अच्छी बात आपने कही है पालवी जी। निश्चय ही आपने उज्जैन शहर का नाम रोशन किया है। हमारे श्रोता अवश्य आपसे प्रेरणा प्राप्त करेंगे। आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाओं के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारी रोचक बातें हमारी श्रोताओं के साथ साझा करने के लिए।
1: श्वेता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे आकाशवाणी में शामिल करने के लिए। और मैं बाबा महाकाल से प्रार्थना करती हूँ कि हमारी जो ये बातचीत है ये औरों को भी प्रेरणा दे। जय श्री महाकाल। धन्यवाद
0: सखियों। अगर इस वीकेंड आप शहर से की भागदौड़ से थोड़ा सा ब्रेक लेकर प्रकृति के गोद में कुछ सुकून के पल बिताना चाहती हैं तो मैं आपको एक ऐसी ही खूबसूरत यात्रा के बारे में बताऊंगी, उज्जैन से पाताल पानी और काला कुंड की हेरिटेज ट्रेन यात्रा। लेकिन उसके पहले इस इन्फॉर्मेशनल और इंटरेस्टिंग बातचीत जो हमने सुनी उसके बाद एक खूबसूरत ट्रैक का वक्त है।

सखियों, फिर से स्वागत है आपका आपके अपने कार्यक्रम महिला सभा में। तो इस गीत के पहले हम बात कर रहे थे पाताल पानी और काला कुंड की हेरिटेज ट्रेन यात्रा की। सखियों, इस पखवाड़े से ये ट्रेन शुरू होने जा रही है और सिर्फ सैटरडे और संडे को इस ट्रेन का जादुई सफ़र चालू रहता है। ये सिर्फ एक ट्रिप नहीं है बल्कि हरियाली, पहाड़ों, झरनों, सुरंगों और एक पुरानी यादों से भरी ट्रेन का अनोखा अनुभव है जो आपको बचपन की रेल यात्राओं की याद दिला देगा। तो चलिए पूरा प्लान समझते हैं। सुबह उज्जैन से शुरुआत करते हैं। आप चाहें तो अपनी गाड़ी से या ट्रेन बस से इंदौर के लिए निकल सकते हैं। करीब 1.5 से 2 घंटे में आप आराम से महू यानी डॉक्टर अम्बेडकर नगर पहुँच जाते हैं। पाताल पानी स्टेशन अपने आप में बहुत खूबसूरत है, लेकिन यहाँ का सबसे बड़ा अट्रैक्शन है पाताल पानी झरना। बरसात के मौसम में ये झरना पूरे शबाब पर होता है। इस यात्रा का असली रोमांच शुरू होता है पाताल पानी से काला कुंड तक चलने वाली हेरिटेज ट्रेन में। ये छोटी सी ट्रेन धीमी रफ्तार से चलती है ताकि आप हर मोड़, हर पुल, हर घाटी को अच्छे से देख सके। रास्ते में घने जंगल, छोटे छोटे पुल, टनल्स, खूबसूरत टर्निंग्स और पहाड़ों के बीच बहती ठंडी ठंडी हवा, सब कुछ इतना सुंदर होता है कि समय का पता ही नहीं चलता। कालाकुंड पहुंचकर आपको एक शांत और बेहद मनमोहक प्राकृतिक वातावरण मिलता है। यहाँ कुछ देर रुककर आप आसपास की हरियाली में टहल सकते हैं, चाय कॉफी का आनंद ले सकते हैं, लंच कर सकते हैं और प्रकृति के बीच सुकून के पल बिता सकते हैं। इसके बाद आप वापस उसी ट्रेन से पाताल पानी लौट आते हैं। अब आपको कुछ काम की बातें बता देते हैं। डिस्टेंस की बात करें तो पाताल पानी से कालाकुंड की कुल दूरी लगभग 10 किलोमीटर है। समय की बात करें तो ट्रेन पाताल पानी से सुबह करीब 11 बजे चलकर दोपहर 1:05 पर कालाकुंड पहुंच जाती है, तो लगभग 2 घंटे का सफर। वापसी में कालाकुंड से ट्रेन दोपहर 3:30 बजे चलती है और 4:30 बजे पाताल पानी लौट जाती है। अब बात करते हैं टिकट की प्राइस की। दो तरह के कोच हैं, एसी चेयर कार जिसका किराया लगभग 260 रुपये है और सेकंड सीटिंग नॉन एसी जिसका किराया सिर्फ 20 से 30 रुपये है। आप इसकी बुकिंग ऑनलाइन IRCTC की वेबसाइट या ऐप से या फिर स्टेशन पर भी कर सकते हैं। और हाँ, एक खास बात, टिकट पहले से बुक कर ले क्योंकि इसकी टिकट बहुत जल्दी फुल हो जाती है। अच्छा, एक बात और, ये ट्रेन जुलाई से अक्टूबर तक ही चलती है। अब अगर बात करें एक परफेक्ट वन डे ट्रिप की तो आप सुबह उज्जैन से निकलकर दोपहर तक पाताल पानी पहुंच सकते हैं। इतना करने के बाद आप वहां पहुंचे, झरना देखें, हेरिटेज ट्रेन की सवारी कर सकते हैं और शाम तक वापस इंदौर या महू लौट सकते हैं। अब चाहें तो रात को इंदौर रुक सकते हैं या अगले दिन सुबह आराम से उज्जैन वापस आ सकते हैं। इंदौर और महू दोनों जगह ठहरने और खाने पीने की अच्छी सुविधाएं हैं, इसलिए यात्रा परिवार, बच्चों या दोस्तों के साथ और भी आरामदायक हो जाती है। बस एक छोटी सी सलाह,

हेरिटेज ट्रेन का टाइम पहले से जरूर चेक कर लें और बारिश के मौसम में झरने के पास थोड़ी सावधानी से चलें। तो सखियों, अगर वीकेंड पर आप कुछ अलग शांत और यादगार अनुभव चाहती हैं तो इस बार पाताल पानी और कालाकुंड की ये हेरिटेज ट्रेन जर्नी जरूर प्लान करें, क्योंकि कभी कभी सबसे खूबसूरत सफर वही होते हैं जो हमें प्रकृति के और करीब ले जाते हैं। वक्त है एक म्यूजिकल ब्रेक का, तो सुनिए ये बारिश में भीगा भीगा सा सोलफुल सॉन्ग।

सखियों, सावन की शुरुआत हो चुकी है। कांवड़ यात्री महाकाल के दर्शन के लिए पहुंचने लगे हैं। आप जानती हैं कांवड़ यात्रा क्यों होती है? जब शिव जी ने समुद्र मंथन के समय विषपान किया था तो ऐसी मान्यता है कि अलग अलग पवित्र नदियों का जल उन पर अर्पण करने से उनकी जलन शांत होती है। तो कांवड़ यात्री इसी अटूट श्रद्धा के साथ महाकाल आकर पवित्र नदियों का जल अर्पित करते हैं। तो सखियों, जितना हो सके कांवड़ यात्रियों का सहयोग करें ताकि वे इस परंपरा को प्रसन्नतापूर्वक निभा सकें। इसी संदेश के साथ समय हो गया है आपसे विदा लेने का। सुनते रहिए आकाशवाणी उज्जैन FM 102.5 MHz पर और न्यूज ऑन एयर ऐप पर। आप हमसे इंस्टाग्राम और फेसबुक के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। अपनी प्रतिक्रियाएं हमें इस पते पर आप लिख सकते हैं। कार्यक्रम महिला सभा, आकाशवाणी उज्जैन, विद्यापति नगर, पिन 456010। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी उज्जैन। अपनी रेडियो मित्र श्वेता को अब अनुमति दीजिए। नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम महिला सभा FM 102.5 MHz और साथ ही न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल एप्लीकेशन पर। ये आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र है। सुबह के 11 बजने को हैं। अब अगला कार्यक्रम विविध भारती के मुंबई केंद्र से रिले किया जाएगा। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: प्रस्तुत है कार्यक्रम रंग तरंग।
1: रंग तरंग
0: इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का तहे दिल से स्वागत है। मैं हूं आज आपके साथ मंदाकिनी जोशी। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।

लता मंगेशकर की आवाज में अभी आपने संत मीराबाई का ये भक्ति पद सुना। संगीत दिया था हृदयनाथ मंगेशकर ने।

0: बहादुर शाह जफर का कलाम अभी आपने सुना। गायिका थी रूना लैला और संगीत पंडित गुलाम कादिर का था।
1: वो कॉमिक क्रिएटर है।
2: अगर अमेरिका भी देखें तो सुपरमैन की पहली किताब आई थी 1938 में, पहली फिल्म मेरे ख्याल से 70 के दशक के अंत में आई है।
1: और विविध भारती पर आ रहे हैं अपनी जिंदगी की कहानी सुनाने।
2: उन्होंने लोला कुट्टी करके एक कैरेक्टर क्रिएट किया, तो बहुत गाली दी उन्होंने। प्रोड्यूसर बनना चाहता है, डायरेक्टर बनना चाहता है, स्पॉट बॉय बनना चाहता है, फिल्म मेकर क्या होता है?
1: कॉमिक क्रिएटर और डायरेक्टर आलोक शर्मा होंगे आज के मेहमान।
2: जितने भी फिल्मी कलाकार थे उनके सबके इंटरव्यूज मैं करता था और उसके बाद उसमें आरजेस के वॉइसेस छिपा दी जाती थी।
1: 5 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: और आइए अब सुनते हैं यूसुफ आजाद कव्वाल और उनकी हमनवा की गाई ये कव्वाली। इसे तविश महमूद ने लिखा और धुन बनाई निसार ने।

कार्यक्रम में अब सुनिए मोहम्मद रफी की आवाज में एक गजल, शायर सबा अफगानी और संगीत इकबाल का।

विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग। आइए सुनते हैं किशोरी अमोनकर की आवाज में उनकी गाई ये ठुमरी भैरवी।

0: किशोरी अमोनकर की आवाज में अभी आपने उनकी गाई ये ठुमरी भैरवी सुनी।
1: एक आवाज जो आप सभी के जहन में ताजा है और जिससे जुड़ी हैं आपकी ढेर सारी रेडियो की यादें।
2: मैंने ये सोचा कि भारत में तो बहुत ज्यादा भावुक हैं लोग, करोड़ों की संख्या में सुन रहे हैं रेडियो से कान लगाए, तो मैंने तब अपनी आवाज में कंपन लाते हुए कहा था कि ये मैच अब कमजोर दिल के इंसानों के लिए

0: नहीं रह गया है।
1: जानी माने क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोषी की जिंदगी की कहानी मैटिनी शो 8 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: आए हाय
2: शोभा गुर्टू की आवाज में हम आपको सुनवा रहे हैं ये कजरी।

0: मिलते हैं धाराएं तीन, विचार, स्वर और संगीत।
1: तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा।
0: बातें जो देती हैं हौसला, शब्द जो देते हैं सुकून।
1: ये ना सोचो इसमें अपनी हार है कि जीत है।
0: हालात से लहूलुहान दिल को मिलता है ठिकाना, विचार और संदेश थाम लेते हैं आपका हाथ।
1: तुम देना साथ मेरा, ओ हम नवा।
0: जब आप सुनते हैं त्रिवेणी,
1: तुम आ गए हो, नूर आ गया है।
0: सुबह 8:15 और दिन में 2:15 सिर्फ विविध

0: अभी आप सुन रहे थे शंकर, शंभू और खव्वाल की आवाजों में हजरत अमीर खुसरो का ये कलाम। ये एक सूफी कव्वाली थी जो हजरत अमीर खुसरो ने अपने मुर्शीद यानी अपने गुरु हजरत निजामुद्दीन औलिया के लिए लिखी, और इस कव्वाली में वे अपने पीर, अपने संत को पाने की खुशी और उनके प्रेम के रंग का वर्णन कर रहे थे। संगीत दिया था मुरली मनोहर स्वरूप ने।
1: पता है, अब हम आपकी चिट्ठियों के इंतजार में हैं। क्यों? क्योंकि वो जमाना वापस आ रहा है जब आपकी फरमाइशी चिट्ठियां आती थी विविध भारती में।
2: चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है,
1: और हम सुनवाते थे आपके मनचाहे गीत।
2: पल पल दिल के
1: विविध भारती पर वापस आ रहा है आपका पसंदीदा कार्यक्रम मनचाहे गीत। 2 मई से हर शनिवार और रविवार दोपहर 3 बजे
3: हम इंतजार करेंगे।
1: तो फटाफट पोस्ट कार्ड लीजिए, लिखिए अपनी फरमाइश और भेज दीजिए इस पते पर। मनचाहे गीत कार्यक्रम विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091। मनचाहे गीत विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091। आपकी चिट्ठियों का हमें इंतजार है।
0: रंग तरंग कार्यक्रम में अब सुनिए जयदेव के संगीत निर्देशन में रामानंद शर्मा का लिखा ये भक्ति पद। इसे गाया है शर्मा बंधु।

ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। दोपहर के 12 बजने वाले हैं, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।

0: भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने रेपो दर को 5.25% पर बरकरार रखा है। मौद्रिक नीति समिति के फैसले की घोषणा करते हुए आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा है कि देश की आर्थिक वृद्धि को मजबूत मांग का समर्थन मिल रहा है और ये विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बनी हुई है।
1: After a detailed assessment of the evolving macroeconomic and financial developments, as well as the outlook, the MPC decided unanimously to keep the policy repo rate unchanged at 5.25%.
0: श्री मल्होत्रा ने कहा कि वित्त वर्ष की पहली तिमाही में अर्थव्यवस्था का प्रदर्शन उम्मीद से बेहतर रहा, जिसके चलते केंद्रीय बैंक ने वर्ष 2026-27 के लिए अपने वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि अनुमान को संशोधित करके 6.7% कर दिया है। उन्होंने कहा कि पश्चिम एशिया संघर्ष प्रमुख व्यापार मार्गों को बाधित करके वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए चुनौतियां पेश कर रहा है। श्री मल्होत्रा ने कहा कि बैंक ने वित्त वर्ष 2027 के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के अपने अनुमान को पहले के 5.1% से घटाकर 5% कर दिया है। रिजर्व बैंक ने घरेलू अर्थव्यवस्था पर आशावादी रुख अपनाते हुए वर्ष 2026-27 के लिए अपने विकास अनुमान को बढ़ाया और मुद्रास्फीति के पूर्वानुमान को घटाया है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित हो रही है। लोकसभा की कार्यवाही नीट मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई समेत विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी गई। सुबह 11 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्य छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई पर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से बयान की मांग करने लगे। श्री बिरला ने सभी सदस्यों से प्रश्नकाल के सुचारू संचालन में सहयोग करने का आग्रह किया।
2: संसद चर्चा संवाद के लिए, आपके विचारों की अभिव्यक्ति के लिए प्रश्नकाल में महत्वपूर्ण प्रश्न पूछो, कई विभागों के महत्वपूर्ण प्रश्न है, और आप नियोजित तरीके से पोस्टरबाजी करके प्रदर्शन कर सदन की गरिमा को घटाना चाहते हैं।
0: उधर राज्यसभा में भी इसी मुद्दे पर विपक्ष के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। इससे पहले सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू हुई तो विपक्ष के हंगामे के बीच सभापति सीपी राधाकृष्णन ने शून्यकाल शुरू किया। जम्मू कश्मीर से भाजपा सांसद सतपाल शर्मा ने कहा कि 7 वर्ष पहले आज ही के दिन अनुच्छेद 370 को निरस्त किया गया था। श्री शर्मा ने कहा कि आज का दिन न केवल जम्मू कश्मीर के लिए बल्कि पूरे देश के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। उन्होंने कहा कि फैसले ने जम्मू कश्मीर को विकास की नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। श्री शर्मा ने कहा कि दशकों तक अनुच्छेद 370 ने जम्मू कश्मीर को अलग थलग रखा। श्री शर्मा ने यह भी बताया कि अनुच्छेद 370 को निरस्त करना भारत की एकता और अखंडता के इतिहास में एक महत्वपूर्ण कदम है। हरियाणा से भाजपा सांसद संजय भाटिया ने हरियाणा को भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। भारतीय जनता पार्टी ने अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने को एक ऐतिहासिक दिन बताया। 7 वर्ष पहले आज ही के दिन अनुच्छेद 370 को निरस्त किया गया था। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि संविधान की भावना के अनुरूप ही संवैधानिक प्रावधान को निरस्त किया गया था।
3: अनुच्छेद 370 को उखाड़ के फेंक दिया गया था जो कि हमारे संविधान में लिखा था। Honoring the spirit of the Constitution of India, Article 370 was abrogated. Article 370 started with the word temporary, but nobody had the will to abrogate it.
0: झारखंड में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल और झारखंड पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाकर सरायकेला खरसावा से प्रतिबंधित भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी संगठन के 3 कुख्यात नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। महानिरीक्षक अभियान नरेंद्र कुमार सिंह ने इसकी पुष्टि की है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज मिला जुला रुख देखने को मिला। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 225 अंक बढ़कर 78,654 पर, जबकि निफ्टी 25 अंक गिरकर 24,590 पर पहुंच गया। भारत की शरानी बरुआ, तन्वी शर्मा और श्रियांशी वेलिशेट्टी ने कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। उधर पुरुष सिंगल्स में शीर्ष खिलाड़ी किदांबी श्रीकांत, किरण जॉर्ज, रोहनक चौहान, सानीत दयानंद और थारून मन्नेपल्ली आज मुकाबला करेंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: हम विविध भारती से बोल रहे हैं, ये है राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। यादों की महफिल कार्यक्रम आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर।

0: प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल। इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज अभिनेत्री काजोल और जेनेलिया डिसूजा का जन्मदिन है और विविध भारती परिवार की ओर से हम इन दोनों अभिनेत्रियों को देते हैं ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। तो आज यादों की महफिल कार्यक्रम में हमने वो गीत चुने हैं जो काजोल और अभिनेत्री जेनेलिया डिसूजा की फिल्मों के हैं। तो आइए सुनते हैं कुछ ऐसे ही चुनिंदा गीत।
1: तुझे देखा तो ये जाना सनम।
0: लता मंगेशकर और कुमार सानू फिल्म का नाम दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार जतिन ललित।

मैं मिला, तू मिली, तू मिली, मैं मिला, तू मिली, मैं मिला, दुनिया जले तो जले।

अनु मलिक की संगीत निर्देशन में अभी आपने देव कोहली का लिखा ये गीत सुना। आवाजें कुमार सानू, अनु मलिक और साथियों की, फिल्म का नाम था बाजीगर।

0: कॉमिक क्रिएटर हैं।
1: अगर अमेरिका भी देखें तो सुपरमैन की पहली किताब आई थी 1938 में, पहली फिल्म मेरे ख्याल से 70 के दशक के अंत में आई है।
0: और विविध भारती पर आ रहे हैं अपनी जिंदगी की कहानी सुनाने।
1: उन्होंने लोला कुट्टी करके एक कैरेक्टर क्रिएट किया, तो बहुत गाली दी उन्होंने। प्रोड्यूसर बनना चाहता है।

0: डायरेक्टर बनना चाहता है, स्पॉट बॉय बनना चाहता है, फिल्म मेकर क्या होता है?
1: कॉमिक क्रिएटर और डायरेक्टर आलोक शर्मा होंगे आज के मेहमान।
0: जितने भी फिल्मी कलाकार थे उनके सबके इंटरव्यूज मैं करता था और उसके बाद उसमें आरजेस के वॉइसेस चिपका दी जाती थी।
1: 5 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: ये गीत है अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाजों में। फिल्म का नाम है कुछ कुछ होता है। इसे समीर ने लिखा है और तर्ज जतिन ललित की है।

0: कुछ होता है,
1: कुछ कुछ होता है।
2: एक आवाज जो आप सभी के जहन में ताजा है और जिससे जुड़ी हैं आपकी ढेर सारी रेडियो की यादें।
3: मैंने ये सोचा कि भारत में तो बहुत ज्यादा भावुक हैं लोग, करोड़ों की संख्या में सुन रहे हैं रेडियो से कान लगाए, तो मैंने तब अपनी आवाज में कंपन लाते हुए कहा था कि ये मैच अब कमजोर दिल के इंसानों के लिए नहीं रह गया है।
2: जानी माने क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोषी की जिंदगी की कहानी, मैटिनी शो 8 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: आए हाय
4: यादों की महफिल कार्यक्रम में अगला गीत कविता कृष्णमूर्ति, अलका याग्निक, अमित कुमार और उदित नारायण की आवाजों में। फिल्म का नाम है कभी खुशी कभी गम। बोल समीर के हैं और धुन जतिन ललित की है।

अभी आपने सुना फिल्म कभी खुशी कभी गम का ये गीत। अगला गीत जतिन ललित की संगीत निर्देशन में प्रसून जोशी का लिखा हुआ, युगल स्वर सोनू निगम और सुनिधि चौहान की, फिल्म का नाम है फना।

0: राष्ट्रीय गीत की 150वीं वर्षगांठ। आ सेतु हिमाचल गूंजता स्वर।
1: वंदे मातरम सुजला।
0: हम मना रहे हैं स्मृति उत्सव।
1: शस्य श्यामला मातरम वंदे।
0: सुनना न भूलिए लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष। वंदे मातरम एक जय घोष प्रसारण प्रति शुक्रवार सुबह 8:15 पर, पुनः प्रसारण उसी दिन दोपहर 2 बजे। लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष।
2: पता है शेखर, इंसान को तकलीफ कब होती है? जब वो कोई सपना देखता है।
3: जी हाँ, अब आप सुनने वाले हैं आशा भोसले और उदित नारायण को। फिल्म का नाम है प्यार तो होना ही था। गीतकार समीर हैं और संगीतकार जतिन ललित हैं।
4: अपनी आंखें बंद करो संजना। बंद आंखों से इंसान सिर्फ सपना ही नहीं, कभी कभी उस हकीकत को भी देख लेता है जिसे खुली आंखें कभी नहीं देख पाती। आंखें बंद करो संजना।

आशा भोसले और उदित नारायण को अभी आपने सुना। फिल्म का नाम था प्यार तो होना ही था। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। फिल्म का नाम है जाने तू या जाने ना। आवाज रूना की, संगीत दिया है ए आर रहमान ने और गीत लिखा है अब्बास ने।

0: तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर। फिल्म का नाम है मस्ती, आवाजी शान और स्नेहा पंत की। इसे समीर ने लिखा है और धुन बनाई है आनंद राज आनंद ने।

0: मस्ती फिल्म का दो गाना अभी आपने शान और स्नेहा पंत की आवाजों में सुना।
1: मिलती हैं धाराएं तीन, विचार, स्वर और संगीत।
2: तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा।
1: बातें जो देती हैं हौसला, शब्द जो देते हैं सुकून।
2: ये ना सोचो इसमें अपनी हार है कि जीत है।
1: हालात से लहूलुहान दिल को मिलता है ठिकाना, विचार और संदेश थाम लेते हैं आपका हाथ।
2: तुम देना साथ मेरा, ओ हम नवा।
1: जब आप सुनते हैं त्रिवेणी,
2: तुम आ गए हो, नूर आ गया है।
1: सुबह 8:15 और दिन में 2:15 सिर्फ विविध भारती पर।
0: और अब आज का यादों की महफिल कार्यक्रम समाप्त हुआ।

ये विविध भारती है राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन सुरीला सफर। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस कुछ ही पलों में।

प्रस्तुत है कार्यक्रम सुरीला सफर। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। तो चलिए आज भीख लेते हैं सावन में। कैसे हैं आप लोग बताइए पहले। अरे भाई क्या बात है, सब सावन का आनंद ले रहे हैं। तो आज का ये कार्यक्रम उसी सावन के नाम हम करते हैं जिसका हम आनंद ले रहे हैं, या हमारे कुछ श्रोता लोग जिनके शहर में बरसात नहीं है वो कहीं ना कहीं परेशान भी हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं कि भाई सावन के इस महीने में हमारे श्रोता कैसे हैं, जरा बताएंगे। आप सभी जानते हैं ना कि सावन आते ही जैसे हवा का मिजाज बदल जाता है, यानी मिट्टी की भीनी भीनी खुशबू, पेड़ों की हरियाली, रिमझिम बारिश की बूंदें और ठंडी ठंडी हवाएं मन को सुकून से भर देती हैं। और हम सभी कहते हैं कि भाई ये जो मौसम है खास तौर से सिर्फ प्रकृति को ही नहीं हमारे दिलों को भी हरा भरा कर देता है ना। आप भी महसूस करते हैं ना ये सब। तो चलिए आज सुरीला सफर में हम सावन की बूंदों का एहसास करेंगे। और सबसे बड़ी बात कि बताइएगा इस सुरीला सफर में आज हमारे साथ चलने के लिए आप लोग तैयार हैं भी कि नहीं। भाई देखिए सावन का महीना है, बरसात का मौसम है, हो सकता है कहीं कहीं हमें गर्मी का ऐसा महसूस हो, गर्मी महसूस हो, तो हमें परेशान नहीं होना है। सब मिलकर इस हरियाली का, इस सावन का, इस उल्लास का, इस प्रेम का, इस मिलन का, इस प्रकृति का आनंद लेते हैं, ठीक है। तो आज की इबारत आप सभी ने पढ़ ली है, जो फेसबुक श्रोता हैं हमारे, फेसबुक से जुड़े हैं उन्होंने पढ़ ली है, लेकिन जो फेसबुक फ्रेंड नहीं है हमारे उनको हम बता दें आज हमने आपके लिए इबारत रची है ये लिखकर कि आदरणीय श्रोताओं, संगीत प्रेमियों और सम्मानित हमारे नए श्रोताओं, आप सभी का हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन है। भारत की ऋतुओं में यदि किसी ऋतु का सबसे अधिक इंतजार किया जाता है तो वो है सावन। हाँ, और ये केवल वर्षा का मौसम नहीं बल्कि हरियाली का, उल्लास का, प्रेम का, मिलन का, विरह का और प्रकृति की आराधना का, शिव की आराधना का उत्सव माना जाता है। जब धरती पर वर्षा की बूंदें गिरती हैं तो मानो प्रकृति स्वयं गीत गाने लगती है। झूले पड़ते हैं, पपीहा पुकारता है, मोर नाच उठते हैं और मन, हमारा मन गीत संगीत से भर जाता है। बस इन्हीं भावों को हमारे फिल्मी संगीत ने अनगिनत मधुर गीतों में अमर कर दिया है। तो आज का ये संगीतमय कार्यक्रम उन्हीं सदाबहार गीतों को समर्पित है जिन्होंने सावन की हर अनुभूति को सुरों में पिरोया है। ये थी हमारी आज की इबारत, और इस इबारत को पढ़ने के बाद हमारे श्रोताओं ने इतनी खूबसूरत इबारत अपने अपने शब्दों में हमारे सामने रखी है जिसे हम पढ़ेंगे इस गीत के बाद। आयो रे, आयो रे। महेंद्र कपूर और साथी, फिल्म का नाम बंधन, इंदिवर की रचना, कल्याण जी आनंद जी की धुन। तो सावन में भीगा जाए, सुरीला सफर शुरू हो गया है। सावधान।

जी हाँ, सावन आ गया है और ये गीत तो महेंद्र कपूर और साथियों ने फिल्म बंधन के लिए गाया था। इंदिवर के बोल थे और कल्याण जी आनंद जी की धुन। भाई सावन आ गया है और हम इससे बेखबर कैसे हो सकते हैं? देखिए ना, हमारे श्रोता भी कितने सावन की बौछारों से भीग गए हैं। कुछ श्रोता तो लिख रहे हैं कि हालांकि उनके शहर में अभी बरसात नहीं हुई है, बारिश नहीं हुई है, लेकिन फिर भी वो कार्यक्रमों के जरिए महसूस करेंगे कि सावन की कुछ फुहारें उनके भीतर महसूस हो। तो एक श्रोता ने लिखा है कि आज गद्यांश में फिर एक बार सावन के भीगे मौसम की बात है तो गानों से जरूर तरबतर हो जाएंगे। सावन केवल एक ऋतु नहीं बल्कि धरती और आकाश के मिलन का महाउत्सव। ये चातक की प्रतीक्षा, कृषक की आशा और विरहियों की व्याकुलता का सघन मेघ है। जब ग्रीष्म की तपन से झुलसी वसुधा पर स्वाति की बूंदें गिरती हैं, तब मिट्टी से सौंधी महक उठती है। ये महक प्रकृति के नव श्रृंगार की पहली घोषणा है, इसलिए ये हृदय का राग है, मिलन का स्पंदन है, मानवीय भावनाओं के चरमोत्कर्ष का काल है और सावन एक शाश्वत अनुभूति है। बहुत सुंदर भाव आपने अपनी इबारत में भेजा है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि सावन के इस महीने में सुरीले सफर की खूबसूरत इबारत का, सावन केवल एक ऋतु नहीं बल्कि हमारे मन का सबसे कोमल एहसास है। सावन की फुहारों में प्रेम का संदेश है, झूलों की पींगों में बचपन की हंसी है, मोर के नृत्य में प्रकृति का उल्लास है और पपीहे की पुकार में विरह की मधुर टीस भी है। फिल्मी गीतों में भी सावन कभी मिलन का बहाना बनकर आया तो कभी बिछड़ने वालों की आंखों में बरसता रहा। सुनेंगे इस संगीत में सावन में सुरीले सफर में उन सदाबहार गीतों को जिन्होंने बरसात की हर बूंद को सुरों का मोती बना दिया। बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि रोज शाम आती थी मगर ऐसी न थी, रोज इबारत आती थी मगर ऐसी न थी। चेतक पक्षी को जैसे सावन की एक बूंद का इंतजार रहता है, हमें भी सुरीला सफर की बागडोर कौन संभाल रहा है उस पोस्ट का इंतजार रहता है। क्या बात है, सावन आए और विविध भारती पर इससे जुड़े गीत न बजे ऐसा संभव ही नहीं। सावन केवल एक ऋतु नहीं, आशा, विश्वास, मिलन, विरह और प्रतीक्षा का प्रतीक है। हमारे लिए सावन आए न आए, जिया जब झूमे सावन है। बहुत सुंदर लिखा है आपने। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आपकी आवाज, मेरी आवाज सुरीला सफर को और सुरीला बना देती है। क्या बात है, सावन सिर्फ बारिश की बूंद नहीं लाता बल्कि मन में एक नई ताजगी भर देता है। जब सूखी धरती पर पहली बूंद पड़ती है तो सौंधी महक से हर कोना महक उठता है। पेड़ पर पड़े झूले, बादलों की गड़गड़ाहट और हरी भरी पत्तियां सब मिलकर जीवन में नए रंग भर देते हैं। आपने भी कुछ गीत चुने हैं जिनका जिक्र आपने किया है, तो देखना यह है कि आज जो गीत हम आपके लिए लेकर आए हैं क्या आपके गीत से मिलते हैं वो गीत। तो जब सुरीला सफर पर निकल ही चुके हैं, सावन आ ही गया है, तो चलिए फिर क्या करते हैं, झूला झूलते हैं। बताइए आपके आसपास कहीं झूला टंगा है किसी पेड़ की टहनी पर या घर में? बताइएगा क्या आपने झूला झूला इन दिनों? फटाफट लिखिएगा अपना एहसास, कितनी ऊंची पींगे बढ़ाई आपने ये भी बताइएगा।

लता मंगेशकर, आशा भोंसले और साथियों को अभी आपने सुना। फिल्म का नाम था बहू बेगम। इसे साहिर लुधियानवी ने लिखा था और धुन रोशन की थी। हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि धमाकेदार शुरुआत से लगता है आज सावन में ही भादो आ जाएगा। क्या बात है, यानी आप भी आनंदित हो रहे हैं और सावन में भीग गए हैं, है ना। और एक श्रोता लिखते हैं कि आज गीत बहुत ही प्यारे होने वाले हैं क्योंकि सावन जो आ गया है विविध भारती के आंगन में। भाई, आपके आंगन में भी तो सावन आ गया है और सब श्रोता मिलकर मंदाकिनी जी के साथ मस्ती से आनंद लेने वाले हैं। बिल्कुल। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि बंधन फिल्म के महेंद्र कपूर जी की ये जो आवाज थी शानदार गाने से सावन की शुरुआत सुरीला सफर कार्यक्रम में हुई, इसके लिए बहुत बहुत आभार। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि पहली बार ये गीत सुनने को मिला है, सुरीला सफर में बज रहा है या बहुत लंबे से समय के बाद इस गीत को बजाया गया है, धन्यवाद देती हैं आप। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज सुरीला सफर की सुरीली यात्रा अत्यंत सुखदायी लग रही है क्योंकि आज की विशेष कड़ी आपके द्वारा सावन में वर्षा की ठंडी ठंडी फुहार जैसे कर्णप्रिय गीतों से सजाई गई है। भाई, जब सावन का मौका है और सुरीला सफर है, हम और आप साथ हैं, मिलकर इस यात्रा पर निकले हैं, तो यकीनन जो सफर है वो सुरीला होना लाजिमी है, है ना। हमारे श्रोता ने लिखा है कि सावन का महीना आकाश का मन हुआ कि चलो धरती से मिले, हाथ बढ़ाकर उसके स्पर्श की पावन अनुभूति का आनंद मैं भी लूं, अपने लंबे लंबे हाथ पानी की धार के रूप में फैलाएं और अंततः स्पर्श कर ही लिया, बस फिर क्या था, माँ तो माँ ही होती है। खुश हो हरा भरा श्रृंगार करके, अच्छा श्रृंगार करके झूमने गाने लगी और तब से वे दोनों हर साल मिलते हैं और इस मिलन के उत्सव को उनके साथ हम सभी झूम झूम कर मनाते हैं। बहुत सुंदर इबारत आपने लिखी है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज बारिश रूपी झड़ी लगने वाली है, गीतों की बूंदों के रस में डूबे हुए स्नेहिल मंदाकिनी जी और सभी श्रोता बंधुओं को नमस्कार करता हूं। ये सच है कि ऋतु में सावन खूब भाता है, बचपना हो युवा हो या 50 से ऊपर बारिश में भीगने का अपना आनंद होता है। हाँ, पर मन के भाव हर उम्र में अलग अलग हो सकते हैं, पर बारिश रिमझिम गिरे सावन सुलग सुलग जाए मन भीगे, आज इस मौसम में लगी कैसी अगन, बहुत अच्छे लगते हैं गीत सुनना। बिल्कुल आपने सही कहा, चाहे बचपना हो चाहे युवावस्था हो या 50 के पार का हमारा मन हो, ये जो बारिश है, ये जो सावन है, ये जो मौसम है, हमें हर उम्र में उतना ही उल्लासित रखता है जितना हम हर वक्त रहते हैं। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम किसी भी मौसम को किन अर्थों में लेते हैं। अच्छा, तो हमने आपसे पूछा था कि झूले पड़ गए हैं, आपके घर आंगन में भी झूले लग गए होंगे, किसी पेड़ की शाखा पर झूले टंग गए होंगे, क्या आपने झूले झूले हैं? अभी ढूंढते हैं आपके जवाब क्या आए। ये बताइएगा कि आपके शहर में सावन बरसा के नहीं, फटाफट बताइए। तो आप बताएंगे कि आपके शहर में बरसात हुई कि नहीं, हुई तो कितनी हुई, कब से हुई और आपने सावन का जो ये आनंद है लिया या नहीं। ये आपका मन सूखा रेगिस्तान है, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि सुरीला सफर में आज हमारी कोशिश यही है कि हम भीग जाएं तन मन से। यह आवाज लता मंगेशकर की, फिल्म का नाम आशीर्वाद, गुलजार साहब के बोल, वसंत देसाई की धुन।

0: लता मंगेशकर की आवाज थी और फिल्म का नाम था आशीर्वाद। हमारे श्रोता ने लिखा है कि कहा जाता है कि सावन मास में ही समुद्र मंथन हुआ था। इस मंथन से सबसे पहले हलाहल विष निकला, जो ये दर्शाता है कि हर अच्छे काम की शुरुआत में मुश्किलें और नकारात्मकता आती ही हैं। भगवान शिव द्वारा इस विष को अपने गले में रोकना ये सिखाता है कि समाज की भलाई के लिए कभी कभी कड़वी बातें भी सहनी पड़ती हैं। जो इंसान अपमान और आलोचना को झेल कर भी शांत रहता है, वही असल में महान बनता है। बहुत सुंदर। हमारे श्रोता ने हमारे एक सवाल का जवाब दिया है। हमने पूछा कि क्या आपके शहर में बरसा है पानी सावन बरसा के नहीं। एक श्रोता लिखते हैं कि हमारे यहाँ गुजरात में अभी सावन नहीं आया, उत्तर पूर्व भारत में गए सोमवार के आसपास सावन शुरू हो गया है, पर पश्चिम में सावन महीना देर से आता है। इन्होंने लिखा है, अरे आपने हमारा नाम बदल दिया, मीनाक्षी जी। बड़ा सुंदर नाम रख दिया आपने हमारा। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि सावन हमारे तीन तहसील में बारिश नहीं हुई है, देवभूमि द्वारका, पोरबंदर और जामनगर में बारिश नहीं हुई। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि हमारे भोपाल और आसपास के क्षेत्र में पानी नहीं बरस रहा है, बहुत चिंता हो रही है। बाकी गर्मी तो कम है, मौसम बहुत सुहावना है, चारों ओर हरियाली, तालाब, जंगल से घिरा हुआ शहर है हमारा। अगर अच्छा पानी गिरता है तो शिमला मसूरी का मजा आता है। क्या बात है, हम बिल्कुल गुजारिश करते हैं भगवान से, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी के शहर में पानी बरसे। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि पिछले महीने से मैं बारिश की गीत सुनकर थक गई थी, पर हमारे शहर में बारिश नहीं हो रही है, पर पिछले सोमवार से हमारे शहर में रिमझिम सावन बरस रहा है। आज भी सुबह से एकदम बिल्कुल फुहार हो रही है और बहुत बढ़िया हरियाला मौसम हो रहा है, तो अच्छा लग रहा है ना आपको। आप लिखती हैं कि भाई विविध भारती स्टूडियो में भी सावन आ गया है। बिल्कुल, यहाँ तो सावन आ गया है स्टूडियो में, और सुरीला सफर में भी तो हम निकल पड़े हैं ना, जहाँ सावन की बौछारें हमें भीगो रही हैं। भीगे हैं ना आप, बताइए मुझे भीगे हैं कि नहीं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि सावन ने आज तो मुझको भिगो दिया है, क्या बात है। एक श्रोता लिखते हैं कि कहा जाता है कि सावन मास में ही अच्छाई, तो हमने आपका विचार पढ़ दिया था, चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और अब सुनते हैं सलिल चौधरी का संगीत, शैलेंद्र के बोल, लता मंगेशकर, मन्ना डे और साथियों की आवाजें। फिल्म का नाम है 2 बीघा जमीन। अच्छा बताइएगा, हमारे श्रोता ने कहा आपके दो सवालों का क्या हुआ। नहीं नहीं, आज हम खूब सारी बातें करने वाले हैं, खूब सारे सवाल आपसे करने वाले हैं, सीधे साधे प्यारे से, जिनका जवाब आप इस सफर में चलते चलाते दे देंगे, है ना। बताइएगा आपके लिए सावन का सबसे रूमानी एहसास क्या है, बारिश, ठंडी हवा, चाय या किसी अपने का साथ।
1: जग जग जग जग जग जग गिन गिन रे।
0: हमारे बहुत सारे श्रोता खेत खलियान में बैठकर ये कार्यक्रम सुन रहे होंगे, बताइएगा कैसा लग रहा है आपको।

हमारे श्रोता लगातार हमें लिख रहे हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि हम आपसे थोड़े से नाराज हैं, आप आजकल बहुत दिनों बाद आती हैं। वैसे तो हमने सोचा आज हम सुरीला सफर नहीं सुनेंगे क्योंकि कुछ ऐसे काम है जो हम नहीं कर पा रहे, उसे करना बहुत जरूरी था, पर अब लगता है कि आपको हम सुनेंगे और जब सावन की बातें हैं तो हम क्या करें, समझ ही नहीं आ रहा है। फिर दिल ने धीरे से कहा, हो जाओ शामिल, देखो ना सबने कितने प्यारे प्यारे संदेश भेजे हैं, तुम भी लगी हो इन सब में, बस फिर क्या था हम लिखने लगे, बहुत सुंदर। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का कि आप इस तरह से इतना काम होते हुए भी हमारे कार्यक्रमों से जुड़े रहते हैं और हमारे साथ इस सुरीले सफर पर निकल पड़ते हैं। एक श्रोता ने कहा है कि यह सावन हर साल आता है मगर हर बार कुछ नया छोड़ जाता है, कभी भीगी मिट्टी की खुशबू में कोई पुरानी याद, कभी झूले की पींग में बचपन, कभी पपीहे की पुकार में किसी का इंतजार, पेड़ों पर उतरती हरियाली जैसे धरती ने हरे रंग की चूड़ियां पहन ली हो और बादल आसमान की पेशानी पर ठहरी कोई खामोश दुआ बन गया हो। शायद इसलिए हमारे फिल्मी गीतों ने सावन को सिर्फ देखा नहीं, उसे जिया है। हर धुन में कहीं रिमझिम की बूंद है, कहीं मोर के पंखों की थिरकन, कहीं विरह की भीगी सांस तो कहीं मिलन की मुस्कान। सावन दरअसल मौसम नहीं, यादों का भीगा हुआ पन्ना है जिसे जिंदगी हर बरस फिर से खोलकर पढ़ती है। बहुत सुंदर, बहुत गहरी इबारत आपने लिखी है। और वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि भारत ऋतुओं की विविधता का देश है लेकिन जो आत्मीयता, रसमयता और भावुकता सावन के महीने में छिपी है वो अद्वितीय है। सावन केवल वक्त का एक महीना नहीं है, ये भारतीय जनमानस के लिए प्रेम, विरह, हरियाली और आस्था का एक जीवंत उत्सव है। सावन आते ही प्रकृति अपना सबसे सुंदर रूप धारण कर लेती है। सावन रस का महीना है, चाहे वो पानी का रस हो, संगीत का रस हो, प्रेम का रस हो या फिर भक्ति का रस हो। बहुत सुंदर। एक श्रोता लिखते हैं कि सावन का महीना उल्लास, उमंग, खुशी और प्रकृति को भी खुशनुमा बना देता है। मोर नाचने लगते हैं, कोयल की कूक गूंजने लगती है, पानी की बूंदें धरी पर पड़ती है, सारा वातावरण खुशनुमा हो जाता है और हरियाला सावन ढोल बजाता आता है। सावन का महीना और इस तरह से हम सावन के महीने को जीते हैं। तो हमारे श्रोता लगातार लिख रहे हैं लेकिन सवालों का जवाब भेज रहे हैं कि नहीं। भाई आज तो बिल्कुल सीधे साधे सवाल आपसे किए जा रहे हैं ताकि सुरीला सफर में कहीं रुक के हमें दिमाग पर ज्यादा जोर न देना पड़े कि आज जो हमने पूछा उसका जवाब क्या हो सकता है। तो हमने आपसे सीधा साधा सवाल किया था कि आपके शहर में सावन बरसा या नहीं, आपने इसका जवाब दिया है। और हमने आपसे ये भी पूछा था कि आपके आस पड़ोस में, आपके घर खेत खलिहान में या आपके आसपास झूले लगे कि नहीं, आपने झूला कि नहीं, इसका जवाब शायद अभी तक नहीं मिला है। वहीं अब हम इस सुरीला सफर में आपसे जानना चाह रहे थे कि आपके लिए सावन का सबसे रूमानी एहसास क्या है, मतलब सावन बरसता है तो बारिश का मजा लेते हैं, ठंडी हवाओं का, या अदरक की चाय का, या किसी अपने के साथ उस सावन का मजा लिया जाता है, या कई लोग चाय की टपरी की ओर भी चले जाते हैं जहां हमें कुल्हड़ की चाय मिलती है। याद है आपको वो समय जब आप चाय की टपरी पर जाकर कुल्हड़ की चाय पिया करते थे? याद करिए उन दिनों को और लिख भेजिए कम से कम शब्दों में ये अपनी बात जो आपने अपनी जिंदगी में महसूस की है। यह आवाजें लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की, फिल्म का नाम है कौन है अपना, बीडी मिश्रा का लिखा गीत है और एस एन त्रिपाठी का संगीत है। बहुत कम बजता है गीत।

हमारे श्रोता ने लिखा है कि सावन मास का आगमन हर दिल में एक नई उमंग जगाता है, इसलिए सभी को इसका बेसब्री से इंतजार रहता है। स्वयं भगवान शिव को भी ये महीना अत्यधिक प्रिय है, क्योंकि इस समय प्रकृति का कण कण उनकी कृपा से जीवंत हो उठता है। इस पावन मास में बेटियां अपने मायके लौटती हैं, घर आंगन में झूले सजते हैं, सावन के मेले लगते हैं और चारों ओर मखमली हरियाली छा जाती है। ऐसा लगता है मानो प्रकृति ने स्वयं को खुशियों के हरे रंग से सराबोर कर लिया है। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि भारतीय लोक जीवन में सावन का बहुत बड़ा सांस्कृतिक महत्व है। सावन केवल बाहरी वातावरण को ही शीतल नहीं करता, बल्कि इंसान के भीतर छिपी संवेदनाओं को भी जगा देता है। कवियों और साहित्यकारों ने सावन पर अनगिनत रचनाएं लिखी। फिल्मी गीतों से लेकर शास्त्रीय संगीत के राग मेघ मल्हार तक सावन हर कलाकार की प्रेरणा रहा है। बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आपके द्वारा साझा किए गए शब्दों में सावन की भावना जीवंत हो उठी है। सचमुच ये बहुत अच्छा अनुभव होगा, ऐसा हम समझते हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि सावन का महीना आ गया, जीना नहीं आता था लेकिन सावन का महीना आया। बहुत सारे गीतों का जिक्र आपने किया है। और श्रोता लिखते हैं कि अदरक की चाय के साथ किसी अपने का साथ हो तो सावन का मजा दोगुना हो जाता है। आपने पूछा था कि आप सावन को किस तरह से बिता रहे हैं, उसका जवाब दिया है इन्होंने कि आपके लिए सावन का सबसे रूमानी एहसास क्या है। आपने लिखा है कि अदरक की चाय के साथ किसी अपने का साथ हो तो सावन का मजा दोगुना हो जाता है। मेरे शहर में सावन की झड़ी लगी हुई है और मौसम काफी रूमानी हो गया है, क्या बात है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि हमारी पुणे शहर में आषाढ़ की घनघोर बरसात के साथ अब सावन वाली धूप बारिश की आंख मिचोली दिखाई दे रही है। हरी भरी प्रसन्न सृष्टि के साथ हमारा तन मन भी प्रफुल्लित हो गया है। बहुत सुंदर। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि अब तो बालपन वाले झूले कहाँ मिलते हैं मंदाकिनी जी, जो पेड़ों पर लगे रहते थे अब तो पार्क में झूले होते हैं। अच्छा आज भी जब आप गाँवों में जाते हैं ना तो वहां पर आपको पेड़ों पर झूले टंगे हुए मिलेंगे, है ना। गाँवों में ढाणियों में जाकर देखिए, वहां खेतों में खलिहानों में पेड़ों के आसपास झूले लगते हैं और छोटे छोटे बच्चे और स्त्रियां घूंघट अपने में वो अपनी पूरे पारंपरिक पोशाक में होती हैं मतलब, और झूला झूलती भी आपको मिल सकती हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि चलिए आज का सुरीला सफर तो आपने सावन के नाम कर दिया है, सुन रहे हैं हम भी आपके साथ हैं। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि सावन का महीना भारतीय जनमानस के प्राणों में बसता है। तपती गर्मी से व्याकुल धरती जब वर्षा की पहली फुहार से तृप्त होती है तो चारों ओर मिट्टी की सौंधी महक फैल जाती है। ये समय केवल ऋतु परिवर्तन का नहीं बल्कि प्रकृति के पुनर्जन्म का उत्सव है। पहाड़ों से लेकर मैदानों तक हर तरफ मखमली हरी चादर बिछ जाती है। बागों में सखियों के खिलखिलाते चेहरों के साथ पेड़ों पर झूले सजते हैं और आकाश में काले बादलों को देख पपीहे की तान और मोरों का नृत्य तेज हो जाता है। सावन का हर दिन लोकगीतों, त्योहारों और महादेव की भक्ति के रंग में डूबा रहता है, जो मानवीय संवेदनाओं, विरह और मिलन के भावों को जीवंत कर देता है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज ये सुरीला सफर आपके साथ हम चल रहे हैं और सावन के गीतों का आनंद लेंगे। सावन का महीना ऐसा महीना होता है जहां देखो हरियाली हरियाली होती है। इस महीने में अपने आप ही मन खुश रहता है और उस सफर पर हम और हमारी कैप्टन मंदाकिनी जी हमारे साथ होंगी। नहीं भाई, हम सब मिलकर, हम सभी मित्रगण जो हैं जिन्हें हम कहते हैं कि हमारे दोस्त, सब मिलकर इस सुरीला सफर का आनंद आज उठा रहे हैं और आप इस सुरीला सफर में हमारे साथ हैं, ये बहुत खुशी की बात है।

जी, तो जब बात चल रही है सावन की, तो जब बादल खुलकर बरसते हैं तो कैसा लगता है? तो ऐसा लगता है जैसे प्रकृति खुद आनंद की वर्षा कर रही है, है ना? और कभी कभी सावन की इस भीड़ में मन अकेला भी तो हो जाता है, पर हम तो सुरीला सफर के इस मौके पर निकल पड़े हैं। हमारे अंदर कहीं अकेलापन नहीं हो रहा है, लेकिन हाँ, जो लोग अकेलापन महसूस कर रहे हैं, अपने अनकहे दर्द को कहना चाहते हैं, हम उनसे यही कहेंगे कि सुरीला सफर की इस यात्रा में हमारे साथ आ जाइए और अपनी तन्हाई को दूर करिए इस गीत के साथ।

उषा खन्ना का संगीत था और गौहर कानपुरी की रचना, आवाज मोहम्मद रफी की थी। फिल्म का नाम था दो खिलाड़ी। लगता है हमारे श्रोताओं को जो है पकौड़े, गर्मा गर्म पकौड़े और अदरक वाली चाय बहुत पसंद है। इसीलिए तो हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने कहा है हमारे सवाल के जवाब में कि आपके लिए सावन का सबसे रुमानी एहसास क्या है। आप लिखते हैं कि गर्मा गर्म पकौड़े और चाय। चलिए हम पढ़ते हैं आपके इन जज्बातों को। आप लिखते हैं, पहली बूंदों को अदरक वाली चाय, गर्म पकौड़े और सुरीले सावन गीतों के सुनते हुए अपने मनमीत के साथ मजा लेना ही बढ़िया एहसास लगता है। क्या खूब। एक श्रोता ने लिखा है कि आज बहुत कम सुनाई देने वाले धुर सावन गीत आ रहे हैं, धन्यवाद। वहीं एक श्रोता ने कहा है, हमें तो सावन में बारिश हो रही हो तब गर्मा गर्म पकौड़े खाने का मजा आता है। एक श्रोता लिखते हैं कि सावन माह में हल्की रिमझिम वर्षा के साथ गर्मा गर्म चाय और पकौड़ों का आनंद लेते हुए झूले पर, अच्छा टेरेस पर डाले गए झूलों पर बैठना अधिक सुहाता है। बिल्कुल। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि सावन का महीना, झूले भी खेतों में पड़े हैं और शिव जी पर नियमित प्रातः जलाभिषेक सब पत्नी हम कर रहे हैं। सारे माह बेटियों बहुओं ने व्रत रखने का संकल्प लिया है। एक समय भोजन करेंगे, शिव नाम का जाप होगा और अभिषेक होगा। बहुत खूब। वहीं श्रोता लिखते हैं कि सावन का महीना, झूले भी पड़े हैं और व्रत भी किया है। एक श्रोता ने लिखा है कि चाय और पकौड़े को तो सावन की जान माना जाता है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि सावन की शुरुआत ने हमारे यहाँ बारिश का आनंद देना शुरू कर दिया। हम घर बैठे बारिश के साथ रेडियो पर आपके प्रोग्राम का आनंद ले रहे हैं और झांसी में 15 दिन बाद पानी बरसा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार और क्या कहना चाहिए, बधाई ये आपके शहर में पानी बरसा। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मैंने सावन का आनंद हमेशा ही लिया है। बचपन में कागज की नाव बनाकर तैराना, कॉलेज के दिनों में भीगते हुए सावन का आनंद लेना और रेडियो पर सावन के गीतों का मजा लेना। सर्विस पीरियड में अवकाश के दिन अपनी पत्नी के साथ खिड़की के फुहारों और हरियाली का आनंद लेना। अब सेवानिवृत्त होने के बाद अदरक, काली मिर्च और इलायची की शुद्ध दूध की चाय और गर्मा गर्म प्याज के पकौड़ों का, आहा, हमारा भी मन कर गया है। मजा अपनी पत्नी के साथ लेता हूँ। अरे वाह, क्या बात है। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि हमारे यहाँ तो जब भी बारिश होती है तो पतिदेव पकौड़े की फरमाइश करते हैं और फिर हम दोनों बारिश का मजा लेते हुए साथ साथ पकौड़े का भी मजा लेते हैं। बहुत सुंदर, यही तो जीवन है। एक श्रोता लिखते हैं कि सावन महीने की बरसात की फुहार, चाय की प्याली और पकौड़े के स्वाद कुछ अलग ही होता है। एक श्रोता ने लिखा है कि सावन की बारिश में चाय और पकौड़ों की जुगलबंदी इस रूमानी एहसास को दोगुना कर देती है। गर्मा गर्म पकौड़े, कटती हुई ठंडक और बारिश की रिमझिम के बीच प्याज, आलू और मिर्च के करारे पकौड़ों की बाइट, मन को तृप्त कर देती है। इलायची अदरक वाली चाय पकौड़ों के साथ खौलती हुई अदरक इलायची की चाय की चुस्की रूह तक सुकून पहुंचाती है। मौसम का असली मजा खिड़की के पास बैठकर बारिश को देखते हुए चाय पकौड़े का आनंद लेना है और सावन का सबसे खास और ये सुखद पल बन जाता है। भाई, आपके चाय और पकौड़े की बात पढ़ते पढ़ते, आपकी फीलिंग्स को महसूस करते करते हमारी भी इच्छा हो गई है कि एक गर्मा गर्म चाय और कुछ गर्मा गर्म पकौड़ियां खाई जाए। अच्छा, तो हमने एक सवाल पूछना चाहा भी था आपसे कि क्या कभी आपने बारिश में कागज की नाव बनाई। हाँ, बचपन में तो जरूर बनाई होगी। हमारे एक श्रोता ने अभी जवाब भी दिया कि उन्होंने बरसात में खास तौर से कागज की नाव को तैराया है। कितना मजा आता था ना घर आंगन में, जब हम जो नाली है उसमें एक कपड़ा ठूंस देते थे ताकि पानी बाहर न जाए और कागज की नाव उस पे चलाए करते थे और हमें लगता था कि हमने जैसे असल में नाव बना ली और हम उस पर तैर रहे हैं। अच्छा, बताइएगा कि सावन का नाम सुनते ही आपके दिल में सबसे पहली कौन सी याद ताजा हो जाती है। कम से कम शब्दों में बताना है और हम आपके लिए लेकर आए हैं कार्यक्रम का ये अगला प्यारा सा गीत।

हमारी एक श्रोता लिखती हैं कि मेरे लिए सावन की रिमझिम फुहारें, खिड़की पर आती ठंडी हवा की लपटें। अरे आपने तो एक अलग ही शब्द इस्तेमाल कर लिया, हाथों में अदरक इलायची वाली कड़क चाय का गर्म कप और बैकग्राउंड में बजते हुए सदाबहार रुमानी गाने, ये किसी जन्नत के एहसास से कम नहीं लगते हैं। जी बिल्कुल सही कहा, और जब कोई संगीत प्रेमी इस तरह की कल्पना करता है या इस रोमानियत से जीता है तो उसकी जिंदगी क्या कहने। मैं एक श्रोता लिखते हैं कि हमारे नागपुर वाले अपार्टमेंट के टेरेस पर मैंने झूला रखा है और शाम को उस पर बैठकर झूलते हुए हरियाली देखता हूं और ठंडी हवा का आनंद उठाता हूं, बहुत सुंदर। एक श्रोता लिखते हैं कि सावन में दोस्ती यारों के साथ चाय की दुकान पर मिलाप बढ़ जाता है और वार्तालाप और हंसी मजाक से समय बिताना कुछ अलग ही मजा देता है। बिल्कुल। एक श्रोता ने कहा है कि सुबह से दीदी बनारस में बारिश हो रही है, मेरा फेवरेट आनंद लेने की जगह वही होती है बारिश में, बस कुल्हड़ वाली सौंधी सौंधी खुशबूदार चाय पीता हूँ। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि हमारे शहर में बारिश काफी कम हुई है, अभी तो बिल्कुल भी नहीं हुई है। एक श्रोता कहते हैं कि फिलहाल तो हमारे जबलपुर में बारिश नहीं हो रही है, गर्मी तपन भी है, ना ही ऐसा कोई बारिश के आसार नजर आ रहे हैं, सिर्फ विविध भारती का सहारा है जो हमें ठंडी ठंडी फुहार वाले गीत सुना रहा है, जब बारिश होगी तो पकौड़े और अदरक वाली चाय मिलेगी। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि सावन के महीने में अपनी व्यस्तता बढ़ जाती है क्योंकि भोले भंडारी को खुश भी करना है, घर के ही मंदिर में शिव जी को जलाभिषेक करना, बेलपत्र और फूलों से पूजा करना दैनिक गतिविधियों का अनिवार्य हिस्सा बन जाता है, साथ ही सोमवार को फलाहार वाला व्रत रखकर तन और मन को डिटॉक्स भी करना होता है, हाथों को हरी चूड़ियों और मेहंदी से सजाना भी सावन के महीने की विशेषता है, उस पर से बारिश की ठंडी फुहारें आसपास के वातावरण को और खुशनुमा बना देती है, बहुत सुंदर। एक श्रोता ने लिखा है कि सावन के शानदार गीत, आज तो मैं और मेरा प्यार भरा नमस्कार आपको, शानदार सुरीला सफर का कार्यक्रम, बारिश और भी तेज हो रही है मेरे शहर में, क्या बात है। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि सभी को सावन का मौसम दुख और सुख दोनों का मिलन है, पहले सावन में मायके जाते थे, झूला झूलते थे, सखियों से मिलते थे, अब वो सब नहीं हो पाता है, सब कुछ ऑनलाइन हो जाता है। मुझे याद है जब मेरी शादी हुई थी तो मेरे हस्बैंड को छुट्टी नहीं मिली, मैंने उनको सिर्फ इस गाने की दो लाइनें लिखी थी कि तेरी दो टकिया दी नौकरी, मेरा लाखों का सावन जाए रे, क्या बात है। बस फिर क्या था, उनको पता चला और उन्होंने छुट्टी दे दी और मेरा ये सावन का अनुभव हर साल सावन में याद आता है, वाह। अब तो ना मायके से कोई आता है ना ही कोई बुलाता है, पुरानी यादों को याद करके ये सावन बीत जाता है। यही जिंदगी है ना, जिंदगी में हर पल एक से नहीं होते हैं, कभी खुशी कभी गम होते हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि सावन की पहली फुहार में आज काशी नगरी भीग गई है, मौसम बहुत सुहावना हो गया है, जहां बारिश अभी तक नहीं पहुंची थी वहां भी सावन की वर्षा पहुंच चुकी है। बाबा विश्वनाथ जी के से प्रार्थना करती हूँ कि अभी सावन की सुंदर छटा चलती रहे। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि अरे आपने तो मंदाकिनी शब्द के अलग अलग अक्षरों का अर्थ लिख दिया है, बहुत लंबा खत आपने लिखा है, बहुत लंबा संदेश, चलिए फिर कभी इसको पढ़ेंगे। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज के इबारत को पढ़कर मालूम हुआ कि सावन के महीने की क्या विशेषता है और सावन के ऊपर आज मधुर और कर्णप्रिय गीत सुनने को मिलने वाले हैं, तो हम इसके लिए आपके साथ सुरीला सफर में चलने को तैयार है। भाई अब तो हम अंतिम सोपान तक पहुंच चुके हैं, तो चलिए सुनते हैं प्रीति सागर की आवाज में, इनका साथ दे रहे हैं भूपेंद्र, फिल्म का नाम है भूमिका।

हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि जो काम इंसान यूं ही नहीं करता वो काम बारिश करवा देती है। भवन की सफाई, पेड़ पौधों को साफ करना, पीने का पानी, पशुओं के चारे की व्यवस्था, ये बरसात ही तो करती है। बहुत सुंदर। एक श्रोता लिखते हैं कि कटक उड़ीसा में सावन आया, आकर भिगो भी गया, बारिश हुई, ऊपर छत्तीसगढ़ में बहुत बारिश हुई, हीराकुंड डैम से पानी भी निष्कासित हो रहा है, नदी नाले पानी से भरे हुए हैं। बहुत दिनों के बाद बारिश आई, लेकिन खुशी के साथ दुख भी दिया, कई जिलों में बाढ़ आने से बहुत ज्यादा लोगों को नुकसान हुआ है। बिल्कुल सही कहा आपने, जब हम ऐसे प्रकृति को देखते हैं तो बड़ा दुख होता है कि हमारे ही लोग इस अतिवृष्टि से कितने परेशान हैं, और जानमाल को जब नुकसान होता है तो वाकई मन रो पड़ता है। जी, अब तो मिलने मिलाने का वक्त खत्म हो गया है, और अब आपको हमें यानी मंदाकिनी जोशी को इजाजत देनी होगी कार्यक्रम सुरीला सफर से। तो हम लेते हैं आपसे इजाजत। नमस्कार।

हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत। पहला गीत हमने लिया है जख्म फिल्म से, आवाज अलका याग्निक की। आनंद बख्शी के लिखे गीत की धुन बनाई है MM क्रीम ने।

और अब सुनिए अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाजों में सोल्जर फिल्म का ये नगमा। समीर के लिखे गीत की धुन बनाई है अनु मलिक ने।

0: इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। 2:10 होने को है, थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार होंगे।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं शेख महजबी अलमाज। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज राज्यसभा में बताया कि देश के विभिन्न हिस्सों में ड्राइविंग प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि सरकार 300 ऐसे संस्थानों को अनुमति दे चुकी है। श्री गडकरी ने कहा कि देश में लगभग 22 लाख चालकों की कमी है। उन्होंने कहा कि चालकों को सही प्रशिक्षण दिया जाए ताकि वे अपनी लेन में वाहन चलाएं और यातायात नियमों का पालन करें। वहीं राज्यसभा की कार्यवाही में विपक्ष के हंगामे के कारण व्यवधान आया। विपक्ष नीट परीक्षा को लेकर विद्यार्थियों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की मांग कर रहा है। ब्रिक्स सांस्कृतिक सम्मेलन 2026 की शुरुआत आज राजधानी भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में हुई। सम्मेलन में आधिकारिक बैठकों और कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। पहले दिन प्रतिनिधियों का पंजीकरण और द्विपक्षीय बैठकें शामिल हैं। 4 दिवसीय ब्रिक्स सांस्कृतिक सम्मेलन में ब्रिक्स देशों के संस्कृति मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी, कलाकार और प्रतिनिधि मंडल हिस्सा लेंगे। विदेशी मेहमानों के स्वागत के लिए शहर को विशेष रूप से सजाया गया है और प्रमुख मार्गों का सौंदर्यीकरण तेजी से किया गया है। इस वर्ष सम्मेलन का विषय सर्वे भविंतु सुखिना रखा गया है, जो भारतीय सनातन संस्कृति की समरसता, शांति और वैश्विक कल्याण की भावना को दर्शाता है। सम्मेलन के दौरान भोपाल के रविंद्र भवन में शाम 5 से 7 बजे तक भव्य सांस्कृतिक प्रस्तुतियां होंगी, जिसमें ब्रिक्स देशों के कलाकार हिस्सा लेंगे। आम जनता के लिए इसमें प्रवेश मुफ्त रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 7 वर्ष पहले अनुच्छेद 370 और 35A को निरस्त किए जाने के बाद से जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों के जीवन में व्यापक बदलाव आया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि दोनों केंद्र शासित प्रदेशों में बुनियादी ढांचे का विस्तार हुआ है और शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, उद्यमिता और खेल जैसे क्षेत्रों में अवसर बढ़े हैं। उन्होंने कहा कि संविधान पूरी तरह लागू होने से महिलाओं, वंचित समुदाय और उन लोगों को उनके अधिकार मिले हैं जो दशकों तक अपने बुनियादी संवैधानिक अधिकारों से वंचित थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज का दिन इसलिए भी विशेष है क्योंकि देश इस वर्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती मना रहा है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय एकता के प्रति डॉक्टर मुखर्जी का आजीवन समर्पण पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज भोपाल के कमला नेहरू सांदीपनी कन्या शासकीय विद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में शिक्षकों और विद्यार्थियों के साथ संवाद किया। इस दौरान मुख्यमंत्री छात्रों के सवालों के जवाब भी दिए, उन्हें शिक्षा के महत्व के बारे में बताया।
2: मैं अगर कोई कार्यक्रम में गया हूँ तो उस कार्यक्रम के सब्जेक्ट को डाल करके उसमें आज की दशा में हमको क्या बोलना चाहिए, क्या रखना चाहिए। लेकिन एक जानकारी बता देता हूँ, ये ChatGPT हो, ग्रोक्स हो, बाकी ये जो आज हमको बता रहे हैं, इनके लिए भी वो आखिरी नहीं है। अभी वो बहुत सारे मामलों में फिर जब हमको बताते हैं कि आपने गलत बताया तो सॉरी करके वो संशोधन करते हैं। इसलिए AI का उपयोग करना चाहिए, लेकिन AI का उपयोग दिमाग खोल के भी करना है।
1: मेरा युवा भारत के तत्वावधान में प्रदेश भर में नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत अभियान के तहत विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। आगरमालवा स्थित शासकीय सांदीपनी विद्यालय में आयोजित जिला स्तरीय स्पर्धाओं में गायन, चित्रकला, नुक्कड़ नाटक, वाद विवाद और शॉर्ट फिल्म जैसी गतिविधियों का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के विभिन्न स्कूलों व कॉलेजों के 250 से अधिक विद्यार्थियों ने भाग लिया। इस दौरान छात्रों ने स्वयं जीवन भर नशे से दूर रहने और अपने परिवार, मित्रों व समाज को जागरूक करने का संकल्प लिया। वहीं धार जिले में इसी थीम पर आयोजित प्रतियोगिताओं के माध्यम से युवाओं को नशा मुक्ति का संदेश दिया गया। दक्षिण कोरिया के आसन में कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में ईशरानी बरुआ, तन्वी शर्मा और श्रेयांशी वलीशेट्टी ने महिला सिंगल्स के दूसरे दौर में प्रवेश कर लिया है। एक अन्य मुकाबले में महिला बैडमिंटन खिलाड़ी मालविका बंसोड़ और आकर्षि कश्यप आमने सामने होंगी। और अब मौसम। प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान चंबल, रीवा, शहडोल संभागों में अधिकांश जिलों में बारिश दर्ज की गई। वहीं ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, सागर संभागों के जिलों में कहीं कहीं बारिश हुई। मौसम केंद्र भोपाल के अनुसार प्रदेश में नया सिस्टम बनने से आज और कल प्रदेश के अधिकांश जिलों में बारिश होगी। अब कुछ समाचार संक्षेप में। शिवपुरी जिले की पिछौर तहसील अवैध रूप से चल रही आराम मशीनों के खिलाफ वन विभाग ने छापेमारी की। जबलपुर कलेक्टर ने सीएम हेल्पलाइन शिकायतों के निराकरण में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर प्रशासन ने सख्त कार्यवाही की चेतावनी दी है। नर्मदापुरम जिले के इटारसी के कृषि उपज मंडी में आज बलराम कृषि महोत्सव आयोजित किया जा रहा है। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन शाम 7:10 पर। नमस्कार।
3: नमस्कार। आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, 7 वर्ष पहले अनुच्छेद 370 निरस्त किए जाने के बाद से जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों के जीवन में व्यापक बदलाव आया है। रिजर्व बैंक का इस वित्त वर्ष में जीडीपी वृद्धि दर 6.7% रहने का अनुमान। कहा, मजबूत मांग के कारण आर्थिक वृद्धि बनी हुई है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, युवा प्रदर्शनकारियों के साथ अधिकारियों को संयम बरतना चाहिए। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में अनियमितताओं के खिलाफ छात्रों का विरोध प्रदर्शन तेज। असम और मेघालय में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और भारत की शरानी बरुआ, तन्वी शर्मा और श्रियांशी वेलिशेट्टी कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंची। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 7 वर्ष पहले अनुच्छेद 370 और 35 ए को निरस्त किए जाने के बाद से जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों के जीवन में व्यापक बदलाव आया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि दोनों केंद्र शासित प्रदेशों में बुनियादी ढांचे का विस्तार हुआ है और शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, उद्यमिता और खेल जैसे क्षेत्रों में अवसर भी बढ़े हैं। उन्होंने कहा कि संविधान पूरी तरह लागू होने से महिलाओं, वंचित समुदाय सहित उन लोगों को अधिकार मिले हैं जो दशकों तक अपने संवैधानिक अधिकारों से वंचित थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज का दिन इसीलिए भी विशेष है क्योंकि

0: कि देश इस वर्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती मना रहा है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय एकता के प्रति डॉक्टर मुखर्जी का आजीवन समर्पण पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा। श्री मोदी ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी की परिकल्पना 5 अगस्त 2019 को ऐतिहासिक रूप से साकार हुई। जम्मू कश्मीर भाजपा अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद सतपाल शर्मा ने अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने को जम्मू कश्मीर के पूर्ण एकीकरण और विकास की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया। संसद परिसर में आकाशवाणी समाचार से बातचीत में उन्होंने दावा किया कि अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के बाद पिछले 7 वर्षों में जम्मू कश्मीर में महत्वपूर्ण प्रगति देखी गई है।
1: आज के दिन 2019 में 370 को निरस्त किया गया और हम सब जानते हैं कि जिस ऊंचाइयों की तरफ आज जम्मू कश्मीर अग्रसर है वो अपने आप में दर्शाता है कि 370 हमारे ऊपर एक कलंक था वो हट गया है। हमारी मातृशक्ति जिसकी शादी हमारे प्रदेश के बाहर होती थी उनका हक जो था वो छिन जाता था, उनके प्रॉपर्टी राइट्स जो थे वो चले जाते थे। वाल्मीकि समाज के लोग, गोरखा समाज के लोग 370 हटने के बाद उनको उनका हक मिला है।
0: भाजपा सांसद दिनेश शर्मा ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि क्षेत्र में राष्ट्रवाद की भावना और मजबूत हुई है और अब शासन राजनीतिक परिवारों के बजाय जनता द्वारा संचालित है। भारतीय जनता पार्टी ने अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने को एक ऐतिहासिक दिन बताया है। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि संविधान की भावना के अनुरूप ही इस संवैधानिक प्रावधान को निरस्त किया गया था।
2: अनुच्छेद 370 को उखाड़ के फेंक दिया गया था जो कि हमारे संविधान में लिखा था, ऑनरिंग द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आर्टिकल 370 वॉज एब्रोगेटेड। आर्टिकल 370 स्टार्टेड विद द वर्ड टेम्पररी बट नोबडी हैड द विल टू एब्रोगेट इट।
0: अनुच्छेद 370 हटाए जाने के 7 साल बाद जम्मू कश्मीर में तेजी से विकास कार्य हो रहे हैं। सड़क, रेल और अन्य बुनियादी ढांचे का विस्तार हुआ है, संपर्क व्यवस्था बेहतर हुई है, सरकारी सेवाएं मजबूत हुई हैं और पर्यटन, निवेश तथा सुरक्षा की स्थिति में भी सुधार आया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रदेश में इससे लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आए हैं।
3: अनुच्छेद 370 निरस्त होने के बाद जम्मू कश्मीर में बुनियादी ढांचे में तेजी से विकास हुआ है। नई सुरंगें और सड़कों के चौड़ीकरण से जुड़ी परियोजनाओं से जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग को विकसित किया गया है। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक, जिसमें चिनाब और अंजीखड रेल पुल शामिल है, के पूरा होने से कश्मीर घाटी तक रेल संपर्क सुनिश्चित हुआ है। जेड मोड टनल ने सोनमर्ग तक हर मौसम में पहुँच सुनिश्चित की है, जबकि जोजिला सुरंग का काम पूरा होने वाला है और ये नैतिक रूप से महत्वपूर्ण श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर हर मौसम में पहुंच प्रदान करेगी। वर्ष 2024 में यहां आने वाले पर्यटकों की संख्या 2,35,00,000 से अधिक रही, जिसमें 65,000 से अधिक विदेशी पर्यटक शामिल थे। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 2019 से केंद्र शासित प्रदेश में लगभग 18,000 करोड़ का निवेश हुआ है। 2,200 से अधिक औद्योगिक इकाइयां स्थापित की गई हैं और 26 नए औद्योगिक ढांचे विकसित किए गए हैं। 41,000 से अधिक सरकारी नौकरियां दी गई हैं और लगभग 9,81,000 स्वरोजगार के अवसर भी सृजित हुए हैं। इन वर्षों में सुरक्षा की स्थिति में भी काफी सुधार देखने को मिला है। श्रीनगर से इशफाक शाह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने चालू वित्त वर्ष में देश की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर 6.7% कर दिया है। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने आज मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए बताया कि रेपो दर को 5.25% पर यथावत रखा गया है।
4: After a detailed assessment of the evolving
3: परिवर्तनशील आर्थिक परिस्थितियों और भविष्य के अनुमानों के विस्तार से समीक्षा करने के बाद मौद्रिक नीति समिति ने रेपो रेट 5.25 पर ही बरकरार रखने का निर्णय लिया है।
0: रेपो दर वो ब्याज दर है जिस पर RBI सरकारी प्रतिभूतियों के बदले वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालिक ऋण देता है। श्री मल्होत्रा ने कहा कि मजबूत मांग के कारण देश में आर्थिक वृद्धि बनी हुई है और भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई बड़ी अर्थव्यवस्था बना हुआ है। उन्होंने कहा कि चालू वित्त वर्ष की अप्रैल जून तिमाही में अर्थव्यवस्था का प्रदर्शन अपेक्षा से बेहतर रहा। बैंक ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित महंगाई का अनुमान 5.1% से घटाकर 5% कर दिया है। श्री मल्होत्रा ने कहा कि हाल में महंगाई बढ़ने का मुख्य कारण खाद्य और ईंधन की कीमतों में वृद्धि रही।
4: हेडलाइन इन्फ्लेशन हैज एज्ड अप।
3: उम्मीद के मुताबिक मुद्रास्फीति आधार से थोड़ी ऊपर चली गई है, हालांकि पहले तिमाही में वास्तविक महंगाई दर अनुमान से थोड़ी कम रही। इससे पता चलता है कि लागत का दबाव कीमतों पर पूरी तरह से नहीं पड़ा है। महंगाई बढ़ने की मुख्य वजह ईंधन और खाद्य वस्तुएं हैं। अब तक कीमतों के दबाव के हर तरफ फैलने के कोई खास संकेत नहीं मिले हैं। कीमती धातुओं को छोड़कर महंगाई दर पहले के अनुमान के मुताबिक ही नियंत्रण में है।
4: As projected earlier.
0: उन्होंने कहा कि पहली तिमाही में बेहतर आर्थिक प्रदर्शन को देखते हुए आरबीआई ने वर्ष 2026-27 के लिए वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि का अनुमान बढ़ाकर 6.7% कर दिया है।
4: रियल जीडीपी ग्रोथ फॉर दिस ईयर,
3: मौजूदा वर्ष के लिए वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में बढ़ोतरी का अनुमान अब 6.7% है। ये हमारे पिछले अनुमानों से 10 आधार अंक अधिक है। पहली तिमाही में 7%, दूसरी तिमाही में 6.4%, तीसरी तिमाही में 6.5% और चौथी तिमाही में 6.8%।
4: Q4 at 6.8%।
0: श्री मल्होत्रा ने कहा कि पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष से प्रमुख व्यापारिक मार्ग प्रभावित हो रहे हैं, जिससे वैश्विक अर्थव्यवस्था पर दबाव बना हुआ है। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा है कि यदि सब कुछ तय कार्यक्रम के अनुसार रहा तो अगले वित्त वर्ष की शुरुआत में प्लास्टिक के नोट चलन में आ जाएंगे। मुंबई में संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने कहा कि प्लास्टिक के नोट अधिक टिकाऊ होते हैं। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, नीट मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई समेत विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित हुई। सुबह 11 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया। श्री बिरला ने सभी सदस्यों से प्रश्नकाल के सुचारू संचालन में सहयोग करने का आग्रह किया।
5: संसद चर्चा संवाद के लिए, आपके विचारों की अभिव्यक्ति के लिए प्रश्नकाल में महत्वपूर्ण प्रश्न पूछो, कई विभागों के महत्वपूर्ण प्रश्न है, और आप नियोजित तरीके से पोस्टरबाजी करकर प्रदर्शन करकर सदन की गरिमा को घटाना चाहते हैं।
0: सदन की कार्यवाही फिलहाल अभी जारी है। राज्यसभा में पहले स्थगन के बाद सभापति सीपी राधाकृष्णन ने प्रश्नकाल शुरू किया। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि देश के विभिन्न हिस्सों में ड्राइविंग प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किए जाएंगे। सरकार 300 ऐसे संस्थानों को अनुमति दे चुकी है। श्री गडकरी ने यह भी कहा कि देश में लगभग 22 लाख चालकों की कमी है। हरियाणा से भाजपा सांसद संजय भाटिया ने हरियाणा को भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। झारखंड में रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के खिलाफ छात्रों का विरोध प्रदर्शन जोर पकड़ रहा है। आंदोलनकारी छात्रों ने आगामी मॉनसून सत्र के दौरान अपनी मांगों को मनवाने के लिए झारखंड विधानसभा का घेराव करने की योजना की घोषणा की। हमारी संवाददाता ने बताया है कि विद्यार्थियों ने संदिग्ध परीक्षाओं को रद्द करने की मांग की है।
6: राजधानी रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में आंदोलन कर रहे छात्रों ने कल से शुरू हो रहे मॉनसून सत्र के दौरान विधानसभा घेराव का ऐलान किया है। छात्रों का कहना है कि उन्हें किसी का इस्तीफा नहीं बल्कि संदिग्ध परीक्षाओं को रद्द कर राज्य के बाहर से हाई कोर्ट के रिटायर्ड जजों से न्यायिक जांच चाहिए। छात्रों ने सीआईडी जांच को नाकाफी बताया है। छात्रों के विधानसभा घेराव के ऐलान के बाद सीआईडी की कार्रवाई और तेज हो गई है। सीआईडी ने इस मामले में 3 और लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि युवा छात्र प्रदर्शनकारियों को लेकर प्रतिक्रिया देते समय अधिकारियों को संयम बरतना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि हिंसा को रोकने के लिए किसी भी प्रकार के हिंसक प्रतिक्रिया से स्थिति और बिगड़ जाएगी। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कांग्रेस जनता पार्टी के खिलाफ कार्रवाई की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए ये टिप्पणी की। याचिका में दिल्ली और देश के अन्य हिस्सों में कांग्रेस जनता पार्टी के नेतृत्व में हुए प्रदर्शनों के दौरान हुई हिंसा, जिसमें पत्थरबाजी के आरोप भी शामिल हैं, लिए पार्टी की कथित जिम्मेदारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। लोकसभा ने आज बैंकर्स बुक्स एविडेंस विधेयक 2026 पारित कर दिया है। आज केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने यह विधेयक सदन में पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य बैंकों के रिकॉर्ड से जुड़े साक्ष्यों के कानून को मौजूदा डिजिटल बैंकिंग व्यवस्था के अनुरूप बनाना है। इसके जरिए बैंकिंग प्रणाली की वर्तमान जरूरतों के अनुसार कानूनी ढांचे को आधुनिक बनाया जाएगा। विधेयक में यह भी प्रावधान है कि बैंकों के रिकॉर्ड की इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल प्रति को अदालत में वैध और कानूनी साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जा सकेगा। लोकसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। झारखंड में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल और झारखंड पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाकर सरायकेला खरसावा से प्रतिबंधित भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी संगठन के 3 कुख्यात नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। महानिरीक्षक अभियान नरेंद्र कुमार सिंह ने इसकी पुष्टि की है। उत्तरी कर्नाटक के यादगीर जिले के कडेचूर बडियाल औद्योगिक क्षेत्र में आज सुबह रासायनिक रिसाव के कारण 3 श्रमिकों के दम घुटने से मौत हो गई। रिसाव के संपर्क में आए 2 श्रमिकों को रायचूर के अस्पताल में भर्ती कराया गया। भोपाल में तीसरे ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की तीसरी बैठक शुरू हो गई है। अनेक देशों के प्रतिनिधि 4 दिन के इस विचार विमर्श में भाग लेने के लिए भोपाल पहुंचे हैं। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में गिरावट देखी गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 107 अंक गिरकर 78,322 पर और निफ्टी 94 अंक फिसलकर 24,521 पर पहुंच गया। मौसम विभाग ने असम और मेघालय में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, बिहार, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की गई है। वहीं दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब और लद्दाख में अगले 2 दिन तक तेज बारिश की आशंका है। ओडिशा के बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्य तेजी से जारी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में इस बार मॉनसून में सामान्य से अधिक वर्षा हुई है।
7: उड़ीसा के बाढ़ प्रभावित जिलों में बड़ी नदियों का जलस्तर घटने के साथ ही राहत और बहाली का काम युद्ध स्तर पर जारी है। हीराकुद बांध के 5 और स्लुइस गेट बंद कर दिए गए हैं, जिससे बाढ़ का पानी छोड़ने वालों गेटों की संख्या घटकर 8 रह गई है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने मयूरभंज के लिए ऑरेंज वार्निंग जारी की गई है, जबकि आज 13 जिलों के लिए येलो वार्निंग लागू है। उड़ीसा में मौजूदा मानसून सीजन के दौरान सामान्य से 26% ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: और खेलों में भारत की ईशा रानी बरुआ, तन्वी शर्मा और श्रेयांशी वलिशेट्टी कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के अगले दौर में पहुंच गए हैं। वहीं पुरुष सिंगल्स में विश्व नंबर 1 किदांबी श्रीकांत, किरण जॉर्ज, रौनक चौहान, सानिध दयानंद और थारून मन्नेपल्ली आज खेलेंगे। राष्ट्रपति भवन ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को आधिकारिक कार्यक्रमों के दौरान मिले 300 चुनिंदा उपहारों की आज से ऑनलाइन नीलामी शुरू कर दी है। ये नीलामी ई उपहार पोर्टल पर की जा रही है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, 7 वर्ष पहले अनुच्छेद 370 निरस्त किए जाने के बाद से जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों के जीवन में व्यापक बदलाव आया है। रिजर्व बैंक का इस वित्त वर्ष में जीडीपी वृद्धि दर 6.7% रहने का अनुमान। कहा, मजबूत मांग के कारण आर्थिक वृद्धि बनी हुई है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, युवा प्रदर्शनकारियों के 7 अधिकारियों को संयम बरतना चाहिए। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में अनियमितताओं के खिलाफ छात्रों का विरोध प्रदर्शन तेज। असम और मेघालय में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और भारत की ईशा रानी बरुआ, तन्वी शर्मा और श्रेयांशी वलिशेट्टी कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंची। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
8: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा देश की।

लीजिए सुनिए कार्यक्रम सदाबहार नगमे। इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का एक बार फिर से स्वागत है। हम इस कार्यक्रम की शुरुआत में आपको सुनवा रहे हैं रवि का संगीत, साहिर लुधियानवी की बोल, मन्ना डे की आवाज, फिल्म का नाम वक्त।

0: क्यों करती हो, हम पे तुम भी मरती हो। बहाने क्यों करती हो, हम पे तुम भी मरती हो। अभी तो नया सांस है, आज हंसी तो कल भी हंसोगी।
1: किशोर कुमार की आवाज में आपने श्रीमान फंटूश का गीत सुना। गीतकार आनंद बख्शी थे और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल थे।
0: बहाने क्यों करती हो।
1: और ये स्वर है मोहम्मद रफी का, फिल्म का नाम है सहेली। गीत रचना इंदिवर की और धुन कल्याण जी आनंद जी की।

गुस्सा छोड़ो अभी से दिल ना तोड़ो, आज ये गुस्सा छोड़ो अभी से दिल ना तोड़ो, अभी तो नया आजाद है।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली गलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
3: तुम्हारी याद सताती है।
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: कार्यक्रम का अगला गीत लता मंगेशकर की आवाज में है। फिल्म का नाम है रिश्ते नाते। गीत रचना हसरत जयपुरी की है और धुन मदन मोहन की।

कार्यक्रम का अगला गीत आशा भोसले की आवाज में, फिल्म का नाम है दो बदन। शब्दकार शकील बदायूनी है और धुन रवि की है।

0: कॉमिक क्रिएटर है।
1: अगर अमेरिका भी देखें तो सुपरमैन की पहली किताब आई थी 1938 में, पहली फिल्म मेरे ख्याल से 70 के दशक के अंत में आई है।
0: और विविध भारती पर आ रहे हैं अपनी जिंदगी की कहानी सुनाने।
1: उन्होंने लोला कुट्टी करके एक कैरेक्टर क्रिएट किया, तो बहुत गाली दी उन्होंने मुझे। प्रोड्यूसर बनना चाहता है, डायरेक्टर बनना चाहता है, स्पॉट बॉय बनना चाहता है, फिल्म मेकर क्या होता है?
0: कॉमिक क्रिएटर और डायरेक्टर आलोक शर्मा होंगे आज के मेहमान।
1: जितने भी फिल्मी कलाकार थे उनके सबके इंटरव्यूज मैं करता था और उसके बाद उसमें आरजेस के वॉइसेस चिपका दी जाती थी।
0: 5 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: लता मंगेशकर की आवाज है, फिल्म का नाम है हिमालय की गोद में। इसे कमर जलालाबादी ने लिखा और धुन कल्याण जी आनंद जी ने दी।

0: एक आवाज जो आप सभी के जहन में ताजा है और जिससे जुड़ी हैं आपकी ढेर सारी रेडियो की यादें।
1: मैंने ये सोचा कि भारत में तो बहुत ज्यादा भावुक हैं लोग, करोड़ों की संख्या में सुन रहे हैं रेडियो से कान लगाए, तो मैंने तब अपनी आवाज में कंपन लाते हुए कहा था कि ये मैच अब कमजोर दिल के इंसानों के लिए नहीं रह गया है।
0: जाने माने क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोषी की जिंदगी की कहानी, मैटिनी शो 8 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आए हाय,
3: और ये है इस कार्यक्रम की आखिरी पेशकश, शंकर जयकिशन का संगीत, हसरत जयपुरी के बोल, आवाजी मोहम्मद रफी और शारदा की, फिल्म का नाम है गुमनाम।

0: सखी सहेली
1: सभी सखियों सहेलियों और सखाओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। सोनाली आपको भी नमस्कार और जरा माफ कीजिएगा।
2: ममता जी पहले तो आपको नमस्कार, सभी सखियों सहेलियों को श्रोताओं को सोनाली पाठक का सप्रेम नमस्कार। और मैं आपसे जानना चाहूंगी कि भाई माफी किस बात की?
1: बस यही तो मैं इंतजार कर रही थी कि आपने पूछा ही नहीं माफी किस बात की। बस माफी मांग ली, अब कुछ भी गलती हुई हो तो आप माफ कर दीजिए।
2: नहीं भाई ऐसे तो हो नहीं सकता कि आपने कुछ गलती की है, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके पीछे कुछ कारण है इसलिए आप बार बार ये कह रही हैं।
1: दरअसल ये जो बात है ना इसलिए कह रही हूँ, माफी मांग लेने में कोई बुराई नहीं है।
2: ये तो बहुत सही है
1: ना। अब चाहे कोई छोटा हो उम्र में चाहे बड़ा हो, अगर आपने कोई गलती की है या आपको ऐसा लगता है कि आपने गलती की है तो माफी मांग लेनी चाहिए, भले ही आपकी गलती ना हो। लेकिन इतनी विनम्रता भी ना हो कि आप कहीं ऐसी जगह पर हैं जहां पर आपको अनायास माफी मांगने का खामियाजा भुगतना पड़े, वो भी नहीं होना चाहिए। तो हम अपने श्रोताओं से आज ये जानना चाहते हैं किन मौकों पर उनको माफी मांगनी पड़ी, क्षमा करना पड़ा, और किन मौकों पर उन्होंने अपने छोटों को क्षमा दी और किन मौकों पर उन्होंने क्षमा किया, तो वो अपने अनुभव साझा करें हमारे श्रोता।
2: बहुत छोटा सा शब्द है पर उसका बहुत गहरा अर्थ है। तो हमारे श्रोता लिख कर भेजे, उन्होंने ये तो बहुत लिख कर भेजा है कि क्षमा कर देना चाहिए क्षमा नहीं करना चाहिए, पर आपके जीवन से जुड़े कुछ अगर अनुभव है तो वो हमसे साझा।
1: अच्छा तो आप बताइए आप किन मौकों पर क्षमा करती
2: हैं? मैं तो बहुत बार मांग लेती हूँ, क्षमा मांग लेती हूँ और क्षमा कर भी देती हूँ, तभी हम जिंदगी को ना बड़े आनंद से गुजार सकते हैं जिंदगी। अगर हम दिल में किसी के प्रति ऐसा गांठ रख के चले ना तो उसमें क्या होता है हमारा भी बहुत ज्यादा नुकसान होता है।
1: बिल्कुल सही कह रही है। और हम अपने घर में अपने बच्चों को तो रोजाना कुछ न कुछ किसी न किसी बात पे क्षमा करते हैं, अगर क्षमा नहीं करेंगे तो बच्चों के मन में गांठ पड़ जाएगी और वो फिर कैसे सीखेंगे। तो ये हम अपने श्रोताओं से यही कह रहे हैं कि अपने अनुभव हमें बताएं कि उन्होंने कोई ऐसी यादगार घटना भी हमें संक्षेप में बता सकते हैं विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर, और वो टिप्पणी हम श्रोताओं तक पहुंचाएंगे। और बताइए और किन
2: और साथ ही एक बहुत ही एक ऐसा मुद्दा है ममता जी जो हर घर घर में होता है, जो माता पिता की लड़ाई में बच्चों पर बुरा असर, यानी इस बात में भी ये है कि पति पत्नी ने भी एक दूसरे को क्षमा कर देना चाहिए समय समय पर, जब भी जरूरत पड़े सॉरी बोल दिया क्षमा मांग ली तो ये काम जो है बहुत अच्छी तरह सुलझ सकता है, क्योंकि माता पिता लड़ाई से बच्चों पर बहुत बुरा असर पड़ता है, उनका मानसिक जो है ना स्तर बहुत बहुत गिर जाता है, बहुत परेशान हो जाते हैं बच्चे,
1: उन पर
2: इस विषय पर भी
1: तनाव बहुत होता है
2: जी।
1: और अगर वो पढ़ाई कर रहे हैं बच्चे तो उनकी पढ़ाई पर असर होता है, सबसे ज्यादा उनकी शिक्षा बाधित होती है, क्योंकि वो माता पिता के झगड़ों को मन में कहीं उनके भीतर चलता रहता है, और माता पिता झगड़ के कई बार वो भूल भी जाते हैं, एक हो जाते हैं और कई बार अपने अपने गंतव्य को चले जाते हैं, जैसे दफ्तर में काम कर रहे हैं तो वो लोग अपने दफ्तर के कामकाज में व्यस्त हो जाते हैं, लेकिन बच्चे के कोमल मन पर उस झगड़े का बहुत गलत असर पड़ता है।
2: स्कूल में भी उनका मन नहीं लगेगा कि देखिए हमारे मम्मी पापा के बीच कैसी लड़ाई हो गई, अंदर ही अंदर वे परेशान रहते हैं। तो ऐसी परिस्थिति किसी भी बच्चे पर ना आए, इस तरह से क्या किया जाए, यानी कि जब भी ऐसे कुछ हो तो बंद कमरे में बातचीत करके सुलह कर देना चाहिए। इस विषय पर भी आप लिखिए कि आप ऐसा करते हैं या फिर आप बिल्कुल इन बातों से दूर रहते हैं।
1: और इसमें भी अपने अनुभव हमारे श्रोता साझा कर सकते हैं, और जो भी टिप्पणी अभी आएगी उन टिप्पणियों को हम उन तक पहुंचाएंगे। और क्षमा के बारे में हमने बता दिया, और साड़ियों का संसार बृहद है, बहुत विराट है
2: जी।
1: और तरह तरह की साड़ियां होती हैं और महिलाओं की तो खास शौक है पहनने की, लेकिन तोहफे में पाना भी महिलाओं को बड़ा अच्छा लगता है। साड़ी अगर आपने खरीदी तो ठीक है, लेकिन वही साड़ी अगर कोई आपके रिश्तेदार या कोई भाई बहन पिता और दोस्त मित्र पति दे दे खास मौके पर, तो वो जैसे लिख उठता है कि फला मौके पर फला ने ये साड़ी
2: दी थी। तो माहेश्वरी साड़ी जो मध्य प्रदेश की शान है उसके बारे में हम जानकारी देंगे, और हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने हमारे सखियों ने भी इस विषय पर अपने विचार व्यक्त करने शुरू कर दिए हैं, अपने मैसेजेस लिखना शुरू कर दिया है, और व्यंजन यानी हम शब्दों के माध्यम से तो चटनी बनाते ही हैं। अगर हम
1: और ये जो मौसम है ना, बारिश का मौसम, हाँ। इसमें जब भजिए पकौड़े बनते हैं तो उसके साथ चटनी जरूरी होती है,
2: हाँ।
1: और चटनी ऐसी चीज है कि चाहे पकौड़े के साथ खाइए या पराठे के साथ, पूरी के साथ, दाल चावल के साथ, हर चीज के साथ फिट हो जाती है।
2: वो खाने का जायका बढ़ा देती है
1: और गाना भी जायका बढ़ाता है हमारे प्रोग्राम का। सुनते हैं ये गाना।

0: हाँ तो सोनाली जी, हम बात कर रहे थे साड़ियों की और माहेश्वर साड़ी के बारे में हम बताने वाले थे अपनी सखियों को। भारत की हस्तकरघा परंपरा विश्वभर में अपनी उत्कृष्ट और कलात्मकता के लिए प्रसिद्ध है। इन्हीं अनुपम धरोहरों में माहेश्वरी साड़ी का बहुत बड़ा योगदान है और इसका स्थान भी है। मध्य प्रदेश के नर्मदा तट पर बसे महेश्वर नगर में निर्मित ये साड़ी अपनी हल्की बनावट, आकर्षक किनारे, मनमोहक पल्लू और राजसी गरिमा के लिए जानी जाती है।
1: और ममता जी, ये केवल एक परिधान नहीं है बल्कि भारतीय संस्कृति, परंपरा और बुनकरों की अद्भुत कला का जीवंत प्रतीक है। और माहेश्वरी साड़ी का इतिहास लगभग 250 वर्ष पुराना है। 18वीं शताब्दी में महारानी अहिल्याबाई होलकर ने अपनी राजधानी महेश्वर में ये स्थापित की थी। उन्होंने गुजरात, मालवा और दक्षिण भारत सहित विभिन्न क्षेत्रों से कुशल बुनकरों को महेश्वर बुलाकर उन्हें बसाया। उनके संरक्षण में ऐसी साड़ी तैयार की गई जो राज परिवार की गरिमा के अनुरूप होने के साथ साथ हल्की, सुंदर और उपयोगी भी थी।
0: बिल्कुल सही आप कह रही हैं। और तभी से माहेश्वरी साड़ी की परंपरा आगे बढ़ती रही। माहेश्वरी साड़ी हस्तकरघे पर बहुत सावधानी और धैर्य से बुनी जाती है। इसमें सूती और रेशमी धागों का सुंदर संयोजन भी किया जाता है। पहले धागों की रंगाई होती है, फिर उन्हें करघे पर चढ़ाकर पारंपरिक तकनीक से बुनाई की जाती है। एक उत्कृष्ट माहेश्वरी साड़ी तैयार करने में कई दिन और जटिल डिजाइन होने पर कई सप्ताह तक का भी समय लग जाता है।
1: और ममता जी, ये साड़ियां ना वजन में बहुत ज्यादा हल्की और पहनने में आरामदायक होती है। सूती और रेशमी धागों का संतुलित मिश्रण होता है। दोनों ओर से समान दिखाई देने वाले रिवर्सिबल बॉर्डर इसकी सबसे बड़ी पहचान है। और पल्लू पर सामान्यतः 5 समानांतर धारियां बनाई जाती है और गर्मियों में भी सहजता से पहनी जाती है। सादगी और शाही गरिमा का ये साड़ियां सुंदर मेल है।
0: और ये भी बता दें कि माहेश्वरी साड़ियों की डिजाइन महेश्वर किले, नर्मदा नदी की लहरों, मंदिरों की नक्काशी और प्रकृति से प्रेरित होते हैं। इनमें चटाई, लहरिया, हीरा, ईंट, चमेली, रूपमती, नर्मदा लहर वगैरह वगैरह पारंपरिक पैटर्न बहुत लोकप्रिय हैं।
1: और रंगों की अगर बात की जाए, रंगों में लाल, हरा, बैंगनी, नीला, काला, गुलाबी, सुनहरा, फिरोजी, मैरून, दोहरे रंगों का भी आकर्षक संयोजन देखने को मिलता है। और इसके कई सारे प्रकार हैं, जैसे नीम सिल्क, शुद्ध सिल्क, सूती माहेश्वरी, टिशू माहेश्वरी और कतान माहेश्वरी ये प्रसिद्ध है।
0: और चेक्स और स्ट्रिप डिजाइन वाली साड़ियां भी होती हैं। हर तरह की साड़ी का अपना एक अलग सौंदर्य है और उपयोग भी है। और महेश्वर के हजारों बुनकर पीढ़ी दर पीढ़ी इस कला को जीवित रखे हुए हैं। और सोनाली जी, एक बात और है कि इस जो साड़ी की ये परंपरा है, इससे कितने लोगों को रोजगार मुहैया होता है। जो बुनकर होते हैं अपनी कुशलता से जब साड़ी तैयार करते हैं तो उनकी आय का जरिया भी यही होता है। परिवार के सभी सदस्य मिलकर ये कार्य करते हैं और उनकी मेहनत, धैर्य और सृजनशीलता ही माहेश्वरी साड़ी की वास्तविक पहचान है। ये हस्तशिल्प न केवल स्थानीय लोगों को रोजगार मुहैया कराती बल्कि ये एक उद्योग के रूप में काम करती है। समाज और देश तक इसकी पहुंच है
1: जी। और माहेश्वरी साड़ी को भौगोलिक संकेत यानी GI टैग प्राप्त है, जिसका अर्थ है कि इस साड़ी की विशिष्ट पहचान और गुणवत्ता माहेश्वर क्षेत्र से जुड़ी हुई है। GI टैग नकली उत्पादों पर रोक लगाने, बुनकरों के अधिकारों की रक्षा करने और इस पारंपरिक कला को वैश्विक पहचान दिलाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और ये साड़ियां जो है देश ही नहीं विदेशों में बहुत लोकप्रिय है। विवाह, फिर धार्मिक समारोह, सांस्कृतिक कार्यक्रम, सरकारी आयोजन और औपचारिक अवसरों पर इसे विशेष पसंद किया जाता है। आधुनिक फैशन डिजाइनरों ने भी पारंपरिक डिजाइनों को नए रंगों और शैली के साथ प्रस्तुत कर इसकी लोकप्रियता को और भी बढ़ाया है।
0: माहेश्वरी साड़ी केवल रेशम और सूत का ताना बाना नहीं बल्कि नर्मदा की निर्मल धारा, महेश्वर के किले की भव्यता और बुनकरों के स्वप्नों से बुनी हुई भारतीय संस्कृति की अनुपम चादर है। इसे ओढ़ना, इसे पहनना मानो इतिहास, परंपरा और सौंदर्य को एक साथ आत्मसात करना है।
1: और माहेश्वरी साड़ी भारतीय हस्तकरघा परंपरा की एक अमूल्य धरोहर है। इसमें इतिहास की गरिमा, संस्कृति की सुगंध है और बुनकरों के श्रम का अनुपम सौंदर्य समाहित है। और ये साड़ी हमें अपनी सांस्कृतिक विरासत से जोड़ने के साथ साथ स्वदेशी हस्तशिल्प को प्रोत्साहित करने की प्रेरणा भी देती है।
0: और हम इस समय प्रेरणा पा रहे हैं ये गाना सुनवाने के लिए। सुनते हैं ये गाना, फिर और बातें करते हैं।

0: भाई सोनाली जी, एक बात बताइए कि लड़ाई झगड़े का असर तो मन पर होता है, पर आप बताइए कि जरा आप जब झगड़ कर आती हैं, झगड़ लेती हैं अपने पति देव से, तो उसका असर कितनी देर तक रहता है?
1: उसका असर तो बहुत देर तक रहता है ममता जी, और भूलने के सिवाय कोई चारा नहीं होता है। पर मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपके साथ कैसे होता
0: मैं तो
1: है?
0: झगड़ती ही नहीं.
1: ऐसा नहीं हो सकता
0: नहीं, बिल्कुल नहीं.
1: ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसे कोई पति पत्नी नहीं होते कि जिनके बीच लड़ाई नहीं होती।
0: हम तो पति पत्नी के बीच तो झगड़ते ही हैं सोनाली जी. हमने भाई बहनों में बहुत झगड़े किए हैं, और परिवार में कौन ऐसा है जिससे हमारा झगड़ा नहीं हुआ है. लेकिन वो झगड़ा ना बहुत क्षण के लिए होता है, और थोड़ी देर बाद झगड़ा बिल्कुल खत्म हो जाता है, भूल जाते हैं. फिर सोचते हैं कि झगड़ा किस बात पे हुआ था. जैसे जब दो बहनें हम झगड़ा करते थे, तो बाद में सोचते थे कि आखिर झगड़े का मुद्दा क्या था. घर वाले पूछते थे बात किस बात, झगड़ा किससे शुरू कैसे हुआ. कभी बैठने की जगह को लेकर कि हम यहाँ बैठेंगे, कभी सोने को लेकर कि यहाँ हम सोएंगे और इस बिस्तर पे तुम, तो पहले हम जाएंगे या पहले हम ये किताब पहले हम पढ़ेंगे, ये मैगजीन पहले हम पढ़ेंगे. इस पर हमारे भाई बहनों में ज्यादा झगड़ा हुआ. और तो और रेडियो सुनने के लिए कि कोई तेज आवाज में सुनना चाहता है, कोई धीमी
1: धीमी
0: आवाज
1: आवाज
0: में,
1: में।
0: तो उस पर बहुत जम के झगड़े हुए. तो ये जो छोटे छोटे झगड़े हैं ना, ये कभी कभी यादगार हो जाते हैं. ये प्रेमिल झगड़े हैं, स्नेहिल
1: ये
0: झगड़े.
1: नहीं, ये घर घर की कहानी होती है। पर भले ही झगड़े में मतभेद हो जाए, पर मनभेद नहीं होना चाहिए, है ना?
0: बिल्कुल बिल्कुल. तो लेकिन हमारे श्रोताओं ने बहुत सफाई से, प्यार से इस बात को छुपा लिया है, अपनी बात उजागर नहीं की. अब हमने
1: डर
0: तो
1: गए
0: बात
1: होंगे ना
0: की पत्नी से डांट खानी
1: हाँ,
0: पड़ेगी.
1: क्यों ना, आपने वहां लिख दिया, सबको पता चल गई घर की बात
0: तो हमने तो इसलिए बता दिया, और आपने भी बता दिया
1: हाँ,
0: कि हम तो झगड़ते हैं बाकायदा.
1: ये तो बहुत ही
0: तो
1: सामान्य सी बात है
0: हाँ,
1: झगड़ा होना।
0: लेकिन झगड़े का असर जब घर पर होता है, बच्चों पर पड़ता है, तब फिर आपको सचेत हो जाना चाहिए. वहां पर झगड़े पर अंकुश लगाना बहुत जरूरी है. हमारे एक श्रोता ने लिखा है, लड़ाई झगड़ों का प्रभाव तो सभी पर पड़ता है, फिर बच्चों का हृदय तो बहुत कोमल होता है. ऐसे माहौल में वे हमेशा डरे और असुरक्षित महसूस करते हैं. घरेलू तनाव के कारण बच्चे डिप्रेशन, अत्यधिक चिंता और अकेलेपन का शिकार हो जाते हैं. उनका मानसिक विकास रुक जाता है. ऐसे बच्चे बड़े होकर हिंसक और दूसरों के साथ चिड़चिड़ा व्यवहार करने लगते हैं, क्योंकि वे अपने भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाते.
1: एक हमारे साथी ने यह भी लिखा है ममता जी कि अभिभावकों की लड़ाई में बच्चों पर असर, मतभेद तो सभी परिवार में चलते ही रहते, लेकिन मन का भेद कभी नहीं होना चाहिए। 31 तारीख को मेरी सहेली के बेटे बहू ने तलाक लिया। नन्ही सी बेटी 4 साल की है, उसे माता पिता दोनों चाहिए। वीडियो कॉल करती है और पापा के पास जाने की जिद भी करती है। माता पिता तो अपने निजी कारण से अलग हो ही गए। सोचती हूँ कि अब उस बच्चे की जिंदगी में कितने उतार चढ़ाव आएंगे और वे उन सबको किस तरह लगी। इन्हीं बात कितनी, यानी कह लीजिए कि भावनात्मक रूप से वो बच्ची जो है थोड़ी सी परेशान भी होगी कि वो पापा के पास भी जाना चाहती है और मम्मी के पास भी रहना चाहती है।
0: बिल्कुल.
1: पर किसी कारणवश दो अलग अलग हो गए हैं, पर ये विचार करके ही हमें तकलीफ हो रही है, तो उस बच्ची पर क्या गुजर रही होगी ये हम सोच भी नहीं सकते।
0: बिल्कुल सही कह रही हैं आप, और ये हमारी जो श्रोता है इन्होंने बिल्कुल सटीक बात कही है. ऐसे अखबार में एक घटना हमने पढ़ी थी, जिसमें निचोड़ ये था उस घटना का कि पति पत्नी ने तलाक लिया और कोर्ट से बाहर आ रहे हैं पति पत्नी, और छोटी बच्ची है वो जिद कर रही है अपने माता पिता के पास जाने के लिए. पिता उसे रखने से इनकार कर रहे हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि इसका लालन पालन करने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास वक्त नहीं है, उसकी मेरी नौकरी है. और माँ ये कह रही है कि इसका भरण पोषण मैं कैसे करूंगी, क्योंकि अभी तक उसको गुजारा भत्ता नहीं मिला है, और वो कहां से इसकी पढ़ाई लिखाई का खर्च वहन करेगी. तो दोनों अलग अलग दिशाओं में खड़े हैं, और बच्ची जार जार आंसू रो रही है कि वो कहां जाए, उसे चाहिए मां का साथ, पिता का साथ. तो ये जो स्थिति होती है और दयनीय स्थिति है, ऐसी नौबत आने नहीं देना चाहिए. कई बार माता पिता के बीच जो टकराव होता है, अब हम सभी ये भी कहते हैं कि जब घर घर में तनाव ज्यादा हो जाए, लड़ाई झगड़े इस हद तक पहुंच जाए, तो अलग होना बेहतर होता है. लेकिन जब हम ये कहते हैं, तो ये नहीं सोचते कि इस अलगाव का आने वाली पीढ़ी पर क्या असर होने वाला है. बच्चा कैसे एडजस्ट करेगा, बच्चा किसके पास जाना चाहेगा, क्यों वो माँ के पास अकेले रहना चाहेगा, क्यों वो पिता के पास अकेले रहना चाहेगा. उसे तो दोनों चाहिए ना, उसे माता पिता का घर भी
1: का
0: चाहिए,
1: प्यार चाहिए,
0: प्यार भी चाहिए, और माता पिता के घर मतलब नानी का घर भी चाहिए, दादी का घर भी चाहिए. तो दोनों जब छूटते हैं, दो में से कोई भी छूटता है तो बच्चे के कोमल मन पर बहुत बुरा असर पड़ता है।
1: एक हमारे साथी ने लिखा है कि बाल मन बहुत कोमल होता है, माता पिता क्या किसी भी लड़ाई का असर उनके मन पर बहुत ज्यादा होता है। वहीं एक साथी लिखते हैं कि माता पिता के बीच होने वाले लगातार झगड़ों और मन मुटाव से बच्चों के कोमल मन पर बहुत गहरा और नकारात्मक असर पड़ता है। इससे बच्चों में असुरक्षा की भावना, मानसिक तनाव और पढ़ाई में एकाग्रता की कमी जैसी समस्याएं पैदा होने लगती है, मानसिक और भावनात्मक असर डालती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ बच्चों पर ही पड़ता है, माता पिता पर भी इसका असर पड़ता है। हमारे परिवार में ऐसा हुआ है। ये तो अच्छा है कि परिवार के लोगों को संभालने से बहुत कुछ अनहोनी नहीं हो सका, पर एक परिवार का टूटना तो दुखद ही रहा।
0: बिल्कुल सही है, और कभी भी टूटना या तोड़ना अच्छा नहीं होता है, तो चीजों को टूटने से बचाना चाहिए। चीजें भी टूटती हैं तो भी बुरा ही लगता है, लेकिन कई बार स्थिति बहुत बिगड़ जाती है, तब उस ऐसे में कुछ कहा नहीं जा सकता। जब नियमित लगातार घर में हिंसा होने लगती है, शारीरिक हिंसा और पटक फोड़ होने लगता है, बर्तन पटकना, ये सब जब स्थिति जरूरत से आगे बढ़ जाती है तब फिर ऐसे में अलगाव बेहतर होता है। लेकिन यहाँ एक चीज और है, अब जमाना बदल गया है, अब हमारे पास बहुत सारी व्यवस्थाएं इन चीजों की, लड़ाई झगड़ों के लिए काउंसलिंग होता है, पति पत्नी के अलग काउंसलिंग होती है और काउंसलर्स मतलब दोनों के बातों को सीक्रेट रखते हैं, और इस मामले में आपके पास सर्च करने के लिए जरिया है बहुत सारा, लोगों से पूछ सकते हैं, अखबार है, गूगल है, जहां से आप सर्च कर सकते हैं। तो झगड़ों को अवॉइड करें, चाहे उसके लिए आपको जो करना हो, काउंसलिंग करना हो, सलाह लेना हो, दोस्तों मित्रों या परिवार वालों से सलाह लेनी चाहिए, उनको बीच में लाना चाहिए ताकि आपके झगड़े कम हो, क्योंकि उसका असर निश्चित रूप से बच्चों पर पड़ता है। एक श्रोता लिख रहे हैं कि माता पिता का घर बच्चों के लिए दुनिया की सबसे सुरक्षित जगह होती है। जब इस सुरक्षित जगह पर ही लगातार तनाव और कलह बनी रहे तो बच्चे का मानसिक संतुलन बिगड़ने लगता है। वैज्ञानिक शोध भी बताते हैं कि जिन घर में रोज झगड़े होते हैं वहां के बच्चों में डिप्रेशन, एंजाइटी की संभावना बहुत ज्यादा होती है। अभिभावकों को यह समझना होगा कि बच्चों के सामने लड़ना उनके बचपन को छीनने जैसा है। यदि मतभेद हो भी तो उन्हें बच्चों के सामने लाकर बंद कमरे में शांति से सुलझाना चाहिए। और बच्चों की सिर्फ यही इतनी नहीं होती है खामियां, आगे चलकर बच्चे जिद्दी हो जाते हैं, एकांतवासी हो जाते हैं, बिल्कुल नहीं बोलते, अंतर्मुखी हो जाते हैं, या फिर जरूरत से ज्यादा हिंसक भी हो जाते हैं। और सोनाली जी, हम आपको बताएं कि एक कपल के बारे में उन्होंने हमें बताया कि उनके बीच झगड़े होते थे तो जब झगड़े शुरू हो तो कमरा बंद कर लेते थे और म्यूजिक चला देते थे, रेडियो या कोई भी गाना, ताकि झगड़ने की आवाज बाहर ना जाए, और फिर जम के झगड़ा करके फिर बाहर आते थे। तो ये भी एक तरीका है झगड़ने का,
1: यानी बच्चों को पता ही नहीं चला कि अंदर क्या हुआ, अंदर तो डांस कर रहे थे या गाना गा रहे थे मम्मी पापा। तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि क्या होता है ना, हम जो जैसा व्यवहार करते हैं बच्चे वैसे ही उसका अनुसरण करते हैं, तो हमारी कोशिश होना चाहिए कि बच्चों के सामने बिल्कुल भी लड़ाई झगड़े ना।
0: जब झगड़े की नौबत आए तो एक प्यारा सा गाना गुनगुना लेना चाहिए एक दूसरे के लिए, तो झगड़े टल तो जाते हैं। सुनते हैं ये गाना।

तेरा मेरा साथ रहे, हमारा और श्रोताओं का साथ बना रहेगा। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और फिर कुछ बातें और करते हैं इस संदर्भ में।

0: विविध भारती से यह कार्यक्रम सखी सहेली।
1: ममता जी, आपने कहा था ना कि रेडियो धीमा सुनना है या तेज आवाज में सुनना है, इस पर से आपके बीच में लड़ाई होती थी।
0: हमारी बहनों, दो बहनों की बहुत लड़ाई होती थी।
1: तो ऐसे ही इसी तरह का एक कमेंट हमारी सखी ने लिखा, ये कहते कि रेडियो तेज सुनना, इस पर हमारा आज भी झगड़ा होता है, पर वो तो मस्ती में फिर हम रेडियो लेकर दूसरी जगह चले जाते हैं और थोड़ी देर के लिए बात नहीं करते, फिर वही मस्ती वाली बातें। कितनी अच्छी बात है।
0: बिल्कुल। और ये भी होता था कि मतलब होता होगा हमारे श्रोताओं के बीच भी कि ये रेडियो तो तब उस समय एक ही रेडियो हुआ करता था।
1: हाँ।
0: अब तो छोटे छोटे ट्रांजिस्टर होते हैं जो कई कई सेट होते हैं घरों में, आप एक किचन में सुन लो, एक दूसरे कमरे में,
1: मोबाइल से भी सुनते हैं,
0: मोबाइल पे भी सुन लेते हैं, क्योंकि हमारे श्रोता बताते रहते हैं। हमारे तो एक श्रोता है जिन्होंने बताया था कि उनके पास 11 रेडियो सेट है और वो सब बड़े वाले रेडियो सेट। तो अभी शौक भी है, अगर रेडियो से इतना प्यार है तो लोग इस तरह से रेडियो रखते हैं। बहरहाल, बात लड़ाई झगड़े की चल रही थी और तकरार की चल रही थी, तो एक श्रोता ने लिखा है कि लेखिका शिवानी जी के उपन्यास में पढ़ी थी मैंने, गृहस्थी में लड़ाई झगड़ा होता है उतना ही हमारे प्यार की दीवार मजबूत होती है, मतलब जितनी लड़ाई हो उतनी दीवार मजबूत होती है, इसलिए पति से खूब लड़िए थोड़ी देर के लिए। वो कहते हैं ना कि मियां बीबी के झगड़ा दूध में पड़ी मलाई के समान होना चाहिए और मलाई तुरंत हट जानी चाहिए।
1: तो यानी लड़ाई झगड़ा तब होगा जब हम आपस में बातचीत करेंगे, हम अगर हम किसी से हेल्प लेंगे, हम किसी की मदद करेंगे तभी तो बातचीत करेंगे। यानी उस बातचीत के पीछे घर में जो है ना, पति पत्नी एक दूसरे की मदद भी करेंगे, तो फिर थोड़ी बहुत मनमुटाव होना बहुत स्वाभाविक सी बात है। पर ये मनमुटाव बहुत बड़ी लड़ाई में परिवर्तित ना हो जाए और इससे बच्चों पर बहुत बुरा असर ना पड़े, इस बात का हमें ख्याल रखना चाहिए। और एक साथी ने हमारे लिखा है कि लड़ाई किसी के भी बीच हो, चाहे वो बच्चे या अभिभावक हो या हमारे पड़ोसी हो, सभी पर बुरा असर पड़ता है। लगातार हो रहे झगड़े का मानसिक और भावनात्मक असर बच्चों पर ज्यादा पड़ता है, क्योंकि बच्चे मन के सच्चे जरूर होते हैं लेकिन ऐसे माहौल में मन के कच्चे बनने में जरा देर नहीं लगती। घर के माहौल को देख स्कूल में या बाहर किसी के साथ भी आक्रामक बनने की संभावना बढ़ जाती है, इसका सीधा असर उनकी पढ़ाई पर पड़ने लगता है, उनका ग्रेड कम होने की संभावना बढ़ जाती है। तो इस तरह से हमें ध्यान रखना चाहिए।
0: अब एक श्रोता ने लिखा है कि सबसे बड़ी बात, पति पत्नी को झगड़ना ही क्यों है। अब ये तो सवाल बहुत बड़ा है, क्यों झगड़ना है, मुद्दा क्या होता है,
1: जानबूझ के कोई लड़ता नहीं।
0: मुद्दे तो बहुत छोटे छोटे होते हैं, घरेलू झगड़े तो बहुत ही छोटे छोटी बातों पर, कि तुमने ऐसा कहा, नहीं नहीं मैंने ऐसा नहीं कहा था, अरे तुमने मुझे इस बात के लिए याद नहीं दिलाया, देखो ये तौलिया यहाँ पर रख दी, चादर गीली तौलिया रख दी,
1: सब्जी लाने के लिए बोला था तुमने एक ही तरह की सब्जियां लेके आ गए, सारी हरी वाली हरी पत्तेदार सब्जी लेके आ गए, अभी मुझे साफ करने के लिए टाइम नहीं है। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे मुद्दे होते हैं, लड़ने कोई
0: खास बड़ा कारण नहीं होता, बहुत छोटे कारण होते हैं जिससे लड़ाई झगड़े होते हैं, और पति पत्नी के बीच या फिर कई बार जब व्यक्तित्व में परिवर्तन होता है तो बड़े झगड़े भी होते हैं, तो दीवार खड़ी हो जाती है। मान लीजिए कई बार संबंधों की बात आती है, संबंधों में दरार जब पैदा होती है तो फिर उन झगड़ों को बचाना ही बेहतर होता है। और वो कहा भी जाता है ना कि बच्चों पर जो प्रभाव पड़ता है, बच्चे तो भावनात्मक रूप से इतने ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं कि कई बच्चों का स्वभाव बिल्कुल बदल जाता है और पढ़ाई ऐसी उनकी चौपट हो जाती है कि वो फिर आगे उनका करियर ही नहीं बन पाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए?
1: बस हमें सामंजस्य रखना चाहिए रिश्ते के बीच में, कि भाई बहुत ज्यादा उसे किसी भी चीज को ना बहुत अधिक हम महत्व देते हैं, कि वही बात, ताने मारना, बार बार आलोचना करना।
0: वैसे एक बात बताइए सोनाली जी, जब आपके पति पत्नी के बीच झगड़ा होता है तो आप क्या करती हैं, कैसे निपटारा करती हैं?
1: भाई मैं तो ऐसे करती हूँ, पैर में चप्पल पहनती हूँ, निकल जाती हूँ।
0: पति महोदय सुन रहे होंगे तो फिर मुझे लगता है कि ये भी एक तरीका है। और दूसरा तरीका ये है कि आप थोड़ी देर बाद एक दूसरे से जिसने जो भी सोचे कि हम समझौता कर ले, एक चाय का ऑफर, एक कॉफी का ऑफर, कुछ खाने के लिए, चाय पीनी है क्या,
1: मैं बना रहा हूँ तुम पियोगी क्या,
0: हाँ ये वाला, उसके बाद मुझे लगता है कि झगड़े खत्म हो जाते हैं। या कोई मीठी सी चीज रखी है घर में, तो मैं तो ये खाने जा रही हूँ या जा रहा हूँ, दोनों को करना चाहिए, तो आपको भी खाना है, या फिर चलो यहाँ हम घूमना चाहते हैं, चलना है क्या तुम्हें मॉर्निंग, मतलब सुबह की सैर के लिए, शाम को घूमने, या चलो पिक्चर देखने चलते हैं।
1: अरे बहुत सारे हैं उसके तो, बहुत सारे की साड़ी ला दी, गिफ्ट ला दी, चलिए ये साड़ी खरीदना चाहिए,
0: तुम्हारे लिए ले आए,
1: या फिर क्षमा कर देना सबसे जरूरी बात,
0: लेकिन वहां पर ईगो आ जाता है ना, बीच में जो अहम अहम नाम की दीवार है,
1: बहुत मोटी दीवार होती है
0: वो ऐसा करने नहीं देती है। चाय बनाने तो जा रहे हैं, मन कर रहा है कि पूछ लेते हैं, नहीं नहीं इसने तो मुझे बहुत बुरा बुरा बोला था, नहीं पूछते हैं, छोड़ो
1: हटाओ, आज तो पूछूंगा ही नहीं, आज तो मैं पूछूंगी ही नहीं, आज तो कुछ भी हो जाए मैं तो बात करने ही नहीं वाली।
0: तो सबसे जरूरी है ये जो अहम की दीवार है इसे तोड़ देना। और हमारे लिए इस समय क्या जरूरी है?
1: गाना सुनना।
0: सुनवाते हैं अपने श्रोताओं को।

0: माफ करिए सोनाली जी, जरा कमेंट्स जो पढ़ रही है ना, धीरे धीरे चुपके चुपके जरा जोर से पढ़ के सुनाइए।
1: एक हमारे सखी ने लिखा है कि भैया,
0: अरे मैंने आपसे माफी मांगी, आपने कुछ कहा ही नहीं।
1: ममता जी
0: ये होता है माफी का असर कि इतनी खिलखिलाहट खिल जाती है
1: और इतने प्यारे अंदाज में कोई बोलेगा ना तो
0: ये दिल आ जाता है। क्या लिखा है?
1: एक हमारे सखी ने कहा है कि जो है ना, ये क्षमा करने का, यानी ये कहने का कि भाई मैं चाय बनाऊं, कहने आपने जो बोला था तो इसमें ना मन में होता है कि ऐसा बोल दे कि चलो मैं चाय पर मन, वो जो दिल की बात है ना, जुबा तक ही नहीं आती है।
0: हाँ भाई, अहम की दीवार जो होती है ना, तो उस अहम की दीवार को तोड़ना है और जब वो टूट जाएगा तो ये आसान हो जाएगा। और मुझे लगता है कि आज हम लोगों की बातों से जितने झगड़े हुए होंगे सुलट के जाएंगे,
1: वो बिल्कुल सुलझने वाले हैं
0: शाम तक चाय के साथ।
1: कोई तो भी चाय बनाएगा, कोई पकोड़े बनाएगा, है ना।
0: हाँ बिल्कुल, और कोई चटनी भी बनाएगा। अभी चटनी की रेसिपी भी बता,
1: बहुत सारी रेसिपीज आई है हमारे, बहुत सारी सखियों ने अलग अलग तरह की रेसिपीज लिख कर भेजी जो हम सोच भी नहीं सकते कि इतनी अच्छी अच्छी चटनियां भी बन सकती है। शब्दों की चटनी बहुत बनी है आज।
0: लेकिन क्षमा के बारे में हमारे श्रोताओं ने जो लिखा वो भी हम एक एक करके पहुंचा देते हैं उन तक। एक हमारी सखी है जो नियमित रूप से लिखती है, इन्होंने लिखा है कि क्षमा के धरातल पर दो व्यक्तित्व उभरते हैं, एक आप और एक सामने वाला। अक्सर हम अपनी गलती स्वीकार नहीं करते, गलती दूसरे पक्ष की ही मानते हैं, इसलिए क्षमा नहीं करना चाहते। हो सकता है हमें भी समय-समय पर ग्लानि की अनुभूति होती हो, लेकिन हमारा अहंकार इस तथ्य को उजागर होने से रोक देता है। हमारे घाव हरे के हरे रहते हैं और इसका दर्द भी हम यदाकदा महसूस करते हैं। सामने वाला भी कभी कभी सोचता होगा कि हम क्षमा मांगे, ये द्वंद्व निरंतर चलता रहता है। क्षमा इस द्वंद्व का निराकरण कर देती है, रिश्ता बच जाता है और दोनों फिर से मित्र बन जाते हैं।
1: क्या बात है। एक हमारे साथी ने लिखा है ममता जी, क्षमा मांगने और क्षमा करने में दोनों में ही सुख है। कभी गलती हो भी जाए तो क्षमा याचना में अपनी नम्रता ही रहती है और रिश्ते मजबूत रहते हैं। उससे भी बढ़कर है क्षमा कर देना। कभी कभी क्षमा करने में ज्यादा जोर आता है, क्षमा मांगने से ज्यादा हिम्मत चाहिए क्षमा करने के लिए। पर यकीनन क्षमा करने में स्वयं को बहुत हल्कापन हो जाता है और बड़े भारी मानसिक बोझ से हम बरी हो जाते हैं। हमने इसको खुद आजमाया है। क्या बात है।
0: कई बार क्षमा मांगकर दुख भी होता है, अगर गलत बात के लिए क्षमा मांगनी पड़े, जैसे कई बार जबरदस्ती आपको माफी मांगनी पड़ जाती है
1: दबाव के खातिर,
0: दबाव के चलते परिवार में, समाज में, दफ्तर में या कहीं ऐसी सार्वजनिक स्थल पर आपको जबरदस्ती सॉरी कहना पड़ता है, तो वहाँ आपका जो सेल्फ रिस्पेक्ट होता है, आत्मसम्मान वहाँ
1: जाता है,
0: हाँ चोटिल होता है। तो उसका भी ख्याल रखना चाहिए कि आप किसी के दबाव में आकर माफी ना मांगे।
1: जी
0: बिल्कुल।
1: वैसे एक साथी ने लिखा है कि पहले मेरा स्वभाव था, गलती चाहे हो ना हो मैं क्षमा मांग के बात को खत्म कर देना ही पसंद करती थी, पर जब देखा कि इसका भी गलत ही लोग फायदा उठा रहे हैं तब मैंने कुछ अपने को रिजर्व करा और थोड़ा सा चुप रहकर निग्लेक्ट करना मुझे बेहतर ऑप्शन लगा। ये भी ऑप्शन अच्छा है कि भाई आप थोड़ी सी दूरी बना ले तो फिर इन सब समस्याओं से थोड़ा बहुत छुटकारा तो हम पा सकते हैं।
0: अब क्षमा के जब हम टिप्पणियां पढ़ रहे हैं तो एक टिप्पणी हमें मिल गई है जो झगड़े वाली, जो क्षमा के साथ मैच हो रही है। इन्होंने लिखा है, हमारी सखी है, हमारा और हमारे घर में झगड़ा होता है कि साहब जी को टीवी देखना पसंद है और मुझे रेडियो सुनना। तो मैं कमरे में जब रेडियो चलाती हूँ और वो टीवी चलाते हैं, मैं तो मैं दूसरे रूम में फोन लेकर चली जाती हूँ। उनका कहना है कि रहो भी कमरे में, फिर भी मैं टीवी तो चलने देती हूँ, म्यूट कर देती हूँ और अपना रेडियो चलता रहता है। हम लोग दोनों रेडियो सुनते हैं और वो टीवी देखते हैं।
1: आप कान में हेडफोन लगा लीजिए ना।
0: हाँ वो भी एक तरीका
1: है, ऑप्शन अच्छा है।
0: हाँ और ये भी तरीका है कि अपनी मतलब कि रेडियो सुनवा देती है जबरदस्ती मतलब चित्र दिख रहा है और रेडियो सुना जा रहा है, ये भी एक तरीका है। और
1: एक साथी ने लिखा है, क्षमा बड़न को चाहिए, चोटन को उत्पात। क्षमा बड़प्पन की निशानी है। क्षमाशीलता कमजोरों का नहीं बलवानों का गुण है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण यह है कि आत्मा को शुद्ध करती है और रिश्तों में जहर घोलने वाली नकारात्मकता को समाप्त करती है।
0: तो इनका हम शुक्रिया अदा कर रहे हैं। और भी तो कुछ टिप्पणियां
1: हैं। लिखते हैं कि क्षमा धरातल पर दो व्यक्तित्व उभरते हैं, एक आप और एक सामने वाला। अक्सर हम अपनी गलती स्वीकार नहीं करते, गलती दूसरे पक्ष की ही मानते हैं, इसलिए क्षमा नहीं करना चाहते। हो सकता है हमें भी समय समय पर ग्लानि की अनुभूति होती हो, किंतु हमारा अहंकार इस तथ्य को उजागर होने से रोक देता है। हमारे घाव हरे के हरे रहते हैं, उसका दर्द भी हम यदा कदा महसूस करते हैं। सामने वाला भी कभी कभी सोचता होगा कि हम क्षमा मांगे, ये द्वंद्व निरंतर चलता रहता है। क्षमा इस द्वंद्व का निराकरण कर देती है, रिश्ता बच जाता है और दोनों फिर से मित्र बन जाते हैं।
0: क्या बात है। एक श्रोता ने लिखा है कि क्षमा मांगने में और क्षमा करने में दोनों में ही सुख है। कभी गलती हो भी जाए तो क्षमा याचना में अपनी नम्रता ही रहती है और रिश्ते मजबूत बने रहते हैं। उससे भी बढ़कर है क्षमा कर देना। कभी कभी क्षमा करने में ज्यादा जोर आता है, क्षमा मांगने से ज्यादा हिम्मत चाहिए क्षमा करने के लिए। दरअसल क्षमा करने वाला ज्यादा बड़ा कहलाता है क्षमा मांगने वाले से। क्योंकि कई बार क्या होता है कि स्थिति ऐसी बन जाती है कि जहां माफी के लायक वो काम नहीं होता है, तो वहां पर जिसने माफ किया वो बड़ा हो जाता है।
1: पर एक बात ये भी है ममता जी कि जो रिश्ता होता है ना, कांच की तरह होता है कि अगर कांच चटक जाए तो फिर उसे जुड़ता नहीं। इस रिश्ते में दरार हमेशा के लिए रहती है, बस कोशिश हो कि उसे टूटने से बिखरने से बचा दिया जाए। एक साथी कहते हैं कि सिर्फ दो अक्षरों का शब्द है लेकिन उस दो अक्षरों के शब्द में अपार शक्ति है। क्षमा, जिसे विरास्य भूषणम कहा जाता है, किसी से क्षमा मांगना ये अपनी निर्बलता नहीं है। क्षमा स्वतंत्र रूप से उपचार करने वाली, सुख और शांति के द्वार खोलने वाली कुंजी है जो सबसे बड़ा उपहार।
0: क्या बात है। अब सभी श्रोताओं का शुक्रिया अदा करते हुए सुनते हैं ये गाना।

0: सोनाली जी, हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि कभी कभी बात बहुत छोटी होती है और हम ये सोचते हैं कि वो माफी मांगे, और वो सोचते हैं पहले हम बोले, पर किसी को बढ़कर बात कर तो लेनी चाहिए।
1: यही और... तो बात आपने कही थी ममता जी की, उसके बीच में अहंकार की मोटी सी दीवार होती है, पर बात कर वो दीवार को तोड़ देना चाहिए।
0: बिल्कुल, और एक पल आपका आत्मसम्मान चोटिल होता है, लेकिन जैसे ही झगड़े खत्म होते एकदम नॉर्मल सा हो जाता है माहौल, तो इसलिए वो नॉर्मल कर लेने में ही भलाई है
1: सभी अगर... की, और खासकर बच्चों की भलाई है।
0: हाँ बिल्कुल। और एक श्रोता के कई श्रोता आज लिख रहे हैं कि आपका ये जो डिस्कशन है प्रोग्राम में वो बहुत अच्छा है, और जो विषय आपने चुना है बहुत अच्छा है, ऐसा लिखा है।
1: और एक साथी ने लिखा है कि हमारी भी लड़ाई खत्म हो गई है और अच्छा, अब हम चाय पीने वाले हैं।
0: क्या बात है भाई। ये जानकर हमें बहुत अच्छा लगा। और सोनाली, हमारा तो उद्देश्य यही होता है कि हमारी बात दूर तक पहुंचे और देर तक असर करे। तो अगर किसी श्रोता ने ये लिखा है तो हम सभी श्रोताओं का शुक्रिया अदा करते हैं। अगर आप में से किसी से झगड़ा हुआ है, अनबन हुई है, तो बस एक प्याला चाय बनाइए एक दूसरे के लिए और
1: मिटा दीजिए,
0: माफी मांगिए और खत्म कर दीजिए झगड़ा।
1: एक अब चटनी की ओर बढ़े।
0: हाँ, चटनी भी बना सकते हैं,
1: अमरूद की चटनी। इसके लिए एक मध्यम आकार का अमरूद है पका हुआ, एक कप धनिया, दो तीन हरी मिर्च, आधा इंच अदरक का टुकड़ा, आधा चम्मच जीरा पाउडर।

आधा चम्मच काला नमक, स्वादानुसार सफेद नमक, एक नींबू का रस और 2-3 चम्मच पानी। चटनी बनाने की विधि, अमरूद को अच्छे से धोकर पोंछ ले, इसके आगे पीछे का हिस्सा काट दे, अमरूद के छोटे छोटे टुकड़े करें और इसके कड़े बीज बाहर निकाल कर रख दे। मिक्सी के जार में कटे हुए

0: गन्ने को चटनी जो बहुत छोटे छोटी मात्रा में परोसी जाती है, लेकिन रेसिपी बहुत लंबी है। देखते हैं क्या लिखा है। तिल और सूखे धने की चटनी, ये चटनी मेरी नानी बनाया करती थी। सामग्री इस तरह से है कि सफेद तिल आधा कप, साबुत धनिया 2 बड़े चम्मच, सूखी लाल मिर्च 4 से 5, लहसुन की कलियां और जीरा 1 छोटा चम्मच, कड़ी पत्ता और हींग 1 चुटकी, नमक स्वाद के अनुसार। बनाने की विधि, एक भारी कढ़ाई में तिल को धीमी आंच पर हल्का चटकने तक भून ले। इसे एक प्लेट में निकाल लें। उसी कढ़ाई में साबुत धनिया, जीरा, सूखी लाल मिर्च और कड़ी पत्ता डालें। इन्हें धीमी आंच पर तब तक भूनें जब तक कि मसालों से अच्छी खुशबू ना आने लगे। इन्हें भी तिल वाली प्लेट में निकाल लें। अब लहसुन को सूखा भून लें। सारी सामग्री को ठंडा होने दें। फिर इसमें नमक, हींग डालकर दरदरा पीस लें। स्वादिष्ट चटनी तैयार है। ये काफी समय तक खराब नहीं होती और इसे आप बाजरे या मक्के की रोटी, थेपला या गरम पराठे के साथ खा सकते हैं।
1: एक सखी ने करौंदे की चटनी लिखकर भेजी है। ये करौंदे को काटकर उसके बीज निकाल दीजिए, उसमें लहसुन, हरी मिर्च डालकर पीस ले, ऊपर से थोड़ा सरसों का तेल मिला दे, स्वादिष्ट चटनी तैयार होती है। और कदम्ब को काटकर सूखी भुनी लाल मिर्च, भुना जीरा, धनिया, काला नमक और थोड़ा गुड़ के साथ पीस ले, इसमें लहसुन नहीं डालते, आपकी इच्छा हो तो आप डाल दें। ये खट्टी मीठी चटनी रोटी और पराठे के साथ अब बहुत अच्छी लगती है। करौंदे की चटनी में आप धनिया की पत्ती डाल सकते हैं, पर बरसात के दिनों में हम पत्तेदार सब्जियों का प्रयोग कम करते हैं। करौंदा लहसुन मिर्च के साथ थोड़ा मोटा मोटा पीसा जाता है। ज्यादातर लोग इसे पकाए हुए भुट्टे के साथ खाते हैं। और एक ने लिखा है कि चटनी बोलते ही मुंह में पानी आ जाता है। चटनी खाने में आजकल प्रमुख है। चटनी कई प्रकार की बनाई जाती है। टमाटर की, हरी मिर्च, लहसुन की चटनी बहुत स्वादिष्ट बनती है। वैसे चटनी पुदीने की बनती है। धनिया, हरी मिर्च, थोड़ी अदरक, टमाटर, लहसुन सबको मिलाकर बारीक काटकर मिक्सी में पीस लिए, चटनी तैयार होगी। गरम गरम पराठे या रोटी के साथ खाओ तो बहुत मजा आएगा। सब्जी की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब जब भी सब्जी से बोर हो जाओ, घर में चटनी बना लो, मजा आ जाएगा।
0: क्या बात है। तो आज सोनाली जी, जो आज ये तकरार वाली चाय बनेगी उसके साथ थोड़े पकौड़े और ये चटनी,
1: चटनी हाँ, है ना? हाँ, क्या बात है। जो ये ऐसी तकरार बार बार होनी चाहिए
0: कि उसके बाद चाय पकौड़े मिले
1: मिल जाए।
0: तो चलिए अब प्रोग्राम का आखिरी गाना सुनते हैं।

0: भाई इस प्रोग्राम से जाने का मन कभी नहीं करता है और लगता है कि प्रोग्राम का समय कम पड़ गया है।
1: मुझे लगता है श्रोताओं का भी यही हाल होगा, है ना?
0: उन्हीं की बात पे कह रही हूँ क्योंकि वही लिख रहे हैं कि जल्दी से बीत जाता है ये एक घंटा। हमारे लिए भी ऐसा ही एहसास होता है, लेकिन अब बिल्कुल वक्त नहीं कि बोले बतियाएं या गाना सुनवाएं। लेते हैं सखियों और सखाओं से इजाजत। आप सभी को ममता सिंह
1: और सोनाली पाठक का
0: नमस्कार। सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: आज के मेहमान इस कार्यक्रम में आज आपको सुनवा रहे हैं लेखक निर्देशक और कॉमिक क्रिएटर आलोक शर्मा से यूनुस खान की बातचीत।
1: आज के मेहमान कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ आलोक शर्मा मौजूद हैं। आलोक, बहुत बहुत स्वागत आपका।
2: धन्यवाद यूनुस भाई, यहाँ आना अपने आप में एक सम्मान की बात है। विविध भारती में, जिसको हम बचपन से सुनते आए हैं, और बहुत कम लोगों को पता है कि मैंने विविध भारती में बतौर आपातकालीन उद्घोषक तीन रातें असल में। उन दिनों जब हम लोग वाणी कोर्स किया करते थे, तो शुरुआत में जो आपातकालीन उद्घोषक होते थे उनको रात की ड्यूटी मिलती थी।
1: बिल्कुल।
2: तो तीन रातें मैंने
1: ओवरनाइट ट्रांसमिशन
2: बिताई हैं।
1: सही है। लेकिन चूंकि बचपन को याद किया, तो बचपन जो है आलोक आपका, वो कॉमिक से जुड़ा हुआ है, ये चस्का कहां से लगा था?
2: बचपन बड़ा मजेदार है मेरा। बचपन असल में कॉमिक्स और रेडियो दोनों से जुड़ा हुआ था।
1: बिल्कुल।
2: तो क्योंकि हम एक संयुक्त परिवार में रहते थे, और मेरी जो माता जी हैं उनको रसोई संभालनी पड़ती थी, दुनिया भर के मेहमान होते थे घर में, तो सबको संभालना पड़ता था। और मेरे ख्याल से मैं शायद 5 या 6 महीने का रहा हूँगा, तो एक छोटा रेडियो था, वो मेरे बगल में वो चला दिया करती थी, और मैं वो रेडियो सुन के मुझे ऐसा लगता था कि कोई मेरे आसपास है। तो मेरे ख्याल से रेडियो मेरे जीवन में पहले आया, फिर कॉमिक्स आई मेरे जीवन में। कॉमिक्स इस वजह से आई कि माता जी को कॉमिक्स भी बहुत पसंद थी।
1: अच्छा।
2: हाँ, वो इंद्रजाल कॉमिक्स बहुत पढ़ा करती थी, फैंटम की बहुत बड़ी फैन थी, तो उनको फैंटम पसंद था, उनके पास अपना कलेक्शन था। तो ये कलेक्शन के साथ ही मैं बड़ा हुआ, और इसके साथ घर में ननिहाल में बहुत कॉमिक्स थी। तो जब भी हम ननिहाल जाते थे, मैं जो भी 2-3 साल का रहा हूँगा, तो कॉमिक्स के जो किरदार थे वो मुझे तब से पता थे। चाचा चौधरी, बिल्लू पिंकी, फैंटम जिसको बेताल बोलते थे उस समय में,
1: बिल्कुल,
2: मैंड्रेक, फ्लैश गॉर्डन, बहादुर, तो इन सबके साथ मैं बड़ा हुआ एक तरीके से कह सकते हैं।
1: बिल्कुल। ये वो दौर था जब कॉमिक्स किराए पर भी मिल जाती थी और दोस्तों से अदला बदली करके पढ़ी जा सकती थी।
2: वो दौर मेरे जीवन में थोड़ा बाद में आया, क्योंकि मेरे ननिहाल में इतनी किताबें थी कि मुझे किराए पे
1: बाहर से लेने
2: जाने की जरूरत ही नहीं थी। क्योंकि उस समय में बाल पत्रिकाएं भी बहुत होती थी, पराग, नंदन, चंदा मामा, गुड़िया,
1: बाल भारती,
2: राजा भैया, कई किताबें,
1: ढेर।
2: और पराग तो मैं अभी भी कहता हूँ कि पराग का बंद होना मेरे ख्याल से हमारी जो पीढ़ी के साथ सबसे बड़ा अन्याय हुआ है। पराग, धर्मयुग, जो वो सारी किताबें आ रही थी, तो ये सारी किताबें जो साप्ताहिक थी वो हफ्ते के हफ्ते ननिहाल आती थी। इंद्रजाल कॉमिक्स मेरे ख्याल से पाक्षिक, और पाक्षिक के बाद साप्ताहिक हो गई थी, मासिक किताबें आ रही थी, तो किताबों का एक पूरा पुलंदा था वहां पे। जब भी जाओ तो सब मिल जाता था। और मेरे नाना जी डॉक्टर थे, मगर वहां एक आजादी थी उस घर में, तो ऐसा नहीं कि फिल्मी पत्रिकाओं को नीची निगाह से देखा जाए। तो वहां मायापुरी भी थी, वहां माधुरी भी थी, वहां फिल्मफेयर भी थी, हर तरह की किताबें थी, और उन किताबों के बीच मेरा बचपन गुजरा। तो जो मुझे पसंद आती थी मैं वहां से उठा के ले आता था मेरे पास, और मैंने पढ़ना सीखना और कॉमिक्स पढ़ना सीखना दोनों मेरा एक साथ हो रहा था, तो शिक्षा और कॉमिक्स दोनों साथ में चल रही थी।
1: बिल्कुल। तो ये जो कॉमिक्स का चस्का है, इसका सबसे मजेदार बात यह है कि घर पर कोई विरोध नहीं था।
2: पूरा ये नहीं कहूंगा कि पूरा विरोध नहीं था। क्योंकि थोड़ा होता है ना कि आप जुनूनी पाठक बन जाते हैं एक टाइम, फिर आप खाना पीना छोड़ के पढ़ने लगते हैं, सोच छोड़ के पढ़ने लगते हैं,
1: कोर्स की किताब के अंदर,
2: कोर्स की किताब के अंदर कॉमिक्स के पढ़ने लगते हैं। तो ये तो हुआ, और ये इस हद तक चला गया वो जुनून के फिर तो घर पे थोड़ा विरोध होना स्वाभाविक था, क्योंकि फिर आप सब कुछ छोड़ छाड़ के यहीं लगे हैं। तो ये एक मैं कहूंगा कि बाकी दुनिया में अगर ये 100% हो रहा था, तो मेरे साथ 30% हो रहा था, मगर हो रहा था
1: जरूरी,
2: जरूरी तौर पे हो रहा था कि और कुछ कर ही नहीं रहा है, सिर्फ कॉमिक्स पढ़ रहा है पूरे समय। तो ये हुआ, मगर बहुत ज्यादा नहीं था, बहुत ज्यादा विरोध नहीं था।
1: क्या जी को थोड़ा बहुत बच्चे जो कुछ पढ़ रहे थे, आप उससे कुछ अलग पढ़ रहे थे या आप भी सेम चीजें पढ़ रहे थे?
2: नहीं, मैं मेरे ख्याल से उनसे काफ़ी अलग चीज़ें पढ़ रहा था, क्योंकि जो मेरी पीढ़ी के पाठक हैं वो आमतौर पे मनोज कॉमिक्स, राज कॉमिक्स, डायमंड कॉमिक्स वाले पाठक रहे हैं। मैं क्योंकि वो चीज़ें भी पढ़ रहा था जो मेरे मामा या मौसियां पढ़ रहे थे, मेरे से एक पीढ़ी ऊपर, तो उसमें इंद्रजाल कॉमिक्स भी थी,
1: बिल्कुल,
2: उसमें इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया थी, धर्मयुग में बच्चों का कोना था, कार्टून कोना डब्बू जी था, जो मेरी जनरेशन के, मेरी पीढ़ी के लोगों को बहुत ज़्यादा नहीं पता था उसके बारे में, लेकिन मैं वो पढ़ रहा था। इसके अलावा भी, क्योंकि मैं भिलाई में पला बढ़ा, औद्योगिक नगर है छत्तीसगढ़ का, पहले वो मध्य प्रदेश था, तो भिलाई में इंडो रशिया कोलैबोरेशन में ये स्टील प्लांट बना था। तो रूस और भारत के लोग वहां रहते थे शहर में,
1: बिल्कुल।
2: तो हमें बहुत सारी इंटरनेशनल कॉमिक्स भी मिल जाती थी, तो मार्वल, डीसी, एस्ट्रिक्स, ओबेलिक्स, टिनटिन, ये भी उपलब्ध थी हमें पढ़ने के लिए। बहुत लोग नहीं पढ़ते थे, लेकिन मुझे इनका भी चस्का उसी समय से लग गया था।
1: बल्कि रशियन किताबें भी जो लोग कथाएं में हिंदी अनुवाद आया करते थे वो भी मौजूद रहे होंगे।
2: हाँ, यूक्रेनी लोक कथाएं,
1: बिल्कुल,
2: रूसी लोक कथाएं, गोरकी की कहानियां,
1: बल्कि मुल्ला नसरुद्दीन, मुल्ला नसरुद्दीन,
2: हाँ मुल्ला नसरुद्दीन था एक बहुत अच्छा,
1: राधुका प्रकाशन,
2: हाँ राधुका प्रकाशन, और उसमें कैरेक्टर होता था नाजानू, हाँ नाजानू की कहानियां, और एक मैगजीन आती थी मीशा, तो मीशा में एक कैरेक्टर होता था, उसका नाम मेरे दिमाग से उतर गया, वो दलिया खाता था और उसको ताकत आ जाती थी। तो ऑलमोस्ट पोपाई पोपाई के जैसा था, मगर काफी मजेदार कैरेक्टर्स थे ये, तो इनकी भी उपलब्धता थी और उस समय तो मेरे ख्याल से पूरे भारत में थी।
1: क्या बात
2: तो
1: है,
2: मतलब मीशा तो मेरे ख्याल से सबने पढ़ी है, मेरी
1: सबने पढ़ी, बिल्कुल। तो इस दौर को याद करते हुए एक गाना सुनते हैं, फिर बातचीत को आगे बढ़ाएंगे।
2: जी बिल्कुल।
1: तो कौन सा गाना होना चाहिए?
2: बचपन के दिन भी क्या दिन थे,
1: क्या बात है, सुनते हैं।

0: बचपन के दिनों की सैर कर रहे हैं और इतनी तरह की कॉमिक्स की हम बात करें, जब ये कॉमिक्स आप पढ़ते थे आलोक, तो कल्पनाओं की वो कौन सी दुनिया थी जिनमें आप सैर करते थे और क्या अपने लिए कुछ सोचते थे इन कॉमिक्स से जुड़ा हुआ?
1: तो इसकी एक बड़ी मजेदार कहानी है। हमारे घर में टीवी नहीं था। हमारे घर में पहला टीवी जब आया तो मैं 26 साल का था।
0: मतलब बहुत ही लेट आया।
1: तो ऐसा नहीं है कि टीवी पता नहीं था, टीवी पड़ोस में था, हम देख लेते थे वहाँ जाके। तो मेरे ख्याल से 1985 का साल था, टीवी पे संडे की फिल्म आ रही थी, कब क्यों और कहाँ। उसमें प्राण साहब का एक खतरनाक रोल था जिसमें वो मुर्दे का रोल करते हैं, उनकी आंखें बल्ज होके बाहर निकली। तो वो देख के मैं बहुत बुरी तरह से डर गया।
0: अरे
1: हाँ, उसके बाद प्राण नाम से मुझे दहशत हो गई।
0: लेकिन ये प्राण नाम दो जगह चलता था।
1: हाँ, ये मैं वहीं आ रहा हूँ। तो मेरे पिताजी को ये लगा कि अगर मुझे मेरे मन से प्राण नाम की दहशत हटानी है तो उनको ये बताना पड़ेगा कि जो चाचा चौधरी है, मेरा सबसे प्रिय किरदार, उसके सर्जक भी प्राण है, उनका नाम भी प्राण है। तो उन्होंने मुझे बताया कि ये जो PRA-01 लिखा होता है कॉमिक्स के ऊपर में, वो प्राण है।
0: हाँ।
1: और जो चाचा चौधरी बनाते हैं उनका नाम भी प्राण है। मैं 4 या 5 साल का रहूंगा उस समय, तो मेरे दिमाग में ऐसा एक खांचा बन गया कि वो जो प्राण है फिल्मों में वही चाचा चौधरी भी बनाते हैं। बहुत लंबे समय तक, करीब 1-1.5 साल तक। और बाद में वो फोटो भी, जो प्राण की फोटो आती थी कॉमिक्स के पीछे, प्राण का जन्म कसूर ब्रैकेट में अब पाकिस्तान में
0: हाँ,
1: में हुआ था। तो वो जो पूरा, तो मैं उस तरह से कॉमिक्स पढ़ता था, मैं वहां से पढ़ता था, प्रकाशक मुद्रक तक पढ़ता था मैं कॉमिक्स।
0: बिल्कुल।
1: तो वो उनका जो एक ब्लैक एंड व्हाइट फोटो आता था 85 के आसपास, वो थोड़ा सा प्राण, जो अभिनेता प्राण है, उनके जैसा ही दिखता था वो।
0: नहीं,
1: मुझे ऐसा लगता
0: था, ये तो जैसा आप देख रहे हो वैसा,
1: जैसा वो, हाँ, जैसे जिसकी नजर। तो मुझे ऐसा लगता था कि ये वही है। दूसरी चीज, मेरे पिताजी ने मेरे जन्म के पहले कार्टूनिंग के कोर्सेज किए थे, वो कार्टून्स बनाते थे।
0: ओके।
1: हाँ, पारिवारिक व्यापार के क्षेत्र में वो आ गए थे, लेकिन उनका दिल जो था वो कार्टूनिंग में था। तो मुझे ये जरूर पता था कि ये कार्टून्स हैं और इनको कोई बनाता है। और ये जो प्राण वाली कहानी हुई, उसके बाद एक आदत बैठ गई कि अगर मैं कोई कॉमिक्स पढ़ रहा हूं तो मैं जानना चाहता था इसको लिखा किसने है, इसको बनाया किसने है। कल्पना की उड़ान जरूर थी, लेकिन मुझे ये भी पता था कि इन्हें कोई बनाते हैं, लोग बनाते हैं।
0: तो उस दौर के कौन कौन से नामों से आप परिचित हुए?
1: अब बहुत सारे असल में। तो जैसे मुझे 5-6 साल की उम्र से पता था ली फॉक फैंटम लिखते हैं और साइबरी उसको ड्रॉ करते हैं, हालांकि उनसे पहले विल्सन मैकॉय और बहुत सारे लोग थे।
0: पहले ही बॉक्स में नाम आता था।
1: हाँ, पहले बॉक्स में नाम आता था ली फॉक साइबरी करके, फॉक एंड बेरी लिखा होता था। तो मुझे पता था ये फैंटम भी लिखते हैं, ये मैंड्रेक भी लिखते हैं। फ्लैश गॉर्डन जो है वो एलेक्स रेमंड बनाते हैं। रिप कर्बी बहुत सारा एलेक्स रेमंड बनाते हैं। बहादुर जो है वो आबिद सुरती लिखते हैं, गोविंद ब्राह्मणिया ड्रॉ करते हैं। ये उस 5-6 साल की उम्र में मैंने ये नाम रख लिए थे, क्योंकि मेरे लिए ये भी जरूरी था, चाहे जितनी भी किताबें उस समय आ रही हों, एक सीमा रहती थी इन किताबों की ना, आपको 3 मिलेगी, 4 मिलेगी, 5 मिलेगी। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से वो लोग हैं जिनका काम आपको बहुत पसंद है। तो बजाय एक किरदार को फॉलो करने के, आप उनके क्रिएटर्स को फॉलो करते हैं कि उनके जो सर्जक हैं, कि अगर मुझे आबिद सुरती का काम पसंद है तो मैं आबिद सुरती का और काम ढूंढूंगा, अगर मुझे प्राण का काम पसंद है तो फिर शायद मैं चाचा चौधरी बिल्लू पिंकी खत्म करने के बाद जाब और दाबू भी पढ़ूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि पर्टिकुलर एक क्वालिटी आ रही है उनके काम की। तो ये उस समय की ट्रेनिंग है मेरे ख्याल से, जो अभी तक है। मैं अभी भी कोई कैरेक्टर को फॉलो नहीं करता, मैं जनरली क्रिएटर फॉलो करता हूं।
0: बहुत बढ़िया बात है। तो कॉमिक्स की ये दुनिया आपको क्या करियर की किसी दुनिया की तरफ ले जा रही थी, या तब कुछ और सोच रखा था जब मम्मी पापा पूछते थे कि बड़े होके क्या बनना है?
1: नहीं, अच्छी चीज ये थी कि हमसे कभी पूछा ही नहीं गया बड़े होके क्या बनना है, तो वो प्रेशर था नहीं सर पे। दूसरी चीज ये थी कि मैं कार्टून्स बनाने लग गया था बहुत बहुत यंग एज में, 4-5 साल का रहूंगा, तो मैंने जैसे सारे बच्चे करते हैं, तो ऐसा कुछ बहुत महान ड्राइंग्स नहीं कर रहा था मैं, लेकिन मुझे शेहाब की ड्राइंग्स बहुत पसंद आती थी। शेहाब साहब छोटू लंबू किया करते थे, और मुझे लगता है कि वो अपने समय की नहीं, अभी के भी सर्वश्रेष्ठ कलाकारों में एक हैं। तो शेहाब साहब की जो कला थी वो मुझे बहुत पसंद थी, उनको मैं काफी कॉपी करता था। कार्टूनिस्ट प्राण को कॉपी करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि बहुत कम लाइंस में वो बहुत सारी चीजें निकाल लेते थे। तो मुझे ये था कि मैं कार्टून्स बनाना चाहता हूं, लेकिन ये प्रोफेशन बनेगा नहीं बनेगा उसकी कोई क्लैरिटी ऐसी थी नहीं मेरे मन में। कार्टून मैं स्वांता सुखाए अपने लिए बना रहा था। एक और चीज ये थी कि पिताजी का काम ऐसा था कि हमारे ट्रांसफर्स होते थे बहुत, एक शहर से दूसरे शहर, तो ये बड़ा मुश्किल हो जाता था कि हर बार नई स्कूल होगी, नई क्लासेस होंगी, नए सहपाठी होंगे, अब फिर से नए दोस्त बनाने हैं, फिर से नए दोस्त बनाने हैं, हर 2-3 साल में स्कूल बदल रहा है, फिर से नए दोस्त बनाने हैं। तो अपने आप में वो काफ़ी प्रेशर वाला काम होता है उस उम्र में। और उस उम्र में अगर मैं अब वापस पलट के देखता हूँ तो ये जो कॉमिक्स के किरदार थे ये मेरे परमानेंट दोस्त थे, ये शहर दर शहर मेरे साथ चलते आ रहे थे। तो इनके साथ मेरा जो जुड़ाव था वो किसी असल दोस्त से ज्यादा हो चुका था जब तक मैं अपने टीनेज में या किशोर वय जिसको बोलते हैं वहां पहुंचा। तो ये एक चीज थी जिससे मेरा जो अटैचमेंट बोलते हैं वो कॉमिक्स से बढ़ा दिया। मेरे ख्याल से 10 या 11 साल का रहा होगा तब मुझे लगा कि मैं कार्टून्स बना सकता हूँ और मैं ये भेज सकता हूँ छपने के लिए। अच्छा। वो कॉन्फिडेंस रैंडमली आ गया था और घर में प्रेशर था पढ़ाई को लेकर और बाकी चीजों को लेकर भी, लेकिन ये मनाही नहीं थी कि तुम ये क्या कर रहे हो। तो बस उसका फायदा मिला, मैंने कार्टून्स बना के भेजना शुरू किया, संपादक के खेत सहित सारे कार्टून्स वापस आने शुरू हुए।
0: लिफाफा भेजता था
1: वो तो भेजना पड़ता था, जवाबी लिफाफा टिकट लगा हुआ, वो तो नियम ही था
0: जी।
1: तो शुरू में कार्टून्स नहीं बनाए थे, शुरू में मैंने सोचा कि मैं बहुत आलेख वगैरह लिखूंगा, मतलब वो उस उम्र में ऐसा होता है ना कि आपको लगता है कि आपके पास बहुत ज्ञान है।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: हाँ, तो कुछ भी कर सकते हैं और वो रहना चाहिए। मुझे लगता है वो बाल सुलभ कॉन्फिडेंस सब में पूरी उम्र रहना चाहिए, ताउम्र रहना चाहिए। तो मुझे अभी भी याद है पहला जो मैंने लेख लिखा था वो था डोडो पर, और वो मैंने भेजा था सुमन सौरभ में। अच्छा। और सुमन सौरभ से वो रिजेक्ट होके आ गया था, लेकिन मुझे उसमें कोई ऐसे संकोच शर्म नहीं आई थी, है ना, ठीक है दूसरा लिखेंगे, तीसरा लिखेंगे, चौथा लिखेंगे, क्योंकि खोने के लिए कुछ है ही नहीं आपके पास, तो आप लिख रहे हैं। फिर मुझे लगा कि शायद मैं ड्रॉइंग्स बेहतर करता हूँ लिखने से। तो हमारे शहर में एक कार्टून मैगजीन निकला करती थी, अभी भी निकलती है, 30 साल से निकल रही है वो मैगजीन, कार्टून वॉच नाम है उसका। तो कार्टून वॉच मेरे हाथ लगी किसी के दोस्त के घर पे और मैंने उसमें कार्टून्स देखे, तो वही मैं कह रहा हूँ कि कॉन्फिडेंस थोड़ा सा अलग तरीके का था, तो वो देखे लगा ये अगर ये छप रहे हैं तो मैं तो छप ही जाऊँगा। हाँ, और वो जो संपादक थे त्रिम्बक शर्मा, उनको मैं त्रिम्बक भैया बोलता हूँ अब, तो त्रिम्बक भैया असल में सबको कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए ना निहायत ही घटिया कार्टून हो तो छोड़ देंगे, नहीं तो छप जाते थे कार्टून। तो मुझे लगा ये तो मैं कर सकता हूँ, एंड बनाया मैंने कार्टून, 2-3 बनाए और दोनों तीनों छप गए पहली बार में। मतलब कार्टूनिंग में मेरा रिजेक्शन नहीं हुआ, कार्टूनिंग में मुझे लगा कि यहाँ तो चंडे गड़ गए, पहले ही दिन पहले ही कार्टून्स गए और 15 दिन में छप के आ गए, किताब आ गई घर पे, उस किताब को लेके मैं घूमता रहा कई महीनों तक, लेकिन हर महीने उसके बाद मैं नियम से कार्टून बनाता रहा। तो इस तरीके से कार्टूनिंग के करियर की शुरुआत हुई मेरी जब मैं शायद 13 या 14 साल का था,
0: और वो भी भिलाई में।
1: भिलाई में तो उसके थोड़े से पैसे मिलते थे, 100 रुपए, चाहे जितने भी कार्टून, तो ऐसा नहीं था कि पर कार्टून मिलेगा क्योंकि मैगजीन भी छोटी थी, तो 100 रुपए बहुत बड़ी अमाउंट होती थी, 100 रुपए में आप क्या कुछ नहीं कर सकते थे।
0: यस,
1: हाँ, तो और कॉमिक्स तो खरीद ही सकते थे, अब मतलब कॉमिक्स के लिए घर में बोलना या यहाँ वहां भागना दौड़ना नहीं करना पड़ता था। मुझे याद है 56 रुपए का सेट आता था,
0: दो सेट में, और वो बड़ा महंगा लगता था,
1: 56 रुपए बहुत महंगा था, लेकिन मुझे 100 रुपए मिल रहा था महीने, तो मैं 2 सेट खरीद सकता था। तो इस तरीके से मेरी पहली लाइब्रेरी की शुरुआत हुई कॉमिक्स की।
0: क्या बात है, लाइब्रेरी एज इन दूसरों को किराए से देने लगे।
1: मैं हमेशा, मेरा कभी ये विचार था ही नहीं कि मैं किराए पे कॉमिक्स पढ़ूंगा, मुझे मेरी कॉमिक्स मेरे पास चाहिए थी।
0: अच्छा,
1: तो इसलिए मैं मतलब एक समय था 2-3 साल जब किराए से पढ़ी किताबें, मगर मुझे लगता था इतनी बड़ी लाइब्रेरी तो मेरी होनी चाहिए,
0: अपनी बड़ी होनी चाहिए।
1: एक दशमेश लाइब्रेरी करके हमारे शहर में लाइब्रेरी हुआ करती थी भिलाई में, गोल मार्केट में, बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी। और मेरा लाइफ का, मेरे मतलब जीवन का एक ही लक्ष्य था कि इतनी बड़ी लाइब्रेरी तो चाहिए, इससे छोड़ी नहीं चलेगी। तो फिर मैंने मतलब दशमेश तो बंद हो गई और हमने अपनी लाइब्रेरी शुरू की और बहुत अच्छी तरह से रन की, मतलब वो हमारे छत्तीसगढ़ में उसको बोलते हैं अंचल, हमारे अंचल की सबसे बड़ी लाइब्रेरियों में से एक थी जो हम लोग रन कर रहे थे।
0: कितने साल चलाई
1: वो? हमने चलाई करीब 4 साल।
0: अच्छा, और किताबें सब वापस आई सही सलामत?
1: हाँ, मतलब देखिए जब ये व्यवसाय बन जाता है ना तो थोड़ा नफा नुकसान तो होता है। तो नफा नुकसान होता था, लोग चुरा के ले जाते थे, फिर हमको ढूंढने जाते थे उनके मोहल्ले में, तो वो एक अपने आप में एक
0: अलग कहानी,
1: अलग कहानियां हैं, वो एक अलग, मेरे ख्याल से वो हमारा मालगुड़ी डेज है।
0: बहुत सही बात है, बहुत मजेदार बात। लेकिन क्या कार्टूनिंग की कोई बाकायदा ट्रेनिंग लेने की जरूरत महसूस हुई या ऐसा कोई मौका आया?
1: अब लगता है कि ले लेनी चाहिए थी, लेकिन तब कॉन्फिडेंस उस जगह पे था कि कुछ भी रिजेक्ट नहीं हो रहा था, जो बना रहे हैं सब छप रहा है। और फिर उन मैगजीन्स में भी छपने लगा जो मैगजीन्स में पढ़ रहा था, तो मेरा काम चंपक में आने लग गया, बाल भारती में आने लग गया, बालहंस में आने लग गया, उस समय की करीब करीब हर मैगजीन में काम आने लग गया था और पैसे भी मिलते थे उसके। तो मजे की बात ये थी कि पैसे भी आ रहे हैं और वो ठीक ठाक पैसे थे। मतलब उस समय में एक 15-16 साल का लड़का अगर 500 रुपए भी महीने के बना ले रहा है,
0: बहुत ज्यादा रकम,
1: बहुत बड़ी रकम हो जाती है वो। तो वो पैसे भी आ रहे हैं, आपकी एक लाइब्रेरी भी चल रही है ठीक ठाक, और आप कार्टून्स भी बना रहे हैं, तो फिर पढ़ाई कौन करेगा।
0: अच्छा, फिर
1: मैं 9वीं में फेल हो गया।
0: अरे बाप रे बाप, मतलब ये तो बम गिर गया,
1: तबाह हो गया मैं।
0: अच्छा,
1: तो 9वीं में मैं फेल हो गया, मुझे समझ
0: आगे की कहानी सुनेंगे। आप ब्रेक लगाते हैं, एक गाना सुनते हैं, कहां तक ये मन को अंधेरे चलेंगे।
1: चलिए, कहां

0: नवी में आप फेल हो गए।
1: नवी में मैं फेल हो गया।
0: ये इसकी उम्मीद थी कि नहीं थी?
1: उम्मीद तो कोई नहीं रखता है
0: हाँ कि फेल
1: हाँ,
0: हो जाऊंगा।
1: फेल हो जाऊंगा
0: मतलब पढ़े नहीं
1: लगता
0: थे
1: कुछ। नहीं मुझे समझ में नहीं आया पूरा नवी कैसे गया मुझे नहीं पता है।
0: वैसे
1: वो
0: नवी
1: पूरा
0: होता
1: पूरा
0: भी
1: ऐसा
0: फिसलदार मैदान ही है।
1: नवी को थोड़ा सा टफ बनाया जाता है ताकि बच्चा 10वीं में अच्छे स्कोर करे और स्कूल का एक स्कोर बना रहे, तो उसको स्कूल का स्कोर बनाने के लिए मुझे लगता है नवी को टफ बना दिया
0: नहीं,
1: जाता
0: और
1: है।
0: ये समझाना कि भाई मिडिल स्कूल पीछे छूट
1: पीछे
0: गया,
1: छूट
0: अब
1: गया
0: होश में आ जाओ।
1: नहीं, वो तो आप हाफ पेंट से फुल पेंट पे आ जाते हैं। हमारे यहाँ तो ऐसा था कि मिडिल स्कूल तक
0: बिल्कुल
1: हाफ पेंट था, फिर फुल पेंट आया,
0: हाँ।
1: तो फुल पेंट आई मतलब आप जिम्मेदार हो जाओ। मैं नहीं हो पाया मेरे ख्याल से। और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी बहुत थी ना, मतलब आप एक तरफ लाइब्रेरी भी चल रही है, आप कार्टून्स भी बना रहे हो, स्कूल में टीचर्स भी आपको एक अलग निगाह से देखते हैं कि इसके तो कार्टून्स छप रहे हैं। तब तक मेरे लेख वगैरह भी छपने लग गए थे। तो मतलब क्लास 9th का एक लड़का है जिसका हर महीने
0: कहीं ना कहीं
1: कहीं ना
0: कुछ
1: कहीं
0: छप
1: कुछ
0: रहा
1: ना कुछ
0: है।
1: छप रहा है, तो वो अपने आप में एक अंदर से तो अपने आप में एक रॉकस्टार वाली फीलिंग रहती है ना कि हम ही हम
0: हाँ
1: हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: भले बाकी सारी चीजों में आप शून्य हो, लेकिन एक वो जगह है जहां आमतौर पे कोई पहुंचता नहीं है, वहां जाके आपने अपना आसन जमा रखा है। तो डांट पड़ती थी स्कूल में कि ये सब करते रहोगे, तुम्हारे इतने कम मार्क्स आ रहे हैं, ये है वो है। मुझे लगा था निकल जाएगा, नहीं निकला। अब नहीं निकला तो क्या कर सकते हैं। लेकिन मजेदार बात मैं बताऊंगा आपको कि जो 9वीं में मैं फेल हुआ, उस दिन तो मौत थी मेरी। मतलब लाइफ का, जीवन का सबसे बड़ा फेलियर है वो, क्योंकि आपके सारे दोस्त आपसे 1 साल आगे चले गए, अब आपके साथ बच्चे पढ़ेंगे। उस समय में तो ये लगता है 1 साल छोटा तो बच्चा ही है, अभी तो
0: बिल्कुल
1: 5 साल छोटे भी बराबर के लगते हैं। लेकिन वो था, मोहल्ले वालों को आप क्या जवाब देंगे? सबको पता है आप 9th में थे, पूरे मोहल्ले को अगर पता चला कि आप 10वीं नहीं गए, आप वापस 9th रिपीट कर रहे हो, तो क्या होगा? एक तरीके से सामूहिक बहिष्कार हो जाता है जो बच्चा फेल होता है उसका। उसमें बच्चे की गलती है नहीं है,
0: हमारे यहाँ वो तो सोचा ही नहीं जाता, वो
1: हाँ
0: जो एक्सेप्टेंस
1: स्टिग्मा
0: वाली
1: जिसको बोलते
0: बात
1: हैं
0: है।
1: ना, तो स्टिग्मा आ जाता है वो।
0: हाँ
1: तो स्टिग्मा तो आ गया था, और आप अपनी नजरों में तो गिर ही चुके हो।
0: हाँ
1: तो एक आप अपनी नजरों में गिरे हो, एक आप अपने पेरेंट्स की नजर में गिरे हो, फिर छोटे भाई बहन हैं उनकी नजरों में भी गिरे हो, क्योंकि अभी तक आप रोल मॉडल थे और आपने मतलब काफी कुछ अच्छा किया हुआ है, अभी तक आप उनकी नजर में भी गिर गए हैं। मोहल्ले वालों को किसको सच बताएं किसको ना बताएं, पता तो सबको चलेगा, क्योंकि उसमें से कुछ बच्चे हमारे स्कूल में भी हैं। अब उनसे झूठ बोलेंगे आप या सच बोलेंगे, आप फेलियर को एक्सेप्ट कैसे करते हैं? फिर आपके जो दोस्त हैं वो 1 क्लास आगे चले गए हैं, तो आप उनके साथ स्कूल भी नहीं जाते
0: नजरें
1: हैं,
0: कैसे मिलाएंगे?
1: नजरें
0: हाँ
1: कैसे मिलाएंगे? उनके जो पेरेंट्स हैं वो भी नहीं चाहेंगे कि एक फेल होने वाले बच्चे के साथ उनके बच्चे खेलें।
0: हाँ
1: तो ये जो पूरा एक हमारे समाज ने इस पूरी चीज को जैसा स्टिग्मा बना दिया है, उससे मैं गुजरा पूरे 1 साल।
0: पूरे 1 साल।
1: देखिए बाकी लोग तो बढ़ जाते हैं, लेकिन आप वो अपने अंदर लेके चल रहे होते हैं वो
0: बिल्कुल।
1: फेलियर को, और वो फेलियर ताजा ही है
0: घर
1: ना।
0: घर
1: एक साल
0: वालों का एटीट्यूड क्या था?
1: कुछ खास ऐसा, मतलब पिताजी ने बोला कि अब चलो मेरे साथ काम भी करना पड़ेगा शुरू तुमको, क्योंकि पढ़ाई वढ़ाई में तो लग नहीं रहा कि तुम्हारा कुछ होने वाला है। तो मैंने उनके साथ काम करना भी शुरू किया।
0: क्या काम था वो?
1: मेरे फादर चॉकलेट्स वगैरह ये करते थे, होलसेल में चॉकलेट्स किराने दुकान वालों को सप्लाई करते थे। तो फिर उन्होंने पूरा भिलाई शहर का जो सप्लाई है वो मुझे दे दिया। भिलाई शहर मतलब ऐसा बहुत शहर नहीं, कुछ 25-30 दुकानें जो हम रेगुलरली जहाँ सामान सप्लाई किया करते थे, तो वो मुझे दे दिया उन्होंने कि ये तुम करोगे अब। तो मैंने वो शुरू किया। लाइब्रेरी फिर भी चल रही थी, कार्टून फिर भी बन रहे थे,
0: अच्छा, ये
1: हाँ,
0: सब चल रहा था।
1: और ये सब चल रहा था। उसके साथ में मैंने फादर को हेल्प करना भी शुरू किया, वो भी मेरे ख्याल से मेरे 48 साल के तो हो गए थे तब तक मेरे फादर। तो वो शुरू किया मैंने, मुझे ये लगा कि मुझे ये भी समझ में आया कि बिजनेस कैसे होता है। मैं आमतौर पे लोगों से बात करने में कतराता था, तो मेरी जो शर्म थी जो मोहल्ले में और लोगों के बीच थी, वो खत्म होने लगी, वो झिझक हटने लगी मेरी। मुझे पता नहीं अगर इसको हम स्ट्रीट स्मार्ट बोल सकते हैं या नहीं, मगर थोड़ा सा एक अलग तरीके का कॉन्फिडेंस बूस्ट आया मेरे अंदर उससे। बहुत बाद में, करीब मेरे ख्याल से उसके 30 साल बाद, मैंने एक शो लिखा, और उस शो को लिखते समय मैंने जो लीड कैरेक्टर है उसका शो का, उसको क्लास 9th में फेल करवाया। इसलिए नहीं कि ये रेवेंज था, इसलिए कि मुझे बहुत मन था कि मैं दुनिया को बताऊं कि जब एक
0: फेल्योर
1: बच्चा फेल
0: का
1: होता है
0: उस
1: तो वो
0: बच्चे के ऊपर
1: अपने
0: क्या असर
1: अपने
0: पड़ता
1: आप
0: है?
1: में वो एक मौत से गुजर रहा होता है, उसके
0: करेक्ट।
1: ऊपर नई चीजें मत ला दो, क्योंकि वो खुद अपनी नजरों में गिरा हुआ है। तो उसकी जितनी हेल्प कर सको कर दो, हेल्प नहीं कर सकते तो नया गड्ढा मत खोदो उसके। तो ये बहुत जरूरी है लोगों के लिए।
0: कार्यक्रम जारी रहेगा इस अंतराल के बाद।

0: किस शो में लिखा था ये आपने?
1: ये एक शो था Z5 पे जिसका नाम है फायरफ्लाइज, पार्थ और जुगनू। तो हम लोग बात कर रहे थे, शुरू से डिस्कशन ये था कि ये क्लास में टॉपर नहीं रहेगा, क्योंकि हम लोग टॉपर्स की कहानियां बहुत देखते हैं, हम उसकी कहानी नहीं देखते जो पीछे छूट जाता है। तो हमेशा से वो आइडिया था कि इसकी कहानी वो होगी कि ये पीछे छूट जाए। तो फिर मैंने अपने अनुभवों में वापस जाके उसको कुरेदा और मैंने कहा कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि नाइन्थ में फेल हो गया है, तो सबसे पहले तो हमको जाके नया एजुकेशन सिस्टम चेक करना पड़ा कि नाइन्थ में फेल होते हैं या नहीं होते हैं। फिर पता चला कि होते हैं। हाँ, जहां वो कहानी बेस्ड है वहां तो होते हैं। तो फिर उस चीज को लेके बहुत सारी चीजें जो मैंने झेली थी, बहुत सारी चीजें जो लोगों ने मुझे बोली थी, वो सब कुछ वहां मैंने उस कहानी में कहा। और बहुत सारे लोग उसके बाद, बहुत सारे लोगों के मुझे कॉल्स आए, एक दो पॉडकास्ट में पॉडकास्टर्स ने मुझे बताया कि वो भी उस दौर से गुजरे हैं। एक दो दो बार फेल होना या किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में लगातार फेल हो जाना 3 बार, वो सब उस स्टिग्मा से बहुत लोग गुजरे हैं। उसको सही वॉइस नहीं मिली है अभी तक, वो निकल के नहीं आया, कथारसिस नहीं हुई लोगों की। तो मुझे लगा ठीक है, मेरी कथारसिस के बहाने मतलब और बहुत सारे लोगों की कथारसिस हो गई। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो अनुभव हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, कड़वे हैं, अगर अंदर रहते हैं तो वो कहीं ना कहीं एक जगह पाके निकल जाते हैं।
0: बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। तो इस पूरे दौर से निकले आप कैसे और फिर आगे चीजें कैसे बढ़ी?
1: ये बहुत मतलब फिक्शनल साउंड

0: लेकिन हम लोगों के वहां उसको सेकंड ईयर बोलते थे फेल होने के बाद, नाइन्थ सेकंड
1: अच्छा ओ ये एक तरह की राहत
0: ये एक तरीके
1: थी।
0: की हाँ राहत थी।
1: हाँ
0: तो मेरा जो सेकंड ईयर था उसमें पता नहीं कैसे मैं एक बहुत अच्छा स्टूडेंट बन के भी निकला, जबकि मैं पढ़ भी नहीं रहा था।
1: अच्छा।
0: हाँ मुझे ऐसा लगता है कि मैं मतलब अब खोने के लिए कुछ था ही नहीं ना,
1: हाँ
0: तो
1: बिल्कुल।
0: घबराहट नहीं थी।
1: हाँ
0: तो अब मैं ज्यादा खुल के मजे कर रहा था क्लास में, क्योंकि
1: हाँ
0: ये सब मेरे से छोटे थे मेरे क्लासमेट्स, दिमाग में तो यही था। तो अब मुझे जो घबराहट थी, जो बेचैनी थी पिछले साल अपने साथ के लोगों के साथ में, वो बेचैनी पता नहीं कहीं गायब हो गई। तो जैसे मैं केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ में सबसे कम मार्क्स आए थे मेरे सेकेंड ईयर में, इन तीनों में मैंने टॉप किया। और हमारे यहाँ सात आठ सेक्शंस होते थे, तो केमिस्ट्री की टीचर का तो मैं मतलब बहुत ऐसा प्रिय छात्र बन गया था, क्योंकि मोल थ्योरी ये वो पता नहीं कैसे मुझे समझ में आने लगी चीजें। तो नाइन्थ और टेंथ यूं करके निकल गए, मतलब छुटकी बजाते नाइन्थ और टेंथ निकल गए। मैं रैंक्स अच्छे ला रहा था, मेरी लाइब्रेरी बहुत बड़ी हो गई थी इस बीच में।
1: अच्छा
0: हाँ मेरी लाइब्रेरी हमारे शहर की सबसे बड़ी लाइब्रेरीज में से एक थी। मैं मतलब 14 साल के बाद जब मैं भिलाई एक बार गया था, मेरी लाइब्रेरी की सील लगी हुई किताबें मैंने रद्दी में खरीद के वापस लाए थे। इतनी बड़ी लाइब्रेरी थी कि 14 साल तक वो किताबें सर्कुलेट हो
1: सर्कुलेट
0: रही
1: होती
0: थी
1: रहीं,
0: उसी शहर में।
1: क्या बात
0: हाँ तो
1: है।
0: ये इतनी बड़ी लाइब्रेरी थी, मेरी लाइब्रेरी बड़ी हो गई। मेरे फादर का काम मैंने बहुत अच्छी तरह से संभाल लिया था, तो वो एक और बेशर्मी भी आ गई थी, चमड़ी मोटी हो गई ना आपकी, आप जितना सुन सकते थे जितना झेल सकते थे आपने झेल लिया था। तो मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं बहुत मददगार साबित हुआ मेरे लिए, कि वो फेलियर उस समय के लिए तो मौत थी, मगर अगले एक आध साल के अंदर अंदर मुझे लगता है कि मेरे चरित्र निर्माण में बहुत बड़ा हाथ था उस चीज का। तो
1: एक
0: वो
1: नए सिरे से बनने की तैयारी थी
0: जी, वो मुझे लगता है थोड़ा सा प्रतिशोध की ज्वाला भी थी।
1: बिल्कुल। ये कॉमिक्स वाला वर्ड आ गया।
0: सुपर कमांडो ध्रुव
1: प्रतिशोध
0: की
1: की
0: पहली किताब, हाँ प्रतिशोध की
1: ज्वाला।
0: ज्वाला थी वो, और वो सम मेरे लिए काम कर गई बेसिकली।
1: हाँ
0: तो
1: बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। यहां एक गाना सुनते हैं।
0: जी बिल्कुल।

0: मुंबई कैसे आ गए आप लोग?
1: हाँ, ये बहुत लंबी कहानी है।
0: अच्छा,
1: तो मैं कॉमिक्स में काम करना चाहता था, लेकिन जब तक मैं 20 का हुआ तब तक भारत में कॉमिक्स खत्म हो गई थी।
0: धीरे धीरे धीरे धीरे करके,
1: और मेरी पीढ़ी, मेरे ख्याल से कॉमिक्स पढ़ने वाली आखिरी पीढ़ी थी। अभी लोग आ रहे हैं वापस, लेकिन उस समय तो सब खत्म हो गया था। सो जब मैं 20 का हुआ और मैंने मेरा कॉलेज खत्म किया, कॉलेज भी मैंने मजबूरी में खत्म किया था, मेरा मन नहीं था कॉलेज करने का। मतलब 12वीं आते आते तक मुझे समझ में आ गया था कि ये शिक्षा प्रणाली मेरे लिए तो नहीं बनी है। बहुत लोगों के लिए बनी है, मैं शिक्षा प्रणाली के खिलाफ नहीं हूं, मगर मेरे लिए नहीं थी वो। क्योंकि अब मैं जब स्कूल के बारे में सोचता हूं तो मुझे उनकी कहानियां याद है, मुझे कुछ भी याद नहीं उन्होंने मुझे क्या पढ़ाया। तो वो शिक्षा प्रणाली से मेरा थोड़ा सा, मैं उखड़ चुका था 12वीं करते करते तक, और मुझे लगा कि मैं खुद पढ़ सकता हूँ। मेरे लिए जब तक मैं कोई चीज को खुद करके ना देखूं, मेरे लिए सीखना बहुत मुश्किल है। तो मैं घर आके किताबों को पढ़ के खुद से अपनी थ्योरीज बना के किया करता था चीजें। कार्टून्स छप रहे थे, लेकिन मुझे मजा आना बंद हो गया था कार्टून्स में। मुझे एक अवार्ड मिला था आरके लक्ष्मण से।
0: अच्छा,
1: तो हाँ, ये उसी स्कूल और कॉलेज के बीच में दो बार मिले थे नेशनल अवार्ड्स। तो उसमें एक बार आरके लक्ष्मण ने मुझसे पूछा कि तुम्हारा प्लान बी क्या है। तो मुझे समझ में नहीं आया, मैंने कहा प्लान बी क्या होता है? तो उन्होंने बोला अगर कार्टूनिंग में नहीं हुआ तो क्या करोगे। तब तक मुझे पता ही नहीं था मुझे क्या करना है, तब तक मुझे पता था मुझे यही करना है। तो ये बड़ा कठिन सवाल मेरे सामने आया, और वही आरके लक्ष्मण अगर फेंक रहे हैं वो सवाल आप पे, तो आपको उसको सीरियसली लेना पड़ेगा।
0: बिल्कुल।
1: तो बहुत गंभीरता से मैंने इस पे विचार किया। मुझे ये समझ में आया कि पॉलिटिकल कार्टून्स की उम्र नहीं होती, सुबह छपता है शाम तक बासी हो जाता है, खत्म हो जाता है। और मेरे बहुत सारे दोस्त ये कर रहे थे, मैं ये करना चाहता था। मैं अखबारों के ऑफिसेज जाता था, कार्टून्स देखे आता था, कभी छप जाते थे कभी नहीं छपते थे, कभी कोई अखबार वाला कॉल कर देता था कि इतना 3 कॉलम बचा हुआ है कुछ ड्रॉ करके दे दे जल्दी से।
0: अरे,
1: तो 3 कॉलम का फटाफट कुछ ड्रॉ करके दिया, उन्होंने 50-60 रुपए दे दिए। तो ये चल रहा था, इसको बहुत लोग संघर्ष बोलते हैं, हमारे लिए बहुत मजे का काम था। क्योंकि एक ही सड़क पे सारे अखबारों के ऑफिसेज होते थे, यहां से वहां, वहां से वहां, वहां से वहां, कहीं ना कहीं छप जाता था।
0: वाह।
1: और कुछ दोस्त थे जो परमानेंट जॉब में लग गए थे इन अखबारों में, वो अभी भी उन अखबारों के साथ काम कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगा कि शायद मुझे पत्रकारिता करनी चाहिए, लेकिन पता नहीं, मेरा मन नहीं लगता था। मेरा मन उन शहरों में नहीं लग रहा था जहां मैं बड़ा हो रहा था। मुझे ऐसा लगा कि मुझे यहां से निकलना होगा और मैं कार्टून नहीं बनाऊंगा। मैं बहुत क्लियर था इस मामले को लेकर कि मैं पॉलिटिकल कार्टून्स नहीं करूंगा। इसलिए नहीं कि मुझे उससे कोई दिक्कत है, इसलिए कि 1999 सन 2000 का साल था वो, और देश की हवा बड़ी विचित्र सी थी। दूसरी चीज ये थी कि मैंने देखा कार्टूनिस्ट प्रांत की एक लेगेसी है, अनुपम सिन्हा की एक लेगेसी है, ली फॉक की एक लेगेसी है, ये मेरे हीरोज हैं। तो अगर मैं लेगेसी नहीं क्रिएट कर रहा हूं तो मुझे आरके लक्ष्मण बनना पड़ेगा, और उसके लिए मुझे 50 साल कार्टून बनाने पड़ेंगे। और मुझे ऐसा, इतना पेशेंस मेरे में नहीं था, अभी भी नहीं है। हाँ, मतलब मैं

0: किसी दिन जाके एक लेगेसी क्रिएट करना वो बहुत दूर की कौड़ी है। तो ये बड़ा गलत भी साउंड कर सकता है, मगर मुझे मेरे काम पे बहुत गर्व है। जो भी मैं कुछ करता हूँ उससे अटैच भी हूँ और डिटैच भी हूँ। अटैच हूँ जब तक मैं उसको बना रहा हूँ, डिटैच हूँ द मोमेंट ये मेरे हाथ से मैंने बाहर भेज दिया, उसके बाद मैं उसको पलट के भी नहीं देखूंगा। लेकिन जब तक मैं उसके साथ हूँ तब तक मैं उसके साथ पूरी तरह से हूँ। तो वो पॉलिटिकल कार्टूनिंग में पॉसिबल नहीं था, वो सोशल कार्टूनिंग में पॉसिबल नहीं था, कॉमिक्स बंद हो चुकी थी। तो उस दौर में मुझे ऐसा लगा एनिमेशन मेरे लिए सबसे मुफीद करियर होगा, और एनिमेशन कुछ नहीं पता था मुझे उसके बारे में। तो मुझे ऐसा लगा कि एनिमेशन सीखने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, मैं घर से पैसे मांग नहीं सकता हूँ। तो अब मुझे कहीं जाके स्टूडियो में किसी जगह पे जाके नौकरी मांगनी पड़ेगी, और वहां जाके मैं एनिमेशन सीख भी लूंगा और मैं एक एनिमेटर बन भी जाऊंगा। तब तो मुझे नहीं पता था कि एनिमेटर कौन होता है, इन बिटवीनर कौन होता है, डायरेक्टर कोई और होता है। मेरे दिमाग में मैं डायरेक्टर था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि उसको डायरेक्टर बोलते हैं। तो उसकी भी बड़ी लंबी सी कहानी है कि मुझे नहीं पता था लाइट बॉक्स क्या होता है। तो मैं जेरोक्स मशीन वाले के वहां खड़े होकर दुकान में मैं लगातार जेरोक्स करके उसको मूवमेंट देता था ड्रॉइंग्स को। अदनान सामी का एक गाना आया था लिफ्ट करा दे, लिफ्ट करा दे पूरा एनिमेट किया था जेरोक्स कर करके।
1: अरे
0: वो कहीं मेरे पास रखा है, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था वो उसके इजी तरीके भी हैं। मुझे डिफिकल्ट तरीके पता थे क्योंकि मैं आर्टिकल्स पढ़े थे। तो मैं उस तरीके से ही काम कर रहा था। तो एनिमेशन के लिए भी बहुत हाथ पैर मारे मैंने। भारत में एनिमेशन का कोई
1: सिस्टमैटिक मामला नहीं था,
0: स्कोप ही नहीं था, कुछ था ही नहीं। एक फिल्म बन रही थी जो मैं क्लास नाइन्थ में था तब से बन रही थी, वो अभी तक बनी नहीं थी, उसका नाम भागमती है। भागमती फाइनली उन्होंने लाइव एक्शन और एनिमेशन मिला के कुछ बना दिया था बाद में। मैं तब मेरे ख्याल से ऑलरेडी एनिमेशन में आ गया था तब तक। तो इस तरीके की चीजें हो रही थी, और जो कोर्सेस थे वो बहुत महंगे थे, तो मैं वो नहीं कर सकता था वो कोर्सेस। तो मुझे ऐसा लगा कि सबसे पहले तो मुझे मेरा गांव छोड़ना पड़ेगा। तब तक हम उड़ीसा शिफ्ट हो चुके थे भिलाई से, और ये बहुत छोटा सा गांव था, इसका नाम आता बिरा है। मतलब वहां आप आलोक शर्मा आता बिरा लिख के चिट्ठी डालिए मेरे घर आ जाती थी, इतना छोटा गाँव था वो। तो उसके लिए उस गाँव से निकलना बहुत जरूरी था। उस बीच में गौतम कॉमिक्स नाम की कंपनी शुरू हुई थी जिसने मार्वल और डीसी पब्लिश करना शुरू किया था। तो मैंने अपना बहुत सारा काम उनको भेजा। उन्होंने बोला ये सब कचरा है, मेरे पिछले 6-7-8 साल की मेहनत को। उन्होंने बोला ये क्वालिटी हमें चाहिए नहीं। तो अब मेरे मन में ये हुआ कि इनको, मतलब अभी तक तो मैं तुरम कहां था, जो भी भेज रहा था सब छप रहा था, ये अचानक एक कौन आ गया है जो मुझे बोल रहा है कि सारा खराब है, हमको ये कुछ चाहिए ही नहीं। तो मैं उनको मिलने गया बैंगलोर, वहां मैंने जाके टेस्ट दिए। तो वो भी एक चीज है कि मुझे टेस्ट वगैरह देने से कोई गुरेज नहीं है, मैं अभी भी देने को तैयार होता हूँ, और सैंपल कोई मांगे मुझसे मैं अभी भी सैंपल करने को रेडी रहता हूँ। तो क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि सबसे बेस्ट आपका ऑडिशन है ही हमारा।
1: बिल्कुल,
0: बड़े बड़े एक्टर्स अगर माइंड नहीं करते ऑडिशन देना, तो मतलब मुझे क्यों इस बात से गुरेज हो कि मुझे ऑडिशन देना पड़ रहा है। तो मैंने वहां जाके फिर फाइनली ऑडिशन दिया। बहुत खींचतान के बाद मेरा काम उनको समझ में आया, उन्होंने मुझे बैंगलोर बुला लिया, और मेरा पहला पब्लिश्ड काम मार्वल कॉमिक्स में आया।
1: वाह वाह वाह।
0: तो पहली कॉमिक्स जो मैंने की वो मार्वल कॉमिक्स थी। मैं अनक्रेडिटेड था, मैं इंकर था स्पाइडरमैन इंडिया में। तो स्पाइडरमैन इंडिया अब तो बहुत बड़ा कैरेक्टर बन गया है, 2004 में वो नया नया कैरेक्टर आया था, अब तो स्पाइडरवर्स वगैरह आ गया है। तो वहां से मेरी कॉमिक्स की जर्नी शुरू हुई, लेकिन तब तक मैं समझ गया था कि कॉमिक्स बहुत मेहनत का काम है। मैं लिखना ज्यादा पसंद करूंगा ड्रॉ करने से, क्योंकि बहुत लोग हैं जो बहुत अच्छे चित्र बनाते हैं। उस जगह तो मेरे ख्याल से भारत के और विश्व के सबसे बेहतरीन कलाकार स्टूडियो में थे, तो उनके बीच में जाके 12th प्लेयर बनने का कोई फायदा नहीं है, तो क्यों ना मैं लिखना शुरू करूं। और मैं उनको कहानियां सुनाता था, क्योंकि मुझे कहानियों का शौक बचपन से रहा है, तो उनको कहानियां पसंद आने लगी। उन्होंने कहा कि तू लिखना क्यों नहीं शुरू करता है, तू लिखेगा तो हम चाहेंगे कि उन कहानियों पर हम लोग ड्रॉइंग करें। वहां से थोड़ा सा लिखने की तरफ मेरा रुझान बढ़ना शुरू हुआ। तब तक मार्वल
1: के साथ,
0: गौतम कॉमिक्स था, गौतम मार्वल के साथ कर रहा था ये चीजें। तो ये आर्टिस्ट ने मुझे बोला, लेकिन तब तक ये हो गया था कि मैं ब्रेक चाहता था उस चीज से, ड्राइंग से, क्योंकि क्या होता है कि किसी चीज को आप बहुत प्यार करते हैं और फिर धीरे धीरे उसकी डेडलाइंस हो जाती हैं, फिर धीरे धीरे उसमें से ना जो उसका जो आनंद है ना वो पूरा रस
1: निकल
0: जाता है, अब वो काम बन जाता है।
1: yes.
0: या बैंक में है या कॉमिक्स बना रहे हैं, दोनों एक काम हो गया है। तो जब ये हो गया है तो, और बैंक का काम इनफैक्ट ज्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि आप बहुत लोगों से मिलते हैं, ये तो बहुत एकाकी काम है। तो ये बड़ा अजीब सा माहौल हो गया था कि जो चीज मुझे सबसे ज्यादा पसंद थी, जिसमें मैंने 6-7 साल अपने दिए थे, उसमें से आनंद थोड़ा थोड़ा निकलने लगा था। और मुझे उस बीच में जापानी कॉमिक्स मांगा, जिनको बोलते हैं मांगा, मुझे बहुत पसंद आने लगी। तो मैंने चाणक्य पे एक मंगा बनाना शुरू किया खुद से, और मुझे बोला गया कि मंगा का भारत में कोई भविष्य नहीं है, तो इसको तुम बंद कर दो। तो मैंने कुछ 30-40 पन्ने उसके बना लिए थे, मैंने उसको बंद किया। मैं एक रेडियो स्टेशन गया, FM रेडियो तब नए नए आए थे, जीवन का मेरा पहला अनुभव था कि मैं एक रेडियो स्टेशन के अंदर गया, और उन्होंने ऑडिशन के लिए बुला लिया। मैंने जस्ट एक मेल भेजी थी उनको कि मैं आना चाहता हूँ, ऑडिशन देना चाहता हूँ, उन्होंने ऑडिशन में बुला लिया। मैंने जीवन में उससे पहले कभी कोई रेडियो स्टेशन नहीं देखा था। मैंने वहां जाके विभत्स ऑडिशन दिया, एक बहुत ही भयानक, अभी भी सोचता हूं तो मैं सिहर जाता हूं। मैं एक किरण श्रीधर नाम के आरजे हुआ करते थे, अभी भी हैं, तो मैं अभी भी मतलब कभी कभी किरण को नतमस्तक हो जाता हूं कि उसने मुझे आधे घंटे कैसे झेला था उस स्टूडियो के अंदर। मैं तो नहीं झेल सकता था अगर कोई मेरे जैसी हरकतें करता वहां पे। तो मैंने बहुत खराब ऑडिशन दिया, बहुत ही ज्यादा खराब। मतलब मैं स्टूडियो के बाहर जाते जाते ही समझ गया था कि ये लोग मेरी शक्ल भी देखना नहीं चाहेंगे। लेकिन यहां मेरी कहानी में एंट्री होती है विविध भारती की। तो विविध भारती मैंने सुनना शुरू किया मेरे ख्याल से जब मैं 9वीं में फेल हुआ था उसके बाद, क्योंकि रात में छाया गीत और ये सब आते थे, मुझे बड़े अच्छे लगते थे, थोड़े सुकून वाले गाने होते थे।
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि रात में आपको थोड़ा सा सुकून चाहिए था, क्योंकि तपता हुआ दिन निकाला है सारे स्कूल से लेके पड़ोस तक। तो वहां मैंने विविध भारती सुनना शुरू किया, जहां मैं आप सबको सुनता था, कमल शर्मा थे, आप थे, आप हैं, और बहुत सारे उद्घोषक। मुझे अभी भी याद है आप लोगों का एक होली का कार्यक्रम आया था जो बहुत बहुत मजेदार था। मैंने उसको रिकॉर्ड करके रखा था एक कैसेट में, तो मैं बहुत सारी चीजें रिकॉर्ड करता था। अमीन सायानी साहब को मैं मिमिक किया करता था, तो मुझे लगा था रेडियो में तो मैं जाके मतलब तूफान ही मचा दूंगा, क्योंकि जैसे कार्टूनिंग में मैंने तूफान मचाया हुआ है अपने दिमाग में। तो जब रेडियो में गया और मैंने ये पूरा ऑडिशन खराब कर दिया, खराब करने के बाद जब मैं बाहर निकल रहा था, तो जो आरजे थी, जैसा कि होता है, एक कुछ तो गलत इन्फॉर्मेशन गई एकदम फट करके ऑन एयर। और मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, ये मन्ना दे की आवाज है। तो उनके जो क्रेडिट थे उसमें क्रेडिट गलत गया हुआ था। तो उन्होंने बोला पक्का? मैंने कहा आप चेक कर लीजिए, इंटरनेट था, उन्होंने तुरंत चेक किया, उन्होंने तुरंत मिस्टेक करेक्ट किया। और उसके बाद वो मन्ना दे पर कार्यक्रम था, और मैंने उनको लगातार ट्रिविया देना शुरू किया, वो प्रोग्राम ठीक हो गया। और उनको लगा कि ये तो ठीक है, आया था ऑडिशन देने, लेकिन आदमी काम का। लेकिन वो 6 महीने तक मुझे हायर नहीं कर सकते थे। ऑडिशन में अगर आपने गड़बड़ कर दी, उनका कुछ तो रूल था, वो 6 महीने तक हायर नहीं कर सकते थे। मैंने 6 महीने से उंगलियों पे गिने हैं, 6 महीने मुझे पता है मैंने कैसे गिने हैं। और मैंने ये भी दिमाग नहीं लगाया कि 6 महीने ऐसे नहीं होता है, 6 महीने वर्किंग डेज के हिसाब से होता है। मैंने 6 महीने डेट टू डेट लगा के
1: और दिन बढ़ गए इसके बाद।
0: नहीं नहीं कम हुए, क्योंकि वर्किंग डेज के हिसाब से तो 6 महीना अगर काउंट करेंगे तो वो 7 महीना हो जाता है, सैटरडे संडे हटा के, नेशनल हॉलीडेज हटा के। मैंने वो गिने ही नहीं, जस्ट जिस दिन 6 महीने पूरे हुए, मैं बैठा, मैंने कॉमिक्स बनाई एक पेज की कि मैंने क्या क्या गड़बड़ किया रेडियो में आपके यहाँ आके, लेकिन मुझे दूसरा चांस चाहिए। वो कॉमिक्स बना के मैंने प्रिंट किया एक पेज का, और मैंने उनको भेज दिया। तो मुझे किसी अनजान नंबर से कॉल आया कि अच्छा आप कार्टून बनाते हैं। मैंने कहा हाँ, तो आप आके मिलेंगे हमसे। मैं वेट कर रहा था रेडियो स्टेशन से कॉल आएगी, लेकिन ये किसी एड एजेंसी से कॉल थी। वो रेडियो से किसी एड एजेंसी को चला गया था मेरा मेरी कॉमिक। तो वो रेडियो की जो प्रोग्रामिंग डायरेक्टर थी, उनके हस्बैंड थे, उनकी एड एजेंसी थी, उन्होंने मुझे फ्रीलांस दे दिया। वो फ्रीलांस निपटाते निपटाते तक मुझे रेडियो से कॉल आया कि अभी 6 महीने पूरे हुए तुम्हारे, अब आ जाओ। तो वो कॉमिक्स की बदौलत मुझे थोड़ा कॉमिक्स का काम मिला, थोड़ा रेडियो को मिला, और मेरा रेडियो में पदार्पण हुआ इस तरह से। और फिर मैंने रेडियो शोज भी किए। फिर एक वही है ना कि एक फेलियर के बाद जो चमड़ी मोटी हो जाती है वो,
1: करेक्ट,
0: हाँ, चमड़ी मोटी हो गई। तो रेडियो शोज भी किए, प्रोड्यूस किया बहुत कुछ, वॉइस ओवर्स किए, फिर तो शर्म भी, झिझक भी चली गई माइक के सामने की। तो इस तरह से रेडियो का करियर शुरू हुआ मेरा।
1: यहां एक गाना सुनते हैं,
0: लिफ्ट करा दे
1: अदनान समी की आवाज़।

0: ये था इस कार्यक्रम का पहला भाग। इसका दूसरा भाग आप सुनेंगे अगले हफ्ते। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम का संपादन किया मनीषा सिंह ने और प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कामले।
1: आज के मेहमान।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: म्यूजिक थेरेपी की संगीत से बीमारों का इलाज भी होता था।
0: संगीतकार नौशाद।
1: अब उस्तादों ने कहा है, पंडितों ने लिखा है कि जितने शार्प नोट हैं वो इंसान में चुस्ती पैदा करते हैं। तो जैसे देखे सूरज की पहली किरण फूटती, राग में एक शार्प नोट शुरू होता है, ललित का मध्यम शार्प लगती है कि अब इंसान को उठना है, मुँह हाथ धोना है, काम काज पर। जैसे जैसे सूरज चढ़ता जाएगा एक एक शार्प नोट, जैसे सूर्य अस्त होने लगता है एक एक कोमल सुर शामिल होना शुरू होता है। तो ये देखिए बड़ी भारी साइंस है। अगर कोई फिल्म में गाना वाना बना लिया, लोगों को पसंद आ गया, तो कोई कमाल नहीं हुआ। ये तो इतना बड़ा साइंस है कि सोचो तो ये लगता है कि अरे हमको तो एक जर्रा भी हमारे पास नहीं है।
0: ऐसी अद्भुत यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

नमस्कार एफएम 102.5 मेगापिक्स नमस्कार एफएम 102.5 मेगाहर्ट्स पर आकाशवाणी उज्जैन आप सुन रहे हैं और अब वक्त हो चला है युवा श्रोताओं की पसंद का खास कार्यक्रम युव वाणी का।

0: शाम वही, लेकिन हर बुधवार उसका अंदाज थोड़ा अलग होता है, क्योंकि जब सुरों से सजती है युववाणी तो इंतजार रहता है सिर्फ एक कार्यक्रम का, आपकी फरमाइश। नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं एफएम 102.5 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर आपका अपना पसंदीदा आकाशवाणी का खास कार्यक्रम युववाणी। आपके साथ मैं हूं तनीषा
1: और मैं हूं रिद्धि। हम आपका दिल से स्वागत करते हैं। उम्मीद है आपकी शाम भी संगीत की तरह ही खुशनुमा और सुकून भरी हो। और दोस्तों, आज है बुधवार विशेष, यानी सप्ताह का वह दिन जब युववाणी की महफिल पूरी तरह सजती है आपकी पसंद के गीतों से। हर बुधवार हम लेकर आते हैं ऐसा संगीतमय सफर जहाँ सुर, धुन और यादें एक साथ कदम से कदम मिलाकर चलती है।
0: सच कहा रिद्धि, संगीत की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि ये हर उम्र, हर एहसास और हर पल का साथी बन जाता है। कभी चेहरे पर मुस्कान ले आता है तो कभी बस कुछ पल के लिए सारी थकान भुला देता है।
1: और जब उन्हीं गीतों का चुनाव हमारे अपने श्रोता करे तो इस कार्यक्रम की बात ही कुछ और हो जाती है। हमारे फेसबुक पेज पर कमेंट करके भेजी गई आपकी फरमाइशें इस महफिल को और भी खास बना देती है।
0: तो अगले एक घंटे तक बस संगीत ही संगीत, आपकी पसंद के चुनिंदा गीत, सुरीली धुने और एक ऐसा साथ जो इस शाम को यादगार बना देगा।
1: तो आराम से बैठ जाइए श्रोताओं, अपनी चाय या कॉफी का स्वाद लीजिए और हमारे साथ इस खूबसूरत संगीतमय सफर का आनंद उठाइए।
0: तो चलिए दोस्तों, अब और इंतजार नहीं करते हैं,
1: शुरुआत करते हैं बुधवार विशेष आपकी फरमाइश की पहली प्रस्तुति से, जो हमें भेजी है औरंगाबाद महाराष्ट्र से अनिल कुमार घोड़के, वैशाली अनिल, प्राजक्ता घोड़के, वैष्णवी घोड़के, गायत्री घोड़के, यज्ञेश घोड़के, होली चौक उत्तम नगर से जयराम खोरवाल, सचिन खोरवाल, अमन खोरवाल, दीपांशु खोरवाल ने।
0: भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा, ईशान छीपा, पूजा परिहार, एमएलबी रोड ग्वालियर से सुरेश खुराना पप्पी, किरण खुराना, लव्या, आरफ खुराना, एस के पप्पी।
1: उन्हें उज्जैन से भैरूलाल वाकतरिया धाकड़, भोला वाकतरिया, प्रवीण वाकतरिया, रियांश वाकतरिया, प्रतीक वाकतरिया। अरिया बिहार से मोहम्मद सरफराज आलिम जी, कवि प्रेमचंद जी, डॉक्टर प्रकाश गोगैया जी, मनोहर लाल गांधी जी, फारूक अली खान जी।
0: डोंडी लोहारा बालौद, छत्तीसगढ़ से देवशंकर तमूरिया, अजय देव तमूरिया, तुषार देव तमूरिया, डॉली बेबी, पूजा तमूरिया, राधिका, प्रभा देवी तमूरिया, पोता मास्टर अल कबीर, अक्षय कॉलोनी, गोंदूर रोड धुलिया महाराष्ट्र से मनोहर मगर, यामिनी मगर, उदयन अर्पिता।
1: सिल्लार पहलगाम कश्मीर से पीरजादा मिराजदीन, आर्यनगर कोहका से उत्तम सिंह जंगेल, मोरस जंगेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंगेल, नंदिनी जंगेल।
0: धमदा ग्राम सुखरी से कला अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि ओशिका, आदित्य जंघेल, अंजलि जंघेल। जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ से चंद्रभान राजवाड़े, बबीता राजवाड़े और दिया। तो चलिए दोस्तों, आपकी फरमाइश पर सुनाते हैं आपको आज की शाम का ये पहला गीत।

0: तो दोस्तों, अभी आपने सुना फिल्म हैप्पी न्यू ईयर का एक सुंदर गीत, जिसे अपनी आवाज दी थी श्रेया घोषाल और अरिजीत सिंह ने, संगीत दिया था विशाल शेखर ने और इसके गीतकार थे इरशाद कामिल। तो दोस्तों, अब जिक्र करते हैं उस फरमाइश का जो हम तक पहुंची है। जवाहर नगर दुर्ग से आरसी कामड़े, करुणा मीना, अश्विनी, विपुल कामड़े। सोलापुर महाराष्ट्र से विष्णु मिस्कीन, रितिका मिस्कीन, वाणी मिस्कीन, आरफ मिस्कीन।
1: भाटापुरा छत्तीसगढ़ से हीरा मणि वर्मा, पारस मणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा, नोखे लाल वर्मा। जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से मेहर अरोड़ा, ममता अरोड़ा, कीर्ति अरोड़ा, भूमिका अरोड़ा।
0: गिरिडीह ही झारखंड से मोहम्मद यासीन अनजान, साइमा नवाज, हसन नवाज, बाबू अहद, मिफ्रा नवाज, बेबी चाहत, सादिया। इस्लामपुर जिला बुलढाणा महाराष्ट्र से नासिर पटेल, रिजवान अंजुम, अल्फिया, सानिया, रेहान।
1: पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से अनिल मोहन, उषा मोहन, टिट्टू नायक, मधु नायक। ग्राम कुसुम बुजर्ग अमरावती महाराष्ट्र से प्रवीण हागोड़े, योगिता हागोड़े, प्रियाली हागोड़े, पार्थ हागोड़े।
0: नलेश्वर नगर नरवेल से पीएस नहावकर, निर्मला नहावकर, विशाल नहावकर। मलकापुर से नारायण इंगले, सोपान ताहिड़े, आशीष मुहेकर।
1: गोराया जालंधर से संदीप मक्कड़, ज्योति मक्कड़, मन्नत मक्कड़, भरत मक्कड़, कमल सहानी, पिंगा। बागपत उत्तर प्रदेश से संजय ढींगिया, नमन ढींगिया, अपार ढींगिया। आइए सुनते हैं आपकी फरमाइश का ये गीत।

0: श्रोताओं, आपने सुना फिल्म आराधना से ये गीत, जिसके गायक थे किशोर कुमार, संगीतकार थे एसटी बर्मन और गीतकार थे आनंद बख्शी। चलिए अब शामिल करते हैं हमारे अगले श्रोताओं की फरमाइशी। जिला अम्बाला से रवि कुमार राहुल, रणजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका मन्नत, गुरकीरत राहुल, गुरशब्द सिंह राहुल। जोधपुर राजस्थान से मोहम्मद अफजल।
1: सफीनो सिटी हरियाणा से नानक खन्ना, चंचल खन्ना, लाडो लवली खन्ना, रजत खन्ना, लव खन्ना, कुश खन्ना। जिला नांदेड़ एताला महाराष्ट्र से शंकरलाल जायसवाल, गणेशलाल जायसवाल, शुभम प्रसाद जायसवाल, अर्णव जायसवाल, दुर्गेश्वरी जायसवाल, राकेश जायसवाल, तृप्ति जायसवाल।
0: सनावत मध्य प्रदेश से मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज वर्मा, आयुषी वर्मा, रामेश चंद्र वर्मा, शेख मूसा भाईजान, भाई राजकुमार बोड़ाना। खंडवा से लक्ष्मी नंदनी, रोहित, ऋतु, मुकेश जगताप।
1: जिला हमीरपुर बुंदेलखंड से रामशरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, मंटू, रंजना, वंदना, प्रियल, दिव्यांशी विश्वकर्मा। ग्राम पिड़पा, जिला छतरपुर मध्य प्रदेश से राजा राम अहिरवार, कौशल्या अहिरवार, मोहिनी अहिरवार, शिवा अहिरवार।
0: नागपुर महाराष्ट्र से कमल साहनी, डॉक्टर हाजी अफजल मलिक, चरूड़गरी पिपरिया। जिला कबीर धाम छत्तीसगढ़ से दुर्गा राम साहू, अजय कुमार साहू, जय किशन साहू, श्रीमती कुमारी साहू, श्रीमती इंद्राणी, माया साहू।
1: सूरतगढ़ राजस्थान से इंद्राज ज्ञानी, कूतीपाड़ा कटिहार से राजेश भारती, विभा रानी, आदित्य राज, प्रिया भारती, प्रियंका भारती, प्रेरणा भारती और प्रगति भारती की फरमाइश पर आई श्रोताओं, सुनाते हैं आपको अगला गीत।

0: चाहिए, वो भी ऐप से। वाह,
1: अनजान ऐप से बचें।
2: RBI कहता है,
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: दोस्तों, अभी आपने सुना फिल्म बागी से ये सुंदर गीत, जिसे अपनी आवाज दी थी मोनाली ठाकुर ने, संगीत दिया था मीट ब्रॉस ने और गीत दिया था कुमार ने। तो अब समय है एक और खूबसूरत फरमाइश का, जो हमें भेजी है भारती नगर मुश्कीपुर खगड़िया से विवेक रमन, अक्षित रमन, परिधि रमन, विनीता रमन, आयुष, संजीव, रश्मि, संतोष, राजेश भारती, विभा रानी, तिरुपति कॉलोनी उज्जैन से संगीता जैन,
4: उत्तम नगर दिल्ली से बोध राज खोरवाल, कमला रानी, गीतिका खोरवाल, भानु प्रकाश, गांव टोरोवाल, जिला नवानशहर पंजाब से गगनदीप थांदी, तृप्ता कुमारी थांदी, डॉक्टर प्रियंका थांदी, डॉक्टर प्रशांत थांदी, डॉक्टर प्रियम थांदी, बेबी वामिका वाणी थांदी,
3: मुंगेसापुर से मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरून निशा, शबिस्ता, मोहम्मद नसीब, पलक लुबना, यश मंसूरी, चीकूटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरदीन अब्बासी, सुहान अब्बासी, अरजान अब्बासी और अब्बासी परिवार के सभी सदस्य,
4: गांव छखोत से शंभु दयाल खटक, विमला देवी, योगेश कुमार, दीपक कुमार, कुमारी पूजा खटक, आश्री जालना महाराष्ट्र से, दत्ता धोड़के,
3: मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप कालका, शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज, बिट्टा बजाज, गांव फरांसी, जिला हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी, पुष्पेंद्र कुमार डूडी,
4: छिंदवाड़ा बेड़री मध्य प्रदेश से नानाजी तामसे, मीना तामसे, तेजस जय तामसे, हर्षिता तामसे, इज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया, रीता भाटिया, रजत भाटिया, मयंक भाटिया। और इसी के साथ सुनते हैं आपकी फरमाइश का ये गीत।

0: आपने सुना ये गीत फिल्म अखियों के झरोकों से, जिसके गीतकार थे रविंद्र जैन, गायक थे हेमलता, संगीतकार थे रविंद्र जैन। चलिए अब शामिल करते हैं हमारे अगले श्रोताओं की फरमाइशें जो हमें भेजी गई है नानाखेड़ा बस स्टैंड उज्जैन मध्य प्रदेश से। लोकेंद्र वर्मा, अनिकेत वर्मा, अर्पिता वर्मा, रेखा वर्मा, इशिका वर्मा, सनावत से शेख मूसा मोहसिन, अशोक वर्मा, राजकुमार बोड़ाना।
1: गांधीनगर गुजरात से जीके परमार, गांव खोखरा वाले श्री गंगानगर से विनोद बारासा, विशाल बारासा, विकास बारासा, रोशनी बारासा, शगुन बारासा।

0: गोविंदपुरा सिकार राजस्थान से दत्तार सिंह शेखावत, संगीता कंवर, तुषार सिंह, रिंकी शेखावत, पतेरा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से वेद प्रकाश अहिरवार।
1: कोडवा साजा छत्तीसगढ़ से रामस्वरूप गुप्ता, विवेक गुप्ता, एचडी गुप्ता। अमरावती महाराष्ट्र से सिद्धार्थ गोडाने, अर्चना गोडाने, हिरामन शेंडे, किशोर धनाडे, हिम्मत राव शंगारे, राजेंद्र गुप्ता, दीपक कुल्हाड़े।
0: जमानिया जिला गाजीपुर से सुरेश जायसवाल, उर्मिला जायसवाल, दीपक जायसवाल, स्वाति जायसवाल। मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से तौफीक अहमद सिद्दीकी, अतीक अहमद सिद्दीकी, मोहम्मद दानिश सिद्दीकी।
1: बेरडी मध्य प्रदेश से हुकुम करमरकर, सुनीता करमरकर, हार्दिक करमरकर, प्राची तनु करमरकर। जिला किशनगंज बिहार से रविन्द्र मोहनदास, आशा देवी। और बड़वाह जिला खरगोन से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली की फरमाइश पर श्रोताओं सुनाते हैं आपको अगला गीत।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: दोस्तों, अभी आपने सुना फिल्म बजरंगी भाईजान का एक खूबसूरत गीत, जिसे अपनी आवाज से सजाया था आतिफ असलम ने, संगीत दिया था अमिताभ भट्टाचार्य ने और संगीत दिया था प्रीतम ने। तो दोस्तों, महफिल में शामिल करते हैं हमारी अगली संगीतमय प्रस्तुति, जिसकी फरमाइश हमें भेजी है सातपुरा जिला 12 राजस्थान से सतीश श्रीवास्तव, प्रेमलता श्रीवास्तव, हिमानी हर्षिता, अभिषेक श्रीवास्तव।
2: छत्तीसगढ़ चूड़ी लाइन मुंगेली से मोहम्मद इसहाक, खतीजा बेगम, मोहम्मद अशफाक, आफरीन कौसर, मोहम्मद अल्ताफ, नीलोफर फातिमा। बड़ा बम चौक खंडवा से ममता बामरकंडे, संजय मारकंडे, बीबी कट्टू।
1: रावर करनाल से ज्ञान भूषण शर्मा, सोमनाथ कातिया। ग्राम लोहेड़ी जिला महोबा बुंदेलखंड से जयपाल यादव, इंद्रपाल यादव, राघवेंद्र, अरविंद, रागिनी रिया, रेणु दिव्यांशी, चंद्रेश गोहर, सुनील पाठक।
2: मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गवाड़कर, राही, श्रीमती सरिता गवाड़कर, प्रणीता सिद्धांत गवाड़कर, अर्जुन गवाड़कर। आकार हाइट्स बहादुरपुर नागपुर से वैशाली शैलेश गवाड़कर, सुमित गवाड़कर, कुमारी ध्वनि गवाड़कर, परी प्रिंस एकांश गवाड़कर।
1: मालवा रेडियो श्रोता संघ ग्राम हिंगड़ी अलॉट से जगदीश ठाकर, नायमा श्रीमती रंजूबाई ठाकर, युवराज सिंह ठाकर, शिवानी ठाकर। कोटवा नारायणपुर से बाबा पट्टी, ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय।
2: दुबिहा नेवादा जिला गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय, प्रांजल राय। पुरानी भिलाई 3 पदुम नगर चरोदा छत्तीसगढ़ से डॉक्टर नौशाद अहमद सिद्दीकी, बेगम हमीदुन सिद्दीकी, जीशान अहमद सिद्दीकी, शहनवाज अहमद सिद्दीकी।
1: मालियान सरधना मेरठ से अनिल जैन, जैन साहब, संयम जैन, मुस्कान जैन, मास्टर जीवयम जैन। हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान से रज़ाक मोहम्मद, समीम बेगम, इरफान खान। तो श्रोताओं, इसी के साथ सुनते हैं हमारी फरमाइश का ये अगला गीत।

0: श्रोताओं, आपने सुना ये गीत फिल्म कबीर सिंह से, जिसके गायक थे अरिजीत सिंह, गीतकार थे मिथुन, संगीतकार थे मिथुन। अब शामिल करते हैं हमारी अगली फरमाइशों को। हमें हर फरमाइश मिली है जिला झालावाड़ राजस्थान से, सिंधु सिंह राजपूत।
1: पुनावले पुणे से अजय सोनवड़े, करिश्मा सोनवड़े, अविका सोनवड़े, विशाखा सोनवड़े, आकोट विनायक भेंडे, श्रीमती मंगला भेंडे, विजय, शुभम बेंडे, पविन जरिए, संजीव डाबेराव, ग्राम सेवरडे जिला छतरपुर से भरेलाल प्रजापति, धनीराम, नरेश कल्लू, रविंद्र बिंदावन प्रजापति,
0: ग्राम करेली जिला बरेली से मोहम्मद आमिर अंसारी, शमीम अंसारी, माहे नूर अंसारी, नसरीन अंसारी, समा अंसारी, मुगलपुरा बागपत से अब्दुल सत्तार अब्बासी,
1: गुजरात पाटन से धीरज वी रब्बारी, तनीषा जी, रिद्धि जी, खरसवा झारखंड से सकुरा नायक, मंजू नायक, चलेश्वर नायक, गौरव नायक,
0: बघेरा दुर्ग से संतोष नामदेव, सार्थक नामदेव, समर्थ नामदेव, शौर्य नामदेव, जबलपुर मध्य प्रदेश से अशोक सिंह, सुनीता सिंह,
1: खैल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा, नीटू, लक्ष्य मल्होत्रा, लाडू कोयल मल्होत्रा, नानक चंद मल्होत्रा, बुलंदशहर से उमेश कुमार गौड़, रानी गौर, जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज रिफाकत, मोहम्मद रिहान, समरीन परवीन, माहिरा नूर। तो इसी के साथ श्रोताओं, सुनते हैं हमारी फरमाइश का ये अगला गीत।

शाम रोक लई रोक लई रोक लई ढाई शाम रोक लई और चक मुख चूम लई मुख चूम लई मुख चूम लई सर से मोरी चुनरी गई।

0: श्रोताओं, आपने सुना ये गीत फिल्म देवदास से, जिसके गायक थे पंडित बिरजू महाराज, संगीतकार थे इस्माइल दरबार और गीतकार थे नुसरत बदर।
1: तो दोस्तों, अब जिक्र करते हैं उस फरमाइश का जो हम तक पहुंची है आज़ाद नगर हरिद्वार उत्तराखंड से, ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर रही मीराज जहां, दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी और बब्बू डब्बू।
0: गांधी ग्राम गुजरात से प्रवीण सोनी, कलावती सोनी, जगदीश जौहरी, कस्बा उजानी बदायूं से धीरज गुप्ता, पंकज बजाज, डॉक्टर देवेंद्र गुप्ता, डीके हिटलर परिवार के सभी सदस्य।
1: कुरावली से अनिल कुमार वर्मा, राहुल कुमार वर्मा, सोनम वर्मा। डाबकी रोड से सुशीला देवी मंदूरकर, सदानंद मंदूरकर, कुमार गौरव मंदूरकर।
0: जिला बेगूसराय से नंदन कुमार सिंह, अंकित कुमार सिंह, संदीप कुमार सिंह, संजय कुमार सिंह। संबलपुर से कांकेर, फागुराम यादव, ज्योति यादव, ओजस्वी यादव।
1: कोरबा छत्तीसगढ़ से लक्ष्मण सिंह ठाकुर, माला ठाकुर। मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, सौरभ शर्मा, साइना शर्मा, निवान शर्मा।
0: अमरावती से सैयद भाई, सूफियान, अंसा आयजा, कमरुल्ला ठेकेदार, नसीम बेगम, आयशा खान, हादिया खान, आफिया। गुमला झारखंड से नजमुल होता, एस एम जावेद। लेवाई छत्तीसगढ़ से गुलाब दास मानिकपुरी, राजा दास मानिकपुरी, रानी मानिकपुरी। और आइए श्रोताओं, सुनते हैं आपकी फरमाइश का ये गीत।

0: दोस्तों, अभी आपने सुना फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे का ये खूबसूरत गीत, जिसे अपनी सुंदर आवाज से सजाया था लता मंगेशकर ने, संगीत दिया था जतिन ललित ने और गीतकार थे आनंद बख्शी। तो दोस्तों, इसी के साथ सुनते हैं हमारी अगली फरमाइश। कहाँ से भेजी है? सूर्यनगर जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान, बेबी गर्वी। सिद्धार्थनगर शेरी वडनेर अकोला से गजानन येले, नवदीप येले, अरुणा बददेव दामोदर, आदित्य दामोदर।
1: बिलराम गेट कासगंज से एम असलम सेफी, जेबू निशा बेगम, सदाम सेफी, सोनी सेफी, जाहिद सेफी, आबाद खान। दमदार एयरपोर्ट कलकत्ता से बसंत कुमार सिन्हा, रेखा देवी, अजय कुमार गुप्ता, रिमी तनुश्री गुप्ता, नन्ही पोती अविका।
0: चौकरधाम कॉलोनी सनावत जिला खरगोन से कृष्णपाल सिंह चौहान, तारा देवी चौहान, नवोदित सिंह चौहान, वैभव पाल सिंह चौहान। सरहानपुर से सैयद मसरूर, शाइना हसन, अक्सा, नाजिया आफिया।
1: जागादारी जिला यमुनानगर हरियाणा से विनय मोहन खारवन, मीनाक्षी प्लोमा, डॉक्टर ईशानी। नांदेड़ महाराष्ट्र से नारायण गायकवाड़, दयानंद गायकवाड़, ओमकार गायकवाड़, साई गायकवाड़।
0: जिला मोहाली पंजाब से गुरप्रीत तंगौरी, जसबीर कौर, महिकप्रीत कौर, सहिजप्रीत सिंह। सागर लखना दौन मध्य प्रदेश से तारती जी चौबे, रिमझिम चौबे, सक्षम चौबे की फरमाइश पर आइए सुनते हैं अगला गीत।

0: श्रोताओं, आपने सुना ये खूबसूरत गीत फिल्म कलंक से, जिसे गाया है अरिजीत सिंह ने, संगीतकार थे जिसके प्रीतम, गीतकार थे अमिताभ भट्टाचार्य। चलिए श्रोता, सुनते हैं हमारे श्रोताओं की अगली फरमाइशें। हमें फरमाइशें मिली है बड़ा बामुलिया जिला सीहोर से, सुनील चौरसिया ग्राम पजोनिया जिला जालौन से, सत्येंद्र कुमार चंसोलिया, आदर्श सार्थक अलौकिक चंसोलिया।
1: फाजिलका पंजाब से भूषण खेड़ा, विशु खेड़ा, विशाल खेड़ा, लाड़ी खेड़ा, शालिनी खेड़ा, टिवांची खेड़ा, आरबी खेड़ा, जीवन सिंह बुक। समस्तीपुर रोहतास बिहार से मीरा सिंह, ज्योति सिंह, सोनम सिंह, अनामिका सिंह।
0: श्रीगंगानगर राजस्थान से नेकी राम बंसीवाला, जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिक्स्ट्रो, रॉज डेक्स्ट्रो,
1: एड डिकेस्ट्रो, विलिस डिकेस्ट्रो। पश्चिमपुरी दिल्ली से उत्तम सिंह जुनेजा, भूपेंद्र जुनेजा, सीमा जुनेजा, अनमोल जुनेजा। रघुनाथपुरा से लालगिरी गोस्वामी, खुशी गोस्वामी।
0: मणिपुर जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से सोहन लाल साहू, रुक्मणी तेजवर साहू, खुशहाल साहू। बोराखेड़ा पित्रामाल जिला उज्जैन से विनोद मन्नत, नेहा जैन, दीपक मन्नत, चेतन नाहता, दीक्षा कुश मन्नत।
1: ग्राम लसूरिया पाता जिला राजगढ़ मध्य प्रदेश से गोविंद वैष्णव, दिव्या सुमन, कोमल परी, कृतिका, रमेश चंद्र डांगी। ग्राम बगुबुड़वा पथरिया से नरेन नेता,

0: दोस्तों, अभी आपने सुना फिल्म सुपर 30 का ये बेहद खूबसूरत गीत, जिसे अपनी सुरीली आवाज से सजाया था श्रेया घोषाल और उदित नारायण ने। गीतकार थे अमिताभ भट्टाचार्य और संगीत दिया था अजय अतुल ने। तो दोस्तों, आज के आपके फरमाइश स्पेशल एपिसोड में बस इतना ही। आपके ढेर सारे प्यार और खूबसूरत संदेशों ने आज की शाम को बेहद खास बना दिया।
1: जिन श्रोताओं के नाम आज शामिल होने से रह गए हो, वे निराश ना हो। अगले बुधवार हम फिर हाजिर होंगे आपकी नई फरमाइश और ढेरों गानों के साथ।
0: तब तक के लिए मैं तनीषा
1: और मैं रिद्धि आपसे लेते हैं विदा। सुनते रहिए आकाशवाणी उज्जैन FM 102.5 MHz।
0: नमस्कार।

नमस्कार, FM 102.5 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज़ ऑन एयर मोबाइल एप्लीकेशन पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र। श्रोताओं, मैं हूं आप सभी का उद्घोषक साथी यश भट्ट। श्रोताओं, घड़ी में ठीक 6 बज चुके हैं शाम के और अब

हो चला है आकाशवाणी उज्जैन के विशेष भक्ति परक धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यक्रम भजन संध्या का। श्रोताओं, आप सभी का मैं भजन संध्या कार्यक्रम में हृदय से स्वागत करता हूँ। प्यारे श्रोताओं, आज की तेज़ रफ्तार जिंदगी में हम सब किसी न किसी दौड़ का हिस्सा बन चुके हैं। लक्ष्य बड़े होते जा रहे हैं, लेकिन मन की शांति कहीं पीछे छूटती जा रही है, और आप सभी को यह महसूस भी होता होगा। खासकर आज की युवा पीढ़ी, जिसे हम जेन जी कहते हैं, जिनके पास अवसर भी सबसे अधिक है और चैलेंजेस भी सबसे ज़्यादा। सफलता की तलाश में कई बार हम स्वयं से ही दूर हो जाते हैं। ऐसे समय में भक्ति हमें रुकना, स्वयं को सुनना और भीतर झांकना सिखाती है। भक्ति यह शब्द जितना सरल सुनाई देता है, उसका अर्थ उतना ही गहरा भी है। क्या भक्ति केवल दीप चलाने का नाम है श्रोताओं? क्या केवल मंदिर जाना, मंत्रों का उच्चारण करना या पूजा अर्चन करना ही भक्ति है? या फिर हर वह कार्य जिसमें निस्वार्थ भाव हो, हर वह कर्म जिसमें करुणा हो, हर वह विचार जिसमें मानवता हो, और हर वह प्रयास जिससे किसी के चेहरे पर मुस्कान आए, क्या वही सच्ची भक्ति नहीं है? भारतीय दर्शन हमें बताता है कि ईश्वर तक पहुंचने के अनेक मार्ग हैं। किसी ने उन्हें ज्ञान के माध्यम से पाया, किसी ने सेवा के माध्यम से, किसी ने संगीत में उन्हें अनुभव किया, और किसी ने प्रेम में। शायद इसीलिए भजन केवल सुरों का संगम नहीं, बल्कि आत्मा और परमात्मा के बीच संवाद का एक सुंदर माध्यम है। जब मन भक्ति में डूबता है, तब चिंता की जगह विश्वास, अशांति की जगह संतुलन, और अकेलेपन की जगह एक अद्भुत अपनापन महसूस होने लगता है। तो दोस्तों, श्रोताओं, आइए कुछ क्षणों के लिए जीवन की भागदौड़ से विराम ले, अपने मन को शांत करें और भक्ति के इन मधुर स्वरों में स्वयं को समर्पित करें। इसी पावन भाव के साथ चलिए आज का पहला सुमधुर, आनंदमय और भक्तिमय भजन के साथ शुरुआत करते हैं आज के अद्भुत कार्यक्रम की।

प्यारे श्रोताओं, अभी आपने यह सुंदर सा मनोहारी भजन सुना फिल्म वसंत विहार से, जिसे अपने सुंदर सुरों से सजाया गायक मोहम्मद रफ़ी ने। श्रोताओं, सेवा भी एक भक्ति है। जब हम किसी भूखे को भोजन कराते हैं, किसी असहाय की मदद करते हैं, किसी निराश व्यक्ति को आशा देते हैं, या फिर किसी परेशान का हाथ थाम कर उसकी मदद करते हैं, उसे उसकी परेशानी से निकालते हैं, तब हम केवल सेवा नहीं करते, हम ईश्वर की पूजा करते हैं। और महान संत कबीर ने भी कहा है, सेवा में ही सच्चा साधन है। इसी बात को लेकर आगे चलते हैं और सुनते हैं आज का अगला और सुंदर सा ये भजन।

श्रोताओं, भक्ति केवल मंदिरों और पूजा पाठ तक सीमित नहीं है। भक्ति का एक स्वरूप प्रकृति के प्रति हमारा प्रेम और हमारी जिम्मेदारी भी है। जब हम वृक्ष लगाते हैं, किसी नदी या तालाब को स्वच्छ रखने का प्रयास करते हैं, पक्षियों के लिए जल रखते हैं, या धरती को आने वाली पीढ़ियों के लिए बेहतर बनाने का संकल्प लेते हैं, तब केवल पर्यावरण की रक्षा नहीं करते हम, बल्कि सृष्टि के रचयिता के प्रति अपनी कृतज्ञता भी व्यक्त करते हैं। आज जब पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिंग, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण की बात कर रही है, तब हमारी प्राचीन भारतीय संस्कृति हमें सदियों पहले ही यह संदेश दे चुकी है कि प्रकृति और परमात्मा अलग नहीं है, बल्कि एक दूसरे से पूरक ही है। विशेषकर आज की युवा पीढ़ी यदि अपने जीवन में भक्ति के साथ प्रकृति संरक्षण को भी अपना ले और उसे एज अ संकल्प ले ले, तो वह केवल समाज ही नहीं, आने वाले भविष्य के लिए भी एक बड़ी सेवा होगी। क्योंकि ईश्वर केवल मंदिरों में नहीं, उनकी बनाई हुई हर रचना में भी निवास करते हैं। प्रकृति का सम्मान करना वास्तव में हमारी सृष्टि का, हमारे भगवान का, हमारे ईश्वर का और हमारी बनाई गई दुनिया का सम्मान करना है। चलिए दोस्तों, इसी भाव से सुनते हैं आज का अगला भजन।

श्रोताओं, भक्ति के अलग अलग रूप होते हैं। भक्ति का सबसे बड़ा चमत्कार यह नहीं है कि हमारे साथ कोई अचानक चमत्कार हो जाए, हम अमीर हो जाए, धनवान हो जाए, या फिर हमारी परिस्थितियां अचानक बदल जाए, बल्कि भक्ति का असल महत्व यह है कि हमारा दृष्टिकोण बदले। जहाँ पहले क्रोध था, वहाँ धैर्य आ जाता है। जहाँ अहंकार था, वहीं विनम्रता जन्म लेती है। जहाँ भय था, वहाँ विश्वास का प्रकाश फैलने लगता है। जहाँ निराशा थी, वहाँ आशा का दीप जल उठता है। भक्ति हमें बाहर से नहीं, भीतर से मजबूत बनाती है। लेकिन भक्ति का अर्थ केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं है दोस्तों। उसके रूप अनेक हो सकते हैं, पर उसका मूल भाव एक ही है, प्रेम, करुणा और निस्वार्थ भाव। जब हम अपने माता पिता के चेहरे पर मुस्कान लेकर आते हैं, जब किसी मित्र का कठिन समय में साथ निभाते हैं, जब किसी अनजान व्यक्ति की बिना किसी स्वार्थ के सहायता करते हैं, जब किसी भूखे को भोजन, किसी निराश व्यक्ति को हौसला या किसी अकेले इंसान को अपनापन देते हैं, तब भी वह एक प्रकार की भक्ति ही है। या फिर सबसे अलग, हम जिन्हें प्रेम करते हैं, उन्हें और प्रेम करना और ज़्यादा प्रेम करना भी एक तरीके की भक्ति है। आज की युवा पीढ़ी के लिए भी भक्ति का अर्थ केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाना, अपने सपनों के लिए परिश्रम करना, अपने परिवार का सम्मान करना और समाज के प्रति संवेदनशील बने रहना भी है। क्योंकि अंततः भक्ति हमें ईश्वर के निकट ले जाने से पहले एक बेहतर इंसान बनाना सिखाती है, और शायद यही सच्ची भक्ति का सबसे सुंदर स्वरूप है। चलिए दोस्तों, इसी बात को आगे बढ़ाते हुए आज का अगला भजन आप सभी के लिए।

0: श्रोताओं, अभी ये सुंदर सा भजन आपने सुना गायिका अनुराधा पौडवाल की सुंदर सी और मनोहारी आवाज में। श्रोताओं, भक्ति केवल मंदिरों तक सीमित नहीं है, यह जीवन जीने की एक सुंदर कला भी है। यदि हमारे विचार सकारात्मक हो, हमारी वाणी में मधुरता हो, हमारे कर्मों में ईमानदारी, करुणा और सेवा का भाव हो, तो वही सबसे सच्ची और सबसे बड़ी उपासना है। जीवन की सबसे बड़ी सफलता केवल ऊंचे पद या अधिक धन में नहीं, बल्कि ऐसा व्यक्तित्व बनने में है जो स्वयं भी सुखी रहे और दूसरों के जीवन में भी आशा, प्रेम, विश्वास, मोटिवेशन और इंस्पिरेशन का प्रकाश बांट सके। आज की युवा पीढ़ी के लिए भी यही संदेश है कि सपने देखिए, सफलता के लिए मेहनत कीजिए, नई ऊंचाइयां छूइए, लेकिन अपनी संवेदनाएं, अपने संस्कार और अपनी मानवता कभी मत खोइए। क्योंकि सच्ची भक्ति वही है जो हमें बेहतर इंसान बनाए, अपने परिवार के प्रति जिम्मेदार बनाए, समाज के प्रति संवेदनशील और सजग बनाए, और साथ ही साथ प्रकृति के प्रति भी कृतज्ञ बनाए। हरि का स्मरण करते रहिए। आप जिससे भी इष्ट मानते हैं, भगवान मानते हैं, जिन्हें भी पूछते हैं, जिनसे मोटिवेशन लेते हैं, इंस्पिरेशन लेते हैं, उनसे बात कीजिए और अपने इष्टों को याद कीजिए। सद्व कर्म करते रहिए, मुस्कान बांटते रहिए, और जहाँ भी रहे अपने कर्मों से प्रेम, शांति और सकारात्मक का प्रकाश फैलाते रहिए। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आज की भजन संध्या को यही विराम देते हैं, लेकिन जाते जाते आपको फिर छोड़ जाते हैं एक सुंदर से, बहुत ही मनोहारी और जीवन के एक बहुत अहम दर्शन को सिखाने वाला बहुत सुंदर सा ये अगला भजन। नमस्कार।
1: हाँ, उल्लू का पट्टा बोलिए। आप ही इंसाफ करो, क्या मैं देखने में क्या उल्लू का पट्टा दिखाई देता हूँ? माँ जी,
2: नहीं तो तुम तो अच्छे खासे शरीफ आदमी मालूम होते हो।
1: ऐसी कोई बात हो गई ना, काम तो मुझे आपके मतलब का भी आता है महारानी।
2: मेरे मतलब का?
1: हाँ, मैंने

देखिए ना, आपका तो भक्ति भाव है, कभी आपको फुर्सत होगी तो बहुत सुंदर सुंदर भजन आपको सुनाया करूंगा। मेरे बड़े भैया और भाभी थी तो मैं उनको भी सुनाता था,

नमस्कार, FM 102.5 MHz और न्यूज़ ऑन एयर मोबाइल एप्लीकेशन पर आप सभी सुन रहे हैं आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र, और मैं हूं आप सभी का उद्घोषक साथी यश वट। श्रोताओ, ठीक 6:30 हो चुके हैं शाम के, और अब वक्त हो चला है

है आपके पसंदीदा और प्रिय कार्यक्रम फिल्म संगीत का। श्रोताओ, आज का यह विशेष अंक और आज का यह विशेष कार्यक्रम समर्पित है उस महान व्यक्तित्व को जिसने पूरी दुनिया को यह विश्वास दिलाया कि साहस, विज्ञान और सपनों का संगम असंभव को भी संभव बना देता है। आज महान अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग का जन्म जयंती है। 5 अगस्त 1930 को जन्मे नील आर्मस्ट्रांग ने केवल एक अंतरिक्ष यात्री नहीं बल्कि जिज्ञासा, अनुशासन और मानव क्षमता के प्रतीक थे। वर्ष 1969 में अपोलो 11 मिशन के माध्यम से उन्होंने चंद्रमा पर पहला कदम रखकर इतिहास रच दिया। जी हाँ दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि बातों बातों में कहते हैं भी कि इंसान चांद पर चले गया, मगर असल में इंसान चांद पर गया था सन 1969 में, जब नील आर्मस्ट्रांग नामक अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री चांद पर पहुंचने वाले पहले इंसान, पहले मानव, पहले ह्यूमन बीइंग्स बने और उन्होंने अपना पहला कदम चांद पर रखा। उन्होंने इतिहास रचा था उस दिन। उस क्षण को पूरी दुनिया ने महसूस किया था, जब इंसान ठान ले तो आसमान भी उसकी मंजिल नहीं बल्कि शुरुआत बन जाता है। उनके शब्द आज भी करोड़ों लोगों को प्रेरित करते हैं दोस्तों। दैट्स वन स्टेप फॉर अ मैन, वन जायंट लीप फॉर मैनकाइंड। मतलब एक व्यक्ति का छोटा सा कदम लेकिन पूरी मानवता के लिए एक विशाल छलांग। ये केवल चंद्रमा पर रखा गया एक कदम नहीं था दोस्तों, बल्कि विज्ञान, शिक्षा, शोध और मानव जिज्ञासा की विजय का प्रतीक था। विशेषकर आज की युवा पीढ़ी के लिए नील आर्मस्ट्रांग का जीवन यह संदेश देता है कि बड़े सपने वालों के लिए दुनिया में कोई मंजिल इम्पॉसिबल यानी असंभव नहीं है। तो दोस्तों, इसी प्रेरणादायक भावना के साथ हम आज के बहुत सुंदर सुंदर गीत सुनेंगे और बात करेंगे नील आर्मस्ट्रांग पर भी, विज्ञान पर, चांद पर। और जब चांद की बात आई है, नील आर्मस्ट्रांग की बात आई है, तो गाने क्यों ना चांद के हो। तो इसलिए इस अंक में हम सभी चांद पर गाए लिखे गानों को आप सभी श्रोताओं को सुनाएंगे। तो सुनाते हैं और शुरुआत करते हैं आज के पहले बहुत प्यारे से सुंदर से गीत के साथ।

प्यारे श्रोताओं, सपनों की कोई सीमा नहीं होती। आज महान अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग की जयंती है, वह व्यक्ति जिसने 1969 में अपोलो 11 मिशन के माध्यम से चंद्रमा पर पहला कदम रखा और उन्होंने सिखाया कि सपने देखने का साहस दुनिया में दो तरीके के लोग करते हैं। एक वो जो आसमान छूने की कोशिश करते हैं अपने सपनों से, लेकिन नील आर्मस्ट्रांग ने तो खुद असल में बिना कहावती बातों के आसमान ही छू दिया और चांद ही छू दिया। वो दूसरे हर चीज़ को पाने की कोशिश करते हैं जो हम नहीं पा सकते। वो मतलब वो लोग जो असफल नहीं सफल होते हैं, क्योंकि उनके जीवन में हमेशा कठिनाई आई होगी। हर किसी के जीवन में आती है, हर किसी के संघर्ष होते हैं, सबकी स्टोरीज अलग-अलग होती है, लेकिन सफल व्यक्ति हमेशा असंभव प्रयास को भी पाने की कोशिश करता है। 1969 के दौर में आप सोचिए, जब कोई व्यक्ति अगर आपस में बैठ के बात करते हैं कि एक दिन मैं चांद पर जाऊंगा, तो लोग हंसते उन पर कि ये कैसी बातें कर रहे हो आप। लेकिन सोचिए, विज्ञान ने कितना बड़ा कदम हासिल किया और कितना बड़ा कदम पूरी मानवता के लिए, पूरे विज्ञान के लिए, पूरे शोध परिवार के लिए, पूरे अनुसंधान परिवार के लिए, पूरी साइंस और रिसर्च फैकल्टी और फैटर्निटी के लिए नील आर्मस्ट्रांग और उनके सभी सदस्यों ने, पूरी टीम ने किया होगा। दोस्तों, इसलिए सपने कितने भी असंभव क्यों ना हो, हम उन्हें प्रयास करें, पूरी प्रयास से मेहनत करें, पूरा परिश्रम करें, हमारी लगन सच्ची हो, मेहनत असली हो, तो हर प्रयास से हर सफलता पाई जा सकती है। चलिए दोस्तों, बात को आगे बढ़ाते बढ़ाते आज का अगला गीत अब सुनते हैं।

प्यारे श्रोताओं, हर सफलता की कीमत अलग अलग होती है। चंद्रमा तक पहुंचना केवल विज्ञान की जीत नहीं थी, बल्कि वह हजारों वैज्ञानिकों, इंजीनियरों, तकनीशियनों और अनगिनत लोगों की वर्षों की मेहनत, धैर्य और टीम वर्क का परिणाम था। दुनिया अक्सर केवल सफलता को देखती है। आपने भी ये चीज़ नोटिस की होगी, हम हमेशा पहले नंबर वाले को देखते हैं या फिर उसी व्यक्ति को देखते हैं जिसने ये परिणाम हासिल किया है। लेकिन उसके पीछे, उस सफल व्यक्ति के पीछे जाने कितने लोग होते हैं, कितने लोगों की मेहनत होती है, कितने लोगों की लगन, परिश्रम, साथ, सहयोग, सद्भावना और संयोग होते हैं जो उस सफल व्यक्ति को आखिरकार बड़ी परेशानियों, बड़े संघर्षों, बड़े स्ट्रगल्स के बाद भी सफल बनाते हैं। दुनिया इसीलिए हमेशा पता नहीं क्यों सफलता को देखती है, लेकिन उसके पीछे छिपे संघर्ष, असफलताएं, लगातार सीखने की प्रक्रिया और अनगिनत प्रयास दिखाई नहीं देते। नील आर्मस्ट्रांग की उपलब्धि हमें यह सिखाती है कि

कोई भी बड़ा लक्ष्य अकेले हासिल नहीं होता। हर सफलता के पीछे एक टीम, एक विश्वास और निरंतर प्रयास की शक्ति होती है। आज की युवा पीढ़ी के लिए भी ये बहुत सीखने की चीज़ है। चाहे प्रतियोगी परीक्षा हो, अपना स्टार्टअप हो, नौकरी हो, खेल हो या कला का कोई क्षेत्र हो, कोई भी मंजिल रातों रात नहीं मिलती। हर बड़ी उपलब्धि के पीछे छोटे छोटे कदम, रोज़ का डिसिप्लिन और कभी हार न मानने का संकल्प छिपा होता है। यदि कभी आपको लगे कि आपकी मेहनत का परिणाम अभी दिखाई नहीं दे रहा है, तो प्लीज़ निराश मत होइए। याद रखिए, बीज भी पेड़ बनने से पहले लंबे समय तक मिट्टी के भीतर चुपचाप अपनी जड़ें मजबूत करता है। इसलिए अपने सपनों पर विश्वास रखिए, सीखते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि सफलता मंजिल तक पहुंचने वालों को नहीं, बल्कि रास्ते में लगातार चलते रहने वालों को, लगातार संघर्ष से मेहनत करने वालों को मिलती है। चलिए दोस्तों, बात को आगे फिर बढ़ाएंगे। अभी सुनते हैं सुंदर सा ये गीत।

0: श्रोता हो, अभी आपने सुना फिल्म फना से यह सुंदर सा गीत जिसे अपने सुरों से सजाया गायक शान और कैलाश खेर ने। श्रोता हो, हम बात कर रहे हैं नील आर्मस्ट्रांग की, चांद की, विज्ञान की, जिज्ञासा की, मेहनत की, सफलता की, माइलस्टोन की और एक इतिहास की। श्रोता हो, इंसान की सबसे बड़ी ताकत पता है क्या है? केवल बुद्धि नहीं बल्कि उससे भी बड़ी ताकत है जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी। यदि मनुष्य ने प्रश्न पूछना बंद कर दिया होता तो आप सोचिए, शायद ही पहिया बनता, शायद ही अग्नि की खोज होती, नई दवाइयाँ नहीं बनती और चंद्रमा तक पहुँचना तो बहुत दूर की बात होती। हर नई खोज, हर नया आविष्कार और हर बड़ी उपलब्धि की शुरुआत एक छोटे से प्रश्न से होती है, क्यों, कैसे और क्या इससे बेहतर हो सकता है। यही जिज्ञासा सभ्यताओं को आगे बढ़ाती है, विज्ञान को नई दिशा देती है और समाज को एक विकास के मार्ग पर ले जाती है। आज की युवा पीढ़ी भी इन्हीं से सीख कर आगे बहुत अच्छा कर रही है और भी अच्छा करने के लिए और भी सीखना रहना चाहिए। केवल उत्तर याद करना ही पर्याप्त नहीं है प्रश्नों के, बल्कि सही प्रश्न पूछना भी उतना आवश्यक है। जो सीखना नहीं छोड़ता वही आगे बढ़ता है। हम हमेशा बात भी करते हैं और ये तो बहुत असल और ज़िंदगी का सबसे खरा एक सच है कि लर्निंग इज़ डायनेमिक प्रोसेस, सीखना एक गतिशील क्रिया है, सीखना हमेशा चलता रहता है, अनवरत चलता रहता है। इसलिए अपनी जिज्ञासाओं को कभी मत दबाइए, नई किताबें पढ़िए, नए विचारों को समझिए, नई तकनीक सीखिए और हर दिन कुछ नया जानने का प्रयास कीजिए। यहाँ तक कि नई फिल्में, नई कविताएं, नए गीत, नए लोगों से मिलना भी हमें जाने अनजाने में बहुत अच्छी अच्छी सीख सिखा देता है जो कई लोगों को जीवन में बहुत आगे बढ़ने में मदद करती है। चलिए दोस्तों, हर चीज़ को प्रश्न करेंगे तभी हम बेहतर बन पाएंगे। अक्सर एक छोटा सा प्रश्न ही भविष्य की सबसे बड़ी खोज का आधार बन जाता है और इसी आधार के साथ चलिए आधार को आगे बढ़ाते हैं और अब सुनते हैं नया लेकिन बहुत पहले का एक बहुत सुंदर सा गीत जिसने करोड़ों लोगों के दिल पर आज भी राज किया हुआ है।
1: मैं सूरत दिखाने के लिए आपको मजबूर नहीं करूंगा, ये अपने नसीब और आपकी मर्जी पे छोड़ता हूँ, मगर खुदा के लिए मेरी शक्ल जरूर देख लीजिए। मैं काना हूं, मुंह पे चेचक के ये बड़े बड़े दाग, रंग अफ्रीका के हबशियों से ज्यादा काला है और सामने के ये दो दांत बिल्कुल हाथी के दांतों की तरह बाहर निकले हुए हैं।

0: था कहां।
1: सुभान अल्लाह, वाकई चौधरी का चांद।

प्यारे श्रोताओं, आज जब हम आकाश की ओर देखते हैं तो केवल चांद को नहीं देखते बल्कि उस असीम संभावना को देखते हैं जो हर इंसान के भीतर छिपी है। चांद हमें याद दिलाता है कि यदि संकल्प दृढ़ हो, लक्ष्य स्पष्ट हो और प्रयास निरंतर हो तो कोई भी मंजिल बहुत दूर नहीं होती। आज के इस विशेष कार्यक्रम में हमें केवल मधुर गीतों को नहीं सुनना था, उनका आनंद तो लेना ही था, लेकिन नील आर्मस्ट्रांग और उनकी पूरी टीम के संघर्ष, धैर्य, अनुशासन और सपनों की कहानी को भी जानना था। आशा करता हूँ कि इन गीतों के साथ साथ इस प्रेरणादायक यात्रा ने भी आपके मन को छुआ होगा, गहरा छुआ होगा, और आपको अपने जीवन के सपनों की ओर एक नया कदम बढ़ाने की प्रेरणा भी दी होगी। याद रखिए दोस्तों, सफलता केवल मंजिल का नाम नहीं है बल्कि हर दिन ईमानदारी से किए गए प्रयासों का परिणाम है। असफलता हमें रोकने नहीं बल्कि और बेहतर बनने का अवसर देती है। जो व्यक्ति गिरकर भी बार बार उठता है, सीखता है और आगे बढ़ता रहता है, सफलता एक दिन उसके कदम अवश्य चूमती है। और अपनी जिज्ञासा को भी कभी मत खोने दीजिए, उसे जीवित रखिए, क्योंकि प्रश्न पूछने वाले, सीखने वाले और नए रास्ते खोजने वाले लोग ही समाज, विज्ञान, संस्कृति और पूरी मानव सभ्यता को आगे बढ़ाते हैं। इन्हीं सकारात्मक विचारों और शुभकामनाओं के साथ आज के फिल्म संगीत कार्यक्रम से मुझे दीजिए इजाज़त। मैं हूँ आप सभी का उद्घोषक साथी यश वट। जाते जाते आपको एक सुंदर से गीत के साथ छोड़ जाते हैं। नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। संसद ने सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इसे आज पारित किया और लोकसभा ने इसे सोमवार को पारित किया था।

0: ये विधेयक सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या अधिनियम 1956 में संशोधन करता है। इसके अंतर्गत भारत के मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की वर्तमान संख्या 33 से बढ़ाकर 37 की जाएगी। राज्यसभा में विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास के आदर्श वाक्य पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि देश के लोग हर क्षेत्र में सुधार देख रहे हैं और ये विधेयक न्यायिक सुधारों का ही एक हिस्सा है।
1: न्यायपालिका के बढ़ते कार्यभार, न्यायिक विषयों के बदलते प्रकृति व उभरते कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल इंटरप्रिटेशन के नए सवालों को ध्यान में रखकर माननीय सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाना एक समय की मांग और समयानुकूल सुधार भी है, जिसमें संवैधानिक पीठों के अधिक गठन की आवश्यकता भी एक प्रमुख पहलू है।
0: लोकसभा में बैंकरों के बही खातों का साक्ष्य विधेयक 2026 पारित हो गया है। विधेयक का उद्देश्य बैंकरों के बही खातों से संबंधित साक्ष्यों के लिए कानून बनाना और इसे समकालीन डिजिटल बैंकिंग प्रथाओं के अनुरूप बनाना है। इसका लक्ष्य वर्तमान बैंकिंग कार्य प्रणालियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कानूनी ढांचे का आधुनिकीकरण करना है। विधेयक में बैंकरों के बही खातों का इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य वैध और कानूनी रूप से लागू करने योग्य प्रावधान भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 7 वर्ष पहले अनुच्छेद 370 और 35A को निरस्त किए जाने के बाद से जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख के लोगों के जीवन में व्यापक बदलाव आया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि दोनों केंद्र शासित प्रदेशों में बुनियादी ढांचे का विस्तार हुआ है और शिक्षा स्वास्थ्य सेवा उद्यमिता तथा खेल के क्षेत्रों में अवसर बढ़े हैं। उन्होंने कहा कि संविधान पूरी तरह लागू होने से महिलाओं और वंचित समुदाय सहित उन लोगों को अधिकार मिले हैं जो दशकों से वंचित थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज का दिन इसलिए भी विशेष है क्योंकि देश इस वर्ष डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती मना रहा है। भारत ने आज पाकिस्तान को पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में हिंसा रोकने, आतंकी नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई करने और अपने अवैध कब्जे वाले सभी भारतीय क्षेत्रों को तुरंत खाली करने की सलाह दी तथा कथित यौम इस्तेसाल यानी शोषण दिवस पर पाकिस्तान के विदेश मंत्री की टिप्पणियों के संबंध में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि दुनिया इस सुनियोजित तमाशों से मूर्ख नहीं बन रही है। श्री जायसवाल ने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा है, हमेशा से रहे हैं और हमेशा रहेंगे। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने मेटा, एक्सकॉप और गूगल LLC को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को निशाना बनाकर बनाए गए अपमानजनक, अश्लील और मानहानिकारक सोशल मीडिया पोस्ट को तुरंत हटाने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने श्री गडकरी द्वारा दायर मानहानि के दीवानी मुकदमे में अंतरिम राहत दी है। न्यायालय ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को ऐसे तंत्र विकसित करने के लिए भी कहा है जिससे पीड़ितों को अदालतों का सहारा लेने की आवश्यकता के बिना ही ऐसी सामग्री को तुरंत हटाया जा सके। मेटा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जकरबर्ग ने आज बाल यौन शोषण सामग्री, डीप फेक सामग्री और प्लेटफॉर्म के संचालन में हुई त्रुटियों के लिए सरकार से क्षमा मांगी है। सूत्रों के अनुसार मेटा ने स्वीकार किया है कि कुछ विशेष प्रकार की सामग्रियों को बढ़ावा देने के लिए बड़ी रकम का भुगतान किया गया था। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 152 अंक बढ़कर 78,581 पर बंद हुआ। निफ्टी 10 अंकों की बढ़त के साथ 24,625 पर रहा। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन में ईशा रानी बरुआ, तन्वी शर्मा, मानसी सिंह, रक्षिता श्री रामराज, अश्मिता चालिहा, अनमोल खरब और श्रियांशी वलीशेट्टी ने महिला सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। महिला डबल्स में सोनाली सिंह और ऋतिका ठाकर ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: नमस्कार, FM 102.5 MHz और न्यूज ऑन एयर मोबाइल एप्लीकेशन पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का चैनल। श्रोताओ, अब आपको मैं आज प्रसारित होने वाले कुछ विशेष कार्यक्रमों की सूची बताता हूँ। ठीक 7:21 पर आप सुनिएगा मालवी श्रोताओं की पसंद का विशेष कार्यक्रम माटी की बात और मालवी समाचार। आज यही विशेष। ठीक 8 बजे आप सुनेंगे संसद समीक्षा। रात 8:15 पर आकाशवाणी की भोपाल केंद्र से आपको सुनाया जाएगा कार्यक्रम।

चित्तौड़ को ठीक 9:30 पर आप दिल्ली से सुनेंगे कार्यक्रम चर्चा का विषय है। रात 10 बजे भोपाल से सुनेगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश। रात 10:30 पर भोपाल से ही रहेगा कार्यक्रम राग रजनी शास्त्रीय संगीत का विशेष कार्यक्रम। इसके साथ ही 11 बजे आप सुनेगा कार्यक्रम हिंदी में समाचार और 11:05 पर दिल्ली से सुनेगा कार्यक्रम अंग्रेजी में समाचार।

नमस्कार दोस्तों, अब आपको कल यानी 6 अगस्त 2026 गुरुवार को प्रसारित होने वाले कुछ विशेष कार्यक्रमों का विवरण देते हैं। सुबह 5:50 पर शुरुआत होगी संकेत धुन के साथ। सुबह 6:35 पर विविध भारती मुंबई से आप सुनेगा कार्यक्रम श्री रामचरित मानस गान। 6:45 पर विविध भारती मुंबई से ही सुनेगा कार्यक्रम संगीत सरिता। सुबह 7 रहेगा उज्जैन से विशेष कार्यक्रम महाकाल वंदन। 7:05 पर आप सुनेंगे फिर से कार्यक्रम विवरण, जो कि दिन भर के कार्यक्रमों की आपको विशेष सूची देगा। इसके साथ ही सुबह 7:20 पर आकाशवाणी उज्जैन का विशेष सूचना परक प्रातकालीन कार्यक्रम रहेगा सुप्रभात उज्जैन। और इसके साथ ही सुबह 8 आप दिल्ली से सुनेंगे कार्यक्रम समाचार प्रभात।

सुबह 8:30 पर भोपाल से सुनेंगे आप कार्यक्रम प्रायोजित कार्यक्रम जो कि रहेगा वतन का राग। ठीक 9:15 पर फिर रहेगा एक प्रायोजित कार्यक्रम डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस से, एपिसोड रहेगा 5। इसके साथ ही सुबह 10 आप सुनेंगे उज्जैन से सिंहस्थ संवाद। सुबह 10:15 पर उज्जैन से ही सुनेंगे आप कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत जो कि सजीव फोन इन कार्यक्रम रहेगा। सुबह 11 विविध भारती मुंबई से आप सुनेंगे कार्यक्रम रंग तरंग। पर आप सुनेंगे विविध भारती मुंबई से कार्यक्रम यादों की महफिल। दोपहर 1 विविध भारती मुंबई से सुनाया जाएगा कार्यक्रम विविध भारती की गीतमाला। इसके साथ ही दोपहर 2 भोपाल से आप सुनेंगे कार्यक्रम फिल्म संगीत। दोपहर 3 आप सुनेंगे विविध भारती मुंबई से कार्यक्रम सखी सहेली। शाम 4 रहेगा कार्यक्रम हेलो फरमाइश। और शाम 5 युवा श्रोताओं की पसंद का विशेष कार्यक्रम आप सुनेंगे युवाणी। शाम 7:21 पर रहेगा मालवी गीतारी गूंज। श्रोताओं, ये था आज का और कल का कार्यक्रम विवरण। नमस्कार।

0: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
1: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
0: और लाइट बिल के।
1: अब 0 रुपए कैसे दूं?
0: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
1: पक्का।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

0: इससे बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।

0: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2,00,000 करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले हैं।
1: मेरा 20 एकड़ जमीन है और गेहूं धान का खेती करता हूं। नुकसान भी हुआ है ना, ओला बारिश हो गया था तो एक साल भी नुकसान हुआ है। पानी असिंचित के कारण, पानी का भी अभाव के कारण भी नुकसान हुआ है। DBT के माध्यम से 1,44,667 रुपया हमको मिला है। तुम अपना बीमा का राशि जमा करते जाओ, जैसा मुझे को लाभ हुआ है वैसे आपको भी होगा।
2: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
3: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
2: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें।
4: फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
5: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं शेख महजमी अलमास। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। ब्रिक्स सांस्कृतिक सम्मेलन 2026 की आज राजधानी भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में हुई शुरुआत। सरकार ने मूंग उपार्जन के लिए स्लॉट बुक करने की अंतिम तिथि 10 अगस्त और मूंग एवं उड़द उपार्जन 20 अगस्त तक बढ़ाई। प्रदेश भर में नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत अभियान के तहत विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है और मौसम केंद्र भोपाल के अनुसार कल से प्रदेश के अधिकांश जिलों में तेज बारिश होने की संभावना। अब समाचार विस्तार से। ब्रिक्स सांस्कृतिक सम्मेलन 2026 की शुरुआत आज राजधानी भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में हो गई। पहले दिन प्रतिनिधियों का पंजीकरण और द्विपक्षीय बैठकें आयोजित की गईं। चार दिवसीय ब्रिक्स सांस्कृतिक सम्मेलन में ब्रिक्स देशों के संस्कृति मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी, कलाकार और प्रतिनिधिमंडल हिस्सा ले रहे हैं। हमारे संवाददाता ने बताया,
1: तीसरी ब्रिक्स कल्चरल वर्किंग ग्रुप मीटिंग के पहले दिन की औपचारिक बैठक के बाद सदस्य देशों के प्रतिनिधियों ने भोपाल स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय का भ्रमण किया। यहां उनका पारंपरिक उराव जनजातीय नृत्य से स्वागत किया गया। इसके बाद प्रतिनिधियों ने जनजातीय कला और पारंपरिक विरासत से जुड़े प्रदर्शनों का भी अवलोकन किया, जिसमें मणिपुर के मैतेई समुदाय के प्राचीन समय मापन यंत्र त्यानियशांग को भी देखा। भ्रमण के दौरान प्रतिनिधियों ने केरल के पारंपरिक अनुष्ठानिक दीप अल विलक्कू का दीप प्रज्वलन किया। इसके बाद आयोजित सांस्कृतिक संध्या में उन्होंने कथक नृत्य, पारंपरिक सामुदायिक नृत्य और भारत की विविध पारंपरिक एवं जनजातीय वेशभूषा पर आधारित फैशन शो का आनंद लिया। आकाशवाणी समाचार के लिए भोपाल से मैं विपिन मिश्रा।
0: केंद्रीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने आज लोकसभा में कहा कि उन्होंने फिल्मों की ऑनलाइन पायरेसी से निपटने के लिए कानूनी और संस्थागत ढांचे को मजबूत किया है। इसमें टेलीग्राम जैसे मंचों के माध्यम से फिल्मों का अनाधिकृत प्रसार भी शामिल है। लिखित उत्तर में सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर मुरुगन ने कहा कि सिनेमा अधिनियम 1952 में सिनेमा अधिनियम 2023 के माध्यम से संशोधन किया गया है ताकि फिल्मों की अनाधिकृत रिकॉर्डिंग और प्रदर्शन पर अंकुश लगाने के लिए विशिष्ट प्रावधान शामिल किए जा सकें। राष्ट्रपति भवन ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को आधिकारिक कार्यक्रमों के दौरान मिले 300 चुनिंदा उपहारों की आज से ऑनलाइन नीलामी शुरू कर दी है। ये नीलामी ई उपहार पोर्टल पर की जा रही है। राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि बोली लगाने की प्रक्रिया 5 सितंबर तक चलेगी। लोग ई उपहार पोर्टल पर जाकर बोली लगा सकते हैं। नीलामी से मिलने वाली पूरी राशि सामाजिक कार्यों पर खर्च की जाएगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश में 9 से 17 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान जनभागीदारी के साथ चलाने की घोषणा की है। अभियान के तहत तिरंगा यात्रा, प्रदर्शनी, रंगोली प्रश्नोत्तरी, साइकिल रैली, तिरंगा एंथम और अन्य प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। प्रदेशवासियों से तिरंगे के साथ सेल्फी लेकर हर घर तिरंगा पोर्टल पर अपलोड करने और सोशल मीडिया के माध्यम से अभियान को जन आंदोलन बनाने की अपील की गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने 7 अगस्त से शुरू होने वाले जन विश्वास अभियान 2026 इसकी भी जानकारी दी। किसान कल्याण और कृषि विकास विभाग ने प्रदेश के किसानों के हित में महत्वपूर्ण फैसले लेते हुए ग्रीष्मकालीन मूंग उड़द की खरीद की अंतिम तारीख बढ़ाकर किसानों को बड़ी राहत दी गई है। उपार्जन प्राइस सपोर्ट स्कीम के अंतर्गत मूंग उत्पादक किसानों के हित में मूंग उपार्जन के लिए स्लॉट बुक करने की अंतिम तिथि 10 अगस्त और मूंग एवं उड़द उपार्जन की अंतिम तिथि 20 अगस्त कर दी है। इसके तहत किसान को आधार, मोबाइल नंबर, रजिस्टर में पूरा ब्यौरा दर्ज करना होगा। उल्लेखनीय कि खाद वितरण को पारदर्शी बनाने के लिए हाइब्रिड मोड लागू किया गया है। किसानों के हित में उपार्जन नीति में आंशिक संशोधन करते हुए मूंग का उपार्जन कृषकों के उत्पादन का 60% किए जाने का प्रावधान किया गया है।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। मेरा युवा भारत के तत्वावधान में प्रदेश भर में नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत अभियान के तहत विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में झाबुआ में जिला स्तरीय नशा मुक्ति अभियान समिति की बैठक में जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में हुई। जिला कलेक्टर ने सभी विभागों को नशा मुक्ति अभियान को व्यापक जन भागीदारी के साथ संचालित करने के निर्देश दिए हैं। बैठक में विद्यालयों, महाविद्यालयों और ग्राम पंचायतों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने और अवैध मादक पदार्थों शराब के विरुद्ध कार्रवाई पर जोर दिया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज भोपाल के टीटी नगर स्थित कमला नेहरू सांदीपनी विद्यालय पहुंचकर किताब से कल तक अभियान के तहत विद्यार्थियों से संवाद किया। इस अवसर पर उन्होंने विद्यार्थियों को ज्ञान, अनुशासन और निरंतर प्रयास के माध्यम से सफलता की ओर बढ़ने का प्रेरक संदेश दिया। मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों से संवाद कर उनकी जिज्ञासाओं का उत्तर दिया, उन्हें नवाचार, तकनीक और सतत रूप से सीखने के लिए प्रेरित किया। मुख्यमंत्री ने इस दौरान स्कूल का निरीक्षण कर वहाँ जुटाई गई शैक्षणिक व्यवस्थाओं का जायजा लिया। नर्मदापुरम जिले की इटारसी के कृषि उपज मंडी में आज किसानों के लिए बलराम कृषि महोत्सव का आयोजन किया गया। महोत्सव में किसानों को आधुनिक कृषि तकनीक, नई खेती पद्धतियों, उन्नत फसल प्रबंधन और कृषि नवाचारों की जानकारी दी गई। महोत्सव को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने वर्चुअल शामिल हुए।
3: भावांतर योजना के बलबूते पर भी सोयाबीन के माध्यम से जो हमने कदम बढ़ाए थे, अगले धान की खरीदी में भी हम भावांतर योजना के बलबूते पर सरसों और धान दोनों की खरीदी में भावांतर का लाभ देंगे। सरकार किसानों के साथ है, कोदो कुटकी भी अब श्री अन्न योजना के माध्यम से खरीदी है, हाई क्वालिटी का रेशम, सरबती गेहूं, बासमती चावल, क्या नहीं है नर्मदापुरम में। वास्तव में यहाँ का तो एक बार सरबती गेहूं का स्वाद ले तो दूसरा गेहूं खाना बंद कर देता है।
0: प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान चंबल, रीवा और शहडोल संभागों के अधिकांश जिलों में बारिश दर्ज की गई। वहीं ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर और सागर संभागों के जिलों में कहीं कहीं बारिश हुई। झाबुआ जिले में पिछले 24 घंटे में 4.5 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज की गई। सर्वाधिक 8.10 मिलीमीटर वर्षा राणापुर में रिकॉर्ड की गई। मौसम केंद्र भोपाल के अनुसार प्रदेश में नया सिस्टम बनने से आज और कल प्रदेश के अधिकांश जिलों में बारिश होगी। कुछ स्थानों पर तेज बारिश होने की संभावना है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज मध्य प्रदेश विधानसभा के सेंट्रल हॉल में प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र की जयंती पर उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर, आयुक्त जनसंपर्क मनीष सिंह, विधायकगण, मध्य प्रदेश विधानसभा के अधिकारी, कर्मचारी एवं स्वर्गीय श्री मिश्र के परिजन भी उपस्थित थे। पुष्पांजलि कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि स्वर्गीय पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र एक निर्भीक राजनेता के साथ उत्कृष्ट साहित्यकार, लेखक और राष्ट्रभक्त भी थे। अब कुछ समाचार संक्षेप में। झाबुआ जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय दिव्यांगजन सलाहकार समिति की बैठक आयोजित हुई। जबलपुर निगम आयुक्त ने विभागीय समीक्षा बैठक में नागरिक सुविधाओं से संबंधित शिकायतों के निराकरण में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। खंडवा जिले में आगामी त्योहारों के दौरान कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से परेड का आयोजन किया। शिवपुरी में बाल अकादमी शाखा द्वारा कल राजमाता सिंधिया शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय के शिशु रोग वार्ड में स्तनपान जागरूकता सप्ताह का आयोजन किया गया। सीहोर जिले की भैरुदा तहसील स्थित उपजेल में आज प्रजापिता ब्रह्मकुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय द्वारा नशा मुक्ति जागरूकता कार्यक्रम किया गया। गुना कलेक्टर ने आज जिला जेल का निरीक्षण कर जेल की व्यवस्थाओं का अवलोकन किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। ब्रिक्स सांस्कृतिक सम्मेलन 2026 की आज राजधानी भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में हुई शुरुआत। सरकार ने मूंग उपार्जन के लिए स्लॉट बुक करने की अंतिम तिथि 10 अगस्त और मूंग एवं उड़द उपार्जन की 20 अगस्त तक बढ़ाई। प्रदेश भर में नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत अभियान के तहत विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है और मौसम केंद्र भोपाल के अनुसार कल से प्रदेश के अधिकांश जिलों में तेज बारिश होने की संभावना। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए कल सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

0: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2,00,000 करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले हैं।
1: मेरा 20 एकड़ जमीन है और गेहूँ धान का खेती करता हूँ। नुकसान भी हुआ है ना, ओला बारिश हो गया था तो एक साल भी नुकसान हुआ है। पानी असिंचित के कारण, पानी का भी अभाव के कारण भी नुकसान हुआ है। DBT के माध्यम से 1,44,667 रुपया हमको मिला है। तुम अपना बीमा का राशि जमा करते जाओ, जैसा मुझे को लाभ हुआ है वैसे आपको भी होगा।
2: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
3: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
2: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें। फसल बीमा।

0: बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: नमस्कार, FM 102.5 MHz और न्यूज ऑन एयर मोबाइल एप्लीकेशन पर आप सभी सुन रहे हैं आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र। श्रोताओं, समय हो चला है अब मालवी श्रोताओं के विशेष कार्यक्रम माटीरी बात और मालवी समाचार का।

लाल बत्ती केवे रुकी जा, हरी केवे तू चल रे, पन मिट्टी को सिग्नल समझो, यो बदले हर एक हल रे। जो सुधरे वक्त पे रुकी गयो, वो पावेगो चोखो अनाज, मेहनत और कायदा से ही खेत पे होवेगो थारो राज। राम राम सा प्रणाम मारा देश का, सभी प्यारा प्यारा भईना बेना और खेत हुन में पसीनों भई के पूरा देश को पेट भरवा वाला हमारा अन्नदाता यानी कि हमारा किसान भाई के प्यार भरो नमस्कार। मैं हूं तुम्हारो दोस्त, तुम्हारो साथी, तुम्हारो हम सफ़र और इन शो को होस्ट लखन मालवी, और तम सुनी रहा हो आकाशवाणी उज्जैन 102.5 मेगाहर्ट्ज से तुम्हारो पसंदीदा रेडियो कार्यक्रम माटी री बात। श्रोताओं, आज तारीख है 5 अगस्त और आज तुम्हारा खातिर एक अनोखी और ज्ञान की बात लेके आया हूँ जो तुम्हारी सोच के एक नई डगर देगा। कदी तुमने सोचो है कि सड़क का चौराया पे जलवा वाली लाल पीली हरी बत्ती यानी कि ट्रैफिक लाइट्स और हमारा गांव की सौंधी महक वाली उपजाऊ मिट्टी, इन दोई में कई गहरो संबंध है या कई गहरो संबंध हुई सके हैं? पहली नज़र में दोई बिल्कुल अलग दिखे हैं, एक तरफ शहर को ट्रैफिक को अनुशासन तो दूसरी तरफ ग्रामीण खेत उनकी मिट्टी को विज्ञान। पर जब तम आज का इन कार्यक्रम में हमारा साथ जुड़ोगा और तुम्हारे समझ में आएगो कि प्रकृति और जीवन दो ही पक्का नियम और सिग्नल पे चले है, वैसे खेत की माटी को भी एक राज हुई है, तभी तो क्यों कुछ खेत सोनो उगले हैं और कुछ बंजर री जावे हैं। आज का हम इना साथे ही हम याद करी रहे हैं आज को अंतर्राष्ट्रीय ट्रैफिक लाइट दिवस के। आज से ठीक 112 साल पहला यानी कि 1914 में अमेरिका का क्लीवलैंड शहर में दुनिया की पहली इलेक्ट्रिक ट्रैफिक लाइट लगाई गई थी। आज का हमारा कार्यक्रम में इन दो ही बात के समझी के हमारा जीवन में रुकनो, सतर्क होनो और आगे बढ़ने को जो सिग्नल हमारा खेत और पर्यावरण पे भी लागू हुई है उका बारे में समझांगा। तो दिल थामी के बैठ जो क्योंकि आज को सफ़र बड़ो सुहानो हुआ वालो है। तो कहीं जाओ जो मत, बने रहो जो आकाशवाणी उज्जैन का साथ ली के अपनी दिल की बात। पीपल की वह छांव पुरानी, पनघट को ऊपानी, याद आवे खेत खलियान और अपना की मीठी वाणी, चाय की चुस्की संग चौपाल पे खबरें सुनी के होगी बात विचार। तो शुरू करा मालवी में आज का प्रदेश का समाचार।

नमस्कार। समाचार का साथ है, मैं लखन मालवी। सबसे पहला इन बुलेटिन का मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज भोपाल का टीटी नगर स्थित कमला नेहरू सांदीपनी विद्यालय में विद्यार्थियों से संवाद करियो। ब्रिक्स सांस्कृतिक सम्मेलन 2026 की शुरुआत आज राजधानी भोपाल का कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कॉन्वेंशन सेंटर में हुई। मौसम। केंद्र भारत भोपाल के अनुसार प्रदेश का नया सिस्टम बनने से कल प्रदेश का अधिकांश जिला में तेज बारिश होने की संभावना है। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज भोपाल का टीटी नगर स्थित कमला नेहरू सांदीपनी विश्वविद्यालय पहुंची के किताब से कल तक अभियान का तहत विद्यार्थी उनसे संवाद करियो। इन अवसर पर उनने विद्यार्थियों के ज्ञान, अनुशासन और निरंतर प्रयास का माध्यम से सफलता की ओर बढ़ने के लिए प्रेरक संदेश दियो। मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों उनसे संवाद करी के उनकी जिज्ञासाओं को उत्तर दियो और उन्हें नवाचार, तकनीक और सतत रूप से सीखवा के लिए प्रेरित करियो। मुख्यमंत्री ने इन दौरान स्कूल को निरीक्षण करी के वहाँ जुटाई गई जहरी शैक्षणिक व्यवस्था को जायजो भी लियो। कार्यक्रम में स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सहित शिक्षा विभाग का अधिकारी मौजूद था। ब्रिक्स सांस्कृतिक सम्मेलन 2026 की शुरुआत आज राजधानी भोपाल का कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में हुई गई है। इससे पहला प्रतिनिधित्व को पंजीयन और द्विपक्षीय बैठक आयोजन की गई थी। चार दिवसीय ब्रिक्स सांस्कृतिक सम्मेलन में ब्रिक्स देशों का सांस्कृतिक मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी, कलाकार और प्रतिनिधिमंडल सहित हिस्सा ले रहा था। इन वर्ष ब्रिक्स सांस्कृतिक सम्मेलन में का विषय सर्व भवंतु सुखिना रखियो गयो है, जो भारतीय सनातन संस्कृति की समरसता, शांति और वैश्विक कल्याण की भावना के दर्शावे है। सम्मेलन का दौरान भोपाल का रविंद्र भवन में शाम 5 बजे भव्य सांस्कृतिक प्रस्तुति हुई रही है। इनमें ब्रिक्स देशों में कलाकार शामिल है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने आज लोकसभा में क्यों है कि उनने फिल्म में ऑनलाइन पायरेसी से निपटवा के लिए कानूनी और संस्थागत ढांचा के मजबूत करियो है। इनमें टेलीग्राम जैसी मंचों का माध्यम से भी फिल्मों का अनाधिकृत प्रसारण भी शामिल है। लिखित उत्तर में सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर मुरुगन ने क्यों है कि सिनेमा अधिनियम 1952 में सिनेमा संशोधन अधिनियम 2023 का माध्यम से संशोधन किया गया है ताकि फिल्म में अनाधिकृत रिकॉर्डिंग और प्रदर्शन पर अंकुश लगायो जाए, उनको विशिष्ट प्रावधान भी शामिल करियो जाए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश में से 9 से 17 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान जन भागीदारी का साथ चलाने की घोषणा करी है। अभियान का तहत तिरंगा यात्रा, प्रदर्शनी, रंगोली, प्रश्नोत्तरी, साइकिलिंग रैली, तिरंगा एंथम और अन्य प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। प्रदेशवासियों से तिरंगा का साथ सेल्फी लेके हर घर तिरंगा पोर्टल पर अपलोड करने और सोशल मीडिया का माध्यम से अभियान के जन आंदोलन बनावा की अपील करी गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने 7 अगस्त से शुरू होने वाली जन विश्वास अभियान 2026 की भी जानकारी ली है। साथ ही बोर्ड परीक्षा में लगातार 3 वर्षों तक 100% परिणाम देवा वाला प्राचार्य, उनके 1,00,000 रुपये सम्मान राशि और विद्यालय विकास के लिए 5,00,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि देवा की भी घोषणा करी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज मध्य प्रदेश विधानसभा का सेंट्रल हॉल में प्रदेश का भूतपूर्व मुख्यमंत्री पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र की जयंती पर उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करके श्रद्धांजलि दी। इन अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर,

आयुक्त जनसंपर्क मनीष सिंह, विधायक गण, मध्य प्रदेश विधानसभा का अधिकारी कर्मचारी एवं स्वर्गीय श्री मिश्र के परिजन भी उपस्थित थे। पुष्पांजलि कार्यक्रम का बात मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने क्यों है कि स्वर्गीय पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र एक निर्भीक राजनेता का साथ उत्कृष्ट साहित्यकार, लेखक और राष्ट्रभक्त भी था। प्रदेश का विकास और लोकतांत्रिक मूल्य के सुदृढ़ करने में उनको योगदान अविस्मरणीय है। मुख्यमंत्री ने क्यों है कि पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र का आदर्श जीवन, राष्ट्र सेवा, बौद्धिक नेतृत्व और जन कल्याण का प्रति समर्पण आवा वाली पीढ़ियों के लिए सदैव प्रेरणा स्रोत बने रहेगा। राजधानी भोपाल समेत प्रदेश का कई जिला में आज भी बारिश हुई है। पिछला 24 घंटा का दौरान चंबल, रीवा और शहडोल संभागों का अधिकांश जिला में बारिश दर्ज करी गई है। मौसम केंद्र भोपाल का अनुसार प्रदेश में नया सिस्टम बनने से कल प्रदेश का अधिकांश जिला में तेज बारिश हुआ की संभावना है। मौसम विभाग का अनुसार मध्य प्रदेश में इस साल अभी तक बारिश का आंकड़ों सामान्य से 18% तक कम रही है। 43 जिला में औसत से कम बारिश दर्ज की गई है। ये था आज का प्रादेशिक समाचार।

साथियों, तुम्हारा सगला को इन खूबसूरत शाम में फिर से स्वागत है आकाशवाणी उज्जैन का खास कार्यक्रम में माटेरी बात में। भाइयों, आज हम बात करी रहे हैं ट्रैफिक लाइट का बारे में और साथ ही हमारा मिट्टी का बारे में। लेकिन आगे बढ़वा से पहला एक प्यारो सो लोकगीत सुनीला।

श्रोताओं, सबसे पहला बात करा ट्रैफिक लाइट की। जरा सोचो, अगर शहर को कोई बड़ो चौराहे पे ट्रैफिक लाइट्स नहीं होवे तो कहीं होगो, चारों तरफ जाम लगी जाएगो, अफरा तफरी मची जाएगी और हर कोई एक दूसरा से आगे निकलवा का होड़ में दुर्घटना का शिकार हो जाएगा। 5 अगस्त 1914 में जब क्लीवलैंड में पहली इलेक्ट्रिक ट्रैफिक लाइट जली तो उन इंसान ने एक बहुत बड़ो पाठ सिखायो, संयम और नियम को पाठ। क्योंकि ट्रैफिक लाइट में लाल बत्ती कहवे है ठहरो रुको आगे खतरो है, पीली बत्ती बोले है सतर्क हो जाओ और तैयारी करो, हरी बत्ती कहवे है अब रास्तो साफ है सुरक्षित आगे बढ़ो। तो दोस्तों, इन ट्रैफिक सिस्टम सिर्फ एक सड़क खातिर नहीं है, प्रकृति भी हमारे जीवन, हमारा शरीर और सबसे ज़्यादा हमारी धरती और खेत उनका खातिर कुछ नियम बनाया है। जब हम प्रकृति का इन सिग्नल के नज़रअंदाज करा तो जिंदगी और खेती दोई की रफ्तार थमी जावे है और याज ही शुरू होवे है हमारी आज की माटी को सबसे बड़ो राज। राज की बात भी बताऊंगा, लेकिन उका पहला एक और प्यारा सो लोकगीत सुनीला।

0: श्रोताओं, आगे बढ़वा से पहला आज का खास दिन में हम उन जाबाजों के सलाम करा जो चौराहे पे खड़ा हुई के अपना कर्तव्य को पालन करे है। ऐसा ही हमारा एक जाबाज रवि शर्मा, उनसे हुई बातचीत का अंत सुना और जाना कि ट्रैफिक लाइट होनो क्यों जरूरी है।
1: सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा। आज 5 अगस्त है यानी अंतर्राष्ट्रीय ट्रैफिक लाइट दिवस। लाल, पीली और हरी, ये 3 बत्तियां सिर्फ चौराहे की रौनक नहीं बढ़ाती बल्कि हमारी और आपकी ज़िंदगी की सुरक्षा का कवच है। आज इसी खास मौके पर हमारे साथ मौजूद है श्री रवि शर्मा जी, जो कि शहर के व्यस्ततम मार्ग चामुंडा चौराहे पर ट्रैफिक संभाल चुके हैं। साथ ही साथ रवि शर्मा जी एक अच्छे एक्टर होने के साथ साथ इन्होंने कई वेब सीरीज भी करी है और कई वेब सीरीजों में इन्होंने कास्टिंग डायरेक्टर भी काम किया है। आइए उनसे करते हैं चर्चा। सर, आकाशवाणी उज्जैन में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद।
1: सबसे पहले तो सर, आपको अंतर्राष्ट्रीय ट्रैफिक लाइट दिवस की बधाई है। आम जनता अक्सर चौराहे पर रेड लाइट देखकर रुकती है लेकिन कई बार जल्दबाजी भी करती है। आज के दिन आप ट्रैफिक सिग्नल की क्या अहमियत बताना चाहेंगे?
2: पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। देखिए, ट्रैफिक लाइट सिर्फ चौराहे पर लगी 3 रंग की बत्तियां नहीं है, ये सड़क व्यवस्था का हृदय है जो चौराहे पर गाड़ियों की गति को नियंत्रण करता है, किसी भी दुर्घटना को रोकता है। सिग्नल का सीधा मतलब है अनुशासन ही जीवन की गारंटी है। अगर चौराहे पर सिग्नल ना हो तो चारों तरफ से गाड़ियां आपस में उलझ जाएंगी और ट्रैफिक जाम में साथ साथ दुर्घटना भी बढ़ जाएगी।
1: बिल्कुल सही कहा सर आपने, क्योंकि दुर्घटनाएं बढ़ी जाती है। अक्सर देखा जाता है कि लोग पीली बत्ती जलते ही रुकने की बजाय गाड़ी की स्पीड बढ़ा देते हैं या फिर खाली सड़क देखकर रेड लाइट जंप कर जाते हैं। इस तरह की जल्दबाजी कितनी खतरनाक साबित हो सकती है?
2: ये बहुत ही गंभीर समस्या है। लोगों में सबसे बड़ी गलतफहमी ये है कि पीली बत्ती का मतलब गाड़ी तेज भगाना है, जबकि वैज्ञानिक और कानूनी रूप से पीली

0: व्यक्ति का मतलब रुकने के लिए तैयार होना या सुरक्षित रूप से रुकना होता है। जब आप पीली लाइट पर गति बढ़ाते हैं या खाली सड़क देखकर रेड लाइट जंप करते हैं तो सामने या साइड वाली लेन से हरी बत्ती देखकर आ रहे वाहन सीधे टक्कर होती है। ये जल्दबाजी 10 या 20 सेकंड तो बचा सकती है लेकिन हमेशा के लिए जिंदगी छीन सकती है।
1: सही बात है सर, जिंदगी अनमोल है। मेरा अगला क्वेश्चन था कि जब हम ट्रैफिक लाइट की बात करते हैं तो अक्सर ध्यान सिर्फ गाड़ियों पर जाता है, जेब्रा क्रॉसिंग या पैदल चलने वालों के लिए ट्रैफिक सिग्नल के क्या नियम है?
0: सड़क पर सबसे पहला अधिकार पैदल चलने वालों का होता है। जब भी चौराहे पर रेड लाइट होती है तो वाहन चालकों को अपनी गाड़ी स्टॉप लाइन से पीछे रोकनी चाहिए, जेब्रा क्रॉसिंग पे नहीं। जेब्रा क्रॉसिंग पैदल यात्रियों को सुरक्षित रास्ता होता है। साथ ही पैदल चलने वाले का भी ध्यान रखना चाहिए कि वे हमेशा वॉकिंग मैन हरा होने पर ही जेब्रा क्रॉसिंग से सड़क पार करें।
1: सही बात है सर, आजकल लगभग सभी मुख्य चौराहे पर स्मार्ट कैमरे और ऑटोमेटिक सिग्नल सिस्टम लग चुके हैं। जो लोग सोचते हैं कि कोई पुलिस वाला खड़ा नहीं हो तो रेड लाइट क्रॉस कर लेते हैं, उनके लिए आपकी क्या चेतावनी है?
0: जो लोग सोचते हैं कि पुलिस वाला नहीं है, ये नियम तोड़ लो, वे बहुत बड़ी गलतफहमी में है। अब लगभग हर शहर में ITMS और AI आधारित स्मार्ट कैमरे लगे हुए हैं। ये कैमरे 24 घंटे काम करते हैं। जैसे ही आप रेड लाइट या स्टॉप लाइन क्रॉस करेंगे आपका ई चालान तुरंत जनरेट हो जाता है। फोटो वीडियो प्रमाण के साथ आपके मोबाइल पर मैसेज आ जाता है। इसलिए पुलिस वालों की मौजूदगी से नहीं, कैमरे और अपनी सुरक्षा नियत और नियम से माने।
1: सर मेरा ये क्वेश्चन था अगला कि कई बार चौराहे पर रेड लाइट होती है और पीछे एम्बुलेंस या फायर ब्रिगेड फंस जाती है, ऐसी स्थिति में आम वाहन चालक को क्या करना चाहिए? क्या एम्बुलेंस को रास्ता देने के लिए रेड लाइट क्रॉस करने पर चालान कटता है?
0: ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। कानूनन एम्बुलेंस या फायर ब्रिगेड को रास्ता देना आपकी पहली नैतिक और कानूनी जिम्मेदारी है। अगर पीछे एम्बुलेंस है तो आप सुरक्षित तरीके से थोड़ा आगे बढ़कर दाईं बाईं गाड़ी का कर उसे रास्ता दे सकते हैं। अगर इस दौरान स्मार्ट कैमरे में आपका चालान कट भी जाता है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप ट्रैफिक पुलिस हेल्पलाइन नंबर या कंट्रोल रूम पर सूचित करके कैमरे की फुटेज दिखवाकर एम्बुलेंस को रास्ता देने का प्रमाण देकर अपना चालान निरस्त करवा सकते हैं।
1: जैसे सर अभी बारिश का समय चल रहा है तो कई बार बारिश या भारी कोहरे के समय जो विजिबिलिटी रहती है वो कम होती है, तब ट्रैफिक लाइट का पालन करते समय वाहन चालकों को किन विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए?
0: खराब मौसम में विजिबिलिटी कम होती है और सड़कें फिसलन भरी होती हैं। ऐसे समय में हमेशा लो बीम या फॉग लाइट का इस्तेमाल करें। हाई बीम रोशनी फैलाती। चौराहे के पास आते ही गाड़ी की गति पहले से ही काफी धीमी कर लें क्योंकि गीली सड़क पर अचानक ब्रेक लगने से गाड़ी फिसल सकती है। आगे चल रहे वाहन से आम दिनों की तुलना में दोगुनी दूरी बनाए रखें।
1: चलते चलते हमारा एक लास्ट क्वेश्चन था, अंतर्राष्ट्रीय ट्रैफिक लाइट दिवस पर आप हमारे आकाशवाणी उज्जैन के सभी श्रोताओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: मेरा सभी श्रोताओं से यही निवेदन है कि सड़क सुरक्षा केवल पुलिस या प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है, ये आपकी अपनी जिम्मेदारी। घर पर कोई आपका इंतजार कर रहा है, लाल बत्ती पर रुके, कुछ सेकंड आपकी और किसी दूसरे के परिवार की खुशियां बचा सकते। नियमों का पालन मजबूरी से नहीं, अपनी और अपनों की सुरक्षा और जिम्मेदारी से करें। धन्यवाद, जय हिंद।
1: बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका कीमती समय देने और इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां हमारे साथ साझा करने के लिए। दोस्तों याद रखिएगा, सिग्नल का हमेशा ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, आपकी जान और अपनों की जान, हेलमेट लगा के चलें और सीट बेल्ट का उपयोग करें। धन्यवाद।
2: ई था रवि शर्मा जी, जिनसे हुई बातचीत का अंश आपने सुनिया। श्रोताओं आगे बढ़वा से पहला हम सुना एक प्यारो सो और लोकगीत।

श्रोताओं, अगर आज का इन अनोखा दिन के जैसे अंतर्राष्ट्रीय ट्रैफिक लाइट दिवस और कृषि विज्ञान के हम एक ही तराजू में तोला तो बहुत सारी समानता सामने आवेगी। ओवर स्पीड खतरनाक होवे है, जैसे सड़क पर गाड़ी बहुत तेज भगावा से दुर्घटना को खतरा होवे है, वैसे ही खेत से कम टाइम में ज़्यादा पैदावार लेनो भी लंबी अंधी दौड़ में ज़्यादा रसायन कीटनाशकों का उपयोग खेत की उम्र के भी कम कर देवे है। सिग्नल को पालन जीवन बचावे है, ट्रैफिक सिग्नल हमें अनुशासन सिखावे है। अगर हम इन खेती में भी फसल चक्र और मृदा स्वास्थ्य कार्ड हमारा किसान भाई का लिए उनका खेत के मिट्टी को एक हेल्थ रिपोर्ट कार्ड हो या कहो तो जन्म पत्री, यो कार्ड मिट्टी की जांच करके उनकी सेहत बतावे है, जिसमें मिट्टी का 12 मुख्य पोषक तत्व जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, जिंक, आयरन आदि की स्थिति लिखी होवे है। इकालिए बोलियो जाइए कि नियम को पालन करो तो हमारी खेती हमेशा सुरक्षित और फायदा को सौदो बनी रहेगी।

श्रोताओं, सफ़र चाहे सड़क को हो या जिंदगी को, और चाहो हमारा लहरलहाता खेता को, लेकिन अनुशासन, सजगता और सही समय पे सही कदम उठाना ही सफलता की चाबी है। आज ट्रैफिक लाइट दिवस पे हम सड़क, शहर की सड़क पे सुरक्षा को संकल्प इन आकाशवाणी का माध्यम से ला, और हमारा यो भी फर्ज बने हैं कि हम उन माटी के नहीं भूलें जो हमें अन्न और जीवन दे। आओ आज यो प्रण ला कि हम हमारी धरती का सिग्नल के समझौगा, रासायनिक मोह से निकला और जैविक और वैज्ञानिक खेती की तरफ कदम बढ़ावांगा, ताकि हमारा खेत हमेशा सोनो उगातो रहे और हमारो जीवन का रास्तो हमेशा हरी बत्ती की तरह रोशन होए। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हैं तुम भी, किसी मोड़ पे फिर मुलाकात होगी। नदियों को पानी, खेतों की खुशबू समेटे आकाशवाणी का इन मंच पर फिर नई बात होगी। इसी खूबसूरत एहसास का साथ है आकाशवाणी उज्जैन से अब मैं विदा लूँ, लेकिन बातों और गानों को यो सिलसिलो आकाशवाणी उज्जैन 102.5 मेगाहर्ट्ज़ पर यूं ही चलते रहेगो। तब तक के लिए अपनों और अपना खेत को ख्याल रख जो, खुश रिजो और मुस्कुराता रिजो। जय राम जी की।

FM 102.5 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज़ एंड अयर ऐप पर आप सुन रहे थे आकाशवाणी उज्जैन केंद्र। अभी आप सुन रहे थे मालवांचल का खास कार्यक्रम माटीरी बात। कुछ समय पश्चात हमारा अगला कार्यक्रम संसद समीक्षा दिल्ली से अनुप्रसारित होगा, कृपया प्रतीक्षा करें।

ये आकाशवाणी है। अब आप सर फिरोजी से संसद में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा सुनिए। पहले राज्यसभा, लेखक हैं पीटीआई भाषा के माधव चतुर्वेदी। राज्यसभा में आज राम मंदिर में चढ़ावा चोरी सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्षी सदस्यों की नारेबाजी और हंगामे के कारण दोपहर 2 बजे से पहले तक बैठक बार बार बाधित हुई। हालांकि बाद में उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने से संबंधित एक महत्वपूर्ण विधेयक पर 2.5 घंटे तक चर्चा के बाद इसे ध्वनिमत से लोकसभा को लौटा दिया गया। लोकसभा इस विधेयक को पहले ही पारित कर चुकी है। आज सुबह 11 बजे जब उच्च सदन की बैठक शुरू हुई तो विपक्षी सदस्यों ने अयोध्या राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी के मुद्दे को लेकर विरोध जताते हुए नारेबाजी की और दिल्ली में छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के मामले में गृहमंत्री अमित शाह की सदन में मौजूदगी की मांग की। हंगामे के बीच सभापति ने कार्यवाही जारी रखते हुए सदस्यों को लोक महत्व से जुड़े विभिन्न मुद्दे उठाने की अनुमति दी। विपक्ष के लगातार हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। शून्यकाल में विपक्ष

सदस्यों के हंगामे के बीच विभिन्न सदस्यों ने लोक महत्व के मुद्दे उठाए। भाजपा की कविता पाटीदार ने निजी स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी के ग्राहकों को दावा निस्तारण में आ रही तमाम कठिनाइयों पर चिंता जताते हुए सरकार से मांग की कि इन दावों को निपटाने में अनावश्यक विलंब होने पर संबंधित कंपनियों के विरुद्ध प्रभावी एवं समयबद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। भाजपा सांसद ने सरकार से मांग की स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी जारी करते हुए ये अनिवार्य किया जाए कि सरल एवं सहज शब्दों में पॉलिसी के भीतर कवर की जाने वाली बीमारियों और उपचार के बारे में जानकारी हो। इसमें प्रतीक्षा अवधि, दावा स्वीकार या अस्वीकार किए जाने वाली परिस्थितियों, दावा प्रस्तुत करने की प्रक्रिया और दावा निस्तारण की अवधि भी बताई जानी चाहिए। शून्यकाल में भाजपा की मेधा विश्राम कुलकर्णी ने एक ही दवा के अलग अलग मूल्य होने का मुद्दा उठाते हुए कहा कि मरीजों को महंगी दवाएं बेचकर मुनाफाखोरी को रोका जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हाल में एक संसदीय समिति ने भी इस पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि दवाओं के लिए एक रेफरेंस प्राइस रेंज बनाई जानी चाहिए। शून्यकाल में भाजपा की संगीता बलवंत ने 18 जुलाई 2026 को भारत की निजी कंपनी स्काईरूट द्वारा श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से अपने पहले ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 का सफल प्रक्षेपण किए जाने की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट किया। उन्होंने कहा कि ये भारत की वैज्ञानिक उपलब्धियों और नवाचार का प्रमाण है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के वी शिवदासन ने शून्यकाल में अनुबंध कर्मचारी की सेवा को एकाएक समाप्त करने के बढ़ते चलन का मुद्दा उठाते हुए इस पर चिंता जताई। भाजपा सांसद संजय भाटिया ने हरियाणा में देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन चलाए जाने का स्वागत करते हुए मांग की कि सेवा का विस्तार करते हुए राज्य के पानीपत, रोहतक एवं हिसार को भी इससे जोड़ा जाना चाहिए। शून्यकाल में ही अन्ना द्रमुक के नेता डॉ एम थंबीदुरई ने मद्रास उच्च न्यायालय का नाम बदलकर तमिलनाडु पर करने की मांग करते हुए कहा कि वर्ष 2016 में तमिलनाडु विधानसभा ने इस बारे में केंद्र से अनुरोध करते हुए एक प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित किया था। भाजपा के सतपाल शर्मा ने जम्मू कश्मीर से आज ही के दिन 2019 में अनुच्छेद 370 हटाए जाने का जिक्र करते हुए कहा कि इसके कारण केंद्र शासित प्रदेश के लोगों को केंद्र की हर योजना का लाभ मिल रहा है और वो देश के विकास में कंधे से कंधा मिलाकर साथ दे रहा है। एक बार के स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे बैठक फिर शुरू होने पर सभापति ने प्रश्नकाल चलवाने का प्रयास किया, किंतु सदन में हंगामा थमते न देख उन्होंने बैठक को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। दोपहर 2 बजे बैठक फिर शुरू होने पर विपक्षी सदस्यों का हंगामा जारी रहा। हंगामे के बीच कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश संख्या संशोधन विधेयक 2026 को चर्चा और पारित करने के लिए पेश किया। विधेयक में उच्चतम न्यायालय में प्रधान न्यायाधीश समेत न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 34 से बढ़ाकर 38 करने का प्रावधान है। विधेयक पर चर्चा के दौरान विभिन्न मुद्दों पर विरोध जताते हुए कांग्रेस एवं कुछ अन्य विपक्षी दलों के सदस्य सदन से बहिर्गमन कर गए। विधेयक पर चर्चा में हंगामे के बीच ही उपसभापति ने विधेयक पर चर्चा शुरू करवाई। इसमें कांग्रेस के विवेक तन्खा, भाजपा की संगीता यादव, नरेश बंसल, भीम सिंह, केसरी देव सिंह झाला, अशोक कुमार मित्तल और मनन कुमार मिश्र, तृणमूल कांग्रेस की मेनका गुरुस्वामी, द्रमुक के आर गिरिराजन और पी विल्सन, बीजू जनता दल के सस्मित पात्रा, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के एस निरंजन रेड्डी, अन्ना द्रमुक के आई एस अनबदुरई, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राजेंद्र हीलालाल जैन, तेलुगु देशम पार्टी के विजय चिंता कायला, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, राष्ट्रीय जनता दल के संजय यादव, भारत राष्ट्र समिति के रविचंद्र वद्दीचंद्र, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के वी शिवदासन और ए रहीम, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के चौधरी मोहम्मद रमजान, झारखंड मुक्ति मोर्चा की महुआ माझी, शिवसेना के मिलिंद मुरली देवरा और ज्योति नागनाथ वाघमारे, एमडीएमडीए के एल के सुधीश, भाजपा के नरेश बंसल, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के संदोष कुमार पी, द्रमुक के पी विल्सन, यूपीपीएल के प्रमोद बोरो, मनोनीत उज्ज्वल निकम आदि ने भाग लिया। करीब 2.5 घंटे तक चली चर्चा में भाग लेते हुए विपक्षी सदस्यों ने कहा कि उच्च

राज्य न्यायपालिका की नियुक्ति में महिलाओं एवं आरक्षित जातियों के सदस्यों को अधिक प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए। वहीं सत्ता पक्ष के सदस्यों ने कहा कि न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने से अदालतों में मामलों के अंबार को कम करने में मदद मिलेगी। चर्चा में हस्तक्षेप करते हुए संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि वो सरकार की ओर से स्पष्ट करना चाहते हैं कि उच्चतम न्यायालय में उन्हीं न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है जिनकी सिफारिश कॉलेजियम करता है। उन्होंने कहा कि इस मामले में महिलाओं एवं आरक्षित वर्ग के लोगों के बारे में विचार करने का विषय कॉलेजियम का है। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए मेघवाल ने कहा कि ये विधेयक न्यायिक क्षेत्र में सुधार श्रृंखला की कड़ी है जिसके माध्यम से उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का प्रावधान किया गया है। मेघवाल ने कहा कि स्वतंत्र भारत में शीर्ष अदालत में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता महसूस की गई और अगस्त 1956 में पारित विधेयक के माध्यम से प्रधान न्यायाधीश समेत कुल न्यायाधीशों की संख्या 11 की गई। उन्होंने कहा कि उसी मूल भावना को देखते हुए और लंबित मामलों की संख्या को कम करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या अब 34 से बढ़ाकर 38 की गई है। इसी साल मई में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने से संबंधित विधेयक को मंजूरी दी थी। इसके तुरंत बाद सरकार अध्यादेश लेकर आई थी। अध्यादेश के बाद बढ़ाई गई स्वीकृत संख्या के आधार पर उच्चतम न्यायालय में 5 न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई। कानून मंत्री के जवाब के बाद सदन ने विधेयक को ध्वनिमत से लोकसभा को लौटा दिया। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। इसके उपरांत सदन में विभिन्न सदस्यों ने आसन की अनुमति से विशेष उल्लेख के जरिए लोक महत्व के मुद्दे उठाए। इसके बाद सदन की बैठक पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। अब सुनिए लोकसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक हैं पीटीआई भाषा के अनवारुल हक। अयोध्या के राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी और दिल्ली में प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दों को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण आज भी लोकसभा की कार्यवाही बाधित हुई और प्रश्नकाल तथा शून्यकाल नहीं चल सके। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि विपक्षी दल संसद की कार्यवाही नहीं चलना देना चाहते और कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टियों ने संसद परिसर में नाटक करके भगवान राम का अपमान किया है, जिसके लिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए। सदन में हंगामे के बीच ही बैंक कर बही साक्ष्य विधेयक 2026 को मंजूरी दी गई, जिसका उद्देश्य अदालतों में डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग रिकॉर्ड को साक्ष्य के रूप में स्वीकार करने की प्रक्रिया को आधुनिक तथा पहले से अधिक स्पष्ट बनाना है। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी समेत विपक्षी दलों के सदस्यों के हंगामे के कारण लोकसभा की कार्यवाही एक बार के स्थगन के बाद कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा की कार्यवाही आज सुबह 11 बजे शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने जब प्रश्नकाल शुरू कराया तो विपक्ष के सदस्य हंगामा करने लगे। वे अयोध्या में राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठा रहे थे और दिल्ली में प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के बारे में गृहमंत्री अमित शाह के बयान की अपनी मांग दोहरा रहे थे। बिरला ने कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों से प्रश्नकाल चलने देने का आग्रह करते हुए कहा कि प्रश्नकाल महत्वपूर्ण होता है और इसमें सदस्यों को अवसर मिलना चाहिए। मेरा आग्रह है कि प्रश्नकाल चलाने में सहयोग करें। प्रश्नकाल के बाद सभी मुद्दों पर आपसे चर्चा करूंगा। उन्होंने आसन के पास आकर नारे लगा रहे और पोस्टर लहरा रहे सदस्यों से कहा, सदन के अंदर या बाहर नारेबाजी लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। आप नियोजित तरीके से पोस्टरबाजी करके और प्रदर्शन करके सदन की गरिमा को गिराना चाहते हैं। शोर शराबा जारी रहने पर अध्यक्ष ने बैठक दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी। कार्यवाही फिर शुरू होने पर स्थिति ज्यों की त्यों बनी रही। पीठासीन सभापति जगदम्बिका पाल ने कहा कि मैं गंभीरता से आग्रह करना चाहता हूं, मैं शून्यकाल चलाना चाहता हूं। आपके नाम लॉटरी में आए हैं और नीति और राज्य से जुड़े सवाल है, मैं आपको बोलने दे रहा हूं। उन्होंने कहा कि मैं सबसे आग्रह करता हूं कि आप अपने स्थान पर जाइए और शून्यकाल चलने दीजिए। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि अगर कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल अपने दल के सदस्यों को समझा दें तो हम चर्चा के लिए तैयार हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि विपक्ष के सदस्य संसद नहीं चलाना चाहते।
रिजिजू ने कहा कि कांग्रेस, कम्युनिस्ट और समाजवादी पार्टी ने हमेशा भगवान राम का अपमान किया है। उन्होंने कहा कि

राम मंदिर बन रहा था तो विपक्ष ने काली पट्टी बांधकर विरोध किया। संसद परिसर में जो नाटक किया गया उसके लिए देश से माफी मांगनी चाहिए। हंगामा नहीं थमने पर पाल ने कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी। विपक्षी सदस्यों की नारेबाजी के बीच ही लोकसभा ने बैंक कार्य बही साक्ष्य विधेयक 2026 को मंजूरी दी। ये विधेयक औपनिवेशिक काल के 125 वर्ष पुराने बैंककार बही साक्ष्य अधिनियम 1891 का स्थान लेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने इस विधेयक को पारित कराने के लिए रखा। पीठासीन सभापति जगदम्बिका पाल ने विधेयक पर संशोधन पेश करने के लिए विपक्षी सांसदों मनोज कुमार, एनके प्रेमचंदन, के सुरेश और कुछ अन्य के नाम पुकारे। हालांकि किसी ने संशोधन पेश नहीं किया। सदन के हंगामे के बीच ही इस विधेयक को बिना चर्चा के ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। प्रस्तावित कानून में बैंककार बही की परिभाषा का दायरा बढ़ाकर इसमें डिजिटल क्लाउड आधारित और अन्य इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को भी शामिल किया गया है। विधेयक में अदालतों के समक्ष डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग रिकॉर्ड को साक्ष्य के रूप में पेश करने तथा उनके प्रमाणन के लिए स्पष्ट और एक समान नियम निर्धारित करने का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा बैंक अधिकारियों को बिना ठोस आधार के बार बार अदालतों में तलब किए जाने से बचाने के लिए विशेष कारण स्पेशल कॉज परीक्षण का प्रावधान भी किया गया है। लोकसभा में प्रश्नकाल नहीं चल सका। हालांकि सरकार ने कई सदस्यों के प्रश्नों के लिखित उत्तर दिए। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में जानकारी दी कि आरक्षित कोच वाली स्पेशल ट्रेन का किराया नियमित निर्धारित ट्रेन की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक होता है। वैष्णव का ये लिखित उत्तर कांग्रेस सांसद संजना जाटव द्वारा स्पेशल ट्रेन के किराया ढांचे और किराया निर्धारित करने के मानदंडों से जुड़े प्रश्नों के जवाब में आया। सांसद ने यह भी पूछा था कि पिछले 3 वर्षों में कितनी स्पेशल ट्रेन को नियमित सेवाओं में बदला गया है तथा क्या हनुमानगढ़ जयपुर ट्रेन का किराया उसी मार्ग पर चलने वाली अन्य नियमित ट्रेनों की तुलना में अधिक है। रेल मंत्री ने कहा कि भारतीय रेल यात्रियों की बढ़ती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लगातार प्रयासरत है। इसके तहत नई ट्रेन सेवाएं शुरू की जाती हैं, मौजूदा ट्रेन का विस्तार किया जाता है, उनके फेरे बढ़ाए जाते हैं तथा उनमें अतिरिक्त डिब्बे जोड़े जाते हैं। उन्होंने कहा कि मौजूदा ट्रेन सेवाओं में अतिरिक्त डिब्बे भी लगाए जाते हैं। ये एक सतत प्रक्रिया है जो परिचालन क्षमता, संसाधनों की उपलब्धता और अन्य प्रतिस्पर्धी आवश्यकताओं पर निर्भर करती है। वैष्णव ने आगे कहा कि त्योहारों, विशेष आयोजनों और यात्रा के व्यस्त सीजन में अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए भारतीय रेल स्पेशल ट्रेनें चलाती है। बाद में यात्री मांग, व्यावसायिक औचित्य, परिचालन व्यवहार्यता और संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर इन्हें नियमित सेवाओं में शामिल किया जाता है। उन्होंने बताया कि अप्रैल 2024-25 से लेकर जून 2026 तक भारतीय रेल ने 245 ट्रेन सेवाओं को नियमित किया। अभी आप संसद में हुई आज की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।

0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए सुनिए कार्यक्रम सुर्खियों में।
1: सुर्खियों में ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक सुबिमल भट्टाचार्य जी। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति।
2: नमस्कार श्रोताओं, आज हम कार्यक्रम में चर्चा कर रहे हैं हाल ही में संसद द्वारा पारित जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पर, और आज हम इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे इस विधेयक के विभिन्न आयामों पर और साथ ही जन्म और मृत्यु के रिकॉर्ड को लेकर जो पुरानी स्थिति थी और अब इस विधेयक के बाद जब ये अधिनियम के रूप में हमारे सामने आएगा तो उसमें क्या बदलाव आएंगे, क्या सामाजिक और इसमें प्रशासनिक जो जटिलताएं थी उनको दूर करने में इससे मदद मिलेगी। हम इस विषय पर व्यापक चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े हैं हमारे विशेषज्ञ सुविमल भट्टाचार्य जी। सुविमल जी, बहुत बहुत स्वागत है।
3: धन्यवाद।

0: विमल जी, अगर हम भारत में नागरिकों के जन्म और मृत्यु के रिकॉर्ड की बात करें तो हमारे सामने 1969 का एक मूल कानून है जिसमें जन्म और मृत्यु का जो रिकॉर्ड है वो स्थानीय प्रशासनिक रिकॉर्ड माना जाता रहा है। लेकिन जब ये विधेयक अब संसद में पारित हो चुका है और अधिनियम के तौर पर ये विधेयक हमारे सामने आएगा, तो क्या कुछ इसमें हमें तब्दीलियां देखने को मिलेंगी?
1: देखिए, ये बहुत जरूरत था इस संशोधन को लाने के लिए, इसीलिए क्योंकि हमारे यहाँ बहुत लोग आपकी जो जन्म और मृत्यु समय पर रजिस्टर नहीं करते हैं, और जो एक प्रशासनिक रूप से भी तकलीफ होते थे, बहुत सारे फ्रॉडुलेंट गतिविधि भी चलते थे इस डेथ रिपोर्ट में। और जब हमारे आगे की जो वेरिफिकेशन पर्पसेस या बहुत सारे बेनिफिशियरी पर्पसेस के लिए जब करेक्ट रिकॉर्ड सही रिकॉर्ड रखना जरूरत पड़ता है, तो इसीलिए इसको शुरू से ला के इसमें सारे जो बदलाव लाना था इसलिए इसको लाया गया। तो अगर हम देखें तो हमारे देश में जो ये जन्म की पूंजीकरण, ये 86.6 2014 में जो था उससे 99.1 तक पहुंच गया 2024 में, और मृत्यु कर पूंजीकरण 72 से 99 तक आ गया। तो ये जो एक बदलाव आया था, मुझे लगता है कि इसके साथ साथ ये सही और वेरीफाइड तरीका से ये पूंजीकरण होना चाहिए, तभी आगे एक करेक्ट और रिकॉर्ड सिस्टम में रहेगा। और ये काफी दिन हमारा इसमें बहुत उसमें देखा जाता था कि एज बेनिफिट के लिए बहुत लोग अपने जन्म की तारीख गलत या कम करके डालते हैं। आप बहुत सारे मैंने सरकारी संस्थान में भी देखा है कि बंदा देखने में लग रहा है कि वो रिटायरमेंट एज क्रॉस कर चुके हैं, लेकिन उम्र में वो 50 भी नहीं।
0: बिल्कुल,
1: इसलिए इस तरीके के जो फ्रॉडुलेंट गतिविधि होते थे इनको भी रोकना जरूरत था, इसीलिए इस संशोधन को लाया गया था।
0: ये बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने सुविमल जी बताई कि जो सत्यापन या वेरिफिकेशन है उस पर महत्वपूर्ण फोकस है इस विधेयक में, और जो जन्म और मृत्यु है वो नागरिकों की एक बहुत एक ऑथेंटिक डेटा होना जरूरी है किसी भी देश के लिए। तो ऐसे में ये भी है कि जो पहले हम देखते थे कि जैसा आपने भी बताया कि जन्म और मृत्यु को लेकर नागरिकों के जो आंकड़े थे उनमें बहुत बिखराव था, अब ये प्रावधान है कि एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस होगा नागरिकों का। तो ऐसे में जो पूरा एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस हमारे सामने नागरिकों का जन्म और मृत्यु को लेकर सामने आएगा, उससे कैसे आंकड़ों के इस बिखराव को समेटने में मदद मिलेगी और कैसे हमारे सामने पुख्ता और सही आंकड़े जन्म और मृत्यु को लेकर नागरिकों के सामने आ सकेंगे?
1: देखिए, एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस में ये सारे रिकॉर्ड्स रहने का पहले से करना चाहिए था। हमारा यहाँ ये गतिविधि राज्यों का बीच में, राज्य अपना तरीका से इसको रिकॉर्ड के रखते थे और बहुत समय ये एक कोऑर्डिनेशन का भी इश्यूज होते थे। जब 2023 में ये कानून का ओवरहॉल हुआ था, तब बार्ट सर्टिफिकेट को एक सिंगल मैंडेटरी प्रूफ की उसको ठीक किया गया था, और जगह और डेट ये दोनों सब की पब्लिक सर्विसेज जो दिया जाता है, जैसे स्कूल एडमिशन, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर रजिस्ट्रेशन, पासपोर्ट, आधार, और सरकारी नौकरियों के लिए भी इसको आधार बनाया गया था कि एक सिंगल मैंडेटरी प्रूफ होना चाहिए। तो ये सिंगल मैंडेटरी प्रूफ को आप लागू करने के लिए एक कॉमन डेटाबेस में होना चाहिए। हमारे बहुत सारे ऐसे इंफॉर्मेशन रिपोजिटरी की काम देश में हुए हैं, लेकिन ये देखा जाता था कि अलग अलग जगह से अलग अलग लोग अलग अलग डेटा फेंकते हैं। तो इसको एक कॉमन डेटाबेस में जब लाते हैं तो ये वेरिफिकेशन पर्पसेस के लिए जरूर सही होते हैं, लेकिन जो आपकी वेरिफिकेशन के अलावा भी जो एक रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस में सुविधा के लिए उसमें भी बहुत मदद होते हैं।
0: बिल्कुल, और हम ये भी देखते हैं कि जैसे जैसे समय बदला है तो अब हमारी जो मांग है वो दूसरी तरह की है, अब हम एक डिजिटल युग में प्रवेश कर चुके हैं, तो ऐसे में हमारे जो कानून और अधिनियम है वो भी, उनका ढांचा भी डिजिटल होना, उसका स्वरूप भी डिजिटल होना बहुत जरूरी है। तो ऐसे में जब ये संशोधन संसद में पारित हुआ है तो उसका जो एक डिजिटल स्वरूप अब हमारे सामने आएगा, उससे जो आम नागरिक है उन्हें कैसे अपने स्तर पर फायदा होने वाला है? क्योंकि जैसा कि आपने भी बताया कि हमारा जो जन्म और मृत्यु का रिकॉर्ड है, खासतौर पर अगर जन्म के ही हम बात करें तो जन्म प्रमाण पत्र की रिक्वायरमेंट है वो हमें कई अवसरों पर पड़ती है, तो ऐसे में कितना जरूरी हो जाएगा कि एक डिजिटल रूप से हमारे सामने कॉमन डेटाबेस से एक आम नागरिक को जटिलताओं से दूर होने में उसे मदद मिलेगी।
1: देखिए, नागरिक के लिए ये बहुत अच्छा कदम है, इसीलिए क्योंकि हर जगह में इनको बार बार वेरिफिकेशन करना ये जरूरत नहीं पड़ेगा। एक कॉमन डेटाबेस जहाँ एक स्थित डेट ऑफ बर्थ रहेगा, उसी के साथ हर संस्था जो इनकी इंफॉर्मेशन चाहिए होगा वेरिफिकेशन के लिए, वही पे उस रिपोजिटरी से इसको टैली करेंगे। तो इनको बार बार हर जगह एक्सप्लेनेशन देना या दिखाना, वो काम से ये जो एक टेडियस एक जॉब होते है कि इनको हर जगह में अपना डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ दिखाना पड़े, वो मेरे ख्याल से एक नागरिक का रूप में उनके लिए एक सुविधा होता है। दूसरी बात होता है कि जो मल्टीप्लिकेशन या मल्टीप्लिसिटी, जिस तरीका से लोगों का, बहुत सारे लोगों का अलग अलग डेट ऑफ बर्थ भी देखे गए है कि वो कहीं एक ही आदमी कभी इस डिस्ट्रिक्ट में दाखला किया ही किया हुआ है, तो ये जो डुप्लीकेट की जो बात आती थी वो भी दूर हो जाते। तो एक साफ सुथरा डिजिटली रिकॉर्डेड डेटाबेस में जब नागरिकों की रिकॉर्ड्स रहते हैं, तो आगे इनके लिए भी कोई परेशानी नहीं होती है कि क्या किस तरीका से वो नागरिक प्रमाण करे। थोड़े बहुत आउट चेंजेस लाए गए कल, जैसे राज्यसभा ने पारित किया है, मुझे लगता है ये जो एक एनोमली था पब्लिक पोजिशन में वो साफ हो जाएगा।
0: मृत्यु की जो रिकॉर्ड की अस्पष्टता जो थी, उसमें कई बार ऐसी अड़चनें हमें व्यावहारिक तौर पर देखने को मिलती थी, चाहे वो एक, अगर उदाहरण लें, संपत्ति का हस्तांतरण हो, पेंशन, बीमा क्लेम, इस तरह से जो कई कागजी अड़चनें थी, वो भी क्या आने वाले विधेयक से आम परिवारों को राहत देंगी कि अब मृत्यु के रिकॉर्ड में स्पष्टता रहेगी?
1: जरूर, अगर आप देखें तो जब आधार लागू किया गया था, तब देखा गया था कि बहुत सारे जगह में लोग गुजर चुके हैं लेकिन फिर भी उनकी पेंशन जा रही है, या जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स के माध्यम से जो बेनिफिट जाते थे वो भी जा रहे हैं। तो ये जो मैंडेटरी रूप से ये डेथ सर्टिफिकेट की जरूरत है, और जिस तरीका से आपकी डेथ सर्टिफिकेट को इशू किया जाएगा जिस टाइम पीरियड में, इससे ये सारे जो फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज होते थे, या बहुत सारे केसेस में फ्रॉडुलेंट के अलावा भी बहुत लोग नहीं जानते कि कहाँ से डेथ सर्टिफिकेट में, या डेथ सर्टिफिकेट मिलने में भी जो तकलीफें होते थे ऑफिस में, मेरे ख्याल से ये सारे दूर हो जाएंगे। तो इससे आपका, लोगों का जो जेन्युइन स्थिति है, जैसे बहुत सारे लोगों को बेनिफिट मिलेगा डेथ के बाद, या जो पेरेंटल ट्रांसफर्स होते हैं, या बहुत सारे जगह में आपकी एक डेथ के साथ जब बंद होते हैं खाता, तो इसी में बहुत मदद होगा।
0: जी, आपने अभी SIR का जिक्र किया, तो मैं मतदाता सूची पर ही आना चाहूंगा। जब हमारे पास एक स्पष्ट रिकॉर्ड होंगे जन्म और मृत्यु को लेकर, तो एक ऑटोमेटेड हमारे पास वोटर लिस्ट को अपडेट करने की सुविधा क्या हो पाएगी? अगर हमारे पास स्पष्ट रिकॉर्ड होंगे, तो चुनाव निर्वाचन आयोग के पास 18 वर्ष पूरी कर चुके जो युवा मतदाता है, उनकी स्वतः सूची को अपडेट करने में इससे कुछ मदद जरूर मिलने वाली है, तो इस पर आप क्या कहेंगे?
1: बिल्कुल, बहुत मदद मिलेगी, क्योंकि अब जो प्रयास हो रहे हैं उससे वो जो रिकॉर्ड है वो बिल्कुल साफ हो रहे हैं और करेक्ट हो रहे हैं। इसमें कोई, जिस तरीका से आपकी टाइमिंग दिया गया कि 30 दिन की डिले के पहले क्या हो सकता है, 30 दिन डिले के बाद क्या हो सकता है, एक साल या दो साल, इसमें जिस तरीका से माइन्यूटली ये प्रोविजंस लाए गए, उससे क्या होगा कि लोग अपने आप एक डिसिप्लिन की तौर से वो अपने आप बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट लेंगे, और जो बर्थ सर्टिफिकेट जिस हिसाब से लेंगे वो उसका भी जो वेरिफिकेशन प्रोसेस है उससे एकदम सही बर्थ रिकॉर्ड होगा, और जो आगे इनकी जो और सारे बेनिफिट्स के लिए बहुत सारे एप्लीकेशन वो करते रहेंगे उसमें वही टैली होगा। तो इलेक्शन की कार्ड में भी जो इश्यूएंस होगा 18 साल होने पर, ये इसी डेट ऑफ बर्थ के आधार पर होगा और जो सही डेट ऑफ बर्थ है।
0: एक और सवाल मेरे मन में आया कि जैसे खासतौर पर चुनौतियां उन बच्चों के साथ भी होती थी जो विशेष परिस्थितियों वाले बच्चे, जैसे सिंगल पेरेंट जो होते हैं उनके बच्चों के जन्म के डेटा को लेकर, या फिर जो गोद लिए हुए बच्चे हैं, या जिनके माता पिता नहीं है उनके जन्म के रिकॉर्ड में, तो क्या कुछ ऐसे विशेष प्रावधान इस विधेयक में दर्ज हैं जो इन विशेष परिस्थितियों वाले बच्चों के जन्म के रिकॉर्ड को भी सही तरह से प्रस्तुत कर पाएंगे, तो और उनको किस तरह से फायदा होगा इससे?
1: जी, 2023 में जब 1969 की जो रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ्स एंड डेथ एक्ट की अमेंडमेंट लाए गए थे, उसी में ये सारे केसेस को बड़े विस्तार रूप से देखा गया है, और उसका लिए किस तरीके से उसको एप्लीकेशन होगा वो भी दिया गया। अब जो आया है इस कल राज्यसभा में पारित किया, इसमें विशेषकर ये जो आपकी दाखला में या एप्लीकेशन में जो डिलेज होते हैं, इसको देखने के लिए, जी आप अगर ये 30 दिन तक डिले होते तो ये डायरेक्ट लोकल अथॉरिटी इसको रजिस्टर कर सकता है प्रिस्क्राइबिंग। अगर 30 दिन से एक साल है तब फिर डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार और लेट फी के साथ होगा। एक साल से दो साल होता है तो फिर ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, जो नए प्रोविजन आए कि एक साल और दो साल से ज्यादा एक्सीडिंग जो डिलेज आए तो उसमें, तो ये इसमें ऐसा कोई नया कुछ नहीं लाया गया जो 23 में संशोधन किया था। जहां तक आपने जो विशेष वर्ग के कुछ केसेस उदाहरण बताए उनके लिए ऐसा, इसमें कोई कल की उसमें कुछ नहीं है।
0: एक अंत में मैं यही आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि जिस तरह से इस तरह के विधेयक संशोधित रूप में हमारे सामने आते हैं सामने, उनकी जरूरत समय के साथ होनी कितनी जरूरी है कि उसमें परिवर्तन आए। अगर हम जन्म और मृत्यु संशोधन विधेयक का ही उदाहरण लें तो जो टारगेटेड डिलीवरी है योजनाओं की, या जो कल्याणकारी योजनाओं की पहुंच है, या जो सही मानक है लोगों तक पहुंचाने, उनमें सरकार को कितनी और प्रशासन को कितनी मदद मिलती है जब एक परिपक्व और संशोधित समय के साथ विधेयक हमारे सामने आता है।
1: जरूर, ये बहुत फायदा होता है, इसीलिए क्योंकि हमारे बहुत सारे रिकॉर्ड्स पहले से उसको उस इंटीग्रिटी से किया नहीं गया है। जैसा बहुत सारे बांग्लादेश से भी आए माइग्रेंट्स लोगों को भी सारे डॉक्यूमेंट्स मिल गए, तो हमें किसी एक समय इन चीज को साफ करना था। अब ये जो प्रयास हुए है कि रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ्स एंड डेथ में, जब बर्थ्स रजिस्ट्रेशन है तो उसी में ये क्लैरिटी रहेंगे कि जो सही है वही आपकी रिकॉर्ड हो रहे, तो मुझे लगता है ये जो साफ करने का जो काम प्रयास था ये बहुत सही समय पे हुआ है, क्योंकि इससे भी आगे आप, आज हम आधार के माध्यम से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर बहुत सारे कुछ कर रहे हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों को अभी वो सिस्टम ऑलमोस्ट क्लीन कर चुके हैं, लेकिन आगे भी इस तरीके से और आगे इसको कैसा और सख्त किया जाए कि किसी तरीके से फ्रॉडुलेंट एंट्रीज ना आए सिस्टम में, इसीलिए समय समय पर संशोधन लाना पड़ेगा। और टेक्नोलॉजी के माध्यम से आजकल जो नेटवर्क्स होते हैं और आपकी वेरिफिकेशन की सुविधा भी बहुत बढ़ चुका है, सो मुझे लगता है ये बेसिक करेक्शन जो इस संशोधन से आएगा इससे बहुत सारे आगे फायदा होगा।
0: जी बहुत धन्यवाद सुमिबल जी, कार्यक्रम में आप जुड़े और जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पर आपने विभिन्न आयामों पर हमारे साथ अपना विश्लेषण रखा। बहुत धन्यवाद चर्चा में जुड़ने के लिए।
1: धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक सुबिमल भट्टाचार्य। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
3: सुर्खियों में
4: नमस्कार, FM 102.5 MHz और न्यूज ऑन एयर मोबाइल एप्लीकेशन पर आप सभी सुन रहे हैं आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र। श्रोताओं, हम पिछले कार्यक्रमों में भी आज हम सुन रहे थे नील आर्मस्ट्रांग के बारे में। श्रोताओं, आज ये नील आर्मस्ट्रांग का जन्म जयंती है, मैं आप सभी को फिर से याद दिलाना चाहूँगा। आज हम आपके प्रिय कार्यक्रम फिल्म संगीत में फिर से नील आर्मस्ट्रांग से जुड़ी कुछ और बातें करेंगे जो हमें मोटिवेशन इंस्पिरेशन देगा। पहले एपिसोड में हमने महान अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग और उनके प्रेरणादायक जीवन की चर्चा की। आज इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए उस चांद की बातें करते हैं जिसने सदियों से इंसान की कल्पना, जिज्ञासा और भावनाओं को नई उड़ान दी। आज नील आर्मस्ट्रांग की जयंती पर याद करते हैं ऐसी ऐतिहासिक यात्रा जब 1969 में अपोलो 11 मिशन में चांद को केवल कविता और कहानियों का हिस्सा नहीं रहने दिया, बल्कि मानव साहस, विज्ञान और अटूट संकल्प का जीवन प्रतीक बना दिया। लेकिन चांद की कहानी केवल विज्ञान तक सीमित नहीं है दोस्तों, हमारे साहित्य में, लोकगीतों में और विशेष रूप से भारतीय सिनेमा में चांद हमेशा प्रेम, उम्मीद, सौंदर्य और सपनों का सबसे प्रिय प्रतीक रहा है। कभी किसी की नुकसान की तुलना हम चांद से कर देते हैं, कभी बिछड़े हुए दिलों ने चांद को अपने संदेश वाहक बनाया, तो कभी चांद ने हमें यह विश्वास दिलाया कि दूर दिखने वाली मंजिल में भी एक दिन हमारी पहुंच हो सकती है। शायद यही चांद की सबसे बड़ी खूबसूरती है। वैज्ञानिकों के लिए वह एक लक्ष्य है, कवि के लिए चांद एक कल्पना है, प्रेमियों के लिए चांद एक एहसास है और युवाओं के लिए यह संदेश कि सपने चाहे जितने ऊंचे क्यों ना हो, उन्हें पाने का साहस भी उतना ही बड़ा होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, इसी भाव के साथ

साथियों, अभी आपने यह सुंदर सा गीत सुना फिल्म खूबसूरत से, जिसे अपने सुरों से सजाया गायक कुमार सानू और कविता कृष्णमूर्ति ने। श्रोताओं, हम बात कर रहे थे चांद की, चांद और इंसान की, चांद और हमारी दुनिया की। चांद और इंसान का रिश्ता सदियों पुराना है। दिलचस्प बात यह है कि जब तक इंसान चांद पर नहीं पहुंचा था, तब भी वह चांद से प्रेम करता था, उस पर कविताएं लिखता था, गीत गाता था, लोकगीतों में उसे सजाता था और उसे देखकर अनगिनत सपने बुनता था। हम सभी ने बचपन में चंदा मामा की कहानियाँ सुनी हैं, कभी दादी नानी की गोद में बैठकर तो कभी माँ की लोरी में। चांद हमारे बचपन का सबसे प्यारा साथी बन जाता था। शायद ही ऐसा कोई बचपन हो जिसमें चांद ने अपनी चांदनी ना बिखेरी हो। भारतीय लोक कला, लोकगीत, साहित्य और सिनेमा में चांद केवल एक खगोलीय पिंड नहीं, बल्कि प्रेम, सौंदर्य, विरह, उम्मीद और कल्पना का सबसे सुंदर प्रतीक रहा है। कभी किसी प्रिय की मुस्कान की तुलना चांद से की गई, तो कभी विरह में बैठा मन उसी चांद से अपने दिल की बात कहता रहा। और सच कहिए श्रोताओं, दिन भर की भागदौड़ के बाद घर की खिड़की, छत या बालकनी में बैठकर हाथ में चाय का प्याला हो, अपनों का साथ हो और सामने शांत आकाश में चमकता हुआ चांद हो, उस पल का सुकून शब्दों में कहाँ समा जा सकता है। चांद हर रात बिना कुछ कहे हमसे मिलने आता है और शायद यही उसकी सबसे बड़ी खूबसूरती है। फिर विज्ञान ने इतिहास रचा और इंसान चांद तक भी पहुंच गया। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि उस उपलब्धि के बाद भी चांद का आकर्षण कम नहीं हुआ। विज्ञान ने उसकी सतह को समझा, लेकिन कविता ने उसकी सुंदरता को कभी कम नहीं होने दिया। शायद इसलिए चांद आज भी वैज्ञानिकों के लिए शोध का विषय है, कवियों के लिए प्रेरणा, कलाकारों के लिए कल्पना और हम सबके लिए सुकून का एहसास। चांद हमें एक और सुंदर संदेश भी देता है दोस्तों। वह हर रात अपना रूप बदलता है, कभी अर्धचंद्र, कभी पूर्णिमा, तो कभी अमावस्या की ओट में छिप जाता है, फिर भी वह लौट कर पूरी चमक के साथ आता है। शायद जीवन भी ऐसा ही है, हर दिन एक जैसा नहीं होता, कभी उजाला होता है, कभी अंधेरा, लेकिन धैर्य और विश्वास बनाए रखे तो पूर्णिमा फिर लौट कर आती है। इसलिए प्रिय श्रोताओं, जब भी अवसर मिले कुछ पल चांद को जरूर निहारिए। हो सकता है उसकी शीतल चांदनी आपको यह याद दिला दे कि जीवन की सबसे सुंदर चीजें केवल आंखों से नहीं बल्कि दिल से महसूस की जाती। और इसी बात को आगे बढ़ाते हुए आज का अगला गाना आप सभी के लिए।

श्रोताओ, आशा है आज के फिल्म संगीत कार्यक्रम में आपने मधुर गीतों के साथ चांद से जुड़ी यादों, सपनों और प्रेरणा के इन सुंदर विचारों का भी आनंद लिया होगा। आपने चांद को याद किया होगा, चांद की तरफ शायद कई लोगों ने देखा भी होगा, अपनी चांद से जुड़ी पुरानी यादों को सोचा होगा, दिमाग में दोहराया होगा। और चांद को लेकर अगर किसी ने कविताएं लिखी है तो सोच रहा होगा कि आज वो कविता मैं किसी और को सुना दूं। तो दोस्तों, मैं यश आप सभी से लेता हूं इजाजत। आप सुनते रहिए आकाशवाणी। नमस्कार, मैं हूं आपका उद्घोषक साथी यश भट्ट। नमस्ते।

संसद ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाकर 37 करने वाला विधेयक पारित किया। लोकसभा ने डिजिटल बैंकिंग रिकॉर्ड को कानूनी मान्यता देने वाला विधेयक पारित किया। मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने बाल शोषण सामग्री, डीप फेक कंटेंट और प्लेटफॉर्म की खामियों पर केंद्र सरकार से माफी मांगी। देश ने अनुच्छेद 370 और 35 को निरस्त किए जाने के 7 साल पूरे होने का उत्सव मनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, संवैधानिक परिवर्तनों ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विकास तथा सशक्तिकरण का मार्ग प्रशस्त किया। भारत ने इस्लाम

0: इस्लामाबाद को पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में हिंसा समाप्त करने, आतंकी नेटवर्क को खत्म करने और अवैध कब्जे वाले सभी भारतीय क्षेत्रों को तुरंत खाली करने को कहा। और कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में तन्वी शर्मा तथा अनमोल खरब सहित 7 भारतीय महिला खिलाड़ी सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में। और अब समाचार विस्तार से। संसद ने सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इसे आज पारित किया और लोकसभा ने इसे सोमवार को पारित किया था। ये विधेयक सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या अधिनियम 1956 में संशोधन करता है। इसके अंतर्गत भारत के मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की वर्तमान संख्या 33 से बढ़ाकर 37 की जाएगी। राज्यसभा में विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास के आदर्श वाक्य पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि देश के लोग हर क्षेत्र में सुधार देख रहे हैं और ये विधेयक न्यायिक सुधारों का ही एक हिस्सा है।
1: न्यायपालिका के बढ़ते कार्यभार, न्यायिक विषयों के बदलते प्रकृति व उभरते कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल इंटरप्रिटेशन के नए सवालों को ध्यान में रखकर माननीय सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाना एक समय की मांग और समयानुकूल सुधार भी है, जिसमें संवैधानिक पीठों के अधिक गठन की आवश्यकता भी एक प्रमुख पहलू है।
0: हमारे संवाददाता ने बताया कि विधेयक का उद्देश्य सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों को निपटाना है।
2: सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामलों की बढ़ती संख्या को कम करने के लिए जजों की संख्या में बढ़ोतरी की गई है। इस साल जनवरी तक सुप्रीम कोर्ट में 92,000 से अधिक मामले लंबित थे। वर्ष 2019 से सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश सहित 34 जजों की स्वीकृत संख्या पूरी होने के बावजूद केवल 65,000 से अधिक मामलों का ही निपटारा हो सका, जबकि पिछले साल अदालत में 75,000 से अधिक नए मामले आए। हर साल नए मामलों की संख्या निपटाए गए मामलों से अधिक होने के कारण सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामलों का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में अब जजों की संख्या बढ़ने से मामलों का निपटारा तेज होगा और लोगों को समय पर न्याय मिल सकेगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: लोकसभा में बैंकरों के बही खातों का साक्ष्य विधेयक 2026 पारित हो गया है। विधेयक का उद्देश्य बैंकरों के बही खातों से संबंधित साक्ष्यों के लिए कानून बनाना और इसे समकालीन डिजिटल बैंकिंग कार्यप्रणालियों के अनुरूप बनाना है। इसका लक्ष्य वर्तमान बैंकिंग कार्यप्रणालियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कानूनी ढांचे का आधुनिकीकरण करना है। विधेयक में बैंकरों के बही खातों का इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य, वैध और कानूनी रूप से लागू करने योग्य प्रावधान भी है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई समेत विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण कई बार बाधित होने के बाद दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा में अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया। श्री बिरला ने सभी सदस्यों से प्रश्नकाल के सुचारू संचालन में सहयोग का भी आग्रह किया।
3: संसद चर्चा संवाद के लिए, आपके विचारों की अभिव्यक्ति के लिए प्रश्नकाल में महत्वपूर्ण प्रश्न पूछो, कई विभागों के महत्वपूर्ण प्रश्न है और आप नियोजित तरीके से पोस्टरबाजी करके प्रदर्शन कर सदन की गरिमा को घटाना चाहते हैं।
0: इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि सरकार बच्चों की ऑनलाइन गतिविधियों से जुड़े जोखिमों से अवगत है। श्री वैष्णव ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि सरकार ऑनलाइन सुरक्षा से संबंधित वैश्विक घटनाक्रमों और विकसित हो रहे अंतर्राष्ट्रीय नियामक दृष्टिकोणों से अवगत रहती है। इसमें डिजिटल वातावरण में बच्चों की सुरक्षा के लिए विभिन्न देशों की ओर से अपनाए गए उपाय भी शामिल हैं। मेटा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जुकरबर्ग ने बाल यौन शोषण सामग्री, डीप फेक सामग्री और प्लेटफॉर्म के संचालन में हुई त्रुटियों के लिए केंद्र सरकार से क्षमा मांगी है। सूत्रों के अनुसार मेटा ने स्वीकार किया है कि कुछ विशेष प्रकार की सामग्री को बढ़ावा देने के लिए बड़ी रकम का भुगतान किया गया था। मेटा को स्पष्ट कर दिया गया था कि वे मध्यवर्ती की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आते हैं और वे ही तय करते हैं कि उनके मंच पर दी गई सामग्री किसे प्राप्त होगी। बंबई उच्च न्यायालय ने मेटा एक्स कॉर्प तथा गूगल LLC को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को निशाना बनाकर बनाए गए अपमानजनक, अश्लील और मानहानिकारक सोशल मीडिया पोस्ट को तुरंत हटाने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को ऐसे तंत्र विकसित करने के लिए भी कहा है जिससे पीड़ितों को अदालतों का सहारा लेने की आवश्यकता के बिना ही ऐसी सामग्री को तुरंत हटाया जा सके। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। देश ने आज अनुच्छेद 370 और 35A को निरस्त किए जाने के 7 साल पूरे होने का

0: उत्सव मनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि निरस्त किए जाने के बाद से जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख के लोगों के जीवन में व्यापक बदलाव आया है। उन्होंने कहा कि दोनों केंद्र शासित प्रदेशों में बुनियादी ढांचे का विस्तार हुआ है और शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, उद्यमिता तथा खेल के क्षेत्रों में अवसर बढ़े हैं। उन्होंने कहा कि संविधान पूरी तरह लागू होने से महिलाओं और वंचित समुदाय सहित उन लोगों को भी अधिकार मिले हैं जो दशकों से वंचित थे। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि दोनों अनुच्छेदों को निरस्त करने के बाद राज्य में बहुत विकास हुआ है।
1: धारा 370 और 35 से ये एक विभेदकारी और अन्याय पूर्वक एक धारा थी जिसको समाप्त किया नरेंद्र मोदी जी ने, और उसके बाद जम्मू कश्मीर में विकास की रफ्तार भी तेज हुई। विरासत और विकास दोनों को बल मिला, वहाँ के नागरिकों को रोजगार मिला, पहली बार उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर में इतना काम होते हुए देखा, तो नागरिक तो वहाँ खुश है।
0: जम्मू कश्मीर से राज्यसभा सांसद सतपाल शर्मा ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने को जम्मू कश्मीर के पूर्ण एकीकरण और विकास की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया है।
2: जिस ऊंचाइयों के तरफ आज जम्मू कश्मीर अग्रसर है वो अपने आप में दर्शाता है कि 370 हमारे ऊपर एक कलंक था वो हट गया है। हमारी मातृशक्ति जिसकी शादी हमारे प्रदेश के बाहर होती थी, उनका हक जो था वो छिन जाता था, उनके प्रॉपर्टी राइट्स जो थे वो चले जाते थे। वाल्मीकि समाज के लोग, गोरखा समाज के लोग 370 हटने के बाद उनको उनका हक मिला है।
0: भारत ने आज पाकिस्तान को पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में हिंसा रोकने, आतंकी नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई करने और उसके अवैध कब्जे वाले सभी भारतीय क्षेत्रों को तुरंत खाली करने की सलाह दी। तथाकथित यौम इस्तेहसाल पर पाकिस्तान के विदेश मंत्री की टिप्पणियों के संबंध में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि दुनिया इन सुनियोजित तमाशों से मूर्ख नहीं बन रही है। श्री जायसवाल ने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा है, हमेशा से रहे हैं और हमेशा रहेंगे। पंजाब पुलिस ने दिल्ली के जंतर मंतर पर हाल ही में हुए विद्यार्थियों के प्रदर्शनों के दौरान सीमा पार आतंकी मॉड्यूल द्वारा हमला करने की एक योजना का खुलासा किया है। अमृतसर पुलिस ने कल सीमा पार के दो आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया था। जांच के दौरान खुलासा हुआ कि वे दिल्ली में जंतर मंतर पर पेट्रोल बम से हमला करने वाले थे। हालांकि भारी सुरक्षा व्यवस्था को देखकर उन्होंने अपनी योजना छोड़ दी। अमृतसर पुलिस आयुक्त गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने बताया कि नई दिल्ली में हमला करने की कोशिश करने वाले सभी लोग नाबालिगों को ISI द्वारा प्रशिक्षित किया गया था।
3: जो दूसरा मॉड्यूल है पेट्रोल बम फेंकने का और उनको बनाने का ट्रेनिंग दी गई ISI के जो हैंडलर्स हैं उनके द्वारा, और वहाँ उनको बताया गया कि आप पुलिस की एस्टेब्लिशमेंट या सिक्योरिटी एजेंसी की एस्टेब्लिशमेंट या किसी यूनिफॉर्म बंदे का टारगेट करने के लिए उनकी रेकी करो और आपको पैसे दिए जाएंगे। इसके अलावा जो जंतर मंतर पे धरना चल रहा था वहाँ भी ये जाके आए 8 लोग और वहाँ इनको लोकल एक स्पोर्ट मुहैया करवाई।
0: झारखंड में रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में JPSC और JSSC परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के खिलाफ छात्रों का विरोध प्रदर्शन जोर पकड़ रहा है। आंदोलनकारी छात्रों ने आगामी मॉनसून सत्र के दौरान अपनी मांगों को मनवाने के लिए झारखंड विधानसभा का घेराव करने की घोषणा की है। इस बीच भाजपा ने इन प्रदर्शनों पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी की चुप्पी की आलोचना की है। नई दिल्ली में पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने आरोप लगाया कि उन्होंने झारखंड का दौरा इसलिए नहीं किया क्योंकि कांग्रेस राज्य में सत्ताधारी गठबंधन का हिस्सा है। श्री पात्रा ने राहुल गांधी की आलोचना की है कि उन्होंने अपने राजनीतिक उद्देश्यों के लिए मासूम बच्चों को संवाददाता सम्मेलन में घसीटा।
4: जो बच्चे आज राहुल जी के साथ थे उन्हें मैं बहुत प्यार से कहना चाहूंगा कि निडर रहना, बिल्कुल आप घबराना मत। हम विश्व की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी हो सकते हैं, हम सब पार्टीज हो सकते हैं, मगर आप हमारे हैं, प्रधानमंत्री आपके हैं, हम सब आपके साथ हैं। हम ऑपोजिशन की और राहुल गांधी की झूठी नरेटिव यहाँ एक्सपोज करना चाहते हैं।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। हैदराबाद में आज ब्रिक्स भ्रष्टाचार विरोधी कार्य समूह की दूसरी बैठक संपन्न हुई। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता में हुई 2 दिन की बैठक का विषय था सुदृढ़शीलता, नवाचार, सहयोग और सतत विकास। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की सचिव रचना शाह ने कहा कि भारत की भ्रष्टाचार को कतई बर्दाश्त नहीं करने की नीति का उल्लेख इस दौरान किया गया। उन्होंने कहा कि सत्यनिष्ठा, सुशासन और सतत विकास की नींव है। बैठक में ब्रिक्स के सदस्यों ने कानून प्रवर्तन विशेषज्ञों के ब्रिक्स नेटवर्क के लिए भारत के प्रस्ताव पर सैद्धांतिक सहमति व्यक्त की। यह नेटवर्क भ्रष्टाचार के मामलों में वांछित भगोड़ों का पता लगाने में सहायता करेगा और प्रत्यर्पण में सहयोग भी करेगा, जो

0: लिखित उत्तर में कहा कि मंत्रालय ने भारतीय सिनेमा, फिल्मों की विरासत और फिल्म सामग्री के प्रसार को प्रोत्साहन देने के लिए विकास, संचार तथा फिल्म सामग्री के प्रसार की केंद्रीय योजना लागू की है। केंद्र सरकार पत्रकार कल्याण योजना लागू करती है। लोकसभा में लिखित उत्तर में सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉ एल मुरुगन ने कहा कि योजना के अंतर्गत सरकार ने 2014-15 से 2025-26 तक 456 मीडिया कर्मियों या उनके परिवारों को 19 करोड़ 41 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की है। भारतीय रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष में देश की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर 6.7% कर दिया है। बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने आज मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए बताया कि रेपो दर को 5.25% तक रखा गया है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
1: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 152 अंक बढ़कर 78,581 पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के निफ्टी में मामूली 10 अंकों की बढ़त हुई और ये 24,625 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया 25 पैसे मजबूत होकर 1 अमरीकी डॉलर की तुलना में 95.13 रुपए पर बंद हुआ।
0: कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन में तन्वी शर्मा और अनमोल खरब सहित 7 भारतीय महिला खिलाड़ी सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। इन खिलाड़ियों में ईशरानी बरुआ, मानसी सिंह, रक्षिता श्री रामराज, अश्मिता चालिया और श्रियांशी वली शेट्टी भी शामिल हैं। वहीं महिला डबल्स में सोनाली सिंह और रितिका ठक्कर तथा मिक्स्ड डबल्स में श्रुति मिश्रा और ईशान भटनागर ने अंतिम 16 में जगह बना ली है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड, झारखंड, गंगा के मैदानी पश्चिमी बंगाल, ओडिशा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा में कल मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। झारखंड, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में भी कल तेज बारिश होने की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाकर 37 करने वाला विधेयक पारित किया। लोकसभा ने डिजिटल बैंकिंग रिकॉर्ड को कानूनी मान्यता देने वाला विधेयक पारित किया। मेटा के CEO मार्क जुकरबर्ग ने बाल शोषण सामग्री, डीप फेक कंटेंट और प्लेटफॉर्म की खामियों पर केंद्र सरकार से माफी मांगी। देश ने अनुच्छेद 370 और 35A को निरस्त किए जाने के 7 साल पूरे होने का उत्सव मनाया। प्रधानमंत्री ने कहा, संवैधानिक परिवर्तनों ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विकास और सशक्तिकरण का मार्ग प्रशस्त किया। भारत ने इस्लामाबाद को पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में हिंसा समाप्त करने, आतंकी नेटवर्क को खत्म करने और अवैध कब्जे वाले सभी भारतीय क्षेत्रों को तुरंत खाली करने को कहा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening. This is Akashvani. I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Parliament passes bill increasing the strength of Supreme Court judges to 37. Lok Sabha clears legislation giving legal recognition to digital banking records. Meta CEO Mark Zuckerberg apologizes to Government of India over child abuse material, deepfake content and platform lapses. Nation marks 7 years of abrogation of Articles 370 and 35A. Prime Minister Narendra Modi says constitutional changes ushered in development and empowerment in Jammu and Kashmir and Ladakh. New Delhi asks Islamabad to end bloodshed in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir, dismantle terror networks and vacate illegally occupied Indian territories. And at Korea Masters Badminton Tournament, Tanvi Sharma and Anmol Kharb among 7 Indians to enter second round of women's singles. The Parliament has passed the Supreme Court Number of Judges Amendment Bill 2026, with the Rajya Sabha returning the legislation to the Lok Sabha after discussion. The Lok Sabha had passed the bill on Monday. The legislation amends the Supreme Court Number of Judges Act 1956 for increasing the number of judges of the Apex Court from the present 33 to 37, excluding the Chief Justice of India. Union Law and Justice Minister Arjun Ram Meghwal moved the bill in the Rajya Sabha. Replying to the debate in the House, Mr. Meghwal said, in view of the increasing workload of the judiciary, the evolving nature of judicial matters, and the emerging constitutional and legal interpretation issues, increasing the

0: Committee, MPC of the Reserve Bank of India, RBI, has decided to keep the key policy repo rate unchanged at 5.25%. Making the announcement today, RBI Governor Sanjay Malhotra said the MPC also decided to keep the stance neutral while hiking the growth projection marginally to 6.7% from 6.6% and reduced the inflation forecast to 5% from 5.1% in the current financial year. Benchmark domestic equity indices ended on a positive note today. We have a report.
1: The Sensex gained 152 points to close at 78,581. The Nifty rose marginally by 10 points to settle at 24,625. Meanwhile, in the forex market today, the rupee appreciated by 25 paise to end at 95 rupees and 13 paise against the US dollar. With Intikhab's report, Gaurav Dhawan Lal for Akashwani News.
0: In sports, India enjoyed a mixed day at the Korea Masters Badminton Tournament in Asan, with seven players advancing to the second round of women's singles, while all six men's singles players crashed out in the opening round. In the women's singles, Anmol Karb, Tanvi Sharma, Mansi Singh, Rakshita Ramraj, Ashmita Chaliha, Isha Rani Barua and Shreyansi Valishetty progressed to the second round with impressive victories. However, in the men's singles, former world number one Kidambi Srikanth, Mithun Manjunath, Kiran George, Ronak Chauhan, Sanit Dayanand and Tarun Manepalli all suffered first-round defeats. The Inter Meteorological Department, IMD, has issued an orange alert for very heavy rainfall conditions over Uttarakhand, Jharkhand, Gangetic, West Bengal, Odisha, Madhya Maharashtra, Konkan and Goa tomorrow. The IMD has forecast heavy rainfall over the Andaman and Nicobar Islands, Bihar, Chhattisgarh, coastal Karnataka. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Parliament passes bill increasing the strength of Supreme Court judges to 37. Lok Sabha clears legislation giving legal recognition to digital banking records. Meta CEO Mark Zuckerberg apologizes to Government of India over child abuse material, deepfake content and platform lapses. Nation marks 7 years of abrogation of Articles 370 and 35A. Prime Minister Narendra Modi says constitutional changes ushered in development and empowerment in Jammu and Kashmir and Ladakh. New Delhi asks Islamabad to end bloodshed in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. And at Korea Masters Badminton Tournament, Tanvi Sharma and Anmol Karb among seven Indians to enter second round of women's singles. That is all in the news at 9. Good night.
2: आदाब, ये आकाशवाणी है खबरों के साथ, मैं मोहम्मद अम्मार। पार्लियामेंट ने सुप्रीम कोर्ट में जजों की तादाद बढ़ाकर 37 करने का बिल मंजूर कर लिया है। लोकसभा ने डिजिटल बैंकिंग रिकॉर्ड्स को कानूनी हैसियत देने वाले बिल को भी मंजूरी दी। मेटा के सीईओ मार्क जकरबर्ग ने बच्चों के जिंसी इस्तेहसाल से मुतालिक मवाद, डीप फेक मवाद और प्लेटफॉर्म की खामियों पर भारत सरकार से माजरत का इजहार किया है। दफा 370 और 35A की मनसूखी के 7 साल मुकम्मल हो गए हैं। वजीर आजम ने मोदी ने कहा कि इन आईनी तब्दीलियों से जम्मू कश्मीर और लद्दाख में तरक्की और आवाम को बाख्तियार बनाने के अमल को फरोग मिला है। भारत ने पाकिस्तान से मुतालबा किया है कि वो अपने कब्जे वाले जम्मू कश्मीर POJK में खूनरेजी बंद करे, दहशतगर्द नेटवर्क का खात्मा करे और भारत के उन इलाकों से दस्तबरदार हो जाए जिन पर उसने गैर कानूनी कब्जा कर रखा है। और कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में तन्वी शर्मा और अनमोल खर्ब समेत भारत के 7 खिलाड़ी खवातीन सिंगल्स के दूसरे राउंड में पहुंच गई हैं। अब खबरें तफसील से। पार्लियामेंट ने सुप्रीम कोर्ट में जजों की तादाद से मुतालिक तरमीमी बिल 2026 मंजूर कर लिया है। राज्यसभा में बहस के बाद इस बिल को वापस लोकसभा भेज दिया गया। लोकसभा ने इस बिल को पीर के रोज मंजूर किया था। ये बिल सुप्रीम कोर्ट में जजों की तादाद से मुतालिक कानून 1956 में तरमीम करेगा, जिसके तहत भारत के चीफ जस्टिस के अलावा अदालत आलिया में जजों की मौजूदा तादाद 33 से बढ़ाकर 37 की जाएगी। कानून और इंसाफ के मरकजी वजीर अर्जुन राम मेघवाल ने राज्यसभा में बिल पेश किया। राज्यसभा में बहस का जवाब देते हुए जनाब मेघवाल ने कहा कि नरेंद्र मोदी हुकूमत सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मकसद के साथ काम कर रही है। उन्होंने कहा कि अदलिया पर बढ़ते

0: काम के बोझ और उभरते हुए आईनी और कानूनी मामलात के पेश नजर सुप्रीम कोर्ट में जजों की तादाद में इजाफा वक्त की जरूरत और एक बर वक्त इसलाह है। हमारे नाम निगार ने खबर दी है कि सुप्रीम कोर्ट में जजों की तादाद से मुतालिक तरमीमी एक्ट 2019 के जरिए असल कानून में तरमीम करते हुए पिछली मरतबा चीफ जस्टिस के अलावा सुप्रीम कोर्ट में जजों की तादाद 30 से बढ़ाकर 33 की गई थी। मजीद तफसील हमारे नामनिगार से।
1: सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे इल्तवा मामलात के बोझ से निपटने के लिए जजों की तादाद में इजाफा एक मौसर हल है। इस साल 1 जनवरी तक सुप्रीम कोर्ट में 92,000 से ज्यादा मुकदमात ज़ेरे इल्तवा थे। अगरचे 2019 से सुप्रीम कोर्ट तकरीबन अपनी मंजूर शुदा मुकम्मल तादाद यानी चीफ जस्टिस समेत 34 जजों के साथ काम कर रही है, फिर भी पिछले साल 75,410 नए मुकदमात दर्ज किए गए और 65,000 से ज्यादा मुकदमात निपटाए गए। सुप्रीम कोर्ट में केसेस की तादाद मुसलसल बढ़ रही है क्योंकि नए केसेस के इंदराज और उनके हतमी फैसलों के दरमियान एक मुस्तकिल फर्क मौजूद है। तवक्को है कि सुप्रीम कोर्ट में जजों की तादाद बढ़ाने से मुकदमात के जल्द फैसले होंगे और अवाम को बरवक्त इंसाफ मिल सकेगा। दीपेंद्र कुमार की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए अर्जुमंद अली खान।
0: लोकसभा ने बैंकर्स बुक्स के शवाहिद से मुतालिक बिल 2026 को मंजूरी दी। इस बिल का मकसद बैंकों के रिकॉर्ड से मुतालिक शवाहिद के कवानीन को जदीद तकाजों से हम आहंग करना है और उन्हें मौजूदा डिजिटल बैंकारी निजाम के मुताबिक बनाना है। इस बिल के जरिए कानूनी फ्रेमवर्क को जदीद बनाया जाएगा ताकि मौजूदा बैंकारी निजाम की जरूरियात पूरी की जा सकें। इसमें यह भी इल्तजाम है कि बैंक के रिकॉर्ड की इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल नकल अदालत में बतौर सबूत काबिल कबूल कानूनी तौर पर दुरुस्त और नाफिजुल अमल होगी। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने दोपहर 2 बजे ऐवान की कार्रवाई दोबारा शुरू होने पर यह बिल पेश किया। अपोजिशन अरकान की जानिब से तलबा के एहतजाज के दौरान मुबैना पुलिस कार्रवाई समेत मुख्तलिफ मामलात पर मुसलसल हंगामा आरई के बावजूद लोकसभा ने बगैर किसी बहस के इस बिल को मंजूर कर लिया। बिल की मंजूरी के बाद लोकसभा की कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी कर दी गई। इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मरकजी वजीर अश्वनी वैष्णव ने कहा है कि हुकूमत बच्चों की ऑनलाइन सरगर्मियों से वाबस्ता खतरात से वाकिफ है, जिनमें नुकसानदेह मवाद तक रसाई, साइबर तरीके से डराना धमकाना, ऑनलाइन इस्तेहसाल और डिजिटल लश शामिल हैं। आज लोकसभा में एक सवाल के तहरीरी जवाब में जनाब वैष्णव ने कहा कि हुकूमत आलमी वाकयात और ऑनलाइन सेफ्टी से मुतालिक बदलते हुए बैन अक्वामी इंजिबाती तरीक़ेकार से आगाह रहती है, जिनमें डिजिटल माहौल में बच्चों के तहफ्फुज़ के सिलसिले में मुख्तलिफ कानूनी इख्तियारात के तहत किए गए इकदाम शामिल हैं। उन्होंने कहा कि डिजिटल ज़ाती डेटा के तहफ्फुज़ से मुतालिक कानून 2023 नाफिज किया जा चुका है, जो डिजिटल ज़ाती डेटा की खातिर एक कानूनी तरीके का कायम करता है। डीपी एक्ट बच्चों की ऑनलाइन राजदारी के तहफ्फुज़ के लिए एक कानूनी तरीक़ेकार भी फ्राहम करता है। मेटा, जो दुनिया के कई बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की असल मालिक है, के सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने आज भारत सरकार से बच्चों के जिंसी इस्तेमाल से मुतालिक मवाद, इससे मुतालिक दिगर मवाद, डीप फेक और प्लेटफॉर्म के कामकाज में खामियों पर माजरत का इजहार किया। ज़राए के मुताबिक मेटा ने यह भी तस्लीम किया कि मखसूस किस्म के मवाद को ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए बड़ी रकम अदा की जाती रही। भारत सरकार ने मेटा को वाजे किया कि वो सिर्फ सालिस प्लेटफॉर्म की तारीफ के तहत नहीं आती, बल्कि वो खुद फैसला करती है कि कौन सा मवाद किस सारिफ को दिखाया जाए। इस पर मेटा ने अपनी गलती तस्लीम करते हुए माजरत का इजहार किया। आज दफा 370 और 35A को तारीखी तौर पर मनसूख किए जाने को 7 बरस मुकम्मल हो गए। इस मौके पर अपने पैगाम में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि 2019 में आज के दिन ही दफा 370 और 35A को मनसूख किए जाने के बाद से जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अवाम की जिंदगियों में काया पलट कर देने वाली तब्दीलियां आई हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब मोदी ने इस बात को उजागर किया कि मरकज के ज़ेर इंतज़ाम दोनों इलाकों में बुनियादी ढांचों में तौसी हुई है और तालीम, हिफ्ज़ान सेहत, सनतकारी और खेलकूद जैसे शोबों में मौके में इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि खवातीन और हाशिए पर रह रही बिरादरियों और उन अफराद को जिन्हें दहाइयों से बुनियादी आईनी हकूक नहीं दिए गए, उन्हें आईन के मुकम्मल नफाज से बाख्तियार बनाया गया है। उन्होंने जम्मू कश्मीर के साथ साथ लद्दाख की तरक्की के हुकूमत के अज़्म का यादा किया ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर शहरी को विकसित भारत के लिए बड़े ख्वाब देखने, उन्हें शर्मिंदे ताबीर

0: करने और इस सिलसिले में ताउन करने का मौका हासिल हो। दफा 370 को मंसूख किए जाने के 7 बरस मुकम्मल होने के मौके पर कानून इंसाफ के मरकजी वजीर अर्जुन राम मेघवाल ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि इस तारीखी कदम से जम्मू कश्मीर में तरक्की में तेजी आई है।
1: धारा 370 और 35 से ये एक विभेदकारी और अन्याय पूर्वक एक धारा थी जिसको समाप्त किया नरेंद्र मोदी जी ने, और उसके बाद जम्मू कश्मीर में विकास की रफ्तार भी तेज हुई, विरासत और विकास दोनों को बल मिला, वहां के नागरिकों को रोजगार मिला, पहली बार उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर में इतना काम होते हुए देखा, तो नागरिक तो वहां खुश हैं।
0: दफा 370 को मंसूख किए जाने के 7 बरस बाद जम्मू कश्मीर में बुनियादी ढांचे, कनेक्टिविटी, हुक्मरानी, सियाहत, सरमायाकारी और सिक्योरिटी में खातिरखा तरक्की हुई है। मरकज के सिर इंतजाम इलाके में बेहतर बुनियादी ढांचे, कनेक्टिविटी, अवामी खिदमात और इक्तसादी तरक्की के जरिए यकसर तब्दीली आई है जिससे हुक्मरानी और मेयार जिंदगी बेहतर हुए हैं। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। पंजाब पुलिस ने तलबा के हालिया एहतजाज के दौरान दिल्ली के जंतर मंतर को निशाना बनाने के सिलसिले में दहशतगर्दी के एक सरहद पार ग्रुप के मंसूबे का पर्दाफाश किया है। अमृतसर पुलिस की जानिब से पता लगाए गए आईएसआई के हामी सरहद पार दहशतगर्दी के 2 ग्रुपों ने तहकीकात के दौरान इंकशाफ किया कि वो पेट्रोल बमों के साथ एहतजाज के मकाम पर हमला करने के इरादे से दिल्ली गए थे। अमृतसर के पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने कहा कि हिरासत में लिए गए 9 अफराद में से 4 कम उम्र के हैं और उन्हें आईएसआई के आकाओं ने तरबियत दी है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की मालियाती पॉलिसी कमेटी ने आज अपनी पॉलिसी मीटिंग के अख्तितम पर अहम पॉलिसी रेपो रेट में कोई तब्दीली न करने का फैसला किया है और इसे 5.25% बरकरार रखा है। फैसलों का ऐलान करते हुए आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि एमपीसी ने अपने रुख में भी कोई तब्दीली न करने का फैसला किया, जबकि मौजूदा माली बरस में तरक्की की शरह के तखमीनों को 6.6% से बढ़ाकर 6.7% कर दिया। बंदरगाहों, जहाजरानी और आबी गुजरगाहों के वजीर सर्बानंद सोनोवाल ने आज मगरबी एशिया और दीगर खित्तों में बदलती हुई सूरत हाल के दरमियान भारतीय मल्लाहों की सलामती और सिक्योरिटी का जायजा लेने के लिए सीनियर अहदेदारान के साथ आला सतह की जायजा मीटिंग की सदारत की। सोशल मीडिया की एक पोस्ट पर जनाब सोनोवाल ने कहा कि मरकज ने मुसलसल मल्लाह पहले का तरीक़ेकार इख्तियार किया है जिसके सबब दुनिया भर में मल्लाहों की खिदमात फराहम करने वाला भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मुल्क बना है। उन्होंने कहा कि डीजीकॉम सेंटर मुसीबत के वक्त अलर्ट की निगरानी करने और बचाव कार्रवाइयों में तालमेल की खातिर हर वक्त काम कर रहा है। जारी बहरान के दौरान फंसे हुए 4,000 से ज्यादा भारतीय मल्लाहों को बहिफाजत वापस लाया गया है, जबकि हंगामी सूरतहाल में कार्रवाई करने वाले वसीलों ने 16,000 से ज्यादा कॉल्स और 40,000 ईमेल का जवाब दिया है। भारत ने आज पाकिस्तान को मशवरा दिया कि वह अपने कब्जे वाले जम्मू कश्मीर POJK में खूनरेजी बंद करे, अपनी सरजमीन से सरगर्म दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ काबिल एतमाद, काबिल तस्दीक और ठोस कार्रवाई करे, नीज भारत के उन तमाम इलाकों से फौरी तौर पर दस्तबरदार हो जाए जिन पर उसने गैर कानूनी तौर पर जबरदस्ती कब्जा कर रखा है। वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल पाकिस्तान के वजीर खारजा की जानिब से नाम नहाद यौम इस्तेहसाल से मुतालिक दिए गए बयान पर सहाफियों के सवालों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि भारत पाकिस्तान की जानिब से नाम नहाद यौम इस्तेहसाल मनाने की कोशिशों को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करता है। जनाब जायसवाल ने मजीद कहा कि मरकज के जेर इंतजाम इलाके जम्मू कश्मीर और लद्दाख हमेशा से भारत का अटूट और नाकाबिल तनसीख हिस्सा रहे हैं और आइंदा भी रहेंगे। 5 अगस्त 2019 को किए गए आईनी इकदाम भारत का अंदरूनी मामला है और पाकिस्तान को इन इकदाम पर तबसरा करने का कोई हक हासिल नहीं है। उन्होंने कहा कि आलमी बिरादरी इस वक्त पाकिस्तान के जेर कब्जा जम्मू कश्मीर POJK में बुनियादी इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों का मुशाहदा कर रही है। भारतीय महकमे मौसमियात IMD ने कल उत्तराखंड, झारखंड, मगरबी बंगाल के गंगा के मैदानी इलाके, उड़ीसा वस्ती, महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा में शदीद से इंतहाई शदीद बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम से इंतहाई शदीद बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।

0: इलाके मशरकी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में भी शदीद बारिश की पेशगोई की है। मध्य प्रदेश से शिमाल मशरक के कुछ हिस्सों, जुनूबी कर्नाटक, जैली हिमालयी इलाके, मगरी बंगाल, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और उत्तर प्रदेश में इसी तरह की सूरत हाल की पेशगोई की गई है। जुनूबी कोरिया के आसन में जारी कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय खिलाड़ियों की कारकर्दगी मिलीजुली रही। खवातीन के सिंगल्स में सभी 7 खिलाड़ी दूसरे राउंड में पहुंचने में कामयाब रहीं। वहीं मर्दों के सिंगल्स में सभी 6 खिलाड़ी इफ्तिताही राउंड में ही बाहर हो गए। खवातीन सिंगल्स में अनमोल खर्ब, मानसी सिंह, रक्षिता रामराज, अश्मिता चलिहा, ईशा रानी बरवा, तन्वी शर्मा और श्रियांशी वैलिशेट्टी ने शानदार जीत के साथ दूसरे राउंड में जगह बना ली। अनमोल खर्ब ने हांगकांग चीन की लोसिन यान को हराया, जबकि मानसी सिंह ने कोरिया की किम जू योन को शिकस्त दी। रक्षा रामराज ने कोरिया की यून यू को, जबकि अश्मिता चलिया ने जापान की रेरिना हिरामोतो को हराया। ईशा रानी बरवा ने कोरिया की ली सो ही को, वहीं तन्वी शर्मा ने चीन की एंग की युआन को शिकस्त दी। श्रियांशी वेलिशेट्टी भी चीनी ताइपे की यूपो पी को शिकस्त देकर दूसरे राउंड में पहुंच गई। हालांकि आकर्षी कश्यप को राउंड ऑफ 32 में कोरिया की खिलाड़ी के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा। खवातीन के डबल्स के मुकाबले में सोनाली सिंह और रितिका ठाकर, शरूति मिश्रा और ईशान भटनागर ने अपने हमवतन खिलाड़ी सत्विक रेड्डी कनापुरम और राधिका शर्मा को शिकस्त देकर अगले राउंड में दाखिल हो गए। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। पार्लियामेंट ने सुप्रीम कोर्ट में जजों की तादाद बढ़ाकर 37 करने का बिल मंजूर कर लिया है। लोकसभा ने डिजिटल बैंकिंग रिकॉर्ड्स को कानूनी हैसियत देने वाले बिल को भी मंजूरी दी। मेटा के सीईओ मार्क जकरबर्ग ने बच्चों के जिंसी इस्तेमाल से मुतालिक मवाद, डीप फेक और प्लेटफॉर्म की खामियों पर भारत सरकार से माजरत का इजहार किया है। दफा 370 और 35A की मनसूखी के 7 साल मुकम्मल हो गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि इन आईनी तब्दीलियों से जम्मू कश्मीर और लद्दाख में तरक्की और आवाम को बाइख्तियार बनाने के अमल को फरोग मिला है। भारत ने पाकिस्तान से मुतालबा किया है कि वह अपने कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में खूनरेजी बंद करे, दहशतगर्द नेटवर्क का खात्मा करे। इसके साथ ही खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ।
1: चर्चा का विषय है। ये आकाशवाणी है, चर्चा का विषय है। कार्यक्रम में प्रस्तुत है साइबर धोखाधड़ी से निपटने और अवैध बैंक खातों पर रोकथाम से जुड़े सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं आर्थिक विश्लेषक शरद कोहली और बैंकिंग

0: व्यक्ति ने अपनी पूरी जिंदगी की बचत बैंक में सुरक्षित समझ कर रखी। एक युवा ने अपनी पहली नौकरी की पहली तनख्वाह खाते में आते ही अपने सपनों की शुरुआत की। लेकिन सिर्फ एक फोन कॉल, सिर्फ एक क्लिक और कुछ ही सेकेंड में सपने भी गायब और बैंक बैलेंस भी। आज अपराधी आपके घर का ताला नहीं तोड़ते, वे आपके भरोसे को तोड़ते हैं। वे आपकी जेब नहीं काटते, वे आपकी पहचान, आपका बैंक खाता और आपकी मेहनत की कमाई चुरा लेते हैं। और हैरानी की बात यह है कि इस पूरे खेल में इस्तेमाल होने वाला सबसे बड़ा हथियार कोई हाईटेक वायरस नहीं है। उस तिजोरी का नाम है म्यूल अकाउंट्स, यानी वो कठपुतली बैंक खाते जिन्हें कभी बेकसूर लोगों के भोलेपन का फायदा उठाकर तो कभी चंद रुपयों के लालच में किराए पर लेकर इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अब इस काले कारोबार पर नकेल कसने के लिए देश की सबसे बड़ी अदालत उच्चतम न्यायालय ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को एक SOP बनाने का निर्देश दिया है जो इन म्यूल अकाउंट सहित साइबर फ्रॉड को रोकने में कारगर साबित हो। लेकिन सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि SOP कैसी होगी, सवाल ये है कि क्या हम अनजाने में किसी साइबर गैंग का हिस्सा तो नहीं बन रहे? क्या सिर्फ एक गलती हमारी पूरी जिंदगी की कमाई छीन सकती है? इन्हीं सवालों का जवाब तलाशेंगे आज के कार्यक्रम में। आज हमारे साथ जुड़े हैं दो बेहद खास मेहमान, अर्थशास्त्री और वित्तीय मामलों के विशेषज्ञ शरद कोहली और बैंकिंग विशेषज्ञ अश्विनी कुमार राणा जी। आप दोनों का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आनंद, आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा अभिवादन।
2: जी नमस्कार
0: शरद जी, आपके साथ है, शुरुआत करते हैं। और सबसे पहला प्रश्न जो यही होगा कि म्यूल अकाउंट्स, बहुत सारे लोग जो आकाशवाणी से जुड़े हैं और ये कार्यक्रम सुन रहे हैं, हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के लिए ये शब्द पहली बार हो। आप बहुत ही व्यवहारिक बोलचाल की भाषा में अगर लोगों को समझा पाएं कि म्यूल अकाउंट्स होते क्या हैं।
1: आपने बिल्कुल ठीक कहा, बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं म्यूल अकाउंट क्या होता है। देखिए, म्यूल अकाउंट जो साइबर क्रिमिनल्स होते हैं, जो व्यक्ति गलत इंटेंशन से पैसे किसी से वसूलना चाहता है, किसी को फ्रॉड द्वारा किसी से पैसे लेना चाहता है, कोई गलत जानकारी दे के पैसे लेना चाहता है, तो होता क्या है कि जब आप बैंक में अकाउंट खुलवाते हैं तो बैंक में तो पूरा KYC किया जाता है। बैंक में आप कौन है, आपका आधार, आपका पैन नंबर, आपका एड्रेस वगैरह बैंक में सब रिकॉर्डेड होता है। तो यदि वो क्रिमिनल अपने नाम से बैंक अकाउंट खुलवाता है तो लाजमी बात है उसका तो पकड़ा जाना लगभग तय हो जाता है। तो ऐसे में ये शातिर दिमाग क्या करते हैं कि ये किसी भोले भाले व्यक्ति का, किसी दूसरे व्यक्ति को, उसको कुछ पैसे का लालच देकर, उसको और लालच देकर उसके अकाउंट का प्रयोग करते हैं किसी व्यक्ति से गलत तरीके से पैसे वसूल करने में। यानी कि म्यूल अकाउंट का मतलब है अपने अकाउंट में पैसे ना लेके किसी भोले भाले इनोसेंट व्यक्ति को, जिसको ज्यादा जानकारी नहीं है, जो बैंकिंग के बारे में ज्यादा, आपको पता ही है जनधन खाता खोलने के बाद देश में तो ज्यादातर लोगों के अब बैंक अकाउंट है, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बैंकिंग के बारे में ज्यादा नहीं जानते हैं। किसी ने जाके कहा कि भाई आप अपना ऐसा करो, मेरे पास बैंक अकाउंट नहीं है, आपके बैंक अकाउंट में कुछ पैसे आएंगे और उसके बदले में कुछ उसकी परसेंटेज आप रख लेना। तो आप अनजाने में किसी साइबर क्रिमिनल, जो कि फ्रॉड करना चाहता है, उसके एक तरह से पार्टनर बन जाते हैं। और ज्यादातर लोग जो मैंने इसमें आनंद देखे हैं, वो लोग बिल्कुल ही इनोसेंट होते हैं, उनको कुछ नहीं पता होता। बाद में जब उनके सामने सारा कुछ आता है, उनका अकाउंट फ्रीज हो जाता है, FIR हो जाती है, पुलिस तहकीकात करती है, साइबर डिपार्टमेंट तहकीकात करता है, तब पता लगता है ये तो हम किसी गलत चक्कर में फंस गए। तो म्यूल अकाउंट का मतलब है कि अकाउंट आपका पर करतूत किसी और की, और नाम आपका आगे आएगा अगर हम इसको सरल शब्दों में कहें।
0: जी हाँ बिल्कुल। अश्विनी जी, आपसे समझना चाहेंगे कि आज के समय में डिजिटल अरेस्ट, पार्ट टाइम जॉब स्कैम और फर्जी ट्रेडिंग ऐप जैसे कई तरीकों से आम लोगों को शिकार बनाया जा रहा है। आंकड़े ये भी बताते हैं कि साइबर फ्रॉड से देश को हजारों करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। आर्थिक और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से अगर हम देखें तो ये किस तरह का खतरा है कि उच्चतम न्यायालय को, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को निर्देश देना पड़ा?
2: जिस प्रकार से मैंने वो स्टडी किया है जो सुप्रीम कोर्ट ने बैंकों को कहा है SOP बनाने के लिए, बिल्कुल अच्छी बात है। और उसके लिए आपकी जानकारी के लिए रिजर्व बैंक ने एक AI टूल भी जनरेट किया है म्यूल हंटर के नाम से, और उसने कुछ काम करना शुरू किया है म्यूल अकाउंट को डिटेक्ट करना, उसमें क्या ट्रांजेक्शन किसी ऐसे खाते में जिसमें बैलेंस नहीं है, बड़ा कुछ बैलेंस आ रहा है, उस तरह का शुरुआत किया है। लेकिन और भी जरूरत है, और उसमें मुझे लगता है SOP बनाने के साथ साथ बैंकों में जो खाते खोलने का जो सिस्टम है उसका ड्यू डिलिजेंस भी बहुत जबरदस्त करना पड़ेगा, क्योंकि अभी खाते जो है वो कैसे भी खुल जाते हैं, जब ऐसे खुलते हैं तो वो आगे बिक जाते हैं। कोहली साहब ने भी ठीक कहा कि म्यूल अकाउंट वही है, और खाता खोलने के लिए आपको एक सिम चाहिए, और सिम भी आपको सड़क पर फर्जी आपके डॉक्यूमेंट के साथ मिल जाता है। तो इससे ये दोनों अगर चीजें जो है हो जाए तो इससे कंट्रोल हो सकता है। और जहां तक डिजिटल अरेस्ट की बात है तो उसके लिए हम बैंकों को सीधा सीधा नहीं जिम्मेवार ठहरा सकते, क्योंकि व्यक्ति खुद ही अगर कोई उसमें फंस गया है और तैयार हो, और आजकल तो बैंक इम्प्लाइज को भी बैंक इतना ट्रेंड कर रहा है कि कोई आदमी

0: है और एक्स्ट्रॉर्डिनरी मनी निकाल रहा है या कोई टेंशन में है तो उसको जो है काउंसलिंग की जाती है, और ऐसे बहुत सारे केस बैंकों ने बचाए हैं। तो बिल्कुल जरूरत है, क्योंकि इस तरह का जो फ्रॉड है और जो लोगों का पैसा है उसको सुरक्षित रखना बैंकों की जिम्मेवारी है, और उसके लिए बैंक का जो है और आगे टेक्नोलॉजी वाइज जो है अपग्रेड हो, ये बहुत जरूरत है।
1: शरद जी, जो लोग ये कार्यक्रम सुन रहे हैं उनमें से बहुत सारे लोग साइबर ठगी का कभी ना कभी शिकार भी हुए होंगे। जो लोग इससे सतर्क होना चाहते हैं, सजग होना चाहते हैं, सरकार ने 1930 का एक पोर्टल भी बनाया है जहां पर आप जाकर कंप्लेन कर सकते हैं, और कहते हैं कि अगर आपके साथ साइबर ठगी हुई है तो शुरुआती घंटे बहुत महत्वपूर्ण होते हैं ताकि बैंक उस खाते को फ्रीज कर सके, यानी आपके पैसे आगे बढ़ने से रुक सके। शुरुआती पहल क्या करनी चाहिए एक नागरिक जो ये कार्यक्रम सुन रहा है, साइबर ठगी अगर उसके साथ हो गई उस समय उसको शुरुआती घंटों में किस तरह के सुरक्षात्मक उपाय उठाने चाहिए?
2: सबसे पहले तो इसमें आनंद ये है कि पहले कोशिश तो ये करें कि आप इस साइबर ठगी का शिकार ही ना हो। तो अब बहुत सारे लोग जो शिकार हुए हैं उन सब से आप बात करेंगे, मैंने कुछ लोगों से बात करी पीछे, मुझे निरंतर मिलते रहते हैं, उनका ये कहना है कि भाई उस समय तो हमें पता नहीं होता, अगर हमें उस समय पता होता तो हम शायद कोई पैसा ना ट्रांसफर करते, या जिसको डिजिटल अरेस्ट कहते हैं, घंटों तक आप स्क्रीन के आगे आपको बैठाए रखा जाता है, आपको ब्लैकमेल किया जाता है कि आपकी फोटो हम उस पर डाल देंगे, हम AI से ये करके, दुनिया भर की धमकियां उसमें दी जाती है। अब अगर आप शिकार हो ही चुके हैं तो इसमें मुझे लग रहा है कि लोग क्या होता है शिकार होने के बाद, एक अंग्रेजी में बोलते हैं स्टेट ऑफ शॉक, कि आप ऐसे अचंभे में पड़ जाते हैं जैसे ही आपको पता लगता है। तो पहले तो आपको पता लगना चाहिए कि आप शिकार हो चुके हैं, जैसे ही पता लगे फौरन आपको, जैसे आपने नंबर दिया 1930, वहां पर आप कॉल करें, कॉल करके सारा मामला बताएं, आपसे पूछा जाएगा, नहीं तो जो नियरेस्ट आपके कोई साइबर पुलिस स्टेशन है, नहीं तो आप एक साधारण पुलिस स्टेशन में भी जाएंगे तो वहां पर पुलिस वाले आपकी मदद करते हैं। हर राज्य में, हर केंद्र शासित प्रदेश में एक साइबर का पुलिस का सेल है, और ये जरूरी नहीं कि जिस शहर में, जिस गांव में आप हो वहां पर ये सेल हो, ये तो जरूरी नहीं है, परंतु सभी पुलिस स्टेशन को हिदायत दी गई है कि आपके पास अगर कोई साइबर ठगी का कोई विक्टिम आता है, कोई व्यक्ति जिसके साथ फ्रॉड हुआ है वो आता है, तो आप तुरंत उस पुलिस स्टेशन के पास, वहां का नंबर होता है, आप उससे संपर्क कराएं। बहुत जल्दी एक्ट करना, आपने बड़ी अच्छी बात करी कि बहुत जल्दी एक्ट करना इसलिए जरूरी है क्योंकि ऐसे जो शातिर दिमाग होते हैं, जो लोग इस कार्य में लगे हुए हैं, वो मल्टीपल अकाउंट्स को यूज करते हैं, यानी बहुत सारे अकाउंट्स के संपर्क में रहते हैं, और ये पैसा एक जगह पहुंच के उसके बाद अमूमन ऐसा देखा गया है कि कई अकाउंट्स में जाके बट जाता है, उसको लॉन्डर कर दिया जाता है पैसे को, जिससे कि अगर एक अकाउंट फ्रीज भी हो, एक अकाउंट पकड़ा भी जाए, तो आप दूसरे अकाउंट तक हम पहुंच जाए, तीसरे अकाउंट पर। तो इसलिए अगर आप जल्दी नहीं एक्ट करेंगे तो तब तक पैसे के लिए बाद में साइबर सेल को, पुलिस को उस पैसे को वापस लाने में, उस पैसे को रिकवर करने में और भी ज्यादा कठिनाई आएगी, क्योंकि जितने ज्यादा अकाउंट्स होंगे उतनी ज्यादा कठिनाई आएगी, उतना ही ज्यादा समय भी लगेगा, और मैं ये भी बता दूं साथ में चांसेस भी फिर कम हो जाते हैं इस पैसे के रिकवरने के। इसलिए अगर आप देखें कि कोर्ट ने जो आनंद जो SOP जारी किया है, उस SOP में क्या क्या चीज है, आप देखिए, अगर SOP को देखेंगे तो आपके सवाल का पार्टली यहां से भी जवाब निकल जाता है। पहले सब केंद्र शासित प्रदेशों को, राज्यों को कहा गया है कि आप एक ग्रीवेंस रिड्रेसल सेल बना दीजिए। भाई वो तो साइबर में होता है, जैसा मैंने आपको अभी बताया कि हर पुलिस स्टेशन को निर्देश दिए जाएंगे, अगर आपके यहाँ साइबर नहीं भी है तो आप जैसे ही आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति आए आप उसको साइबर सेल से कनेक्ट कर दीजिए। दूसरा, फिर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज क्या करते हैं, कई बार कंप्लेंट नहीं लिखते, उनको कहा गया है कि आप इस कंप्लेंट को लिखेंगे भी, FIR भी करेंगे, और आप जल्द से जल्द उसका निस्तारण करने की भी चेष्टा करेंगे। ये नहीं कहेंगे कि जी ये तो आप साइबर सेल के पास जाइए, आप ये तो हमारा थाना इसको देखता नहीं है, वगैरह वगैरह। दूसरा, इसमें देखिए आनंद समझना होगा कि इसमें बैंकों का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि पैसा किस माध्यम से गया, UPI से गया या किसी और ऐप के थ्रू गया, गया तो बैंक के माध्यम से, पैसा तो बैंक के माध्यम से, जब भी आप पेमेंट इंटरफेस यूज करेंगे तो बैंकिंग चैनल तो उसमें चाहिए चाहिए। तो बैंक्स को भी सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्व बैंक के थ्रू निर्देश दिए हैं कि बैंक भी पूरा कोऑपरेट करें, क्योंकि ऐसे में बैंक क्या कहता है जी हमें क्या पता, वो तो आपने ट्रांजैक्शन किया होगा, आपने एक देने वाला कोई, लेने वाला कोई, तो जब ऐसा कोई कस्टमर बैंक का आ रहा है बैंक के पास तो बैंक को भी उसको पूरा ध्यान देना। दूसरा, देखिए मामला कहां जाता है, अगर राज्यों की हम बात करें, अब सुप्रीम कोर्ट तो सारा देखेगा नहीं, हर राज्य में हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट्स को साथ में बोला गया है कि आप जो लोअर लेवल के कोर्ट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, सेशंस कोर्ट है, उसमें आप पूरा सहयोग करें सबऑर्डिनेट कोर्ट्स को, उनको पूरे मैकेनिज्म के बारे में बताएं, यानी कि सुप्रीम कोर्ट इसको हाई कोर्ट्स को भेजेगा, हाई कोर्ट्स आगे लोअर कोर्ट्स जिसको हम बोलते हैं उनको निर्देश देंगे कि इन मामलों को किस तरीके से जल्द निस्तारण करना है। उसके बाद स्टेट वाइज और बैंक वाइज, ये भी कहा गया आनंद, के स्टेट वाइज बैंक वाइज रिपोर्ट्स निकाली जाएं बकायदा, जो कि कंप्लेंट को पूरी तरह से कम समय में सर्कुलेट कर दें, और इंटर डिपार्टमेंटल कमेटी जो कि बैंक को कंसल्ट करती है उसको भी एक्टिवेट किया गया, जिससे जो बीच में जो इंटरमीडिएट, क्योंकि देखिए होता क्या है, जितने भी साइबर क्रिमिनल्स हैं और जो लोग इसके पीड़ित हैं, उन्होंने एक शिकायत करी कि जी हमें एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, वो कहता है बैंक करेगा, बैंक कहता है नहीं इंटरमीडिएट करेगी, इंटरमीडिएट कहता है ऐप वाला करेगा, ऐप वाला कहता है पुलिस स्टेशन करेगा। तो ये जो लंबी चेन है, इन सबकी एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बननी चाहिए, क्योंकि ऐसा व्यक्ति एक फेसलेस क्रिमिनल है आपके सामने, आपको उसका चेहरा नहीं मालूम है। तो आपको जब तक सारे के सारे विभाग एक साथ कोऑर्डिनेटेड वे में संयुक्त तरीके से काम नहीं करेंगे, यूनिफाइड तरीके से काम नहीं करेंगे, तो ये इस क्रिमिनल को पकड़ा नहीं जा सकता। तो ये एसओपी जो मैंने बताया, इस एसओपी के अंतर्गत एक स्कीम बनाई गई है, एक मुहिम लाई गई है कि चौतरफा उसको घेरा जाए कि ऐसा व्यक्ति बच के निकल ना पाए। आनंद
1: जी, अश्विनी जी आपसे थोड़ा ये समझने की कोशिश करेंगे, शरद जी भी अपनी बात में उसका चर्चा कर रहे थे, जो 14C पोर्टल है या फिर E0FIR है और न्यू मनी रिस्टोरेशन मॉड्यूल की जो चर्चा हो रही है, उससे पीड़ितों को कितनी तेजी से रिफंड मिल सकेगा?
0: देखिए क्या है कि अभी ये मिलना चाहिए, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन निश्चित रूप से अभी जो भी उसका जो सिस्टम है, ढांचा है, वो बहुत अच्छा नहीं है हम कह सकते हैं। कारण क्या है कि साइबर थानों में जो लोग डिप्यूटेड हैं, वो उस तरह से उन चीजों को निपटने के लिए उतने एक्सपर्टाइज नहीं है और वो उस तरह से व्यवहार भी नहीं करते, लेकिन अब वो कहा गया है तो वो बिल्कुल होना चाहिए। दूसरा मैं ये कह रहा हूँ कि जो रिजर्व बैंक एक एफर्ट कर रहा था वो अभी तक हो जाए तो इसमें और लोगों को लाभ मिल सकता है, कि जो एक डिले, एक घंटे के डिले पेमेंट जो है, का जो प्रस्ताव रिजर्व बैंक का था कि अगर 10,000 से ज्यादा की पेमेंट UPI से हो रही है तो वो आप एक घंटे के बाद जो है वो ऑपरेटिव हो, मतलब आपने पैसा डाल दिया लेकिन वो एक घंटे के बाद उसके बीच में कभी आप रोक सकते हैं। तो बड़े अमाउंट के लिए, ट्रांजेक्शन के लिए अगर इस प्रकार का जो सिस्टम आ जाता है, तो उससे जो एक आदमी फंस गया है और उसको मुश्किल में और उसको समझ आता है तो वो उसको रोक सकता है। तो इसलिए अभी रिजर्व बैंक भी अपने तरीके से काम कर रहा है, लेकिन क्या है बताना कि सुप्रीम कोर्ट निर्देश दे सकता है, लेकिन नीचे धरातल पर उतरने के लिए निश्चित रूप से बैंकों को, एक्सपर्ट्स को, रिजर्व बैंक को, इन सबको जो है मिलके, और साइबर एक्सपर्ट्स जो लोग हैं वो थानों में भी, वैसी पुलिस, ताकि और उसके कारण से ये निपटारा, नहीं तो हम नई नई चीजें बना, 1930 है, आप फोन करेंगे तो आपको निश्चित रूप से वहां पर रिप्लाई मिला है, वो ऑल इंडिया एक लाइन है, लेकिन कई बार देखने में आता है कि वहां पर रिस्पॉन्स जो है, जो वहां पुलिस है उसका उतना लोगों को नहीं होता, तो लोग एकदम से हो जाते हैं। और उसके साथ साथ लोग अगर 1930 के साथ साथ अपने बैंक को भी इमीडिएट कॉन्टेक्ट करते हैं, बात करते हैं, तो वहां पर भी अपनी ट्रांजेक्शन को फर्दर वो रोक सकते हैं, और बैंक अगर कोशिश करता है तो जहां वो पैसा गया है उसको भी आगे रोका जा सकता है। ऐसा सिस्टम डेवलप होना चाहिए, अभी वो है, लेकिन और फास्ट अगर होता है तो लोगों को उसका लाभ हो सकता है।
1: शरद जी, साइबर फ्रॉड का पैसा केवल भारत के भीतर नहीं घूमता जैसा आप भी बता रहे थे, बल्कि ये म्यूल अकाउंट से होते हुए क्रिप्टो करेंसी, पीयर टू पीयर एक्सचेंजेस और हवाला नेटवर्क के जरिए साउथ ईस्ट एशिया या फिर यूरोप के कई देशों में डाइवर्ट कर दिया जाता है। एक अर्थशास्त्री के नाते भारत के विदेशी मुद्रा भंडार और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी FDI के भरोसे पर इस इंटरनेशनल मनी ट्रेल और कैपिटल ड्रेन का क्या आप दूरगामी आर्थिक प्रभाव देख रहे हैं?
2: देखिए, आपने जो बात कही पहले, उसमें हमें समझना होगा कि भारत में अगर रुपए में पैसा आपका कनेक्ट हुआ है तो उसको अगर आपको विदेश भेजना है तो अंटिल एंड अनलेस कि उस देश के साथ हम रुपी और उसकी करेंसी में एक एग्रीमेंट नहीं हुआ है तो आप रुपी में तो भेज नहीं पाएंगे उसको। ये जनरली जो आप कह रहे हैं वहां होता है जहां पर आपका कोई क्रिमिनल विदेशी है या आपसे विदेशी मुद्रा में कह रहा है कि आप डॉलर में पेमेंट कर दीजिए। उसके लिए डॉलर किसी आम आदमी को या कोई और करेंसी, किसी आम आदमी को यूरो है, पाउंड है, किसी आम आदमी के लिए ऐसे आसानी से लेना संभव नहीं है। उसके लिए बैंक में एक A2 फॉर्म होता है, आपको पर्पस बताना होता है, आप डॉलर क्यों इशू कराना चाहते हैं। और मैं जो जिस पे ज्यादा प्रकाश डालना चाह रहा था आनंद आपकी इजाजत से, वो था कि अभी मैंने बहुत सारे लोगों से बात करी और कुछ लोग जो इसका शिकार हुए थे, जिनको दिक्कतें आई, जो पीछे शिकार हुए हैं, उन्होंने 3-4 कॉमन जो समस्याएं निकल के आई जिसकी वजह से मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट को इसमें दखल देना पड़ा। सबसे पहली समस्या थी कि जब पुलिस स्टेशन जाके आप FIR कराते हैं, जब हम जल्दी करने की बात कर रहे हैं तो FIR करने में डिले होती है, इसके बारे में मैंने अभी हल्का सा जिक्र भी किया। दूसरा होता है कि जैसे ही पता लगता है, अब मान लीजिए पता लग गया कि किस अकाउंट में पैसे गए हैं, तो तुरंत निर्देश दिए जाने चाहिए उस अकाउंट को फ्रीज करने के। अब ये तो म्यूल अकाउंट है, यानी कि ये अकाउंट तो किसी दूसरे व्यक्ति का है, अब उस व्यक्ति का उसने किसी और के लिए ये काम किया, यानी किसी और को अपने अकाउंट को बेच दिया या अपने अकाउंट को किराए पे दे दिया, या किसी लालच में आके किया, तो उस व्यक्ति का अकाउंट फ्रीज हो जाता है। अब उस व्यक्ति ने तो फ्रॉड किया नहीं है, वो तो शिकार हुआ है।

0: लालच का या शिकार हुआ है किसी और के चक्कर में। तो अब इसमें क्या है कि आपको जो कोऑर्डिनेशन है बैंक और पुलिस स्टेशन के बीच में, वो मुझे लगता है बहुत सुदृढ़ करने की जरूरत है, क्योंकि वो कोऑर्डिनेशन की कमी होने की वजह से पुलिस के इंस्ट्रक्शन आएंगे, बैंक तब फ्रीज करेगा, बिना उसके तो फ्रीज करेगा नहीं बैंक। तो इसमें स्पीड करने की जरूरत है। दूसरा, एक दफे अकाउंट फ्रीज हो गया तो उसको टाइमली हियरिंग्स करके अनफ्रीज करने की भी जरूरत है, क्योंकि हो सकता है उस व्यक्ति के पहले से मान लीजिए कुछ पैसे उस बैंक में पड़े हों। इसके अलावा ये व्यक्ति जो पैसे की ट्रांजेक्शन कर रहा है, जिसने उसको म्यूल अकाउंट बनाया है, वो व्यक्ति अपने पैसे यूज कर रहा है, पर उसके पैसे उसमें ऑलरेडी पड़े हुए हैं। अब उसका तो अकाउंट फ्रीज हो गया, तो उसके जो पैसे पड़े थे वो भी फ्रीज हो गया, या उसको कल को बैंक अकाउंट की जरूरत पड़ी तो उसका अकाउंट फ्रीज पड़ा। तो मुझे लगता है टाइमली हियरिंग करके उसको डीफ्रीज करना भी जरूरी। दूसरा, एक और जो सबसे बड़ी शिकायत मेरे सामने आई आनंद, जो लोगों से मैंने जब बात करी कि रिकवरी रेट बहुत कम है। मतलब जो फ्रॉड, मान लीजिए मैं मानता हूं 1,00,000 रुपए का अगर फ्रॉड हुआ है कुल, मैं एक उदाहरण के तौर पर ले रहा हूं, तो 1,00,000 रुपए में मान लीजिए 8 व्यक्ति शामिल हैं, 12,000-12,500 इतने लोगों के साथ फ्रॉड हुआ है, तो रिकवरी रेट बहुत पुअर है। उसमें से मात्र 5-10,000 रुपए 5% 10% रिकवरी हो पाती है। और उस रिकवरी रेट कम होने का कारण जो मैंने आपको बताया कि लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन विभिन्न, अब एजेंसीज कौन सी, हम एक बार फिर से देख लेते हैं, हमारे श्रोताओं को सुननी बहुत जरूरी है। पुलिस स्टेशन हो गया, जहां पहले रिकॉर्ड करेंगे, जहां पहले रिपोर्ट करेंगे 1930 पे कर रहे हैं तो वहां ठीक है, आप अपने नजदीक के पुलिस स्टेशन जा रहे हैं वो आपको साइबर सेल से कनेक्ट करें, वहां बैंक दूसरी एजेंसी हो गई। दूसरा, जिस प्लेटफॉर्म से आप पेमेंट कर रहे हैं, कई दफे ऐसा होता है कुछ खरीद बेच लोग कर रहे होते हैं, आपको कोई सामान बेचने की कोशिश कर रहा है किसी कंपनी का नाम देके कि ये प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है आप पहले पेमेंट कर दीजिए, या कोई आप सर्विस ले रहे हैं तो किसी कंपनी का नाम लेके सर्विस की जा रही है, तो उस कंपनी को भी इन्फॉर्म करना बहुत जरूरी है। तो मुझे लग रहा है जितनी इसमें जितनी जानकारी काम आती है आनंद, उससे ज्यादा अंग्रेजी में कहावत होती है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो अगर आप इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, मैं समझता हूँ जितनी जानकारी आज इस शो के माध्यम से जो लोग हमको सुन रहे हैं उनको मैं सबसे पहले तो कहना चाहूंगा कि कोशिश तो करें कि आप इसका शिकार ना हो। और जैसे जैसे साइबर फ्रॉड के बारे में आप अखबार में भी इश्तेहार आते हैं, आकाशवाणी इसको लगातार चलाता है कि आप साइबर फ्रॉड के शिकार ना हो, तो आपको चौकन्ना रहना है। मुझे लगता है लोगों का चौकन्नापन सबसे ज्यादा कारगर है, और अब हो गया है उसके बारे में हम चर्चा यहाँ पर कर ही रहे हैं। सबसे बड़ा सुप्रीम कोर्ट के इस निर्देश का फायदा आनंद जो मुझे नजर आता है कि ये एजेंसी अभी भी काम कर रही है, ऐसा नहीं कि कोई नई एजेंसी को सुप्रीम कोर्ट ने लाने को बोला है, कोई नई एजेंसी नहीं, यहाँ एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बन सकती है, परंतु इन एजेंसीज को आपस में तालमेल जो है उससे काफी हद तक ये रिकवरी 50-60% तक जा सकती है, अगर कोऑर्डिनेटेड वे में, यानी कि पूरे संगठित तरीके से ये सारी की सारी एजेंसीज काम करें।
1: जी हाँ, रिकवरी से जुड़े अगर कुछ आंकड़ों पर नजर डालें तो 2021 में सिटीजन फाइनेंशियल साइबर फ्रॉड रिपोर्टिंग एंड मैनेजमेंट सिस्टम शुरू किया गया सरकार की तरफ से, और इसके माध्यम से वित्तीय धोखाधड़ी की सूचना मिलते ही संबंधित राशि को जल्द से जल्द रोकने का प्रयास किया जाता है। 31 जनवरी 2026 तक इस व्यवस्था के माध्यम से 24,65,000 से अधिक शिकायतों में 8,690 करोड़ रुपए से अधिक की राशि बचाई जा चुकी है, लेकिन ये आंकड़े अभी भी बहुत कम हैं, जैसा कि शरद जी बता रहे हैं। अश्विनी जी, आपसे दो व्यवहारिक सवाल पूछना चाह रहा हूं। सबसे पहले कि जब बैंकों का सिस्टम इतना मजबूत है, अगर मैं या कोई भी इस देश का नागरिक बैंक में अपना खाता खुलवाने जाता है तो KYC की सुविधा उपलब्ध होती है, सारी जांच पड़ताल की जाती है, EKYC भी होता है, इन सब के बावजूद म्यूल अकाउंट्स बड़ी तादाद में खुलना, क्या बैंकों के जो संस्थागत ढांचे में कोई कमी है? और दूसरी बात, जिस तरफ शरद जी इशारा कर रहे थे कि साइबर ठगी से बचने की जरूरत है, आज के आधुनिक दौर में जब तकनीक की भरमार है, किन बातों का ध्यान रखा जाए?
2: बिल्कुल, मैं दो बातें बताऊंगा कि खाता खुलने के लिए क्या चाहिए। आपको अपना कोई डॉक्यूमेंट चाहिए, फिर आपको एक सिम चाहिए, एक नंबर चाहिए, फ्रॉड करने के लिए भी यही चाहिए। सिम आपको पटरी पे मिल जाता है, जब तक उसको ड्यू डिलीजेंस के साथ सख्ती के साथ वो नहीं इश्यू होगा, ये काम होते रहेंगे। दूसरा, खाता खोलने के लिए भी बैंकों पर इतना दबाव रहता है कि टारगेट पूरे करके आप इतने खाते खोलो, और फिर कई बार वो खाते प्राइवेट एजेंट के थ्रू खोल जाते हैं। BC मॉडल है, यानी बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट मॉडल है, उसमें ज्यादातर लोगों को वो गुमराह करके उनके खाता खोल लेते हैं, और बाद में उनको बेचारों को पता ही नहीं लगता कि उनके नाम खाता खुल गया और खाता कहीं और भेज दिया जाता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि एक सिम इशू और खाता खोलना, ये बहुत ड्यू डिलीजेंस के साथ सख्ती के साथ इसके ऊपर खुलने चाहिए। दूसरा, जहां आपने कहा कि बचने के लिए, क्या होता है कि हम ट्रैप कहां होते हैं, हम लालच में ट्रैप होते हैं। सोशल मीडिया पर इतने तरह के प्रलोभन आते हैं कि हम फटाक से उसमें फंस जाते हैं और उसके अंदर हम फंस जाते हैं। डिजिटल अरेस्ट समझ सकते हैं कि आपके पास फोन आया, आपको उन्होंने वो किया, लेकिन यहाँ तो हम खुद ही फंस रहे हैं, जो सोशल मीडिया पर इतनी सारी एड आती हैं, हमें सोचना होगा कि ये हमें क्यों फ्री दे रहा है या हमें ये क्यों एक्स्ट्रा दे रहा है, मार्केट में इसका रेट ज्यादा है, ये हमें सस्ता, इतना सस्ता कैसे मिल रहा है, या किसी ने हमें रेस्टोरेंट में हम खाना खाएंगे अगले दिन फोन आ गया कि भाई आपको फ्री जो है एक और डिनर या ब्रेकफास्ट दे रहे हैं, तो वो क्यों, यानी वो अगर हम थोड़ा सा भी अपने दिमाग के इसको खोल के रखेंगे ना, तो मुझे लगता है हम उस ट्रैप में नहीं फंसेंगे। लेकिन हम आंख बंद करके सोशल मीडिया पर टक टक टक टक करते जाएंगे तो हम उनके ट्रैप में फंस जाएंगे। तो दो चीजें हैं, एक तो बचना है और दूसरा सरकार को इस खाते को खोलने और सिम को इशू करने के लिए जब तक सख्ती नहीं होगी आप इन चीजों को नहीं रोक सकते।
1: शरद जी, जब हम साइबर फ्रॉड की बात कर रहे हैं या इससे जुड़े रोकथाम की बात कर रहे हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात न करें तो ये चर्चा अधूरी रहेगी। पहले के जमाने में जो पारंपरिक मनी लॉन्ड्रिंग होती थी उसके मुकाबले जो एआई के इस्तेमाल से अब डिजिटल मनी लॉन्ड्रिंग की गति बहुत ज्यादा तेज हो गई है। एआई दोनों ही तरीकों में इस्तेमाल हो रहा है, पहले तो साइबर ठगी में और दूसरा उसके बचाव में भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पूरे परिदृश्य में दोनों तरफ से एआई की भूमिका को कैसे देख रहे हैं आप?
0: देखिए, अगर हम एआई की भूमिका पहले उस तरफ से देखें कि क्या हम ठगी से बच सकते हैं, मुझे लगता है ज्यादा जरूरी वो है, तो एआई के अभी टूल्स आप बैंक तो लगा सकता है, पर एक किसी निजी व्यक्ति के लिए ये टूल लगाना कि ये असली है नकली है, क्योंकि एआई में भी आपके सामने जो शख्सियत आती है, क्योंकि फेसलेस काम होता है ज्यादातर, तो फेसलेस होता है, बहुत कठिन होगा। और इसमें मैं अभी जो अश्विनी ने बात कही, मैं आपकी इजाजत से उसमें जोड़ना चाहूंगा, या आपके सवाल से भी बात जुड़ी हुई है, जब मैंने प्रिवेंशन की बात करी कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी कि आप कोशिश करें कि आप इसमें फंसे ना। अब देखिए, हम म्यूल अकाउंट की बात कर रहे हैं, अब जिस व्यक्ति ने म्यूल अकाउंट खुलवाया है उसकी तो ड्यू डिलिजेंस पूरी है, उसने अपना आधार दिया है, उसने अपना पैन दिया है, उसके पास फोन नंबर भी, सिम कार्ड, जैसे अश्विनी पटरी वाले बता रहे थे, उसके पास पटरी वाला नहीं, उसने बकायदा एक ऑथराइज्ड सेंटर से जाके सिम लिया है, परंतु अकाउंट खुलवा लिया, अब बाद में वो लालच में आ गया। तो मैं यहाँ पर जो बड़ा संदेश जो मैं देना चाहता हूँ, जो लोग हमको सुन रहे हैं, आकाशवाणी की पहुंच तो पूरी देश में है, तो मैं उनको ये कहना चाहूंगा, आपके पास यदि कोई भी व्यक्ति आता है और वो कहता है कि हमारा बैंक अकाउंट नहीं खुल रहा है, आपका बैंक अकाउंट हम इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपको उदाहरण देता हूं, मैं ये मेरे साथ बीता हुआ है, किसी स्टूडेंट का मेरे पास आया, उसने कहा जी मेरे बैंक अकाउंट अभी खुलवाया है मेरे पेरेंट्स ने, और मेरे पास कोई फोन आया है कि आपको हम 10,000 रुपए कमीशन देंगे, आपका तो स्टूडेंट का अकाउंट है तो इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, आप हमसे 10,000 रुपए महीने के लेते रहिए। तो स्टूडेंट के लिए बड़ा अट्रैक्टिव था, वो एक मिनट में मान जाता, उसके बाद वो तो उसके घर पे बात हुई, फिर उनका पेरेंट मुझे जानते थे, मेरे से बात हुई, तो हमने उसको मना कर दिया। आपको शक हो जाना चाहिए, जैसे ही कोई व्यक्ति, अब ये मेन बात है, ये सुनने वाली बात है, जैसे ही कोई व्यक्ति आपको ये कहे या कोई दूसरी तरफ से एआई टूल आपको ये कह रहा है कि आप एक बैंक अकाउंट खुलवा लीजिए, उसमें पैसे आया करेंगे और इसके लिए अलग से अकाउंट होगा, तो यहां पर आपके कान खड़े हो जाने चाहिए। हम क्योंकि यहां पर म्यूल अकाउंट डिस्कस कर रहे हैं आनंद, तो ये बात श्रोताओं के लिए जाननी बहुत जरूरी है, जिसने अकाउंट खुलवाया है वो इनोसेंट है, उसको उस समय जब अकाउंट खुलवाया था तब उसके सामने ऐसा कुछ नहीं था, बाद में उसने अपने अकाउंट को बेचा या किराए पे दिया। आपका अकाउंट ना तो किराए पे देने की चीज है, आपका अकाउंट ना बेचने की चीज है, आपके अकाउंट केवल आपके पैसे आपके ट्रांजैक्शंस के लिए है, किसी भी थर्ड पार्टी को, ये तो वैसे भी कल को मान लीजिए साइबर फ्रॉड नहीं भी है, कोई व्यक्ति आपके अकाउंट में वैसे आपकी जानकारी से भी ट्रांजैक्शन कर रहा है, हो सकता है वो पैसे का सोर्स जो है वो क्रिमिनल हो, तो अगर क्रिमिनल होता है तो अगर वो व्यक्ति कल को जेल जाता है तो आप तो उसके पार्टनर माने जाएंगे उसमें, जो कि अमूमन होता है। तो मुझे लगता है कि व्यक्ति को अपने बैंक अकाउंट को पहले तो किसी को एक्सेस नहीं देना चाहिए, कोई लालच दे आपको कि आपके हम इतने पैसे देंगे, आप अपना अकाउंट हमें इस्तेमाल करने दीजिए, कितने भी पैसे ऑफर करे, मुझे लगता है उस व्यक्ति को, अनलेस कि वो आपका ब्लड रिलेटिव है, आपके घर का माता पिता है, भाई बहन है, तो अलग बात है, पर कोई भी अनजान व्यक्ति अगर आपको कर रहा है, अनजान क्या, मैं कहता हूं अगर दूर की जान पहचान का भी है तो भी आपको नहीं करना चाहिए। आपके अकाउंट में किए गए हर जमा और हर विड्रॉल के लिए जिम्मेवार पूरी तरह से आप होंगे। कल को वो व्यक्ति अगर फंसता है तो आप उसके साथ फंसते हैं, यू बिकम अ पार्टनर इन क्राइम, इसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं, आप उसके साझीदार बन जाते हैं उस अवैध गतिविधि में। आनंद
1: जी, इसी चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। अश्विनी, बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनके खातों का गलत इस्तेमाल इस समय हो रहा होगा, जब से सुप्रीम कोर्ट ने ये RBI को SOP बनाने को कहा है, और उनको अगर बहुत बाद में पता चला कि उनका अकाउंट एक तरीके से म्यूल अकाउंट है या उस अकाउंट का इस्तेमाल गलत तरीके से हो रहा है, अब वो चाहते हैं कि वो बैंक को बताएं या पुलिस में जाकर बताएं, लेकिन उनके मन में झिझक है कि ऐसा करने से वो भी उस जांच के दायरे में आ जाएंगे और उन पर भी कार्रवाई हो सकती है, ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए?
2: नहीं, बिल्कुल, आपके खाते में कोई पैसा आया है और आपको पता है कि ये

0: इसका जो है मेरे लिए नहीं है ये मनी, ना मेरे किसी फ्रेंड ने, रिलेटिव ने, किसी ने भी ट्रांसफर नहीं किया, ना मेरी पेंशन है, सैलरी है, कोई डिविडेंड नहीं आया, तो उसको ना तो उस व्यक्ति द्वारा फोन करने पर वापस करना चाहिए और उसको कहना चाहिए आप अपने बैंक के थ्रू ही इसको जो है रिवर्स करवाएं, और अपने बैंक को बता देना चाहिए कि दिस मनी डजंट बिलोंग टू मी, तो आप इसको जो है अपना वो कर लीजिए। क्योंकि बाद में जब वो, जैसे कोहली जी कह रहे थे कि जब वो इन्वेस्टिगेशन होगी और वो मनी जो उस ट्रेल में थी वो आपके अकाउंट में आई है, तो आपका अकाउंट भी सीज हो जाएगा, तो उससे बचने के लिए पहले ही आपको वो करना चाहिए। और ऐसे केस में जहां आपकी गलती नहीं है, आपके खाते में पैसा कोई डाल दिया गया है, और उसके लिए भी कोर्ट ने पहले भी कहा है, बार बार कहता है कि जितना वो ट्रांजेक्शन आई है उस खाते को ही फ्रीज बैंक करे, बाकी उसके खाते को ऊपर जो है वो फ्रीज ना लगाए, ताकि उसको मुश्किल ना हो, क्योंकि वो तो कल्प्रिट नहीं है, वो तो इनोसेंट है और किसी ने उसके खाते में डाला है। तो इसलिए अपने खाते को रेगुलर हम देखते रहें, और जो हमने फोन नंबर दे रखा है उस पर भी देखते रहें कि मैसेज आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। नहीं आ रहे तो हम बैंक से ध्यान रखें, क्योंकि कई बार जो इस तरह के लोग रहते हैं वो बैंक में मिलकर या कुछ भी करके जो है आपका मोबाइल नंबर जो वहाँ फीड है उसको भी चेंज करवा देते हैं, ताकि कोई ट्रांजेक्शन वो करते हैं तो आपको उसकी इंफॉर्मेशन ही नहीं मिलती। तो इसलिए सतर्क रहना भी बहुत जरूरी है, ताकि हम थोड़े थोड़े समय में अपनी चीजों को टटोलते रहें।
1: शरद जी, कार्यक्रम में समय नहीं है, आकाशवाणी जन जागरूकता का एक

0: सलूशन है, और अगर हो भी जाए तो घबराइए नहीं, जो तरीके बताए गए हैं कार्यक्रम में उनको फॉलो करिए और आपका पैसा सरकार से सुप्रीम कोर्ट के इस डायरेक्शन की वजह से और जो उसके अगेंस्ट एक्शन लिए जाएंगे अवश्य वापस आएगा।
1: आज की चर्चा खत्म हो रही है, लेकिन साइबर अपराधियों की कोशिशें नहीं, वो न दिन देखते हैं, न रात, न उम्र, न पेशा। उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि सामने एक छात्र है, किसान, सैनिक, व्यापारी या कोई बुजुर्ग। उन्हें सिर्फ एक चीज चाहिए, आपकी एक गलती याद रखिए। दुनिया की सबसे मजबूत तिजोरी भी उस समय बेकार हो जाती है जब उसकी चाबी हम खुद किसी और को सौंप देते हैं। डिजिटल युग में हमारी सबसे बड़ी सुरक्षा सिर्फ पासवर्ड नहीं, जागरूकता है। आपकी सतर्कता ही आपकी सबसे बड़ी साइबर सुरक्षा है। आज अगर हम अपने बैंक खाते, अपने डेटा और अपनी डिजिटल पहचान की रक्षा करने सीख जाएं, तो न केवल अपनी मेहनत की कमाई बचाएंगे, बल्कि एक सुरक्षित, विश्वसनीय और सशक्त डिजिटल भारत के निर्माण में अपनी शानदार भूमिका भी निभाएंगे। शरद जी आपका और अश्विनी जी आपका इस चर्चा में भाग लेने के लिए और विशेषज्ञ राय आकाशवाणी के श्रोताओं के साथ साझा करने के लिए बहुत बहुत आभार।
0: धन्यवाद।
2: नमस्कार।
3: अभी आप सुन रहे थे साइबर धोखाधड़ी से निपटने और अवैध बैंक खातों पर रोकथाम से जुड़े सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे थे आर्थिक विश्लेषक शरद कोहली और बैंकिंग विशेषज्ञ अश्विनी राणा। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आनंद श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
4: चर्चा का विषय है
5: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए नाटक।
6: प्रस्तुत है आर के जायसवाल का लिखा नाटक एक शक झूठ हजार। प्रस्तुत करता है राकेश ढौंडियाल।

0: आ गए, ये वक्त है घर आने का।
1: क्यों, ऐसी भी कोई बहुत देरी तो नहीं हुई है?
0: 8 बज रहे हैं। पूछ सकती हूँ तुम्हारा ऑफिस कितने बजे छूटता है?
1: अरे मैं कोई ईमेल नहीं हूँ जो छूटते ही पहुंच जाऊंगा।
0: हाँ हाँ, ईमेल नहीं हो पर मेल हो, यही तो डर है।
1: अरे ये क्या अनशन बक रही हो?
0: अनशन? तुम क्या जानो मुझ पर क्या बीतती है। ऊपर से तुम्हारा ऑफिस स्टाफ तो ऐसे ऐसे रखते हैं जैसे ब्यूटी कॉन्टेस्ट के लिए छाट छाट कर लाए हो।
1: दीपा, दीपा ये क्या हो गया है तुम्हें? तुम किसी मिस इंडिया से कम हो क्या?
0: अब बनाओ मत, मैं पल पल मरती हूँ।
1: अरे पागल हो, भला तुम्हें छोड़कर मैं कहीं जा सकता हूँ?
0: एक मिनट, इधर आना तो जरा।
1: वो क्यों?
0: ये तुम्हारी शर्ट पे ये दाग कैसा?
1: कौन सा?
0: ये बाह पर नीचे।
1: अरे ये आइसक्रीम गिर गई थी।
0: ओ तो आइसक्रीम खाने गए थे इसीलिए?
1: हाँ, रास्ते में जरा मन कर गया था।
0: अच्छा अच्छा, बड़ी खुशबूदार आइसक्रीम रही होगी है ना?
1: हाँ, अरे जाने कैसे कैसे तो फ्लेवर आजकल डालते हैं।
0: बड़ा ही फीमेल फ्लेवर दिखता है ये तो।
1: तुम औरतों की ना यही तो प्रॉब्लम है कि हर बात को बस शक की नजर से देखती हो।
0: शक की नजर से नहीं डैमिट, कंफर्म कह रही हूँ, तुम किसी औरत के साथ थे।
1: क्या
0: ऐसे बोले ना बनो, ये लेडीज परफ्यूम की महक है, कोई आइसक्रीम वाइसक्रीम का फ्लेवर नहीं है। स्टूपिड समझ रखा है मुझे। हाँ नहीं तो

0: इस फाइल पे एक नजर तो डाल लेना डब्बू, न्यू रिक्रूट्स की लिस्ट है। हेलो, कहाँ खोए हो?
1: कहीं नहीं।
0: कुछ सोच रहे हो डियर?
1: हाँ, सोच तो रहा हूं। क्या परफ्यूम का भी कोई जेंडर होता है?
0: मतलब?
1: अरे मतलब ये कि कल दीपा बोल रही थी।

0: अच्छा, अब समझी। तो बीवी तुम पर शक कर रही थी, क्यों?
1: अरे बाप रे, कितनी तेज नाक होती है तुम औरतों की। अरे वो जो आइसक्रीम तुमने अपनी हैंकी से पहुंची थी ना, उसकी महक सूंघ गई वो।
0: गधे हो तुम, झूठ बोलते ही क्यों हो? अरे इसमें कौन सा गुनाह कर दिया था तुमने जो छुपाए फिरते हो?
1: अरे गुनाह नहीं किया, लेकिन उसका स्वभाव तुम नहीं जानती। पता नहीं क्यों बहुत इनसिक्योर फील करती है वो।
0: ऐसा क्यों?
1: गॉड नोज, शादी के पहले ऐसा नहीं था।
0: लव मैरिज हुई थी ना तुम दोनों की?
1: हाँ फिर भी
0: फूलिश लेडी है, समझती ही नहीं। जितना बांधो आदमी उतना भागता है। कहो तो मैं किसी दिन।
1: ना ना, अब भूल के भी नहीं। तुम्हारा ये सुंदर चेहरा देख लेगी तो सुसाइड कर लेगी।
0: इतनी कातिल हूं मैं, तुम पे तो कभी असर देखा ही नहीं।
1: देखोगी भी नहीं। काश ये बात दीपा समझ जाए।

0: सारे मर्द ऐसे ही होते हैं रे बाबा, सब के सब लूज कैरेक्टर, जरा सी ढील दी नहीं किए।
1: अरे अब मैं क्या करूं मिन्नी, कुछ समझ में ही नहीं आता। टेंशन के मारे मेरा तो सर फटता रहता है।
0: नजर रखा कर उस पर, नहीं तो पता चला कि तू बाहर और वो।
1: अरे
0: वैशाली का पता है ना तुझे?
1: वैशाली कौन? अच्छा अच्छा वो जो ट्रांसफर लेके मुंबई गई है।
0: हाँ वही, सब सोचते हैं कि वो, मगर अंदर की बात तो मैं ही जानती हूँ।
1: अंदर की कौन सी बात?
0: अरे उसका जो हस्बैंड था ना, वो मुंबई में था।
1: हाँ
0: पता चला वहां दूसरी कर ली उसने।
1: अरे
0: उसी के मारे बेचारी वैशाली को वहां ट्रांसफर लेना पड़ा, नहीं तो कौन जाए वहां, जिंदगी बिल्कुल मशीन हो जाती है।
1: फिर
0: क्या, अभी तक लफड़ा चल रहा है, एक बार कनेक्शन हो जाए तो छूटता थोड़ी है।
1: हाय राम, मेरा तो सर दुख रहा है मिन्नी।
0: अब देख, सिर दुखाने से तो काम नहीं चलने वाला, चौकसी रख चौकसी। पतंग की डोर तो छूटने पे पकड़ सकती है, मगर आदमी की नो चांस।
1: हाय राम, अब मैं क्या करूं, अब तो डब्बू झूठ भी बोलने लगे हैं।
0: अरे झूठ तो सारे ही मर्द बोलते हैं बाबा, अलर्ट तो बीवियों को ही रहना पड़ता है ना। तू तो पल पल का हिसाब मांगा कर, कहां गया, किससे मिला, इतनी देर कैसे हुई, सब।
1: इससे क्या होगा, झूठ बोल देगा, कोई नई कहानी गढ़ देगा फिर से।
0: बिल्कुल ही बेवकूफ है तू, पुलिस कैसे सच उगलवाती है।
1: ओ, मार मार के
0: मार के नहीं, वो जमाना गया, एक ही सवाल को पुलिस 10 तरीके से पूछती है कि आदमी फंसता ही चला जाता है।
1: ओहो, किसी पुलिस वाले से तेरा
0: मैं तुझे रास्ता बता रही हूँ और तू है कि चल उठ, लंच अवर फिनिश्ड।
1: हाँ चल चल।

0: ओ टप्पू, कितना अच्छा लग रहा है ना। तुम हो, मैं हूं और नदी की ये धार। कितने दिनों बाद आज हम फिर इस तरह बाहर निकले हैं।
1: सच? तुम खुश हो ना दीपा? ऐसे ही खुश रहा करो, दिल को बड़ी तसल्ली मिलती है।
0: याद है टप्पू, कॉलेज के दिनों में जब हम ग्वालियर फोर्ट गए थे, तब मेरा हाथ थामकर कितने रोमांटिक मूड में तुम बोले थे, दीपा तुम मेरी मृगनयनी हो।
1: सब याद है, और ये भी याद है कि ये सुनकर कैसे तुम छुई मुई सी शर्मा गई थी।
0: वो दिन मैं कभी नहीं भूलती डब्बू, तरस गई मैं वैसी ही बातें फिर सुनने के लिए। और तुम हो कि
1: तो लो, आज ही कह देता हूं, दीपा तुम मेरी मृगनयनी हो, रूपमती हो, हीर हो, लैला हो। एक मिनट।
0: सत्यानाश हो, अच्छे भले रोमांटिक माहौल का कबाड़ा कर दिया। तुम अपने मोबाइल को बंद नहीं रख सकते?
1: एक मिनट। हाँ बोलो। क्या? मैं अभी आया।
0: अभी आया? मतलब कहाँ जा रहे हो? किसका फोन था?
1: कुछ अर्जेंसी आ गई।
0: अरे तो कह देते, तुम छुट्टी पर हो।
1: ऐसे नहीं होता दीपा, तुम जानती हो बहुत निभा के नौकरी करनी पड़ती है।
0: लेकिन फोन किसने किया था?
1: था एक ऑफिस का।
0: था कि थी?
1: ओफो,

0: फिर शुरू हो गई तुम्हारी जासूसी। चलो मैं तुम्हें चौराहे पर छोड़ दूंगा, वहां से तुम ऑटो से निकल जाना।
1: नहीं, पहले मुझे ये बताओ किसने बुलाया है तुम्हें।
0: दिमाग खराब मत करो दीपा, वहां अर्जेंसी है और यहां तुम मेरा इंटरोगेशन कर रही हो। मैं जा रहा हूं।
1: नहीं जाओगे कहीं भी। पहले अपना फोन दिखाओ, दिखाओ मुझे अपना फोन।
0: अरे
1: कौन है ये? एक मिनट छोड़ो। ये नाम की जगह कोड डाल रखे हो। एक मिनट, अभी पता चल जाएगा।
2: हाँ बोलो डब्बू, अभी तक तुम निकले ही नहीं।
1: ओह, तो ये है तुम्हारा था। क्यों?
0: प्लीज दीपा, जाने दो मुझे, वहां मेरा
1: इंतजार चल रहा है। यही ना, तुम्हें मेरी कसम है, और आज अगर तुम, मैं नदी में कूद के चांद दे दूंगी, फिर उड़ाना गुलछर्रे उसके साथ आराम से।

0: चाय ठंडी हो रही है डब्बू, क्या सोच रहे हो?
1: अरे हाँ, चाय ठंडी।
0: मिस्टर, आजकल आप रहते कहाँ हैं? इज एवरीथिंग ओके?
1: अब तुमसे क्या छुपाना, वही दीपा का चक्कर, दिन ब दिन वो और शक्की होती जा रही है।
0: अगर मेरी वजह से ये सब प्रॉब्लम्स है तो
1: ऐसा नहीं है भावना, वो है ही पजेसिव। अरे किस किस से नाता तोड़ूंगा, अगर समाज में रहना है तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि मैं किसी औरत से बात ही ना करूं।
0: कह तो रही हूं कि एक दिन मुझे उसके पास ले चलो, मगर तुम सुनते ही नहीं।
1: पागल हो, फोन पे तुम्हारी आवाज सुन के तो ऐसे भड़कती है, साक्षात देख लेगी तब तो कयामत ही आ जाएगी।
0: फिर
1: पता नहीं, अब तो घर जाते भी डर लगता है। जितना वक्त तुम्हारे साथ बीतता है बस वही सुकून देता है।
0: सच?
1: मेरा वो मतलब नहीं है भावना, एज ए फ्रेंड, एक ट्रू फ्रेंड पाता हूं मैं तुम में, जिससे अपना दुख दर्द मैं बांट सकता हूं। तुम ही बताओ, तुम्हें मैं कैसे खो दूं?

0: झूठ झूठ झूठ, हद होती है झूठ बोलने की डब्बू। भावना नाम है ना उसका, मुझे सब पता चल गया।
1: तो
0: हेटी तो देखो इस आदमी की, कैसे अकड़ कर कह रहा है तो। अरे कुछ तो शर्म करो, शर्म।
1: अरे फ्रेंड है मेरी, ऐसा क्या गलत कर दिया मैंने जो तुम।
0: क्या गलत कर दिया? अरे गैर औरत के साथ इतनी इंटीमेसी क्या सही है? और कौन जाने तुम उसके साथ कुछ भी गलत।
1: दीपा
0: चिल्ला मत, अगर मैं चिल्लाने पर आ गई ना तो किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं बचोगे तुम।
1: तो चिल्ला फिर, जिससे जो कहना है कह दो, परवाह नहीं है मुझे। ब्लडी घर में दो पल चैन से रहना भी नसीब नहीं होता, जा रहा हूँ मैं।
0: कहाँ? उसी के पास।
1: हाँ हाँ उसी के पास, बोलो क्या कर लोगी।
0: मैं कहती हूँ रुक जाओ डब्बू, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।
1: अब और क्या बुरा हो सकता है मेरा? अरे जिंदगी में सुकून नहीं तो कुछ भी नहीं, लाना थे ऐसी जिंदगी पर।
2: ये क्या देवदास की तरह चले आ रहे हो? घर में खाना पानी नहीं मिला क्या?
1: कैसा घर, मैं होटल से आ रहा हूं।
2: क्या होटल से? मतलब रात में तुम लड़कर?
1: हाँ, सब कुछ बर्दाश्त से बाहर हो चुका था।
2: तो होटल जाने की क्या जरूरत थी, मेरा घर नहीं था क्या?
1: कैसी बातें कर रही हो भावना, मैं रात में तुम्हारे घर रुकता? होश में तो हो तुम?
2: जैसे मैं तुम्हें जानती ही नहीं। क्यों, फिर और भी कमरे हैं मेरे घर में।
1: मालूम है मुझे, लेकिन मुझे ठीक नहीं लगा।
2: एक तुम हो और एक वो, मुझे तो तरस आता है उसकी अकल पर।
1: बुरी नहीं है वो भावना, पर पता नहीं क्यों बहुत इनसिक्योर फील करती है।
2: वही तो, फ्लर्ट टाइप के होते तुम तो समझ में भी आता, मेंटली सिक है।
1: ना ना ऐसा ना कहो, बड़ी मुश्किल से मिले हैं हम ना, शायद इसलिए।
2: बड़ी रुकावटें थी ना तुम लोगों की शादी में?
1: बहुत ज्यादा, दोनों की ही फैमिली इस शादी के खिलाफ थी, पर मैं तो लड़का था, उसने बहुत मुश्किल उठाई।
2: यही तो, इतनी मुश्किल से जो चीज मिली है

0: सर डब्बू नहीं आया आज, मोबाइल भी ऑफ आ रहा है उसका।
1: बुरी खबर है भावना।
0: क्या सब ठीक तो है ना सर?
1: उसकी वाइफ ने उसके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट की है।
0: पुलिस कंप्लेंट? ओ नो, अभी वो कहाँ है?
1: थाने में बैठा है, शायद उसका बयान ले रहे हैं।
0: मैं भी जाती हूँ सर।
1: कहाँ? थाने?
0: यस सर।
1: मगर तुम क्या कर लोगी वहाँ?
0: मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं जा रही हूँ।
1: ओके, टेक केयर।
0: जी सर।
2: सर मैं सच कहता हूँ, मैंने कोई डाउरी की डिमांड नहीं की है। और सर ये प्रताड़ित करने वाली बात, ये तो बिल्कुल ही झूठ है।
3: यहाँ सब सच ही बोलते हैं जी, और यही कहते हैं कि बेकसूर हैं।
2: लेकिन मैं इनोसेंट हूँ सर, थोड़े बहुत झगड़े किस हस्बैंड वाइफ के बीच नहीं होते।
3: अच्छा, कैसे साबित करेंगे अपनी इनोसेंस?
2: अरे साबित वो करें कि मैं एक्यूज्ड हूँ, इतना कानून तो मैं भी समझता हूँ।
3: ये थाना है बेटा, सारा कानून निकल जाएगा। पता भी है वुमेन मैटर्स में गवर्नमेंट कितनी स्ट्रिक्ट है।
2: तो क्या मतलब है आपका कि किसी बेकसूर को जेल में ठूंस दीजिए? अरे जांच कीजिए, जुर्म साबित हो तो चढ़ा दीजिए फांसी।
3: अरे मैं कौन होता हूँ फांसी चढ़ाने वाला? क्या सजा देनी है क्या नहीं ये कोर्ट जाने। पुलिस का काम है एविडेंस कलेक्ट करना और चार्जशीट दाखिल करना।
2: मतलब कि चार्जशीट बनानी ही है, ये आपने पहले से ही तय कर रखा है। इन्वेस्टिगेशन तो बस दिखावा है।
3: ए मिस्टर, पुलिस को उसका काम मत समझाइए।
0: डब्बू कैसे हो तुम?
3: ये मैडम कौन है?
0: मैं बताती हूँ, मैं इनकी कलीग हूँ।
3: ओ अच्छा, तो पैरवी में आई है इनकी।
0: जो चाहे समझ लीजिए।
2: तुम्हें यहाँ नहीं आना था भावना।
0: क्यों, तुम सोच भी कैसे सकते हो कि तुम पर आफत आएगी और भावना नहीं होगी?
3: लगता है कंप्लेंट फाल्स नहीं है।
0: आप पुलिस हैं, इसका ये मतलब नहीं कि कुछ तो भी बोल दें आप।
3: भाई मैं कौन होता हूँ कुछ बोलने वाला, बोल तो आपकी बॉडी लैंग्वेज रही है।
2: भावना, भावना तुम जाओ यहाँ से।
0: नहीं मैं नहीं जाती, जानू तो सही कि मेरी बॉडी लैंग्वेज क्या बोल रही है।
3: अरे अब मेरा मुंह मत खुलवाओ जी, ऐसे केसेस में क्रुएलिटी का रीजन ज्यादातर कोई वुमन ही होती है। जिंदगी बीत गई मेरी ये सब देखते देखते।
2: प्लीज जाओ भावना, जाओ तुम, तुम्हें मेरी कसम।
4: मिस भावना, मैंने आपका केस स्टडी कर लिया है।
0: तो फिर?
4: देखिए डरने की जरूरत नहीं, 498A के केसेस में पुलिस सफिशिएंट एविडेंस के बिना अरेस्ट नहीं कर सकती।
0: तो फिर वो उसे थाने में रोक के कैसे रख सकते हैं सर?
4: टेक्निकल पॉइंट है भाई, पूछताछ के लिए तो पुलिस किसी को भी थाने बुला सकती।
0: वो तो ऐसे कर रहे हैं जैसे उसका जुर्म साबित।
4: अरे अरे अरे, आप बिल्कुल नहीं समझती भाई। ये बताइए, शेर अगर नॉर्मल बातचीत भी करेगा तो कैसे करेगा?
0: मतलब?
4: अरे मतलब ये कि पुलिस की स्टाइल ही कुछ ऐसी है, अब क्या किया जाए। छोड़िए इन बातों को, हमें उसे इनोसेंट साबित करने की कोशिश करनी चाहिए। नहीं तो?
0: नहीं तो क्या, अभी अभी तो आपने कहा कि।
4: अरे भाई कहा था, लेकिन ये थोड़ी कहा था कि पुलिस अरेस्ट ही नहीं कर सकती। ग्राउंड्स हैं कुछ जिनकी बिना पर पुलिस अरेस्ट कर भी सकती है।
0: जैसे?
4: जैसे कि पुलिस ऑफिसर को लगे कि एक्यूज एविडेंस को टेम्पर कर सकता है, विटनेस को धमकी दे सकता है।
0: विटनेस?
4: हाँ जी विटनेस। कोई मिनी मैडम है इसमें, उसी ने दीपा के लगाए एलिगेशंस को अप्रूव किया है।
0: मिनी? वो कैसे?
4: भाई ये लीगल बातें हैं, इनमें ना उलझिए आप। मुद्दा ये है कि विटनेस अगर शिकायतकर्ता की बात को अप्रूव करता है तो कुछ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस कलेक्ट करके पुलिस उसे अरेस्ट कर सकती है।
0: ओफो, साफ साफ बताइए कि अब हमें करना क्या है।
4: भाई अब बात विटनेस पर आ गई है, वो जिधर घूम जाए केस उसके पक्ष में। और हाँ इससे भी बढ़कर शिकायतकर्ता पर।
0: मतलब?
4: अरे मतलब ये कि पुलिस ने अभी FIR लिया नहीं है, अभी मामले को जांच में रखा है, और इस स्टेज पर शिकायतकर्ता अगर विड्रा कर ले तो समझो केस खत्म।
0: ओह नाउ आई गॉट इट।

0: मे आई कम इन?
1: आ गई तुम। मैं सोच ही रही थी कि अभी तक आप।
0: एक्सक्यूज मी, जहां तक मुझे याद आता है हम इसके पहले कभी नहीं मिले हैं।
1: तो क्या हुआ, जो कांटा दिल में गड़ा हो उसे पहचानने में देर थोड़ी लगती है।
0: छोड़ो इन बातों को, मुद्दे की बात करते हैं।
1: मुद्दे की बात? बोलो ना, मुद्दे की बात पर ही हमेशा तुम स्ट्राइक करती हो। तभी तो सोच समझ कर।
0: दीपा, सॉरी सॉरी, मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहती।
1: अरे लड़ लो, लड़ो ना जी भर कर, हमारी जंग तो अब छिड़ चुकी है।
0: दीपा, तुम्हें परेशानी मुझसे है और सजा उस बेकसूर को दे रही हो।
1: बेकसूर? तुम तो कहोगी ही उसे बेकसूर। मैंने भुगता है, डैमिट। अंगारों पे लोट लोट कर जी हूं मैं। देखना चाहोगी फफोले मेरे दिल पे है।
0: मुझे तुमसे सिंपति है दीपा, लेकिन मेरा विश्वास करो, डब्बू बेकसूर है। हाँ, मैं कसूरवार हूं, ये मानती हूं।
1: क्या कहा, तुम खुद को कसूरवार मानती हो?
0: हाँ मानती हूं मैं। मेरे दिल में उसके लिए जगह थी, लेकिन ईश्वर की सौगंध खाकर कहती हूं, उसने कभी भी मुझे उस नजर से नहीं देखा।
1: तो फिर क्यों हमेशा वो तुम्हारी कंपनी में रहता है? क्यों तुम्हारी बातें मानता है? क्यों तुम्हारे संबंध में बार बार झूठ बोला उसने? है कोई जवाब तुम्हारे पास?
0: जवाब है, सब तुम्हारे बचपने से हुआ। प्यार में इस कदर इनसिक्योर फील करती थी तुम कि तुम्हारा शक सारी हदें ही तोड़ गया।
1: बेवजह नहीं था मेरा शक।
0: बेवजह ही था, जिसकी जड़ में थी तुम्हारी पजेसिवनेस, जो बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ गई कि उसके लिए कैद बन गई। घर में तुम उससे दिन रात झगड़ा करती। ऐसे में आदमी कहाँ जाए? वहीं जाएगा जहां उसे हमदर्द मिले, अपनापन मिले।
1: तो तुम यहां मुझे नीचा दिखाने आई हो?
0: नहीं, हरगिज नहीं। मैं तुमसे ये कहने आई हूं कि अपने डब्बू को बचा लो, जिसे पाने के लिए तुम दुनिया से टकराई थी।
1: किसके लिए? तुम्हारे?
0: नहीं, मेरा तो वो कभी था ही नहीं।
1: झूठ, झूठ बोल रही हो तुम। क्या उस रात घर से भागकर डब्बू तुम्हारे पास नहीं गया था? पूरी रात तुम्हारे साथ गुजारी है, डैमिट, और तुम कहती हो कि?
0: क्या उल जलूल बक रही हो, उस रात होटल में था वो भी अकेला।
1: कैसे मान लूं मैं? है कोई प्रूफ तुम्हारे पास?
0: प्रूफ चाहिए? जाके होटल का रजिस्टर चेक कर लो, नहीं तो वहां का सीसीटीवी फुटेज निकाल लो। फिर भी विश्वास ना आए तो पुलिस को बता दो, वो तो सच झूठ पता कर ही लेंगे, क्यों है ना?
1: मतलब सचमुच उस रात डब्बू?
0: ईश्वर की सौगंध खाकर कहती हूँ दीपा, प्रूफ तुम खुद ले सकती हो, जो सच है वो सच है।
1: ओ नो।
0: सोचो दीपा, दिल से नहीं दिमाग से। अगर वो गलत होता तो उस रात क्या वो होटल जाता? अरे वो सीधा मेरे पास आता।
1: ओ गॉड, कहा तो उसने यही था, पर मैं क्या करती, कैसे मान लेती उसकी बात? डैम इट, इतना झूठ जो बोल चुका था।
2: यस
0: सर, डब्बू कहाँ है?
2: क्यों, खाना लाइए श्रीमान के लिए, हमने खिला दिया।
0: मतलब?
2: मतलब कि अभी वो हवालात में आराम कर रहे हैं।
1: उन्हें छोड़ दीजिए सर, मैं अपनी कंप्लेंट वापस लेती हूँ।
2: आप लोगों ने पुलिस को खाला का घर समझ रखा है क्या? कल तक तो कार्यवाही करने के लिए प्रेशर डाल रही थी और आज?
1: सॉरी सर, कुछ गलत फहमी हो गई थी।
2: गलत फहमी? सॉरी, अब देर हो चुकी है, बहुत देर हो चुकी है।
1: मैं अपनी कंप्लेंट वापस तो ले रही हूँ ना सर, फिर क्या प्रॉब्लम है?
2: सॉरी दीपा जी, अब बहुत देर हो चुकी है, फॉर्मल अरेस्ट हो चुकी है, केस डायरी लिखी जा चुकी है और रोज नामचे में भी एंट्री हो चुकी है। ये रही अरेस्ट की इंटीमेशन।
1: ओह नो सर, इतनी जल्दी सब कुछ?
2: भाई आप लोगों का भी जवाब नहीं, कार्यवाही में देरी हो तो चिल्लाती हैं, जल्दी कर दी तो उस पर भी एतराज?
0: कुछ तो हो ही सकता होगा सर, अभी मामला आप ही के पास है।
2: मेरे पास है, लेकिन मेरे हाथ में नहीं, अब जो होगा कोर्ट में होगा।
0: कुछ नहीं सर।
2: कुछ भी नहीं
1: सर, हम उसे एक बार मिल तो सकते हैं ना सर?
2: हाँ, मिल लीजिए, वो रहे आपके पति देव।

0: मुझे माफ कर दो डब्बू, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई।
1: भूल? तुम्हें तो खुश होना चाहिए, घी के दिए जलाने चाहिए कि तुमने अपने कैरेक्टरलेस हस्बैंड को पनिश करा दिया।
0: मैं सच में शर्मिंदा हूँ डब्बू, आई एम सॉरी, लेकिन मैं क्या करती? उस रात कितना रोका था मैंने तुम्हें कि डब्बू मत जाओ मत जाओ, और तुम होगी
1: तो ठीक है ना, उसकी सजा भुगत रहा हूँ, अब और क्या चाहती हो?
2: जाने दो डब्बू, इससे अपनी गलती रियलाइज हो चुकी है।
1: गलती रियलाइज हो गई? अरे मुझ पे जो बीती है वो खत्म हो जाएगी।
2: डब्बू, गलती अकेले उसकी नहीं, तुम्हारी भी तो है। क्यों लगातार झूठ बोलते थे तुम उससे?
1: हाँ, झूठ बोला था, मानता हूं कि झूठ बोला था, मगर क्यों? इसके शक्कीपन के कारण। 1% भी अगर इसने मुझ पर भरोसा किया होता तो मैं झूठ बोलता ही क्यों?
0: बिलीव मी डब्बू, बिलीव मी, मैं तुमसे बेहिसाब मोहब्बत करती थी और अब भी करती हूँ। इसी वजह से मुझ में इनसिक्योरिटी की फीलिंग आती गई, मुझसे बर्दाश्त ही नहीं होता कि तुम किसी और को देखो भी।
2: ठीक है दीपा, लेकिन तुम्हें ये भी तो सोचना चाहिए था कि जिससे तुम प्यार करती हो वो तुम्हें छोड़कर कहाँ जा सकता है। आखिर तुम्हें अपने प्यार पर भरोसा तो होना ही चाहिए था ना।
0: ठीक कहती हो तुम भावना, डैम इट, पता नहीं मुझे क्या हो गया था। I'm sorry, डब्बू।
1: दीपा,
0: सॉरी
1: दीपा।

0: एक शक झूठ हजार। अभी आप आरके जायसवाल का लिखा ये नाटक सुन रहे थे। भूमिका सहित कलाकारों का परिचय इस प्रकार है। डब्बू नजीर कुरैशी।
1: पागल हो, भला तुम्हें छोड़कर मैं कहीं जा सकता हूँ?
0: दीपा स्वस्तिका चक्रवर्ती।
2: शक की नजर से नहीं डैमिट, कंफर्म कह रही हूँ, तुम किसी औरत के साथ थे।
0: भावना दिव्या पवार।
3: इतनी कातिल हूँ मैं, तुम पे तो कभी असर देखा ही नहीं।
0: मिन्नी कविता इसरानी।
4: चौकसी रख चौकसी। पतंग की डोर तो छूटने पे पकड़ सकती है, मगर आदमी की नो चांस।
0: मैनेजर प्रदीप नेमा।
5: उसकी वाइफ ने उसके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट की है।
0: थानेदार सुभाष सक्सेना।
6: ये थाना है बेटा, सारा कानून निकल जाएगा।
0: और वकील अब्दुल रज्जाक सिद्दीकी।
7: देखिए डरने की जरूरत नहीं, 498A के केसेस में पुलिस सफिशिएंट एविडेंस के बिना अरेस्ट नहीं कर सकती।
0: इस नाटक के प्रस्तुतकर्ता थे राकेश ढोंडियाल।
8: अभी आपने नाटक सुना। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं।
9: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना, जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना, हर संकट का समाधान है भारतीय सेना, भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह

यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है कार्यक्रम राग रजनी। इसमें आज सुनिए राग दरबारी कान्हड़ा में ध्रुपद गायन। कलाकार हैं डागर बंधु।

0: अभी आपने डागर बंधुओं का ध्रुपद गायन सुना। अब आज का राग रजनी कार्यक्रम संपन्न हुआ। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में दिल्ली से समाचार रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रवि कपूर। संसद ने सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इसे आज पारित किया और लोकसभा ने इसे सोमवार को पारित किया था। विधेयक में संशोधन के तहत सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की वर्तमान संख्या 33 से बढ़ाकर 37 की जाएगी। राज्यसभा में विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के आदर्श वाक्य पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि देश के लोग हर क्षेत्र में सुधार देख रहे हैं और ये विधेयक न्यायिक सुधारों का ही एक हिस्सा है।
2: धारा 370 और 35 से ये एक विभेदकारी और अन्याय पूर्वक एक धारा थी जिसको समाप्त किया नरेंद्र मोदी जी ने, और उसके बाद जम्मू कश्मीर में विकास की रफ्तार भी तेज हुई। विरासत और विकास दोनों को बल मिला, वहां के नागरिकों को रोजगार मिला, पहली बार उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर में इतना काम होते हुए देखा, तो नागरिक तो वहां खुश है।
1: विधेयक का उद्देश्य सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों को निपटाना है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई समेत विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण कई बार बाधित होने के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा में अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू होने का प्रयास किया। श्री बिरला ने सभी सदस्यों से प्रश्नकाल के सुचारू संचालन में सहयोग करने का आग्रह किया।
3: संसद चर्चा संवाद के लिए, आपके विचारों की अभिव्यक्ति के लिए प्रश्नकाल में महत्वपूर्ण प्रश्न पूछो। कई विभागों के महत्वपूर्ण प्रश्न है और आप नियोजित तरीके से पोस्टरबाजी करके प्रदर्शन कर सदन की गरिमा को घटाना चाहते हैं।
1: मेटा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जुकरबर्ग ने बाल यौन शोषण सामग्री, डीप फेक सामग्री और प्लेटफॉर्म के संचालन में हुई त्रुटियों के लिए आज भारत सरकार से क्षमा मांगी है। सूत्रों के अनुसार मेटा ने स्वीकार किया है कि कुछ विशेष प्रकार की सामग्री को बढ़ावा देने के लिए बड़ी रकम का भुगतान किया गया था। बंबई उच्च न्यायालय ने मेटा, एक्सकॉर्प तथा गूगल एलएलसी को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को निशाना बनाकर बनाए गए अपमानजनक, अश्लील और मान हानिकारक सोशल मीडिया पोस्ट को तुरंत हटाने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को ऐसा तंत्र विकसित करने के लिए भी कहा है जिससे पीड़ितों को अदालतों का सहारा लेने की आवश्यकता के बिना ही ऐसी सामग्री को तुरंत हटाया जा सके। भारत ने आज पाकिस्तान को पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में हिंसा रोकने, आतंकी नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई करने और उसके अवैध कब्जे वाले सभी भारतीय क्षेत्रों को तुरंत खाली करने को कहा है। तथाकथित यौमे इस्ते सहल पर पाकिस्तान के विदेश मंत्री की टिप्पणियों के संबंध में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि दुनिया इन सुनियोजित तमाशों से मूर्ख नहीं बन रही है। श्री जायसवाल ने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा हैं, हमेशा से रहे हैं और हमेशा रहेंगे।